सुप्रभात। मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज़ के साथ साथ FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। आज इतवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 15वीं तिथि, तदनुसार 5 जुलाई सन 2026। हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:55 और 54 सेकेंड हो रहे हैं। अब आरंभ होती है हमारी आज की प्रथम प्रसारण सभा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के सांणंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सांणंद संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होगी। उन्होंने कहा कि ये विकास भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का पूर्वक सामना किया।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज से 10 जुलाई तक कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान की सरकारी यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे इन देशों के विदेश मंत्रियों और नेताओं से मुलाकात करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और क्षेत्रीय घटनाक्रमों तथा पारस्परिक हित के मुद्दों पर विचार विमर्श करना है। डॉक्टर जयशंकर 13 जुलाई को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के वर्ष 2028-29 कार्यकाल के लिए भारत का अभियान शुरू करेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि इथेनॉल कोई नई अवधारणा नहीं है और इसका उपयोग एक सदी से अधिक समय से हो रहा है। राजस्थान में एक सभा को संबोधित करते हुए श्री पुरी ने कहा कि सरकार अपने जैव ईंधन मिश्रण कार्यक्रम की रचनात्मक आलोचना का स्वागत करती है। उन्होंने आश्वस्त किया कि सरकार सुझावों के अनुसार आवश्यक सुधार करेगी। श्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत में इथेनॉल मिश्रण का विचार सर्वप्रथम पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान शुरू हुआ था। संसद का

0: मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 जुलाई से संसद का मानसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान किया जाएगा। पूर्वी अमेरिका में भीषण लू चल रही है, इससे बिजली आपूर्ति पर भारी दबाव पड़ रहा है और फीफा विश्व कप मैचों की तैयारियों में बाधा आ रही है। अमेरिका के सबसे अधिक आबादी वाले शहर न्यूयॉर्क में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने की आशंका है, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों और मध्य अटलांटिक तट पर भी लू की चेतावनी जारी कर दी गई है। अमेरिका के मौसम विभाग ने बताया है कि स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान रिकॉर्ड तोड़ तापमान का भी पूर्वानुमान होगा। पुरुष क्रिकेट में इंग्लैंड ने कल मैनचेस्टर में 5 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया। भारत ने बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 190 रन बनाए। वहीं जवाब में इंग्लैंड ने 19 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 191 रन बनाकर मैच जीत लिया। तीसरा मैच मंगलवार को नॉटिंगहम में खेला जाएगा। इससे पहले वैभव सूर्यवंशी ने भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बनकर इतिहास रच दिया। वैभव ने 15 वर्ष और 99 दिन की उम्र में पदार्पण किया। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज लंदन के लॉर्ड्स में इंग्लैंड का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। दोनों टीमें अपराजित रहते हुए फाइनल में पहुंची हैं। ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को हराया, जबकि एक अन्य सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। लंदन में विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में बेल्जियम की एलिस मर्टेंस ने कल महिला सिंगल्स के तीसरे दौर में कजाकिस्तान की एलेना रायबाकाइना को हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। एक अन्य मुकाबले में फिलीपींस की अलेक्जेंड्रा एला ने तीसरी वरीयता प्राप्त पोलैंड की ईगा स्वियाटेक को हराकर अंतिम 16 में प्रवेश किया। पुरुष सिंगल्स में दूसरी वरीयता प्राप्त जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने तीसरे दौर में अमेरिका के मार्कोस गिरोन को हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है।
2: आपकी पसंद आपका गाना और आवाज होगी आपकी। जी हाँ, आकाशवाणी का सबसे चहेता प्रोग्राम हेलो फरमाइश अब आप सुनेंगे हर रविवार प्रातः 10:05 पर। कर लीजिए तैयारी, क्योंकि हर शनिवार दोपहर 11 से 12 बजे के बीच होगी हमारी रिकॉर्डिंग। तो देर किस बात की, अभी उठाइए अपना फोन और डायल कीजिए हमारा नंबर 0551-220-5386। 0551 हमारा STD नंबर है गोरखपुर का। नंबर एक बार फिर से 220-5386। अपनी फरमाइश हमें बताइए और जुड़िए आकाशवाणी गोरखपुर के साथ। कॉल करना भूलिएगा मत, हर शनिवार दोपहर 11 बजे से 12 बजे के बीच।
3: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की DVDs और CDs हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
4: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
5: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
6: जी हाँ, भौरे गुनगुनाएंगे और खिलेंगी आपके मन की कलियाँ।
2: 1 जुलाई से सुनिए गाते गुनगुनाते कार्यक्रम एक नए अंदाज में।
6: करिए अपने मनपसंद फिल्मी गानों की फरमाइश आकाशवाणी गोरखपुर के फेसबुक पेज पर।
2: 1 जुलाई 2026 को प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के पोस्टर कमेंट बॉक्स में लिखिए
6: गाने के बोल,
2: गीतकार
6: और संगीतकार
2: और अपने चाहने वालों और दोस्तों के नाम
6: और सुनिए अपने पसंद के

0: गीत आकाशवाणी गोरखपुर से।
1: आपकी फरमाइश हमारे सुरों के साथ, यादें बन जाएंगी खास। गाते
0: गाते
1: गुनगुनाते सुनिए सुबह 10:05 पर,
0: सुनते रहिए आकाशवाणी गोरखपुर।
2: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
3: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
4: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
3: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
4: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
3: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की,
4: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
3: For details log on to www.ddindia.com।

हे मधुसूदन, नंद के लाल, यशोदा के प्राण, आप सर्वहितकारी, संकटहारी, सर्व सुखदाता, आनंद विधाता हैं। आप हमारे हृदय में वास करते हैं। आपकी महिमा रूपी रस से और वात्सल्य से जग सराबोर है। आपकी महिमा अपरंपार है। आपको सहस्त्र बार प्रणाम।

गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, ओ मन जो तू सब तरह के सुख दुख चाहता है तो श्री राम जी का भजन कर, कृपा निधान प्रभु श्री राम ही तेरी सारी कामनाएं पूरी करेंगे।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र, अमर वाणी।
1: कषाय दहन शांतिम याति रागादिभिः समं चेतः प्रसत्तिमाधत्ते वृद्ध सेवावलंबिनाम। जो लोग बड़े बूढ़ों की सेवा करते हैं उनकी मनोविकार रूपी अग्नि शांत हो जाती है, चित्त में निर्मलता आती है और प्रसन्नता प्राप्त होती है। सत्तत्व निकषोद्भूतम विवेकालोकवर्धितम येषां बोधमयं चक्षुः ते वृद्धा विदुषां मताः। जिसके तत्व परीक्षा करते करते ज्ञान रूपी आँखों में विवेक का प्रकाश जगमगाता रहता है, ऐसे ही महापुरुषों को विद्वान लोग वृद्ध पुरुष कहते हैं। सुधांशुरश्मि संपर्काद विसर्पति यथाम बुधिः तथा सद्वृत्त संसर्गात नृणाम प्रज्ञापयो निधिः। जिस प्रकार चंद्र की किरणों के संसर्ग से समुद्र में वृद्धि होती है, उसी प्रकार सदाचारी लोगों के संसर्ग से, उनकी सत्संगति से मनुष्य के बुद्धि रूपी समुद्र में भी विस्तार होता है, उनकी बुद्धि भी बढ़ती है। कुर्वन्नपि तपस्तीव्रम विदन्नपि श्रुतार्णवम नासादयति कल्याणम चेद वृद्धान अवमन्यते। चाहे व्यक्ति कितना ही घोर तपश्चर्या करे, शास्त्र रूपी समुद्र का भी पारगामी हो जाए, किंतु यदि वह वृद्ध जनों का अपमान करता है तो उसे कल्याण की और मोक्ष की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। दहति दुरित कक्षम कर्म बंधम लुनीते वितरति यम सिद्धिम भाव शुद्धिम तनोति जयति जनन तीरम ज्ञान राज्यं च दत्ते ध्रुवमिह मनुजान।

0: साध्वी, भली भांति की गई वृद्ध सेवा से, बड़े बूढ़ों की सेवा से निश्चय ही मनुष्य के पाप रूपी वन का भस्मीकरण हो जाता है, पाप नष्ट हो जाते हैं, कर्म के बंधन कट जाते हैं और संयम की सिद्धि होती है, परिणाम निर्मल होते हैं और संसार रूपी समुद्र का किनारा प्राप्त हो जाता है। इसलिए बड़े बूढ़ों की सेवा करनी चाहिए, ऐसी शास्त्रों की आज्ञा है। श्रमाम्बुभि क्रोध सिखी निवार्यताम नियम्यताम मान मुदार मार्दवैहि यंच मायार जव शस्त्र धारया मुनीश लोभश्च परिग्रहात्ययात। जब क्रोध रूपी अग्नि प्रज्वलित हो रही हो तब उसे क्षमा रूपी जल से बुझा देना चाहिए, अभिमान को मृदुता से जीतना चाहिए, माया का भाव मन में जब जागृत हो तो उसे सरलता से मिटाना चाहिए, और जब लोभ की वृत्ति बढ़ रही हो तो उसे अपरिग्रह की भावना से दबा देना चाहिए। येन येन निवार्यन्ते क्रोधाद्या परिपन्थिनः स्वीकार्यम् अप्रमत्तेन तत्तत् कर्म मनीषिणा। बुद्धिमान मनुष्य वही है जो आलस्य छोड़कर ऐसा ही कार्य करता है जिनसे मन के विकार नहीं होते, क्रोध आदि उत्पन्न नहीं होते, ऐसे ही जो कार्य करता है वही वास्तव में बुद्धिमान है। व्यवहारे सुषुप्तो यः सजागर्त्यात्मगोचरे जागर्ति व्यवहारेऽस्मिन् सुषुप्तश्चात्मगोचरे। जो व्यक्ति सांसारिक विषयों के प्रति उदासीन रहता है वही आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया में यत्नशील रह सकता है। इसके विपरीत जो सांसारिक व्यवहार में उत्साही व्यक्ति आत्म साधना में सोए हुए की भांति प्रगति नहीं कर पाता।
1: अभी आप सुन रहे थे अमरवाणी।

इसी सभा में 7:30, 8:45 और 10:05 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत।

शाम 5 बजे युवाओं पर आधारित कार्यक्रम आप सुनेंगे युववाणी। खेती किसानी कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे कृषि वानिक पौधे विषय पर डॉक्टर संतोष कुमार सिंह और ओम प्रकाश त्रिपाठी की बातचीत।

दिन में 11:30 और 12:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। तो ये थी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र मानस कांत।

अवध के राज सिंहासन पर बैठना अस्वीकार करते हुए भरत ने अपने हृदय में धधकती जिस ज्वाला और पश्चाताप की व्यथा कथा गुरुजनों को सुनाई, उससे सबके हृदय में मर्मांतक पीड़ा के साथ एक आनंद का संचार भी हुआ। श्री राम के प्रेम रूपी अमृत से सने भरत के प्रिय वचन सभी के हृदय में दहकती रामविरह की ज्वाला को शांत करने वाले सिद्ध हुए। सबने भरत को मुक्त कंठ से श्री रामचंद्र के प्रेम की प्रतिमूर्ति मानकर उनके वन जाने के लिए सहमति प्रकट की। भरत के इस निश्चय से जैसे शोक सागर में डूबी अयोध्या नगरी को एक सहारा मिल गया। सबके हृदय में ऐसे आनंद का संचार हुआ जैसे मेघों की गर्जना से चातक और मोर आनंद विभोर हो उठते हैं। भरत का जीवन धन्य है, इस उद्गार के साथ सभी उनके शील और स्नेह की प्रशंसा करते नहीं आघाते।

0: आपकी पसंद आपका गाना और आवाज होगी आपकी। जी हाँ, आकाशवाणी का सबसे चहेता प्रोग्राम हेलो फरमाइश अब आप सुनेंगे हर रविवार प्रातः 10:05 पर। कर लीजिए तैयारी क्योंकि हर शनिवार दोपहर 11 से 12 बजे के बीच होगी हमारी रिकॉर्डिंग। तो देर किस बात की, अभी उठाइए अपना फोन और डायल कीजिए हमारा नंबर 0551220536। 0551 हमारा STD नंबर है गोरखपुर का। नंबर एक बार फिर से 2205386। अपनी फरमाइश हमें बताइए और जुड़िए आकाशवाणी गोरखपुर के साथ। कॉल करना भूलिएगा मत हर शनिवार दोपहर 11 से 12 बजे के लिए।
1: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की DVDs और CDs हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
2: गुनगुना रहे हैं भंवर, खिल रही है कली कली।
3: जी हाँ, भौरे गुनगुनाएंगे और खिलेंगी आपके मन की कलियाँ।
0: 1 जुलाई से सुनिए गाते गुनगुनाते कार्यक्रम एक नए अंदाज में।
3: करिए अपने मनपसंद फिल्मी गानों की फरमाइश आकाशवाणी गोरखपुर के फेसबुक पेज पर।
0: 1 जुलाई 2026 को प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के पोस्टर कमेंट बॉक्स में लिखिए
3: गाने के बोल,
0: गीतकार
3: और संगीतकार
0: और अपने चाहने वालों और दोस्तों के नाम,
3: और सुनिए अपने पसंद के गीत आकाशवाणी गोरखपुर से।
0: आपकी फरमाइश हमारे सुरों के साथ यादें बन जाएंगी खास। गाते
3: गाते गुनगुनाते
0: सुनिए सुबह 10:05 पर।
3: सुनते रहिए आकाशवाणी गोरखपुर।
1: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
4: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
5: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे TV चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
4: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट।
5: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
4: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
5: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
4: For details, log on to www.ddindia.com।
6: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
7: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
6: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
7: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की।

0: डायल कीजिए 8700014242।
1: ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 6:55 होने वाले हैं। अब सुनिए दिल्ली केंद्र से संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी में क्रमशः समाचार।
2: श्रोताओं, 6:55 होने को हैं। अब समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
3: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः जतिन शर्मा। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना ह्यः गुजरातस्य सानन्दक्षेत्रे सीजी सेमी संस्थायाः अत्याधुनिकस्य ओसेट सेमीकण्डक्टर संयन्त्रस्य उद्घाटनं कृतम्। अत्रावसरे जनसभां सम्बोधयन् प्रधानमन्त्रिणा प्रतिपादितं यत् अयं विकासः भारतस्य प्रगाढ इलेक्ट्रॉनिक्स क्रान्तेः आगामी चरणमस्ति, येन देशः पूर्वमेव विश्वस्य द्वितीयः बृहत्तमः दूरभाष निर्मातृत्वेन समेधितः। सः दृढविश्वासं प्रकटितवान् यत् सानन्दक्षेत्रं वैश्विक सेमीकण्डक्टर केन्द्रत्वेन समेधिष्यते।
4: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चीप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
3: तेन गदितं यत् सानन्दं प्रतिवर्षं 20 चिप्स निर्माणार्थं सज्जमस्ति। तेन 500 परिमितस्य लक्ष्य निर्धारणार्थं शुभाशयाः अपि प्रकटिताः। अत्रावसरे केन्द्रीयमन्त्रिणा अश्विनी वैष्णवेन घोषितं यत् 2020-2023 यावत् भारते 5 सेमीकण्डक्टर संयन्त्राणि पूर्णतः क्रियाशीलानि भविष्यन्ति। प्रधानमन्त्रिणा जोधपुर विमानपत्तने नूतनस्य टर्मिनल भवनस्यापि उद्घाटनं कृतम्। तदनन्तरं सः बालोत्तरा मण्डलस्य पचपदरा क्षेत्रे देशस्य अत्याधुनिकं ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स इत्येतत् राष्ट्राय समर्पितवान्। अत्रान्तरे तेन जयपुर मेट्रो द्वितीय चरणस्य शिलान्यासोऽपि कृतः। अवसरेऽस्मिन् प्रधानमन्त्रिणा प्रोक्तं यत् पश्चिम एशिया क्षेत्रस्य संघर्षेण 21वीं शताब्द्याः महत्तमः ऊर्जा संकटः समुत्पन्नः, किन्तु भारतेन समयोचित निर्णयैः कूटनीत्या च एषः कालः सम्मुखीकृतः।
4: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
3: श्री मोदी राजस्थान सर्वकारस्य विभिन्न विभागेषु नवनियुक्तेभ्यः 45,000 युवभ्यः नियुक्ति पत्राणि अपि प्रायच्छत्। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः सानन्दक्षेत्रे नूतन सीजी सेमी ओसेट इत्यस्य उद्घाटनं प्राविधिक आत्मनिर्भरतायां भारतस्य अभिनव पदक्षेपः इत्युदीरितवान्। अस्य अत्याधुनिक संयन्त्रस्य उद्घाटनं प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना कृतम्। गृहमन्त्रिणा सामाजिक सञ्जालीय तन्त्रे स्वलेखे प्रकटितं यत् भारतस्य प्रौद्योगिकी महाशक्तित्वेन विकास यात्रायामेषः कश्चन नूतनः कीर्तिस्तम्भः अस्ति। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः अद्य प्रभृति अस्य मासस्य 10 यावत् कतार, बहरीन, कुवैत, ओमान देशानाम् आधिकारिक यात्रायां भविष्यति। स्वप्रवासकाले विदेशमन्त्री तत्तद्देशीयानां समकक्षनेतृभिः सह शीर्षनेतृत्वेन च सह मेलिष्यति। विदेशमन्त्रालयेन प्रोक्तं यत् अयं प्रवासः एतैः देशैः सह भारतस्य द्विपक्षीय सम्बन्धानां दृढीकरणे विशेषेण केन्द्रितः भविष्यति। संसदः वर्षाकालीन सत्रमस्य मासस्य 20 अगस्त मासस्य 23 दिनांकं यावत् प्रचलिष्यति। संसदीय कार्यमन्त्री किरण रिजिजू सूचितवान् यत् राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः जुलाई मासस्य 20

0: अंकात संसदः वर्षाकालीन सत्रस्य आह्वानाय सर्वकारस्य प्रस्तावं स्वीकृतवती। आईसीसी महिला विंशति प्रतिविंशति ही विश्वचषके लंडन नगरस्य लॉर्ड्स क्रीडांगणे इंग्लैंड दलम अद्य अंत्यद्वंद्वे ऑस्ट्रेलिया दलम सम्मुखी करिष्यति। इयं प्रतिस्पर्धा तावत भारतीय समयानुसारं रात्रौ अष्टवादने समारप्स्यते। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल राजस्थान के पचपदरा में 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने जोधपुर हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन भी किया। श्री मोदी ने कहा कि जोधपुर हवाई अड्डे का नया टर्मिनल भवन मारवाड़ क्षेत्र में पर्यटन, व्यापार और रोजगार को बढ़ावा देगा। उन्होंने कहा कि जोधपुर से संशोधित उड़ान योजना शुरू होने से छोटे शहरों और दूरदराज के क्षेत्रों तक हवाई संपर्क बेहतर होगा। श्री मोदी ने कहा कि वर्तमान सरकार राष्ट्र प्रथम के दृष्टिकोण से काम कर रही है और हर क्षेत्र तथा हर नागरिक के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इससे पहले श्री मोदी ने पचपदरा में देश की सबसे आधुनिक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल संयंत्र का लोकार्पण किया। उन्होंने जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखी। बाद में गुजरात के सांणंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर संयंत्र की में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी। उन्होंने कहा कि ये विकास भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
2: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज से 10 जुलाई तक कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान की सरकारी यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे इन देशों के विदेश मंत्रियों और नेताओं से मुलाकात करेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि एथेनॉल कोई नई अवधारणा नहीं है और इसका उपयोग एक सदी से अधिक समय से हो रहा है। राजस्थान में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री पुरी ने कहा कि सरकार अपने जैव ईंधन मिश्रण कार्यक्रम की रचनात्मक आलोचना का स्वागत करती है। श्री पुरी ने कहा कि भारत में एथेनॉल मिश्रण का विचार सर्वप्रथम पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान शुरू हुआ था। कांग्रेस सरकार के दौरान 10 राज्यों में 5% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, लेकिन केवल 1.4% मिश्रण ही हासिल किया जा सका। सरकार ने मूल्य स्थिरीकरण बफर के लिए प्याज के खरीद मूल्य में 13% की वृद्धि की है। प्याज की कीमत अब 1,875 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर 2,125 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि संशोधित मूल्य से किसानों को लाभ मिलेगा और बफर खरीद प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। पूर्वी अमेरिका में भीषण लू चल रही है, इससे बिजली आपूर्ति पर भारी दबाव पड़ रहा है और फीफा विश्व कप मैचों की तैयारियों में बाधा आ रही है। अमेरिका के सबसे अधिक आबादी वाले शहर न्यूयॉर्क में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने की आशंका है, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों और मध्य अटलांटिक तट पर भी लू की चेतावनी जारी की गई है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में फ्रांस ने अंतिम 16 के मैच में पैराग्वे को 1-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। अब क्वार्टर फाइनल में फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। इससे पहले ह्यूस्टन में

रुक्कू ने कनाडा पर 3-0 से शानदार जीत हासिल कर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। इंग्लैंड ने कल मैनचेस्टर में 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
1: गुनगुना रहे हैं भंवर, खिल रही है कली कली।
2: जी हाँ, भौरे गुनगुनाएंगे और खिलेंगी आपके मन की कलियाँ।
3: 1 जुलाई से सुनिए गाते गुनगुनाते कार्यक्रम एक नए अंदाज में।
2: करिए अपने मनपसंद फिल्मी गानों की फरमाइश आकाशवाणी गोरखपुर के फेसबुक पेज पर।
3: 1 जुलाई 2026 को प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के पोस्टर कमेंट बॉक्स में लिखिए
2: गाने के बोल,
3: गीतकार
2: और संगीतकार
3: और अपने चाहने वालों और दोस्तों के नाम,
2: और सुनिए अपने पसंद के गीत आकाशवाणी गोरखपुर से।
3: आपकी फरमाइश हमारे सुरों के साथ, यादें बन जाएंगी खास। गाते
2: गाते गुनगुनाते
3: सुनिए सुबह 10:05 पर।
2: सुनते रहिए आकाशवाणी गोरखपुर।

0: अभी आप मिली जुली आवाजों में देशभक्ति गीत सुन रहे थे।
1: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और

0: आपकी पसंद आपका गाना और आवाज होगी आपकी। जी हाँ, आकाशवाणी का सबसे चहेता प्रोग्राम हेलो फरमाइश अब आप सुनेंगे हर रविवार प्रातः 10:05 पर। कर लीजिए तैयारी क्योंकि हर शनिवार दोपहर 11 से 12 बजे के बीच होगी हमारी रिकॉर्डिंग। तो देर किस बात की, अभी उठाइए अपना फोन और डायल कीजिए हमारा नंबर 0551220 5386। 0551 हमारा STD नंबर है गोरखपुर का। नंबर एक बार फिर से 2205386। अपनी फरमाइश हमें बताइए और जुड़िए आकाशवाणी गोरखपुर के साथ। कॉल करना भूलिएगा मत हर शनिवार दोपहर 11 से 12 बजे के लिए।
1: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
2: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
3: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे TV चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
2: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
3: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
4: हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 7:20 होने वाले हैं। एक छोटे से अंतराल के बाद आप सुनेंगे हमारे केंद्र से प्रादेशिक समाचार।
5: प्रदूषण पर प्रतिबंध लगाएं, पर्यावरण को हम सब बचाएं। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है प्रदूषण, इसका परिणाम होता है भीषण। प्रदूषण के हैं कई कारण, धुआं, कचरा इत्यादि उदाहरण। देश को प्रदूषण मुक्त बनाए, मन में ये संकल्प बनाए।
6: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम।
5: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
6: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में।
7: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। पहले मुख्य समाचार। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन दो दिवसीय दौरे पर कल पहुंचे लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्यों के साथ की बैठक। प्रदेश सरकार ने राजस्व से जुड़े सार्वजनिक भूमि के मामलों के लिए लागू की नई व्यवस्था। लखनऊ और प्रयागराज में गठित 3 सदस्यीय विशेष पीठ करेगी वादों की सुनवाई। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTET 2026 कल हुई संपन्न। 3 दिवसीय परीक्षा में शामिल हुए 88% अभ्यर्थी। और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की उपस्थिति में लखनऊ के जन भवन में आयोजित हुई मैंगो बायर सेलर मीट। आम निर्यातकों और उत्पादकों के बीच हुए अनुबंध। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद नितिन नबीन दो दिवसीय दौरे पर कल पहली बार लखनऊ पहुंचे। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पार्टी मुख्यालय में प्रदेश कार्यकारिणी के पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी भी मौजूद रहे। इसके अलावा उन्होंने मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, भाजपा सांसदों और विधायकों के साथ भी बैठक की। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने लखनऊ एयरपोर्ट पर राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत किया। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री कमलेश पासवान भी उपस्थित रहे। इसके बाद श्री नवीन ने एयरपोर्ट से भाजपा प्रदेश कार्यालय तक रोड शो किया। इस दौरान जगह जगह पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। उन्होंने स्वागत के लिए प्रदेशवासियों और कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया।
1: उत्तर प्रदेश की धरती लखनऊ की इस पवित्र भूमि को मैं नमन करता हूं। लखनऊ की धरती पे लोगों ने मुझे अभिमान दिया। मैं भारतीय जनता पार्टी और पूरे लखनऊ के लोगों का अभिनंदन कर धन्यवाद करता
0: हूं। श्री नवीन कल अपने लखनऊ प्रवास के दौरान हनुमान सेतु मंदिर गए। वहां उन्होंने हनुमान जी के दरबार में शीश नवाकर देश और प्रदेशवासियों के सुख शांति और समृद्धि की कामना की। राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने दो दिवसीय लखनऊ दौरे में आज विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद ने सार्वजनिक महत्व की भूमि से जुड़े मामलों के त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत अब आरक्षित श्रेणी की भूमि, शासकीय भूमि, ग्राम सभा, नजूल, निष्क्रांत संपत्ति तथा शत्रु संपत्ति से संबंधित सभी वादों की सुनवाई 3 सदस्यीय विशेष पीठ द्वारा की जाएगी। यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। एक रिपोर्ट।
2: राजस्व परिषद के अध्यक्ष अर्चना अग्रवाल ने बताया कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 9 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नई व्यवस्था लागू की गई है। नई व्यवस्था के अनुसार इन मामलों पर विशेष रूप से गठित 3 सदस्यीय पीठ सामूहिक रूप से विचार करेगी। परिषद के अध्यक्ष ने बताया कि राजस्व परिषद ने लखनऊ और प्रयागराज दोनों न्यायालयों के लिए अलग अलग 3 सदस्यीय विशेष पीठों का गठन किया है। इन विशेष पीठों द्वारा प्रत्येक बुधवार को नियमित रूप से इन मामलों की सुनवाई की जाएगी। वहीं एक अन्य पहल के तहत राजस्व परिषद के न्यायालयों द्वारा किसी वाद में अभिलेख तलब किए जाने पर सामान्यतः मूल अभिलेखों के स्थान पर संबंधित अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपलब्ध कराई गई प्रमाणित पूर्ण स्कैन प्रति के आधार पर ही न्यायिक कार्यवाही की जाएगी। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल राजस्थान में भारत का पहला ग्रीन फील्ड एकीकृत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भाजपा भारत अपने दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयासों से 21वीं सदी के सबसे बड़े ऊर्जा संकट से सफलतापूर्वक उभरने में कायम रहा है। उन्होंने कहा कि भारत ने हर स्तर पर समय रहते निर्णय के लिए उभरते संकट का सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति तैयार की और देश के संसाधनों का संतुलित उपयोग सुनिश्चित किया। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि कूटनीति और रणनीतिक उपायों से देश ने इस संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
3: पश्चिमी एशिया में युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में हाहाकार मचा, हर देश त्रस्त है। इस युद्ध ने 21वीं सदी के सबसे बड़े ऊर्जा संकट को जन्म दिया। बड़े बड़े देश आज ईंधन की किल्लत से जूझ रहे हैं, लेकिन साथियों 21वीं सदी के सबसे बड़े

0: तट पर 21वीं सदी के नए भारत की इच्छा शक्ति और भारत के प्रयास इस संकटों पर भारी पड़े हैं।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTET 2026 की 3 दिवसीय लिखित परीक्षा कल शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई। लिखित परीक्षा 2 व 3 जुलाई को 2-2 पाली और कल 1 पाली में आयोजित हुई। आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में 88.77% अभ्यर्थियों ने भाग लिया। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत कुमार ने बताया कि परीक्षा के दौरान आयोग में स्थापित AI इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड रूम से सभी परीक्षा केंद्रों की सघन निगरानी की गई। यह परीक्षा प्रदेश के 60 जनपदों के 955 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। परीक्षा के दौरान 44 फर्जी अभ्यर्थी भी पकड़े गए। परीक्षा के सफल संचालन के लिए आयोग ने जिला प्रशासन, उत्तर प्रदेश पुलिस और SDF के प्रति आभार व्यक्त किया है। 3 दिवसीय उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2026 के दूसरे दिन कल लखनऊ के जनभवन में मैंगो बायर सेलर मीट का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और उद्यान राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह सम्मिलित हुए। इस अवसर पर आम निर्यातकों और आम उत्पादकों के बीच अनुबंध भी हुए। महोत्सव में उद्यान मंत्री ने कहा कि योगी आदित्यनाथ में प्रदेश सरकार के नेतृत्व में किसानों की समृद्धि के लिए हर स्तर पर काम हो रहा है।
2: उद्यान विभाग के माध्यम से हम राज्य के किसानों की समृद्धि का जो सपना देखे हैं वो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम साकार कर रहे हैं। दुनिया के बाजारों में हमारी औद्योगिक फसलें आज पहुंच गई हैं और जब से हमारे यहाँ जेवर एयरपोर्ट बनके तैयार हो गए हमारे राज्य के आम के किसानों का मनोबल बढ़ेगा, उनकी समृद्धि बढ़ेगी, ऐसा प्रयास हमारी सरकार का होगा।
1: महोत्सव के दूसरे दिन आज इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में विज्ञान विभाग के अधिकारियों, कृषि वैज्ञानिकों और प्रदेश भर से आए प्रगतिशील आम उत्पादक किसानों के बीच एक तकनीकी सत्र का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बताया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक आयोजित करने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये सत्र राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णयों पर केंद्रित होगा। व्यापक पायरेसी की खबरों को देखते हुए केंद्र सरकार ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सरकार ने टेलीग्राम को पायरेटेड फिल्मों और OTT कंटेंट के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार प्लेटफॉर्म को 15 दिन के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा गया है। इस कदम का उद्देश्य भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था, फिल्म उद्योग, प्रसारकों, OTT प्लेटफॉर्म निर्माताओं और वितरकों की रक्षा करना है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने कल अपने सदस्यों की बैठक बुलाई है जिसमें ट्रस्ट को प्राप्त दान की जांच कर रहे विशेष जांच दल SIT के निष्कर्षों सहित कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक और वित्तीय मामलों पर विचार विमर्श किया जाएगा। 28 जून 2026 को जारी एक आधिकारिक सूचना के अनुसार ये बैठक ट्रस्ट के अध्यक्ष की स्वीकृति से कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी द्वारा बुलाई गई है। बैठक की कार्यसूची में महासचिव चंपत राय और न्यासी डॉ. अनिल मिश्रा द्वारा दिए गए त्याग पत्रों पर विचार किया जाना शामिल है। बैठक में भविष्य में राम मंदिर के प्रबंधन से संबंधित व्यवस्था पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। प्रदेश के कई जिलों में उमस भरी गर्मी पड़ रही है जिसके चलते जनजीवन प्रभावित है। इस बीच लखनऊ सहित राज्य के कुछ जिलों में हुई बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत भी मिली है। कल कानपुर और टुंडला में हुई भारी बारिश से लोगों का जनजीवन प्रभावित हो गया। मौसम विभाग ने प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अगले 3 दिनों तक गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान जताया है। और अंत में बुलेटिन का मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 2 दिवसीय दौरे पर कल पहुंचे लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्यों के साथ की बैठक। प्रदेश सरकार ने राजस्व से जुड़े सार्वजनिक भूमि के मामलों के लिए लागू की नई व्यवस्था। लखनऊ और प्रयागराज में गठित 3 सदस्यीय विशेष पीठ करेगी वादों की सुनवाई। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा UPT

एटी 2026 कल हुई संपन्न। तीन दिवसीय परीक्षा में शामिल हुए 88% अभ्यर्थी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की उपस्थिति में लखनऊ के जनभवन में आयोजित हुई मैंगो बायर सेलर मीट आम निर्यातकों और उत्पादकों के बीच हुए अनुबंध। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा।

0: छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
1: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
2: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र। पेश है फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम पूर्वा सुहाने।

कार्यक्रम का पहला गीत लिया है हमने फिल्म रुदाली से। लता मंगेशकर की आवाज़ है, बोल है गुलजार के, और संगीत दिया है भूपेन हजारिका ने।

लता मंगेशकर को आप सुन रहे थे फिल्म बाजार से। संगीत दिया था खयाम ने और बोल थे मीर तकी की मीर के। पूर्वा सुहाने कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से।

कार्यक्रम का अगला गीत लिया है हमने फिल्म ज़मीन आसमान से। आवाज़ है लता मंगेशकर की, संगीत दिया है आर डी बर्मन ने और बोल हैं अनजान के।

0: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
1: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
2: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
1: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
2: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
1: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
2: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
1: For details log on to www.ddindia.com।

0: स्वच्छ भारत सुंदर भारत स्वच्छता शब्द भर नहीं सक्रिय सचेत कर्म है।
1: पूर्वा सुहानी कार्यक्रम में अगला गीत लिया हमने फिल्म अनपढ़ से। लता मंगेशकर की आवाज़ है, संगीत दिया है मदन मोहन ने और बोल हैं राजा मेहदी अली खान के।

फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम पूर्वा सुहानी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से। कार्यक्रम में अगला गीत लिया है हमने फिल्म पेइंग गेस्ट से। बोल है मजरू सुल्तानपुरी के, संगीत दिया है एसडी बर्मन ने और आवाज़ है आशा भोसले किशोर कुमार की।

पूर्वा सुहानी कार्यक्रम का आखिरी गीत लिया है हमने फिल्म एक दूजे से के लिए। संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, बोल हैं आनंद बख्शी के।

0: நீ ரொம்ப அழகா இருக்க.
1: इस गीत के साथ ही पूर्वा सुहानी कार्यक्रम अब समाप्त होता है. आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र. हमारे स्टूडियो की घड़ी में 8 बजने वाले हैं. अब सुनिए दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात का आज का अंक.

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना विकसित उड़ान का अगला चरण शुरू किया। सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए प्याज का खरीद मूल्य 13% बढ़ाकर 2,125 रुपए प्रति क्विंटल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रमुख आर्थिक साझेदार के रूप में भारत की सराहना की। देश के अधिकांश हिस्सों में अगले कुछ दिन तक वर्षा जारी रहने का अनुमान और फ्रांस और मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों तथा दूरदराज के क्षेत्रों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना विकसित उड़ान का अगला चरण शुरू किया है। श्री मोदी ने कल राजस्थान के जोधपुर हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन करते हुए कहा कि भारत के नागर विमानन ढांचे और क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा मिला है।
1: उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
0: इस अवसर पर नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि विकसित उड़ान योजना के शुरू होने से भारत के क्षेत्रीय संपर्क का अगला अध्याय शुरू होगा। श्री नायडू ने कहा कि 28,840 करोड़ रुपए से अधिक के बजट के साथ शुरू की गई ये योजना दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों में हवाई संपर्क मजबूत करेगी। जोधपुर हवाई अड्डे पर श्री नायडू ने कहा कि इस विश्व स्तरीय सुविधा से मारवाड़ क्षेत्र में हवाई संपर्क मजबूत होगा और साथ ही राजस्थान में पर्यटन, व्यापार और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
2: और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सोच है, जहाँ पे भी सिविल एविएशन का विस्तार होगा उसका प्रभाव सिर्फ यात्रियों पे नहीं पर उसके पूरे शहर के इकोनॉमी पे, के वहाँ पे बिजनेस पे, विद्यार्थियों पे, हर क्षेत्र के वर्ग को, हर नागरिक को उसका इम्पैक्ट रहता है। उसका ही प्रभाव आज देश भर में हमें देखने को मिल रहा है।
0: बाद में प्रधानमंत्री ने गुजरात के साणंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर संयंत्र में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए कहा कि संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी। उन्होंने कहा कि ये विकास भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने दुनिया को देश का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया है।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: श्री मोदी ने कहा कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाने का सपना अब साकार हो रहा है।
1: 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि एथेनॉल कोई नई अवधारणा नहीं है और इसका उपयोग एक सदी से अधिक समय से हो रहा है। राजस्थान में कल श्री पुरी ने कहा कि सरकार अपने जैव ईंधन मिश्रण कार्यक्रम की रचनात्मक आलोचना का स्वागत करती है। उन्होंने कहा कि सरकार सुझावों के अनुसार आवश्यक सुधार करेगी। श्री पुरी ने कहा कि भारत में एथेनॉल मिश्रण का विचार सबसे पहले पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान शुरू हुआ था।
3: एथेनॉल का काम ना हमने इन्वेंट किया, 100 साल से इस पे काम हो रहा है। भारत में अगर आ जाए तो इस पे पहली योजना बनाई थी कांग्रेस की सरकार ने, मैं बात कर रहा हूँ 2006 से लेकर 2008, और हमारा एक टारगेट था कि 5% हमें बायोफ्यूल ब्लेंडिंग करनी है 10 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में, कर नहीं पाए, वो दूसरी बात है। 1.4% पे हमारी गाड़ी रुक गई।
0: ऑटोमोबाइल उद्योग के विशेषज्ञों ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को

0: एक सुनियोजित, चरणबद्ध और वैज्ञानिक रूप से संचालित प्रक्रिया के जरिए लागू किया गया है। नई दिल्ली में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की प्रबंध निदेशक वर्तिका शुक्ला ने कहा कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम 2018 में संरचित चर्चा और हितधारकों के परामर्श के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में रखा गया था। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स के कार्यकारी उपाध्यक्ष विक्रम गुलाटी ने कहा कि एथेनॉल एक स्वच्छ ईंधन है, ये अच्छी परिचालन क्षमता और तेज गति प्रदान करता है। सरकार ने कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर प्याज के खरीद मूल्य में 13% की वृद्धि की है। प्याज की कीमत अब 1,875 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर 2,125 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। हमारे संवाददाता ने उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के हवाले से कहा है कि संशोधित मूल्य से किसानों को लाभ मिलेगा और बफर खरीद प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा।
1: सरकार के मूल्य स्थिरीकरण बफर के लिए भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड के माध्यम से प्याज की खरीद जारी है। कृषि और किसान कल्याण विभाग के वर्ष 2025-26 के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार प्याज का उत्पादन 307 लाख मीट्रिक टन से अधिक होने का अनुमान है। मंत्रालय ने कहा कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में वर्तमान स्टॉक पर्याप्त है और फिलहाल प्याज के भंडार में कोई कमी नहीं है। अखिल भारतीय औसत खुदरा मूल्य 31 रुपए प्रति किलोग्राम है। प्याज का निर्यात भी सामान्य है। इस वर्ष जून में लगभग 1,50,000 मीट्रिक टन प्याज का निर्यात हुआ है। दीपेंद्र कुमार के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मॉनसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। श्री रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान दिया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले भारत को एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बताया है। श्री अल्बनीज ने कहा कि हमारे संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित हैं तथा गहरे आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों से समर्थित हैं। उन्होंने कहा कि व्यापार, रक्षा, सुरक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग दोनों देशों के लिए लाभकारी साबित हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के संबंध पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं और ये साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देती है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान की सरकारी यात्रा पर आज रवाना होंगे। इस दौरान वे इन देशों के विदेश मंत्रियों और शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगे। यात्रा का उद्देश्य इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और क्षेत्रीय घटनाक्रमों तथा आपसी हित के मुद्दों पर विचार विमर्श करना है। डॉक्टर जयशंकर 13 जुलाई को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के वर्ष 2028-29 कार्यकाल के लिए भारत का अभियान शुरू करेंगे। हमारी विशेष श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज हम वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रहे देवेंद्र सूरा के साथ परिचर्चा प्रस्तुत करेंगे।
2: मातृशक्ति ने वहाँ के जो भी सम्मानित या जितने प्रिंसिपल सभी ने भागीदारी दिखाई, अब भाई बेटी के नाम के आगे ऊपर लिखना है माता का नाम। आज पूरी सड़क है जो बेटियों ने वृक्षारोपण किया था, आज पूरे बड़े वृक्ष है, ठंडी सड़क है, बड़ा गर्व महसूस करता हूँ। साथ में रखो थैला, क्यों करे हम राष्ट्र को मेला। ये कार्य तो अभी शुरू हुआ है और अंतिम सांस तक इस अभियान को मतलब एक बड़ी खुशी से और समर्पित भाव से चलता रहेगा।
3: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
0: ये परिचर्चा आकाशवाणी FM गोल्ड और 100.1 MHz पर आज सवेरे 10:30 बजे से प्रसारित की जाएगी। जम्मू कश्मीर के तीर्थयात्री एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत गुजरात की 6 दिन

अपनी सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा सफलतापूर्वक पूरी कर जम्मू तवी वापस पहुंच गए हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन के कला संस्कृति और भाषा अकादमी के सहयोग से आयोजित इस यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों ने श्री सोमनाथ महादेव मंदिर और गुजरात के कई अन्य

0: लिए लगभग 10,000 कर्मचारी तैनात किए गए हैं। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रॉड्रिक्स ने कहा है कि लगातार दो भूकंप से मृतकों की संख्या 2,954 हो गई है और 16,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। उन्होंने कहा कि लगभग 16,000 लोग बेघर हो गए हैं। फ्रांस और मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। फ्रांस ने अंतिम 16 के मैच में पैराग्वे को 1-0 से हराकर अंतिम 8 में जगह बनाई। अब क्वार्टर फाइनल में फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। इससे पहले ह्यूस्टन में मोरक्को ने कनाडा को हराकर अंतिम 8 में प्रवेश किया। कैंसस सिटी में कल कोलंबिया ने घाना को हराकर अंतिम 16 में प्रवेश किया। प्री क्वार्टर फाइनल में कोलंबिया का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना भी अंतिम 16 में पहुंच गया है। अर्जेंटीना का अगला मुकाबला मिस्र से होगा। मैनचेस्टर में कल इंग्लैंड ने दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत की 4 विकेट से हरा दिया है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 190 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड ने 19 ओवर में ही 6 विकेट के नुकसान पर 191 रन बनाकर मैच जीत लिया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद मुकेश। राजस्थान और गुजरात में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान के अनुसार मोदी बोले, पश्चिम एशिया की जंग के दौरान आम लोगों पर कम से कम बोझ डाला गया, सही नीतियों से संकट टला, भारत चौथी बड़ी तेल शोधन क्षमता वाला देश बना, 40 देशों से भारत ने तेल का आयात किया। वहीं दैनिक भास्कर ने ग्राउंड रिपोर्ट में दिया है, ईरान ने होर्मुज से दुनिया का क्रूड ऑयल रोका लेकिन अब खाने के तेल को तरस रहा, ईरान अमरीका से जंग तो जीता लेकिन घरेलू मोर्चे पर चुनौतियों ने। जनसत्ता की सुर्खी है, राम मंदिर न्यास की बैठक सोमवार को, विशेष जांच दल की रिपोर्ट के साथ इस्तीफों पर चर्चा होने की संभावना। देशबंधु की सुर्खी है, 20 से शुरू होगा मॉनसून सत्र, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सत्र बुलाने की दी मंजूरी, जनहित से जुड़े मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगेगा विपक्ष। अमर उजाला ने पाकिस्तान बेनकाब शीर्षक से दिया है, 23 घोषित आतंकियों में हाफिज का करीबी, राम मंदिर था निशाने पर, भारत में आतंकी हमलों, तस्करी और घुसपैठ में शामिल है दहशतगर्द, टूटेगा आतंक का वित्तीय नेटवर्क, हर आतंकी मॉड्यूल को करेंगे नेस्तनाबूद। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है, उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिकाएं खारिज। पंजाब केसरी ने ई रिक्शा पर साइबर अटैक शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि ऐप में बैटरी का वोल्टेज, करंट, तापमान, चार्जिंग स्टेटस और बैटरी हेल्थ जैसी जानकारी देखी जा सकती है। साथ ही कुछ कंपेटेबल बैटरियों में इसमें कंट्रोल फीचर भी मौजूद है, यानी बैटरी को ऑन या ऑफ करने की सुविधा। आरोप यही है कि कुछ लोग इसी कंट्रोल फीचर का गलत फायदा उठा रहे थे, ऐप पर अब प्रतिबंध लगाया जा चुका है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना का अगला चरण विकसित उड़ान शुरू किया। सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए प्याज का खरीद मूल्य 13% बढ़ाकर 2,125 रुपए प्रति क्विंटल किया। प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रमुख आर्थिक साझेदार के रूप में भारत की सराहना की। देश के अधिकांश हिस्सों में अगले कुछ दिन तक बारिश जारी रहने का अनुमान। और फ्रांस और मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सायरा मुज्तबा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्चेस नेक्स्ट फेज ऑफ रीजनल एयर कनेक्टिविटी स्कीम, विकसित उड़ान टू गिव फिलिप टू एयर ट्रैवल इन टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज। Government hikes onion procurement price for price stabilization buffer by 13% to 2,125 rupees per quintal to boost farmer income. IMD says monsoon rains will continue to lash large parts of the country over the next few days. Australian Prime Minister Anthony Albanese hails India as key economic partner ahead of Prime Minister Modi's visit. And in football, France and Morocco enter quarterfinals of FIFA World Cup. And now the news.

0: तआवुन दोनों ममालिक के लिए मुसबत और बाहमी फायदे का बाइस बन रहा है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज से 10 जुलाई तक कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान के सरकारी दौरे पर रहेंगे। तीन मुल्कों के अपने दौरे के दौरान डॉक्टर जयशंकर इन मुल्कों के अपने हम मनसबों और आला क्यादत से मुलाकात करेंगे। वजारत खारजा के मुताबिक इस दौरे का मकसद भारत और मजकूरा मुल्कों के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाना और इलाकाई सूरत हाल के साथ साथ बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादले ख्याल करना है। ओमान के दौरे के बाद डॉक्टर जयशंकर 13 जुलाई को न्यूयॉर्क जाएंगे, जहां वो अक्वाम मुत्तहदा की सलामती कौंसिल UNSC की 2028-29 की मुद्दत कार के लिए भारत की बाजाबता मुहिम का आगाज करेंगे। भारतीय महकमे मौसमियात IMD ने कहा है कि अगले कुछ दिन के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मानसून की शदीद बारिश जारी रहेगी। IMD ने कहा है कि खलीज बंगाल के शुमाल मगरिब में हवा के कम दबाव का हल्का बना है, जिससे अगले 4 से 5 रोज के दौरान मुल्क के वसती इलाकों में मानसून के सरगर्म रहने का इम्कान है। पूरे मशरकी अमरीका में जारी शदीद गर्म लू की वजह से बिजली की ग्रिड्स पर दबाव पड़ रहा है, जिससे फीफा आलमी कप मैचों की तैयारियों में रखना पड़ रहा है। एक तरफ जहां दर्ज हरारत 46 डिग्री सेल्सियस से पार कर जाने का खदशा है, वहीं अमेरिका के सबसे ज्यादा गुंजान आबादी वाला शहर न्यूयॉर्क को गैर मुतवक्का दर्जे हरारत का सामना है। फुटबॉल में फ्रांस और मराकश ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए फीफा आलमी कप के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। फ्रांस ने फिलाडेल्फिया में खेले गए प्री क्वार्टर फाइनल में पेरागुआ को सख्त मुकाबले में 1-0 से शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। टीम के कप्तान कल्याण एम्बापे ने मैच का वाहिद गोल 17वें मिनट में पेनाल्टी किक के साथ किया। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं जमीर।
1: शुक्रिया असदुल्ला। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब और प्रताप समेत आज के सभी अखबारों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इस बयान को सफ़े अव्वल पर शाये करते हुए लिखा है कि मगरबी एशिया में जारी आलमी तवानाई बहरान के बावजूद भारत ने न सिर्फ ईंधन की मुसलसल फराहमी को यकीनी बनाया बल्कि मौसर सिफारतकारी, बरवक्त फैसलों और गुज़िश्ता एक दहाई की दूरंदेश पॉलिसियों की बदौलत इस मुश्किल सूरत हाल पर कामयाबी से काबू पाया गया है। पार्लियामेंट के मानसूनी इजलास का आगाज 20 जुलाई से होगा, जो 13 अगस्त तक जारी रहेगा। कौमी अहमियत के हामिल कई मौजूदात पर इस दौरान बामानी बहस, कानून साजी और कई अहम फैसले किए जाएंगे। पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू के इस बयान को इनकलाब ने सफ़े अव्वल पर जगह दी है। रोजामा इनकलाब ने वजीर दिफा राजनाथ सिंह के इस बयान को नुमाया किया है कि ऑपरेशन सिंदूर से मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत में तैयार किए गए दिफाई सारो सामान पर न सिर्फ मुल्क में बल्कि आलमी सतह पर भी एतमाद में इजाफा हुआ है।
0: और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दूसरे और तीसरे दर्जे के शहरों में फिजाई सफर को फरोग देने के लिए इलाकाई फिजाई राबता स्कीम विकसित उड़ान के अगले मरहले का आगाज किया। हुकूमत ने प्याज का वाफर जखीरा रखने और कीमतों के इस्तेहकाम के लिए प्याज की खरीदारी कीमत में 13% का इजाफा करते हुए इसे 2125 रुपए फी क्विंटल कर दिया है, ताकि किसानों की आमदनी में इजाफा हो सके। भारतीय महकमे मौसमियात IMD ने अगले कुछ दिनों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मानसून की बारिश जारी रहने की पेशगोई की है। ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम एंथनी अल्बानीज ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे से कबल भारत को अहम इक्तिसादी शराकत दार करार दिया है। और फुटबॉल में फ्रांस और मराकश ने फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।
2: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र। प्रस्तुत है फिल्मी गीतों पर आधारित हमारा कार्यक्रम हिट्स सुपर हिट्स।

मिशन कश्मीर से ये गीत लिया है हमने शंकर महादेवन की आवाज़ में। बोल है समीर के और संगीत दिया है शंकर एहसान लॉय ने।

और प्यार हो गया फिल्म से ये गीत लिया है हमने। आवाज़ है उदित नारायण की, जिसे संगीत दिया है नुसरत फ़तेह अली ख़ान ने और बोल हैं जावेद अख्तर के। हिट्स सुपर हिट्स प्रोग्राम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से।

0: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
1: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
2: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
1: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
2: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
1: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की,
2: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
1: For details, log on to www.ddindia.com।
0: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।

संग है हम। हिट सुपर हिट प्रोग्राम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से। ये गीत लिया है हमने फिल्म हम तुम से। सोनू निगम साधना सरगम की आवाज़ है, संगीत दिया है जतिन ललित ने और बोल हैं प्रसून जोशी के।

अनुराधा पौडवाल और एमजी श्रीकुमार की आवाज़ में ये गीत लिया है हमने फिल्म डोली सजा के रखना से। संगीत दिया है एआर रहमान ने और बोल हैं महबूब के।

कार्यक्रम का अगला गीत लिया है हमने फिल्म तक्षक से, आशा भोसले की आवाज़ है। संगीत दिया है ए आर रहमान ने और बोल हैं सुखविंदर सिंह तेजपाल कौर के।

हिट सुपर हिट्स कार्यक्रम का आखिरी गीत लिया है हमने फिल्म विरासत से। आवाज़ दी है कुमार सानू और चित्रा ने, संगीत दिया है अनु मल्लिक ने और बोल हैं जावेद अख्तर के। ये प्रोग्राम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 9:15 होने को हैं। अब सुनिए लखनऊ केंद्र से सामयिक चर्चा।
1: आकाशवाणी लखनऊ के कार्यक्रमों को आप सुन सकते हैं न्यूज ऑन AIR ऐप और DTH के माध्यम से भी। हमारा अगला प्रसारण बस थोड़ी ही देर में होगा। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं सामयिक चर्चा।
2: सामयिक चर्चा में आज आप सुनेंगे विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 के लागू होने के बाद ग्रामीण विकास, कृषि और स्थानीय अर्थव्यवस्था में होने वाले बदलाव पर अर्थशास्त्री AP तिवारी से खास बातचीत। वार्ताकार है शैलेंद्र शर्मा।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने पिछले 12 सालों में ग्रामीण विकास, कृषि और कृषि उत्पादन के साथ ही रोजगार के मोर्चे पर कई कदम उठाए हैं। इसी कड़ी में अब मनरेगा की जगह विकसित भारत जीरामजी अधिनियम लागू किया गया है, जिसमें 125 दिन की रोजगार की गारंटी के साथ ही 300 रुपए की न्यूनतम मजदूरी भी तय की गई है। सरकार का प्रयास है कि गांव में सिर्फ मजदूरी आधारित रोजगार नहीं बल्कि स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण, कृषि उत्पादकता और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती दी जाए। सरकार के इस विजन को बीवी रामजी अधिनियम कैसे पूरा करेगा, क्या खास बातें हैं इस अधिनियम में, मनरेगा की खामियों को इसमें कैसे दूर किया गया है, आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अर्थशास्त्री AP तिवारी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
4: जी
3: सर, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे कि विकसित भारत जीरामजी अधिनियम को ग्रामीण विकास और आर्थिक दृष्टि से आप कैसे देखते हैं। ग्रामीण

0: व्यवस्था के मॉडल में ये किस तरह का परिवर्तन ला सकता है, खासतौर पर तब जब इसमें जल सुरक्षा, ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर, आजीविका और मौसमी घटनाओं से जुड़े कामों पर फोकस किया गया है।
1: विगत 12 वर्षों में लगातार मोदी सरकार ने खेती और खेती से जुड़ी हुई क्रियाओं को आगे बढ़ाया, जैसे वानिकी है, पशुपालन, मछली पालन और गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है उसके विकास पर जोर दिया गया। मेरा मानना है कि आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो एक जो कोशिश की गई है हाल ही में, भारत देश का विकास तभी होगा जब गांव का तेजी के साथ विकास होगा, लेकिन इसकी एक अहम कड़ी है कि गांव में ही लोगों को काम मिले, खासतौर पर वह जो अकुशल लोग हैं, अकुशल श्रमिक हैं, उन्हें गांव स्तर पर ही काम मिले। इसलिए ये है जो विकसित भारत जी राम जी स्कीम एक नए अवतार में कह सकते हैं लाई गई है, ये एक गारंटी है रोजगार की। जो पात्र श्रमिक होंगे उनको वर्ष में 125 दिनों का काम मिलेगा, इससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर है, भौतिक संपत्तियों का सृजन है, इसको बल मिलेगा। जो कौशल विकास, बाजार और ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर है, खेती का काम है, जल सुरक्षा है, इन सबको जोड़कर गांव का समग्र विकास हो, इसकी कोशिश इस स्कीम के माध्यम से किए जाने का संकल्प लिया गया है।
0: बिल्कुल सर, जिस तरह से आपने ग्रामीण विकास की बात की, मनरेगा की बात करें सर, तो मनरेगा को रोजगार की गारंटी के तौर पर लाया गया था, लेकिन जो ये नया अधिनियम है रोजगार के साथ साथ विकास की भी बात करता है, जैसा आपने चर्चा में कहा भी, तो ये नया अधिनियम सर इन दोनों के बीच, यानी कि रोजगार और विकास, इन दोनों के बीच कैसे संतुलन बना रहा है?
1: देखिए, जब हम गांव के विकास की बात करते हैं तो एक उसका महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि गांव में ही गांव वालों को रोजगार मिले, क्योंकि इसका परिणाम ये होगा कि गांव के जो लोग हैं उनकी आर्थिक तरक्की होगी, उनकी आजीविका सुगम होगी या उनके आजीविका के स्रोतों में गांव स्तर पर ही बढ़ोतरी होगी। तो जब ऐसा होगा तो उनका पलायन भी गांव से जो नगरों की तरफ होता है वो थमेगा। इससे जो कई तरह की आर्थिक और सामाजिक दुश्वारियां मजदूरों को झेलनी पड़ती हैं उससे भी निजात मिलेगी। मेरा मानना है कि जब गांव विकास की बात की जा रही है तो गांव विकास का मूल मंत्र ये है कि खेती तो बढ़े आगे, लेकिन खेती के साथ जो गांव की गैर खेती की क्रियाएं हैं, वानिकी है, पशुपालन है, मछली पालन है, इन सब को अगर जोड़कर देखा जाए तो विकास की गति और तेज होगी।
0: बिल्कुल सर, आपने ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात की और हमने देखा कि कोरोना काल में जब कठिनाई का वक्त था तब ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था ने बड़ी मदद की सरकार की अर्थव्यवस्था को संभालने में। सरकार की सोच है कि इस नए अधिनियम के जरिए कृषि, सिंचाई, जल संरक्षण और ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूती दी जाए, तो आपको सर क्या लगता है जो प्रावधान किए गए हैं उससे सोच कैसे पूरी हो सकती है?
1: देखिए, जब गांव के विकास की बात की जाती है तो जो गांव में खेती है उसके साथ ही साथ गैर खेती की क्रियाएं हैं, अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए, जो मझोले उद्योग क्षेत्र की क्रियाएं हैं, जो ODOP सेक्टर की क्रियाएं हैं कह सकते हैं, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की, जो लघु और सीमांत कृषक हैं उनके द्वारा जो क्रियाएं संपादित की जा रही हैं खेती की, उनको अगर बागवानी से जोड़ा जाए या खेती का विविधीकरण अगर किया जाता है तो खेती के विविधीकरण के लिए ये आवश्यक होगा कि नई तकनीक का इस्तेमाल किया जाए। नई तकनीक में जब हम बात करते हैं तो रोबोटिक टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाए, साथ ही साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जाए, और जब नई टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल गांव के विकास के लिए किया जाएगा तो तार्किक तौर पर गांव में एक ओर जहां रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, गांव वालों को गांव में ही रोजगार मिलेगा, भौतिक संपत्तियों का या भौतिक परिसंपत्तियों का सृजन होगा, तो गांव की तरक्की एक टिकाऊ आधार पर होगी, क्योंकि ये बेहद जरूरी हो गया था कि गांव का विकास तो तभी टिकाऊ आधार पर होगा जब गांव स्तर पर रोजगार और आजीविका के टिकाऊ और गुणवत्ता परक संसाधनों में वृद्धि की जाती है। कि विकसित भारत जी राम जी स्कीम इस मंतव्य के साथ शुरू की गई है कि गांव का एक तरह से बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो, वहां पर जिंदगी सुगम हो लोगों की, गरीबों की, जो मजदूर हैं उनका आर्थिक सशक्तिकरण हो। जब उनका आर्थिक सशक्तिकरण होगा तो मेरा मानना है कि गांव की क्रय शक्ति बढ़ेगी।

0: और बढ़ी हुई गांव की क्रय शक्ति औद्योगिक विकास को भी तेज करेगी, क्योंकि ये जरूरी है कि गांव में जब क्रय शक्ति बढ़ेगी तभी जो उपभोक्ता वस्तुएं हैं जिनका उत्पादन कह सकते हैं उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत हो रही है उनकी भी मांग बढ़ेगी। तो इस तरह गांव का जब विकास होगा तो लोगों की जिंदगी में सुधार होगा, लोगों का जीवन सुगम होगा, उनको स्थानीय तौर पर रोजगार मिलेंगे, तो इस प्रकार वो अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक जो संस्थाएं उनके गांव स्तर की हैं उनसे जुड़कर विकास को और आगे बढ़ाने में वो भरपूर सहयोग कर सकने की स्थिति में होंगे।
1: बिल्कुल सर, बहुत बड़े बदलाव की उम्मीद इस अधिनियम के जरिए की जा रही है, लेकिन सर मनरेगा की वो कौन सी बड़ी खामियां थीं जिन्हें दूर करते हुए इसे लागू किया गया है? ग्रामीण युवाओं के लिए ये किस तरह का अवसर पैदा करेगा? और सर क्या आपको लगता है इससे गांव से जो शहरों की ओर पलायन हो रहा था वो कम होने की संभावना है? बड़ी खामियों की बात करें तो जिस तरह से मनरेगा में हम देख रहे थे, चाहे दिनों की संख्या की बात कर लें या फिर वेतन भुगतान की बात कर लें या फिर कृषि फसलों के अवकाश की बात कर लें, ये सारी चीजें दूर की गई हैं इस नए अधिनियम में?
0: देखिए, जहां तक मनरेगा की बात है, जो पहले स्कीम चली तो उसमें कुछ खामियां पाई गई, जैसे बड़े पैमाने पर उसमें पारदर्शिता का अभाव था, यही नहीं जवाबदेही का अभाव भी पाया गया, कई प्रकार की अनियमितताएं हुई, कई तरह से कह सकते हैं उसमें भ्रष्टाचार व्याप्त हुआ, मशीनों का प्रयोग किया गया, काम जो मजदूरों से होना था उनको मशीनों के जरिए कराया गया, और जो लेखा जोखा होता था उसमें भी जवाबदेही की कई तरह की कमियां पाई गई। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जो मनरेगा स्कीम थी वो तो डिमांड ड्रिवन थी, कह सकते हैं लोग मांग करेंगे तब उनको रोजगार मिलेगा, लेकिन जो ये विकसित भारत जी राम जी स्कीम नई शुरू की गई है इसमें सप्लाई की जाएगी या सप्लाई ड्रिवन रोजगार सृजित किए जाएंगे, अर्थात सरकार के स्तर पर ये जो स्कीम लागू की गई है अब पंचायतों को स्थानीय स्तर पर इस बात का अवसर प्राप्त होगा कि वो गांव की तरक्की के लिए योजनाएं बनाएं और उन योजनाओं के लिए वित्तीय जो प्रबंधन है, वित्तीय जो संसाधन है वो केंद्र सरकार 60% देगी, 40% राज्य सरकारें लगाएंगी। लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वहां पर केवल केंद्र शासित प्रदेशों को 10% लगाना होगा, बाकी केंद्र सरकार देगी। तो कुल मिलाकर ये भी कह सकते हैं कि यह स्कीम इस तरह तैयार की गई है जिसमें प्लानिंग, प्रोग्रामिंग और बजटिंग तीनों को एक साथ लेकर जब आगे बढ़ा जाएगा तो गांव की आर्थिक विकास की गति तेज होगी और जो पहले से कह सकते हैं मनरेगा में व्याप्त एक जवाबदेही का अभाव था, पारदर्शिता का अभाव था, एक नई प्रणाली ऐसी उभरेगी जिसमें जवाबदेही होगी, बेहतर कार्यान्वयन होगा और यही नहीं जो स्कीमें लागू की जाएंगी उनका अनुश्रवण भी होगा, क्योंकि मॉनिटरिंग बहुत महत्वपूर्ण है, डैशबोर्ड के जरिए दृष्टांकित किया जाएगा कि कौन सा काम कहाँ कब होना है, किस प्रकार की स्कीमों को तैयार किया जाना है। तो ये कह सकते हैं कि जो आवश्यक स्कीमें हैं गांव के समग्र विकास के लिए उन स्कीमों को तरजीह दी जाएगी। एक बड़ी बात है कि इसमें जो प्राकृतिक विपत्तियां आती हैं यानी जो जलवायु से चुनौतियां उत्पन्न हो रही हैं, जलवायु परिवर्तन की जो चुनौतियां उत्पन्न हो रही हैं उनको भी संबोधित करने के लिए इस विकसित भारत जी राम जी स्कीम में एक क्षेत्र दिया गया है, कार्य का क्षेत्र दिया गया है। तो मेरा मानना है कि जल सुरक्षा हो, चाहे ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर हो, खेती हो, मछली पालन हो, भंडारण हो, बाजार हो, कौशल विकास हो, इन सभी को एकीकृत करते हुए गांव की समग्र उन्नति की चेष्टा के लिए ये स्कीम लागू की गई है और इससे गांव स्तर पर तो तरक्की होगी ही, साथ ही साथ ये कह सकते हैं कि गांव अब राष्ट्रीय विकास में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकेंगे।
1: बिल्कुल सर, आपने कहा कि गांव भी अब राष्ट्रीय विकास में योगदान दे सकेंगे, तो सर आपसे जानना चाहेंगे इस नए अधिनियम में रोजगार, परिसंपत्ति निर्माण, कृषि और ग्रामीण विकास को एक साथ जोड़ने की बात की गई है, ऐसे में कौन कौन से वो विशेष प्रावधान है जो आपको इस नए अधिनियम में विशेष तौर पर प्रभावी लगते हैं?
0: देखिए, जाहिर सी बात है कि इस नई स्कीम में सड़क है, सार्वजनिक भवन है, जैसे स्कूल के निर्माण की बात अगर है, स्वच्छता की विभिन्न सिस्टम्स जो काम कर रहे हैं, सोलर प्रणाली और कह सकते हैं जो नवीकरण ऊर्जा है उसको आगे बढ़ाने का काम, और जो आवासीय योजनाएं पहले से संचालित हो रही हैं और नई स्कीमें

0: आवास की शुरू की जाएंगी, उनमें कह सकते हैं मजदूरों को रोजगार देकर एक ओर जहां उन्हें आजीविका के गुणवत्ता पर अवसर प्राप्त होंगे, इसके साथ ही साथ जो ये बात केंद्र में महत्वपूर्ण होगी या ये कह सकते हैं कि सबसे अहम बात यह है कि स्थानीय स्तर पर टिकाऊ संपत्तियों के सृजन द्वारा गांव का विकास होगा और गांव स्तर पर ही कह सकते हैं स्थानीय रोजगार के अवसर लोगों को मिलेंगे। तो इससे जब पलायन थमेगा तो ये कह सकते हैं कि नगरीय विकास पर भी जो एक दबाव बनता है, गांव से जब मजदूर पलायित होकर नगरों की तरफ आते हैं तो कई प्रकार की नगरीय समस्याएं उत्पन्न होती हैं, उनको भी संबोधित करने में ये विकसित भारत जी राम जी स्कीम सहायक सिद्ध हो सकती है।
1: सर, आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे, केंद्र सरकार साल 2047 तक एक ग्रामीण विकास ढांचा स्थापित करना चाहती है, यानी कि विकसित भारत की सोच को साकार करना चाहती है, उस दिशा में ये पहल आपको कितनी महत्वपूर्ण लगती है, और खासतौर पर उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में जहां पर ग्रामीण परिवेश, ग्रामीण विकास और रोजगार की बात बहुत बड़े पैमाने पे की जाती है?
0: देखिए, जहां तक उत्तर प्रदेश का संबंध है, उत्तर प्रदेश में खेती का क्षेत्र अभी भी एक प्रधान स्थान रखता है। साथ ही साथ जैसा मैंने अभी उल्लेख किया कि ओटीओपी का क्षेत्र है, जो छोटी औद्योगिक इकाइयां हैं, फूड प्रोसेसिंग है, एग्रो प्रोसेसिंग है, इनको आगे बढ़ाने का काम चल रहा है और उसको और अधिक मजबूती देने में इस स्कीम से मदद मिलेगी। साथ ही साथ जहां तक विकसित भारत 2047 का लक्ष्य है, उसको मूर्त रूप देने में भी ये स्कीम काफी सहायक सिद्ध होगी, क्योंकि ये स्कीम केवल रोजगार देने की स्कीम नहीं है या आजीविका देने की स्कीम नहीं है। इसमें एक ओर जहां समेक मजदूरी देते हुए मजदूरों का सशक्तिकरण होगा, साथ ही साथ मजदूर एक जनशक्ति के रूप में राष्ट्रीय विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, क्योंकि ये माना जाता है कि जो जनशक्ति है, जो मैन पावर है या मानवीय पूंजी है, उसकी सबसे बड़ी भूमिका होने जा रही है 2047 तक भारत को विकसित भारत के रूप में उभरने में। तो इस तरह देखा जाए तो ये है स्कीम जो एक नवाचारी है, कह सकते हैं ये टिकी हुई है नई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल द्वारा, गाँव का आमूलचूल परिवर्तन करते हुए या गाँव की तरक्की को तेज करते हुए भारत की आर्थिक विकास की गति को भी टिकाऊ बनाना और 2047 तक लक्ष्य को प्राप्त करना विकसित भारत का, वो इस विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में स्कीम बहुत कारगर साबित होगी। आवश्यकता इस बात की है कि निरंतर मॉनिटरिंग की जाए।
1: बिल्कुल सर, आपने विस्तार से बताया कि ये बदलाव केवल रोजगार योजना का विषय नहीं बल्कि ग्रामीण विकास, कृषि और स्थानीय अर्थव्यवस्था के व्यापक मॉडल से भी जुड़ा हुआ है। आकाशवाणी समाचार से बात करने के लिए सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
2: सामयिक चर्चा में आज आपने सुना विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 के लागू होने के बाद ग्रामीण विकास, कृषि और स्थानीय अर्थव्यवस्था में होने वाले बदलावों पर अर्थशास्त्री एपी तिवारी से खास बातचीत। वार्ताकार थे शैलेंद्र शर्मा।
3: आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से अभी आप सुन रहे थे सामयिक चर्चा। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं 747 किलो हर्ट्ज पर। हमारा अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में होगा। ये आकाशवाणी लखनऊ है, पेश है उर्दू कार्यक्रम, पेशकश आकाशवाणी के गोरखपुर मरकज की है।
4: समय नादाब, उर्दू प्रोग्राम के साथ हाजिर है आपकी खिदमत में आपका मेजबान मोहम्मद फर्रुख जमाल। आज आप समाअत फरमाएंगे डॉक्टर शरीफुद्दीन से उनका एक मकाला, अमीर मीनाई की गज़लिया शायरी और कलाम शायर के तहत आज के शायर हैं जनाब सलाम फैज़ी। लेकिन सामईन, आज ड्रामा नवीसी और अफसाना नवीसी की एक मोतबर शख्सियत सैयद असगर वजाहत का यौम पैदाइश है, तो पहले समाअत फरमाइए इस हवाले से एक मुख्तसर तकरीर ड्रामा नवीसी का एक अहम शाहकार सैयद असगर वजाहत। पेश कर रहा हूँ मैं मोहम्मद फर्रुख जमाल। दुनिया अदब की ऐसी मुतअद्दिद शख्सियतें हैं जिनके अदबी कारनामों से गुलशन अदब में ताज़ा हवा के झोंकों का एहसास होता रहता है, लेकिन हम अक्सर उनकी हालात ज़िंदगी और दीगर अदबी कारनामों से नावाकिफ रहते हैं।

0: उनका दावा है कि वो मीर और दर्द के रंग में कहे गए।
1: अमीर मीनाई की गजलिया शायरी ये मकाला पेश कर रहे थे डॉक्टर शरीफुद्दीन। और अब रुख करते हैं कलम शायर की जानिब। समात फरमाइए जनाब सलाम फैजी से उनका कलाम।
2: गजल से पहले चार मिसरे समात फरमाए। अर्ज क्या है, खिलने न पाए थे अभी फल फूल के चराग, खिलने न पाए थे अभी फल फूल के चराग, पागल हवा की तेग शजर काटने लगी, पागल हवा की तेग शजर काटने लगी, और दुनिया ने पहले फन की मेरे दाद दी सलाम, दुनिया ने पहले फन की मेरे दाद दी सलाम, फिर उसके बाद दस्ते हुनर काटने लगी, फिर उसके बाद दस्ते हुनर काटने लगी। गजल का मतला समात फरमाए। अब के जुनून शौक में जी का ज़ियां बहुत हुआ, अब के जुनून शौक में जी का ज़ियां बहुत हुआ, रस्से शरर तो कम हुआ फिर भी धुआं बहुत हुआ, रस्से शरर तो कम हुआ फिर भी धुआं बहुत हुआ। हुस्ने मतला समात फरमाए कि मुझसे बिछड़ते वक्त वो गिरिया कुना बहुत हुआ, मुझसे बिछड़ते वक्त वो गिरिया कुना बहुत हुआ, बुझ तो गया मगर चराग शोला फशा बहुत हुआ, बुझ तो गया मगर चराग शोला फशा बहुत हुआ, और उठे न हश्र फिर कोई अब अल अमा बहुत हुआ। शेर समात फरमाए कि बाकी नहीं रही रगों में खून की हिद्दतें भी अब, बाकी

0: गुमराह न कर दे तुझको, सबकी बातों पे यहाँ कान न धर सोच के चल, सबकी बातों पे यहाँ कान न धर सोच के चल। और ये शेर भी समाप्त फरमाए कि फिर कभी लौट न पाएगा हकीकत की तरफ, फिर कभी लौट न पाएगा हकीकत की तरफ, दूर ले जाएगी ख्वाबों की डगर सोच के चल, दूर ले जाएगी ख्वाबों की डगर सोच के चल। और डस न ले तुझको सुलगते हुए लम्हों की तपिश, डस न ले तुझको सुलगते हुए लम्हों की तपिश, जानिबे दस्त जरा दी दे तर सोच के चल, जानिबे दस्त जरा दी दे तर सोच के चल। और दूसरी गजल का मतला समात फरमाए, सहले मुमतना में समात फरमाए। अस क्या है कि सदा देने से कुछ होता नहीं है, सदा देने से कुछ होता नहीं है, तुम्हारे हाथ में कासा नहीं है, तुम्हारे हाथ में कासा नहीं है। और शेर देखें कि निकल जाती है दूर उंगली छुड़ाकर, निकल जाती है दूर उंगली छुड़ाकर, हवा के साथ अब चलना नहीं है, हवा के साथ अब चलना नहीं है। और शेर बतौर खास ये समात फरमाए, आज क्या है कि यकीन तो हर नफस होता है लेकिन, यकीन तो हर नफस होता है लेकिन, तुझे ये जिंदगी देखा नहीं है, तुझे ये जिंदगी देखा नहीं है। और शेर देखें कि तो फिर ये आबयारी किस लिए है, तो फिर ये आबयारी किस लिए है, अगर आंखों में कुछ बोया नहीं है, अगर आंखों में कुछ बोया नहीं है। और आखिरी शेर समाप्त फरमाए कि अभी ये नन्हे मुन्ने हाथ छू लो, अभी ये नन्हे मुन्ने हाथ छू लो, अभी शाखों से चांद उलझा नहीं है, अभी शाखों से चांद उलझा नहीं है, सदा देने से कुछ होता नहीं है, तुम्हारे हाथ में कासा नहीं है।
1: जनाब सलाम फैजी के नशार के साथ सामीन आज का उर्दू प्रोग्राम यहीं पर खत्म होता है, हमें इजाजत दीजिए। मुआविन तमाम मोहम्मद फर्रुख जमाल, पेशकश थी जनाब नूर मोहम्मद की। आज का उर्दू प्रोग्राम आपके समातों के लिए आकाशवाणी गोरखपुर मरकज पर तैयार किया गया था।
2: आकाशवाणी के गोरखपुर मरकज पर तैयार आज का उर्दू कार्यक्रम नश्र किया जा रहा था आकाशवाणी के लखनऊ मरकज से। आप सुन रहे हैं 747 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम।
3: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
4: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
3: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
4: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
3: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001424 पर।
4: 8700001424।
5: ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है।
6: उससे तो सस्ता ही है।
7: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, सीमेंट से 9.5% तक आम सरिये के मुकाबले बेहतरीन पकड़।
8: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
9: पूर्वांचल का पहला इनोवेशन सेंटर KIPM गीड़ा से करें अपने सपने साकार। BTech, पॉलिटेक्निक, MBA, MCA, BBA, BCA, B-Pharma, M-Pharma और D-Pharma में एडमिशन्स ओपन। KIPM गीड़ा गोरखपुर।
5: प्रस्तुत है सुगम संगीत का प्रोग्राम। आज के फनकार हैं अदनान सामी।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 20% ज्यादा ताकत।
3: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
4: पूर्वांचल का पहला इनोवेशन सेंटर KIPM गीड़ा से करें अपने सपने साकार। BTech पॉलिटेक्निक MBA MCA BBA BCA B Pharma M Pharma और D Pharma में एडमिशन ओपन। KIPM गीड़ा गोरखपुर।
5: सुगम संगीत के प्रोग्राम में आज आप सुन रहे हैं अदनान सामी को आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से।

सुगम संगीत के प्रोग्राम में अभी आप सुन रहे थे अदनान सामी को। इसी के साथ ये प्रोग्राम अब समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र। 10 बजने को हैं। अब सुनिए दिल्ली केंद्र से समाचार।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों तथा दूरदराज के क्षेत्रों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना विकसित उड़ान का अगला चरण शुरू किया है। श्री मोदी ने कल राजस्थान के जोधपुर हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करते हुए ये कहा कि भारत के नागर विमानन ढांचे और क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा मिला है।
1: उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
0: इस अवसर पर नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा है कि विकसित उड़ान योजना के शुरू होने से भारत के क्षेत्रीय संपर्क का अगला अध्याय शुरू होगा। श्री नायडू ने कहा कि 28,840 करोड़ रुपए से ज्यादा के बजट के साथ शुरू की गई ये योजना दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों में हवाई संपर्क को मजबूती करेगी। सरकार ने कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर प्याज के खरीद मूल्य में 13% की वृद्धि की है। प्याज की कीमत अब 1,875 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़कर 2,125 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने कहा कि संशोधित मूल्य से किसानों को लाभ होगा और बफर खरीद प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया

0: मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रोबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले भारत को एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बताया है। श्री अल्बनीज ने कहा कि हमारे संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित हैं तथा गहरे आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों से समर्थित हैं। उन्होंने कहा कि व्यापार, रक्षा, सुरक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग दोनों देशों के लिए लाभकारी साबित हो रहा है। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मॉनसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। श्री रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ की मशहूर पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई का निधन हो गया है। वे लंबे समय से बीमार चल रही थीं। उनका एम्स रायपुर में लंबे समय से इलाज चल रहा था। उन्होंने आज सुबह करीब 3:15 पर अंतिम सांस ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीजन बाई के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने अपनी शानदार प्रस्तुतियों के जरिए छत्तीसगढ़ की इस लोक कला शैली को दुनिया भर में पहचान दिलाई। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका निधन कला और संस्कृति की दुनिया के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। फ्रांस और मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। फ्रांस ने अंतिम 16 के मैच में पैराग्वे को 1-0 से हराकर अंतिम 8 में जगह बनाई। अब क्वार्टर फाइनल में फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। इससे पहले ह्यूस्टन में मोरक्को ने कनाडा को हराकर अंतिम 8 में प्रवेश किया। मैनचेस्टर में कल इंग्लैंड ने दूसरे टी20 क्रिकेट मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 190 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड ने 19 ओवर में ही 6 विकेट के नुकसान पर 191 रन बनाकर मैच जीत लिया। वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा की इस वर्ष काफी जोश और उत्साह के साथ शुरू हुई है। यात्रा के पहले 2 दिनों में 32,313 श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा मंदिर में दर्शन किए। इस बीच वार्षिक यात्रा के श्रद्धालुओं का चौथा जत्था आज सुबह जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रवाना हुआ। इस जत्थे में 291 वाहनों में 6,731 श्रद्धालु शामिल हैं। इनमें से 4,131 श्रद्धालु 139 वाहनों में पारंपरिक पहलगाम मार्ग से जा रहे हैं, जबकि 2,590 श्रद्धालु 152 वाहनों में बालतल मार्ग की तरफ से जा रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक देश के अधिकांश हिस्सों में तेज बारिश जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में भी मूसलाधार वर्षा हो सकती है। महाराष्ट्र के तटीय जिलों में भारी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। प्रस्तुत है हमारा फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश।
2: 5 5 1 2 2 0 5 3 8 6 हेलो
3: हेलो
4: हेलो
5: हेलो
2: हेलो फरमाइश।
6: हेलो फरमाइश।
7: हेलो फरमाइश कार्यक्रम में मैं दीपशिखा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ। रिश्तों की चाय में शक्कर ज़रा हिसाब से ही रखना। फीकी हुई तो स्वाद नहीं आएगा और ज़्यादा मीठी हुई तो मन भर जाएगा। इसीलिए मन ना भरे, रिश्तों की चाय बरकरार रहे। इसी के साथ आइए शुरू करते हैं आपके पसंद के गीतों का सफ़र हेलो फरमाइश। तो श्रोताओं, आप भी अपने पसंद के फिल्मी गाने सुनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको करना होगा हमें फ़ोन सुबह 11 बजे से 12 बजे के बीच, और फ़ोन करने का नंबर है 2205386। गोरखपुर का एसटीडी कोड है 0551। नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए 2205386 और एसटीडी कोड है 0551। तो चलिए अब लेते हैं हमारे आज के कार्यक्रम की पहली कॉल। हेलो फरमाइश में स्वागत है।

0: से बात हो रही है?
1: नमस्कार मैम,
0: नमस्ते।
1: मैं अतीक खान बोल रहा हूँ मैम, बहुत ही बल्लभ किला सागर से बात कर रहा हूँ
0: बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, बताइए क्या करते हैं?
1: मैम। हम काम करते हैं गाड़ी गिराज में। जी
0: अच्छा, गाड़ी के गैराज में काम करते हैं,
1: मैम।
0: बताइए क्या फरमाइश है आज आपकी?
1: मैम आज गाना सुनना है, चांद
0: कौन सा?
1: से पर्दा कीजिए चुरा लेना चेहरे का नूर।

0: हेलो फरमाइश। हेलो,
1: जी हेलो फरमाइश जी।
0: हाँ बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। किनसे बात हो रही है?
1: मैं राम केवल बोल रहा हूँ।
0: राम केवल जी, बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मुझे एक गाना सुना दीजिए, वो मीरा का मोहन फिल्म से, जी तूने प्रीत जो मुझसे जोड़ी।

0: पापा
1: लाइए
0: 3,000।
1: क्यों भाई?
0: मेरी पॉकेट मनी।
1: अरे अभी तो सिर्फ 2,000 ही कैश है।
0: ए पापा, बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो? डिजिटल पेमेंट चलाओ। है नहीं, हाँ सीधे UPI से पेमेंट करो, इट्स इजी।
1: अरे वाह, मुझे भी सिखाओ। अपने 1,000 ले जाओ,
0: अपना मोबाइल लाओ,
1: ले ले।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।
4: पूर्वांचल का पहला इनोवेशन सेंटर KIPM गीड़ा से करें अपने सपने साकार। BTech, Polytechnic, MBA, MCA, BBA, BCA, B-Pharma, M-Pharma और D-Pharma में admissions open। KIPM गीड़ा गोरखपुर।
5: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
6: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
7: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे TV चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
6: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट।
7: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
6: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
7: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
6: For details, log on to www.ddindia.com।
8: हेलो फरमाइश।
9: हेलो फरमाइश, नमस्ते मैडम।
8: नमस्ते,
9: विनय कुमार बिंदल जी बोल रहे हैं।
8: विनय जी, बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, बताइए क्या हाल चाल।
9: बढ़िया है मैडम, आप कैसे हैं?
8: हम भी अच्छे हैं।
9: बस एक गाना सुनना है।
8: कौन सा?
9: ये गुमनाम 2008 में आई थी, उसमें गाना मिल जाए तो बताओ। मोहब्बत से ज्यादा ये गाना बहुत अच्छा है।

0: हेलो फरमाइश।
1: जी नमस्ते दीदी।
0: नमस्ते, किनसे बात हो रही
1: मैं
0: है?
1: राधा बोल रही हूँ दीदी।
0: राधा जी, बताइए कैसी हैं?
1: दीदी बहुत दिन से लगाई, 2 हफ्ते से लगा रही थी। हालांकि मैंने 3 बार फोन चुका है तो
0: कौन
1: हमको गाना सुना दी
0: सा?
1: हमको दीदी।

0: पूर्वांचल का पहला इनोवेशन सेंटर KIPM गीड़ा से करें अपने सपने साकार। बीटेक पॉलिटेक्निक MBA MCA BBA BCA बी फार्मा एम फार्मा और डी फार्मा में एडमिशन्स ओपन। KIPM गीड़ा गोरखपुर।
1: हेलो फरमाइश। नमस्कार, किन से बात हो रही है?
2: जी मैं छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से उदयभान ठाकरे बोल रहा हूँ। मैडम
1: उदयभान जी, बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। कैसे?
2: आज पहली बार कॉल लगाया मैडम मैंने।
1: जी बहुत स्वागत
2: और लग गया।
1: बहुत स्वागत है।
2: इस नंबर के बारे में मुझे शारदा प्रसाद प्रजापति जी ने दिए थे मुझे।
1: जी जी,
2: तो मैंने लगाया, कोशिश किया, लग गया मैडम।
1: बधाई हो। क्या करते हैं?
2: कुछ नहीं मैडम, घर पे रहता हूँ।
1: जी,
2: रेडियो वगैरह सुनते रहता हूँ सभी स्टेशन के। आज आपका नंबर मिला, तुमका लगाया जाए, सुनते हैं।
1: जी जी, क्या सुनना है?
2: कोई भी आपके पसंद का गाना सुनना चाहिए मैडम आज।
1: ठीक है,
2: ओके जी। सभी दोस्तों को नमस्कार।
1: नमस्कार
2: आकाशवाणी गोरखपुर को नमस्कार।
1: जी जी, सबको नमस्कार। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद मैडम।

0: हेलो फरमाइश,
1: हेलो
0: हेलो फरमाइश में बहुत स्वागत है। किन से बात हो रही है?
1: नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते।
1: अभिमन्यु
0: अभिमन्यु जी कहाँ से बोल रहे हैं?
1: धर्म को फैलाते हैं,
0: क्या करते हैं?
1: ऐसे घूमते टारते हैं, कुछ नहीं।
0: अच्छा, क्या सुनना है?
1: गाना सुनना है,
0: कौन सा?
1: कोई भी चला दे,

0: कली।
1: जी हाँ, भौरे गुनगुनाएंगे और खिलेंगी आपके मन की कलियाँ।
2: 1 जुलाई से सुनिए गाते गुनगुनाते कार्यक्रम एक नए अंदाज में।
1: करिए अपने मनपसंद फिल्मी गानों की फरमाइश आकाशवाणी गोरखपुर के फेसबुक पेज पर।
2: 1 जुलाई 2026 को प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के पोस्टर कमेंट बॉक्स में लिखिए
1: गाने के बोल,
2: गीतकार
1: और संगीतकार,
2: और अपने चाहने वालों और दोस्तों के नाम,
1: और सुनिए अपने पसंद के गीत आकाशवाणी गोरखपुर से।
2: आपकी फरमाइश हमारे सुरों के साथ, यादें बन जाएंगी खास। गाते
1: गाते
2: गुनगुनाते सुनिए सुबह 10:05 पर।
1: सुनते रहिए आकाशवाणी गोरखपुर।
3: पूर्वांचल का पहला इनोवेशन सेंटर KIPM गीड़ा से करें अपने सपने साकार। बीटेक पॉलिटेक्निक MBA MCA BBA BCA बी फार्मा एम फार्मा और डी फार्मा में एडमिशन्स ओपन। KIPM गीड़ा गोरखपुर।
4: हेलो फरमाइश। नमस्ते दीदी।
5: नमस्ते, किनसे बात हो रही है?
4: मैं नंदलाल निषाद बोल रहा हूँ, नौसर से दीदी।
5: नंदलाल जी, बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
4: कौन दीदी बोल रही हैं आप?
5: दीपशिखा सिंह।
4: अच्छा, दीपशिखा सिंह दीदी, नमस्ते।
5: नमस्ते।
4: हेलो दीदी।
5: हाँ भैया, बोलिए।
4: कोई भी गाना आप सुना दीजिएगा अपने पसंद का।
5: ठीक,
4: चलिए दीदी, नमस्ते।
5: नमस्ते।

0: हेलो फरमाइश,
1: हेलो फरमाइश,
0: हेलो फरमाइश, बहुत स्वागत है। किनसे बात हो रही है?
1: आपका बात हो रहा है शिवनाथ
0: शिवनाथ जी
1: जी। मेरे को गाना सुनना,
0: जी बताएं, कौन सा गाना सुनना है?
1: तामस्तानी मदहोश किए जा, कोई दुख और इसके आगे नहीं आता।
0: अच्छा, गाना सुनते हैं। गाना दो लाइन याद करके रखिए
1: जी मैम,
0: जी। ठीक है, कॉल करने के लिए बहुत धन्यवाद।
1: जी मैम।

0: श्रोताओं, इस गीत के साथ ही अब वक्त हो चला है आज के हेलो फरमाइश कार्यक्रम के समापन का। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे नूर मोहम्मद। इस कार्यक्रम का सफर आपने तय किया दीपशिखा सिंह के साथ। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे हमारा फोन इन प्रोग्राम हेलो फरमाइश आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से।
2: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
3: स्वच्छता का संदेश फैलाओ, हर जगह सफाई लाओ,
4: कूड़ा कचरा सही जगह डालो, स्वच्छता की आदत अपनाओ,
3: साफ सफाई से जीवन सुहाना, स्वस्थ समाज का सपना सजाना,
4: गली मोहल्ला शहर हर क्षेत्र हो चमकदार, स्वच्छता का नियम सबको समझाओ बिरियार।
1: आप सुन रहे आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 11 बजने को है। अब सुनिए दिल्ली केंद्र से समाचार।

0: यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना विकसित उड़ान का अगला चरण शुरू कर दिया है। श्री मोदी ने कल राजस्थान के जोधपुर हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि देश के नागर विमानन ढांचे और क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा मिला है।
1: उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
0: इस अवसर पर नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि विकसित उड़ान योजना के शुरू होने से देश के क्षेत्रीय संपर्क का अगला अध्याय शुरू होगा। 28,840 करोड़ रुपए से ज्यादा के बजट के साथ शुरू की गई ये योजना दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों में हवाई संपर्क को और मजबूत करेगी। सरकार ने कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर प्याज के खरीद मूल्य में 13% की वृद्धि की है। प्याज की कीमत अब 1,875 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़कर 2,125 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने कहा कि संशोधित मूल्य से किसानों को लाभ मिलेगा और बफर खरीद प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मॉनसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। श्री रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान दिया जाए।

0: बताएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्राबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भारत को एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बताया है। श्री अल्बनीज ने कहा कि हमारे संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि व्यापार, रक्षा, सुरक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग दोनों ही देशों के लिए लाभकारी साबित हो रहा है। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई का निधन हो गया है। वे लंबे समय से बीमार थीं। रायपुर के एम्स में उनका इलाज चल रहा था। आज सवेरे लगभग 3:15 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। अपनी सशक्त आवाज, प्रभावशाली मंच उपस्थिति और विशिष्ट कथा शैली से तीजन बाई ने पंडवानी को न सिर्फ भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक नई पहचान दिलाई। महाभारत की कहानियों को मंच पर जीवंत करने की उनकी अद्भुत क्षमता ने उन्हें भारतीय लोक संस्कृति की सबसे प्रशंसित प्रस्तुतिकर्ताओं में से एक बना दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन पर दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति मुर्मू ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत की सांस्कृतिक विरासत के प्रसार के प्रति उनका योगदान अविस्मरणीय रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अपने शानदार प्रदर्शनों के जरिए तीजन बाई ने छत्तीसगढ़ की लोक कला शैली के लिए वैश्विक पहचान अर्जित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक देश के अधिकांश हिस्सों में तेज बारिश जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में भी मूसलाधार बारिश हो सकती है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे लोकगीतों का कार्यक्रम।
2: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये मारा।
2: टोल कर ही नहीं,
3: किनकर भी मिलता है,
2: बच्चे भी खरीद सकते हैं।
3: RHL गोल्ड, TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
4: पूर्वांचल का पहला इनोवेशन सेंटर KIPM गीडा।
5: BTech पॉलिटेक्निक, MBA, MCA, BBA, BCA, D-Pharma, B-Pharma और M-Pharma में एडमिशन्स शुरू हो गए हैं।
4: 300 कंपनीज में प्लेसमेंट्स, स्कॉलरशिप और इजी फी इंस्टॉलमेंट की सुविधा भी।
5: विजिट KIPM गीडा गोरखपुर।
6: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की DVDs और CDs हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।
1: लोकगीतों के कार्यक्रम में आज के कलाकार हैं राकेश उपाध्याय।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
3: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
4: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे TV चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
3: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
4: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
3: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
4: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
3: For details, log on to www.ddindia.com।
5: जब दिल ने किसी को याद किया हो, जब कोई धुन दिल में उतर गई हो और कभी किसी को सुनाना हो कोई गीत, तो बस आपका अपना कार्यक्रम हेलो फरमाइश लेकर आ रहा है आपके दिल की आवाज, जहां आपके प्यार भरे संदेश और आपके पसंदीदा गीत

किसी की मुस्कान। तो उठाइए फोन, कीजिए हमें कॉल हर शनिवार सुबह 11 बजे से 12 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 0551220-5386 और आप इस कार्यक्रम को सुन सकते हैं हर रविवार 10:05 पर। हमें रहेगा आपका इंतजार, जहां दिलों की दूरियां गीतों से मिटती हैं।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, हर टन में ज्यादा लंबाई, ज्यादा फायदा, कम खर्च में ज्यादा निर्माण। RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
3: पूर्वांचल का पहला इनोवेशन सेंटर KIPM गीडा।
4: BTech पॉलिटेक्निक, MBA, MCA, BBA, BCA, D-Pharma, B-Pharma और M-Pharma में एडमिशन्स शुरू हो गए हैं।
3: 300 कंपनीज में प्लेसमेंट्स, स्कॉलरशिप और इजी फी इंस्टॉलमेंट की सुविधा भी।
4: विजिट KIPM गीडा गोरखपुर।

0: स्वच्छ भारत, सुंदर भारत, स्वच्छता शब्द भर नहीं, सक्रिय सचेत कर्म है।
1: लोकरंग के कार्यक्रम में आज के कलाकार थे राकेश उपाध्याय। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि।

0: स्वच्छ भारत, सुंदर भारत, स्वच्छता शब्द भर नहीं, सक्रिय सचेत कर्म है।
1: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in। देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
2: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
3: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
2: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
3: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
2: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की,
3: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
2: For details, log on to www.ddindia.com।
4: ये गीत जो आप सुनने जा रहे हैं

हैं ये गीत है फिल्म दबंग 3 से, जिसे गाया है जावेद अली ने। साजिद वाजिद का संगीत है और गीत के बोल लिखे हैं दानिश शारिब ने।

देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।

0: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
1: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे TV चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
0: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट।
1: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
0: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
1: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
0: For details, log on to www.ddindia.com।
2: पूर्वांचल का पहला इनोवेशन सेंटर KIPM गीडा।
3: बीटेक, पॉलिटेक्निक, MBA, MCA, BBA, BCA, D-Pharma, B-Pharma और M-Pharma में एडमिशन्स शुरू हो गए हैं।
2: 300 कंपनीज में प्लेसमेंट्स, स्कॉलरशिप और इजी फी इंस्टॉलमेंट की सुविधा भी।
3: विजिट KIPM गीडा गोरखपुर।
4: गंदगी को दूर भगाएं, साफ सफाई को अपनाएं।
5: अखबार, प्लास्टिक, कागज सबका सही ढंग से निपटान, स्वच्छता का संदेश फैलाए, यही है हमारी पहचान।
4: स्वच्छता है जीवन की धारा, साफ सफाई संकल्प हमारा।
5: स्वच्छता अभियान सबकी जिम्मेदारी, स्वस्थ जीवन की है ये तैयारी।

चलिए अब हम आपको सुनवाते हैं फिल्म मुबारका से ये गीत, जिसे गाया है मीका सिंह और प्रकृति कक्कड़ ने। गीत में संगीत दिया है गोंडवर रोशनी ने और गीत के बोल लिखे हैं कुमार ने।

चलिए अब हम आपको अगला गीत सुनवाते हैं फिल्म MS धोनी से, जिसे गाया है अरमान मलिक ने। गीत के बोल लिखे हैं मनोज मुंतशिर ने और गीत में संगीत दिया है अमाल मलिक ने।

ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म टू स्टेट से, जिसे गाया था के मोहन और यशिता शर्मा ने। संगीत दिया था शंकर एहसान लॉय ने और गीत के बोल लिखे थे अमिताभ भट्टाचार्य ने। आइए अगला गीत सुनते हैं फिल्म थ्री इडियट से, जिसे गाया है सूरज जगन ने और संगीत दिया है शांतनु मोहित्रा ने।

कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो खड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पड़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

गीतांजलि में आज बस इतना ही। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए बाल मंच, जिसे लेकर आ रही हैं मेनका श्रीवास्तव।

0: आपका अपना कार्यक्रम बाल मन।
1: जय हिंद बच्चों।
2: जय हिंद।
1: हंसी खुशी नई नई जानकारी और ढेर सारी मस्ती के साथ आप सभी का आज के बाल मंच कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों हम बातें शुरू करें उससे पहले आप सब अपना परिचय दीजिए, आप किस क्लास में पढ़ते हैं और आपका नाम क्या है।
3: मेरा नाम देवांश है, मैं कक्षा 5 में पढ़ता हूँ।
4: मेरा नाम अक्षत है, मैं कक्षा 2 में पढ़ता हूँ।
5: मेरा नाम अनवी है, मैं कक्षा 6 में पढ़ती हूँ।
6: मेरा नाम अन्या है और मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूँ।
1: और मैं हूँ आप सबकी दीदी मेनका दीदी। हम बातें शुरू करें उससे पहले जोरदार तालियां हो जाए। बच्चों गर्मी की छुट्टियां खत्म हो गई और आप सबके स्कूल खुल गए हैं।
2: हाँ दीदी।
1: दोस्तों से मिलने की खुशी और नए क्लास में बैठने का उत्साह है।
2: हाँ दीदी।
1: फर्स्ट डे का क्या एक्सपीरियंस रहा बताओगे हमको कोई लोग।
3: हाँ दीदी।
1: बताओ।
3: मैं फर्स्ट डे गया था स्कूल तो मैं घर पर पेंसिल बॉक्स छोड़ दिया।
1: ओ, फिर
3: मेरे दोस्त मुझे पेन दिया।
1: हाँ?
3: वो भी खो गया।
1: ओहो, फिर
3: वो दूसरा पेन दिया।
1: हाँ?
3: फिर मैं उसको बाद में लौटा दिया।
1: ये तो तुमने अच्छा किया, पर जब हमारा अगले दिन स्कूल रहे ना तो हमें बैग एक रात पहले ही पैक कर लेना चाहिए, है ना।
3: हाँ दी।
1: तो इससे कोई चीज छूटती नहीं है। बच्चों यही उत्साह और सीखने का यही जोश आप पूरे साल बनाए रखिएगा, है ना।
2: हाँ दी।
1: और अब हम अपने कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलेंगे एक ऐसी अद्भुत दुनिया में जो रहस्यों, रंग बिरंगे जीवों और अनगिनत आश्चर्य से भरी हुई है। पता है वो कौन सी दुनिया है। कौन सी है।
2: समुद्र की दुनिया।
1: बिल्कुल सही, नीले गहरे सागर की अनोखी दुनिया जहाँ हर लहर अपने साथ एक नई कहानी लेकर के आती है और इस विशाल जलराशि की गहराई में छिपे हैं अनगिनत रहस्य, रंग बिरंगी मछलियाँ, चंचल डॉल्फिन, विशाल व्हेल। तो आप सब तैयार हैं सागर की दुनिया में चलने के लिए।
2: हाँ दीदी।
1: तो कौन बताएगा मुझे कि सागर किसने देखा है, किसी ने देखा है सागर।
2: हाँ दीदी।
1: क्या अच्छा लगा वहाँ पे
4: दीदी। वहाँ पे बहुत सारा पानी है होता है। वहाँ पे बहुत सारी फिश होती है।

0: अच्छा ये बताइए कि वहाँ का पानी टेस्ट किया तुमने?
1: नहीं दीदी।
0: किसी ने पानी नहीं टेस्ट किया वहाँ का? कैसा होता है सागर का पानी?
1: खारा।
0: बिल्कुल सही बात है, सागर का पानी खारा होता है। पर ये खारा क्यों होता है, कोई जानता है इसके बारे में?
2: हाँ दीदी, हाँ दीदी मैं जानती हूँ।
0: अन्वी बताएगी हमें सागर का पानी खारा क्यों होता है।
2: दीदी जब नदियाँ जब पहाड़ पहाड़ों और चट्टानों के बीच से बहती है तो वह अपने साथ बहुत थोड़ी थोड़ी मात्रा में नमक और दूसरे खनिज बहाकर समुद्र तक ले आती हैं। लाखों वर्षों से ऐसा होता आ रहा है। समुद्र का पानी तो सूरज की गर्मी से भाप बनकर उड़ जाता है, लेकिन नमक वहीं रह जाता है। इसलिए समुद्र के पानी में नमक की मात्रा बढ़ती रहती है और उसका पानी खारा हो जाता है।
0: बिल्कुल सही बात है। और किसी को सागर के बारे में कुछ पता है?
1: हाँ दीदी,
0: ये बताएगा हमें अक्षत। अक्षत बताओ सागर के बारे में और क्या क्या जानते हो तुम?
1: मुझे पता है दीदी कि सागर धरती का सबसे बड़ा जल भंडार है और इसमें खारा पानी होता है। सागर में दुनिया का सबसे बड़ा जीव ब्लू व्हेल रहती है। शार्क समुद्र की सबसे ताकतवर मछलियों में से एक होती है।
0: बिल्कुल, और कोई जानता है सागर के बारे में कुछ और?
2: दीदी मैंने पढ़ा है कि ऑक्टोपस सागर में रहते हैं और उनके 3 दिल और 8 हाथ होते हैं। दीदी मैंने ये भी पढ़ा है कि सागर के नीचे कोरल रीफ होती है जो रंग बिरंगे शहर जैसी दिखती है। क्या ये सच है दीदी?
0: भाई मैंने भी देखा तो नहीं है और पढ़ा है कि कोरल रीफ जिसे हम मूंगे की चट्टान कहते हैं ये इतनी सुंदर और रंगीन होती है जिन्हें देख कर लगता है कि समुद्र के नीचे कोई रंग बिरंगा शहर बसा हुआ है। इसे समुद्र का बागीचा कहा जाता है। बच्चों आपको पता है कि इस धरती पर 71% भाग पानी से ढका हुआ है ना?
3: हाँ दीदी।
0: और इसमें अधिकांश पानी जो है वो सागर और महासागर में है।
3: हाँ दीदी।
0: तो कोई जानता है कि सागर और महासागर कौन कौन से हैं इस धरती पर?
3: हाँ दीदी।
0: कौन बताएगा मुझे?
1: दीदी मैं जानता हूँ, मैं बताऊंगा।
0: देवांश बताएगा हमें सागर और महासागर के बारे में, बताओ।
1: पहला प्रशांत महासागर, ये सबसे बड़ा महासागर है। दूसरा अटलांटिक महासागर। तीसरा हिंद महासागर भारत के दक्षिण में। चौथा दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका के चारों ओर। पांचवा आर्कटिक महासागर, सबसे छोटा और ठंडा महासागर है।
0: और सागर कितने हैं कोई जानता है?
4: मैं जानती हूँ दीदी।
0: हाँ बताओ।
4: दीदी सागर तो बहुत सारे हैं, लेकिन मुझे कुछ के ही नाम पता है, जैसे लाल सागर, काला सागर, दक्षिण चीन सागर, जापान सागर और भी बहुत सा कुछ।
0: और सागर और महासागर में अंतर भी पता है तुम्हें क्या क्या है?
4: हाँ दीदी मुझे पता है।
0: हाँ तो बताओ।
4: महासागर बहुत बड़े होते हैं और पूरी दुनिया में फैले हैं। सागर उनसे छोटे होते हैं और अक्सर किसी महासागर से जुड़े होते हैं।
0: बिल्कुल सही बात है। अच्छा किसी को पता है कि सागर इतना बड़ा होता है तो इसमें कौन कौन से जीव रहते हैं, कोई जानता है?
2: दीदी मुझे कुछ जीवों के नाम पता है, जैसे मछली, डॉल्फिन, केकड़े, समुद्री कछुआ, ऑक्टोपस और भी बहुत सारे।
0: बच्चों समुद्र में तो बहुत से जीव रहते हैं। आपको पता है कि ये जीव समुद्र के किसी एक ही हिस्से में नहीं रहते हैं, ये कई हिस्सों में रहते हैं, यानी कि समुद्र कई लेयरों में बटा हुआ है। क्या आप में से कोई समुद्र की परतों के बारे में जानता है?
2: हाँ दीदी।
0: तो ये बताएगी मुझे अन्वी।
2: हाँ दीदी, समुद्र में 5 परतें होती हैं। पहली सनलाइट जोन, वह ऊपरी परत होती है, यहाँ सबसे ज्यादा रोशनी होती है, यहाँ पर मछलियाँ, कछुए, डॉल्फिन रहते हैं और समुद्री पौधे मिलते हैं। दूसरा ट्वाइलाइट जोन, वो मध्य परत होती है, यहाँ पर थोड़ी रोशनी होती है, बड़े बड़े स्क्विड शार्क यहाँ पर रहते हैं। तीसरा मिडनाइट जोन, वह गहरी परत होती है, यहाँ पर अब बिल्कुल अंधेरा रहता है, यहाँ पर एक चमकते हुए जीव रहते हैं। चौथा एबिस, यह गहराइयाँ होती हैं, यहाँ पे बहुत ठंड होती है, यहाँ पानी का दबाव बहुत ज्यादा होता है, यहाँ पर अजीब आकार के जीव रहते हैं। पांचवा ट्रेंचेस, जो खाइयाँ होती हैं, वह सबसे गहरी परत है और वहाँ रहने वाले जीव भी बेहद अनोखे होते हैं।
0: बिल्कुल बच्चों, समुद्र जितना ऊपर से सुंदर दिखाई देता है उसकी गहराई उतनी ही रहस्यमय और अद्भुत होती है। पर ये बताइए कि समुद्र हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है?
1: कोई जो
0: तो हमें देवांश बताएगा कि समुद्र हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है?
1: समुद्र बहुत महत्वपूर्ण है

0: ऑक्सीजन बनाता है। समुद्र में रहने वाले छोटे छोटे पौधे जैसे फाइटोप्लैंक्टन दुनिया की 50 से 70% ऑक्सीजन बनाते हैं। धरती का तापमान नियंत्रित करता है, समुद्र गर्मी को सोखकर मौसम को संतुलित रखता है, इसलिए धरती न बहुत गर्म होती है और न बहुत ठंडी। दुनिया के लिए भोजन मछली, समुद्र शैवाल, समुद्री नमक सब समुद्र से मिलता है। लगभग करोड़ों लोग समुद्र से मिलने वाले भोजन पर निर्भर हैं।
1: बहुत बढ़िया। और इसके अलावा एक चीज और होता है, दुनिया का 90% व्यापार जो है वो समुद्र के जरिए होता है, इसलिए समुद्र बहुत इम्पोर्टेंट है। और वो व्यापार कैसे होता है पता है आपको?
2: हाँ दीदी।
1: कैसे होता है?
2: शिप से।
1: बिल्कुल सही, शिप से सामान एक देश से दूसरे देश तक जाता है। अच्छा बच्चों ये बताइए कि समुद्र जब हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है, इस पे कुछ खतरा है ना? पता है क्या खतरा है?
3: हाँ दीदी मुझे पता है।
1: हाँ बताओ।
3: समुद्र को सबसे बड़ा खतरा प्लास्टिक के कचरे और प्रदूषण से है। जब लोग प्लास्टिक की बोतलें, थैलियाँ और कूड़ा पानी में फेंकते हैं तो वह समुद्र तक पहुँच जाता है। इससे मछलियाँ, कछुओं, डॉल्फिनों और दूसरे समुद्री जीवों को बहुत नुकसान होता है। इसलिए हमें कभी भी पानी में कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए और समुद्र को साफ रखना चाहिए।
1: आन्या ने तो बिल्कुल सही कहा कि इन इन चीजों से समुद्र को खतरा है। पर ये बताइए कि हम समुद्र की रक्षा कैसे कर सकते हैं? सब लोग बताएंगे, एक एक पॉइंट सब लोग बताओ। सबसे पहले बताएगा देवांश। देवांश बताओ।
0: प्लास्टिक का कम उपयोग करें,
4: कचरा नदियों और समुद्र में ना फेंके।
1: तो तुम तो गए थे समुद्र, है ना? मुंबई गए थे ना तुम घूमने के लिए? हाँ। कुछ फेंक के आए हो वहाँ पे?
4: छोटे थे।
1: छोटे थे, याद है? तब तुम कितने बड़े थे उस समय?
4: नहीं याद है दीदी।
1: याद नहीं है तुम्हें? चलो कोई बात नहीं, अब जाना तो समुद्र के किनारे किसी भी तरह का कोई रैपर, कोई प्लास्टिक की बोतल मत फेंकना, ठीक है? और हम क्या कर सकते हैं समुद्र की रक्षा के लिए?
3: दीदी हम पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं और दीदी हम पानी की बर्बादी रोक सकते हैं।
1: बिल्कुल। और इसके अलावा हम कर सकते हैं समुद्री जीवों के संरक्षण के बारे में हम लोगों को जागरूक करें, है ना? इससे हम समुद्र की रक्षा कर सकते हैं। तो आप सब ये काम करेंगे?
2: हाँ दीदी।
1: तो चलिए अब हम अपनी बातों को यहाँ पर रोकते हैं और अब हम यहाँ पर सुनेंगे एक गाना। गाना सुनोगे तुम लोग?
2: हाँ दीदी।
1: तो चलिए आइए सुनते हैं हम ये गीत।

0: एक बार फिर बाल मंच कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ आपकी दीदी मेनका। ये गीत पसंद आया आप सबको?
1: हाँ दीदी।
0: और अब हम बढ़ते हैं अपने कार्यक्रम के अगले सेगमेंट में, जो कि है नया शब्द। बच्चों, जब हम हर दिन नए नए शब्द सीखते हैं तो इससे हमारा ज्ञान बढ़ता है और हमारी भाषा और भी मजबूत होती है। नए शब्द हमें सोचने, समझने और सही तरीके से अपनी बातों को बताने में मदद करते हैं। बच्चों, हमारा आज का शब्द है संरक्षण, यानी कि कंजर्वेशन। तो इसका अर्थ किसी को पता है?
2: मुझे पता है दीदी।
0: अन्या बताएगी हमें इसका मतलब।
2: दीदी, इसका मतलब होता है जब किसी चीज को बचाते हैं या फिर उसका प्रयास करते हैं उस चीज को बचाने का, तो उसे संरक्षण या कंजर्वेशन कहते हैं।
0: बिल्कुल सही बात है। इस शब्द का मतलब है कि जब हम किसी अच्छी और जरूरी चीज की रक्षा करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं और भविष्य के लिए उसे सुरक्षित रखते हैं, ताकि वो नष्ट ना हो, लंबे समय तक वो बनी रहे और आने वाली पीढ़ी भी उसका लाभ उठा सके। तो आप बताइए कि हम किस किस चीज का संरक्षण कर सकते हैं, बताओ, सोचो।
2: पेड़ों का।
0: बिल्कुल सही बात है। और सिर्फ पेड़ बचाएं?
2: और हम पानी का भी।
0: बिल्कुल सही बात है। बच्चों, नया शब्द सीखना मतलब अपने ज्ञान को बढ़ाना है और आप सब घर जाके जरूर सोचिएगा कि हम और किन किन चीजों का संरक्षण कर सकते हैं। सोचोगे तुम लोग?
1: हाँ दीदी।
0: और अब हम अपने कार्यक्रम में आगे चलते हैं और जानते हैं कि आज के कार्यक्रम के लिए आप सब ने क्या क्या तैयारी की है। कुछ तैयारी करके आए हो तुम लोग?
1: हाँ दीदी।
0: क्या लेकर के आए हो?
1: कविता।
3: कहानी,
0: यानी कि कविता और कहानी आप लोग की तैयारी है। तो सबसे पहले हम सुनते हैं कविता देवांश की। देवांश, तुम स्टार्ट करो।
4: कविता का शीर्षक है अभिमान देश का। इसके कवि है हंस कुमार तिवारी जी। हमको है अभिमान देश का, जिसके पाप पखारे सागर, गंगा भरे सवारे गागर, सोए जिस पर स्वर्ग वही तो शीश मुकुट हिमवान देश का। हमको है अभिमान देश का, जिसके रजगढ़ का कर चंदन, झुक झुक नभ करता पद वंदन, कली कली के प्राण गुण का स्वर रश्मि का गान देश का। हमको है अभिमान देश, कोटि प्राण में भक्ति सीखी, कोटि प्राण में शक्ति सीखी, कोटि कोटि कंठों में गुंजित मधुर मधुर जय गान देश का। हमको है अभिमान देश का। धन्यवाद।
0: बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां हो जाए देवांश के लिए। और अब अक्षत का नंबर आता है। अक्षत, तैयारी है तुम्हारी?
5: हाँ दीदी।
0: तुम क्या लेकर के आए हो?
5: कविता।
0: स्टार्ट करो कविता अपनी।
5: कविता का शीर्षक है हम बच्चे बलवान बनेंगे। हम बच्चे बलवान बनेंगे, मेहनत का इंसान बनेंगे, इस धरती पर जन्म लिया है, भारत माँ की शान बनेंगे। हाथों में फौलादी ताकत लेकर हम चट्टान बनेंगे, पर्वत जैसे ऊंचे उठ कर भी न कभी अभिमान करेंगे, सदा सुगंध लुटाने वाले फूलों की मुस्कान बनेंगे। धन्यवाद।
0: बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां हो। अक्षत, ये बताओ कि इस कविता में हम बच्चे बलवान बनेंगे, है ना, वो कैसे बनेंगे?
5: मेहनत करके।
0: और कैसे बनेंगे? हेल्दी चीज खा करके हम बलवान बनेंगे। खाते हो हेल्दी चीज?
5: हाँ दीदी।
0: ग्रीन वेजिटेबल खाते हो?
5: हाँ दीदी।
0: दूध पीते हो?
5: हाँ।
0: सोच सोच के बोल रहा है, दूध बहुत जरूरी है बच्चों के लिए, है ना भाई। कविता सुनाने से नहीं काम चलेगा, मेहनत भी करनी पड़ेगी पढ़ाई में और अच्छा अच्छा खाना भी पड़ेगा, यानी ग्रीन वेजिटेबल खाना पड़ेगा, दूध पीना पड़ेगा और घर का खाना खाना पड़ेगा। मम्मी का खाना पसंद आता है या बाहर का? मोमोज और पिज्जा। मम्मी का खाना पसंद आता है। अच्छा, किसको किसको बाहर का खाना पसंद है? सबकी भूलती बंद है, है ना, कोई पिज्जा नहीं, कोई मोमोज नहीं, ठीक है। सब लोग ग्रीन वेजिटेबल खाएंगे और दूध पिएंगे और मम्मी के हाथ का घर का खाना खाएंगे, ठीक है।
1: हाँ दीदी।
0: और अब हम सुनते हैं अनवी से। अनवी, क्या लेकर के आई है?
6: दीदी, कविता। मेरी कविता का शीर्षक है डिजिटल युग। मोबाइल की इस दुनिया में हम अपनों को ही भूल गए, अंगूठा तो चलता रहता पर दिल के रिश्ते छूट गए। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर झूठी दुनिया सजती है, तनाव और अकेलेपन की घंटी हर घर बजती है। साइबर क्राइम और फ्रॉड से सबको अब बचना होगा, इंटरनेट की इस दुनिया से समझदारी से रचना होगा। फेक न्यूज की इस आंधी में सच को हमें बचाना है, बिना सोचे समझे कोई भी मैसेज

0: तेज नहीं बढ़ाना है। तकनीक बने हथियार हमारा, पर हम इसके गुलाम ना हो। भारत का हर एक नागरिक खुद में इतना नादान ना हो। किताबों से फिर नाता जोड़े, मैदानों में खेलें खेल, तभी बढ़ेगा असली भारत, जब होगा अपनों का मेल। धन्यवाद।
1: जोरदार तालियां हो जाए। भाई अन्वी ने कविता तो बहुत अच्छी सुनाई कि हमें मोबाइल से और दूर रहना है। तो आप सब दूर रहते हैं?
2: हाँ दीदी।
1: कोई मोबाइल पे गेम नहीं खेलता है?
0: नहीं दीदी, कभी कभी खेलती हूँ।
1: कोई मुस्कुरा रहा है? देवांश भी धीरे धीरे सर हिला रहा है कि दीदी थोड़ा थोड़ा मैं भी खेल लेता हूँ। 15 मिनट, 15 मिनट का टाइम मम्मा ने दिया है।
2: हाँ दीदी।
1: मोबाइल से आप सबको दूर रहना है, ठीक है? जैसा कि अन्वी की कविता में लिखा था कि हमें किताबों से दोस्ती करनी है। किताबें जो होती है ये हमारी सबसे अच्छी दोस्त होती है। अपने उम्र की, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आप किताबें चुनिए और उन किताबों को पढ़िए। कोर्स की किताबों के अलावा कोई और किताब भी लीजिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जो रोचक हो, ज्ञानवर्धक हो और कहानी हो। जिसमें किताबों की दोस्ती सबसे अच्छी दोस्ती होती है ना?
2: हाँ दीदी।
1: तो आप सब प्रॉमिस कीजिए कि मोबाइल से दूर रहेंगे, टीवी से दूर रहेंगे और किताबों से दोस्ती करेंगे। करेंगे?
2: हाँ दीदी।
1: और अब आती है अन्या की बारी। अन्या क्या लेकर के आई है?
3: दीदी मैं तो कहानी लेकर आई हूँ।
1: हाँ तो अन्या की हम कहानी सुनने को तैयार हैं। अन्या शीर्षक बताओ कहानी का।
3: मेरी कहानी का शीर्षक है हौसले की राह।
1: चलो स्टार्ट करो।
3: शहर के एक सरकारी विद्यालय में आदित्य नाम का एक छात्र पढ़ता था। वह पढ़ाई में अच्छा था लेकिन हर प्रतियोगिता में पहले से ही घबरा जाता था। भाषण प्रतियोगिता हो या वाद विवाद, उसका नाम हमेशा अंतिम क्षणों में सूची से हट जाता। उसे हार से नहीं, लोगों के सामने असफल होने से डर लगता था। एक दिन विद्यालय में एक प्रसिद्ध लेखक का व्याख्यान आयोजित किया गया। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद आदित्य ने उनसे पूछा, सर क्या आपको कभी डर नहीं लगता? लेखक मुस्कुराए और बोले, डर तो आज भी लगता है, फर्क केवल इतना है कि अब मैं उस डर के साथ चलना सीख गया हूँ। आदित्य ने आश्चर्य के साथ उनकी ओर देखा। लेखक ने अपनी डायरी बंद करते हुए कहा, हौसला डर का अभाव नहीं है, हौसला वह निर्णय है जिसमें मनुष्य डर से बड़ा बनने का चुनाव करता है। वह वाक्य आदित्य के मन में गूंजता रहा। कुछ सप्ताह बाद विद्यालय में राज्य स्तरीय भाषण प्रतियोगिता की घोषणा हुई। इस बार भी उसके हाथ कांप रहे थे। मंच के पीछे खड़े उसे लगा कि वो वापस लौट जाए। तभी उसे वही शब्द याद आए, हौसला डर का अभाव नहीं है। उसने गहरी सांस ली और मंच पर पहुंच गया। उसका भाषण पूर्ण नहीं था, 2-3 बार शब्द भी भूल गया, लेकिन उसने रुकने के बजाय अपने विचार पूरे किए। प्रतियोगिता समाप्त हुई, परिणाम आया तो वो प्रथम नहीं, तीर्थ स्थान पर था। उसके मित्रों ने कहा, इतनी मेहनत के बाद भी केवल तीसरा स्थान? आदित्य मुस्कुराया। उसने उत्तर दिया, आज मैं किसी प्रतियोगिता से नहीं जीता, मैं उस डर से जीत गया जो वर्षों से मेरे भीतर बैठा था। उस दिन उसके शिक्षक ने उससे कहा, आज जो तुम्हें पुरस्कार मिला है वो कुछ वर्षों बाद भुला दिया जाएगा, लेकिन आज जो तुमने आत्मविश्वास तुम्हारे अंदर जन्मा है वह तुम्हारे जीवन भर आगे लेकर जाएगा। आदित्य ने ट्रॉफी को देखा और फिर मंच की ओर देखा। उसे लगा, जीत उस धातु की बनी छोटी सी ट्रॉफी में नहीं थी, जीतना उसे एक कदम में था जो उसने डर के बावजूद भी आगे बढ़ाया था।
1: अन्या की कहानी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। अच्छा ये बताइए, अन्या की कहानी किसी ने ध्यान से सुनी है?
0: हाँ दीदी मैंने सुनी है।
1: और तुम लोग क्या कर रहे थे फिर? नहीं सुन रहे थे, अपने में ही दोनों लगे हुए हैं, है ना? क्या हो रही है, मजा आ रहा है यहाँ पे?
2: हाँ दी।
1: अभी तो फिलहाल मुझे बताइए कि अन्या ने जो कहानी सुनाई है उस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है?
0: दीदी हमें उस कहानी से यह सीख मिलती है कि पहले हमें अपने भीतर के डर से लड़ना चाहिए, तभी हम अपनी जिंदगी में सफल हो पाएंगे।
1: अच्छा ये बताओ, तुम लोगों को किसी चीज से डर लगता है?
3: हाँ दीदी मुझे लगता है।
1: किस चीज से?
3: दीदी मुझे चूहे से डर लगता है।
1: ओहो, चूहे से? चूहा कोई डरने वाली चीज है? और कोई ऐसा सब्जेक्ट जिससे डर लगता हो? इस सब्जेक्ट की तो बुक मुझे छूनी ही नहीं है। कोई सब्जेक्ट ऐसा है?
3: नहीं दीदी।
1: सब सब्जेक्ट पसंद है?
3: हाँ दीदी।
1: किसी से बात करने में डर नहीं लगता है?
3: नहीं दीदी।
1: सबसे खुल के बात कर लेते हो?
3: हाँ,
1: भाई मुझसे तो तुम लोग नहीं कर रहे हो बात, यहाँ पे तो डर ही रहे हो तुम लोग। भाई बहुत बहादुर बच्चे आए हुए हैं, इन्हें किसी से डर नहीं लगता है। या मम्मी से डर लगता है? थोड़ा थोड़ा। क्यों डर लगता है मम्मी से? ये मम्मी ऐसे तो मारेगी नहीं, जरूर कुछ शैतानी करते होंगे।
4: कहीं भागने उगने लगते हैं या तो इसको मारते हैं, ये हमको मारते हैं। वरना
1: छोटे भाई को मार देते हो?
4: अक्षत मारता है या तो मैं मारता है।

0: वजह से।
1: इस वजह से पिटाई होती है? और भागते क्यों? घर से भाग जाते हो? कहाँ भाग के जाते हो?
0: मम्मा के मारने।
1: तो अक्षत से जब लड़ाई होती है तो जीतता कौन है? तुम जीतते हो। छोटे भाई को 2-3 थप्पड़ लगा दिया। मैं छोटा सा तो वो है, इतना छोटा सा प्यारा सा बच्चा है वो।
2: दीदी मेरे पास 4 लाइन की एक कविता है, क्या मैं आपको सुना सकती हूँ?
1: भाई हम सब सुनने के लिए तैयार हैं। चलो स्टार्ट करो।
3: डरना नहीं किसी के भी पैरों के नाप से, आखिर में पूर्ण जीत ही जाएगा पाप से। गीता में कृष्ण ने कहा अर्जुन से बस यही, पहली लड़ाई जीतनी है अपने आप से।
1: बिल्कुल सही बात है, अपने अंदर के डर को हमें सबसे पहले खत्म करना होगा। और आप सब तो बहुत अच्छे बच्चे हो, आपको किसी चीज से डर नहीं लगता है, ये तो बहुत अच्छी बात है। और अब हम अपनी बातों को आगे बढ़ाते हैं और आपसे पूछते हैं कुछ सवाल, ठीक है? आप सब जवाब देने के लिए तैयार हैं?
4: हाँ जी।
1: एक पेड़ पर 10 कबूतर बैठे हैं, एक शिकारी ने एक गोली चलाई, एक कबूतर नीचे गिर गया, बताइए उस पेड़ पर कितने बचे?
4: नौ।
1: गलत जवाब, उस पे एक भी नहीं बचे, गोली की आवाज से
4: उड़ गए।
1: भाई आप सब तो जवाब नहीं दे पाए इस सवाल का, और बहुत आसान सा सवाल था। अच्छा एक और सवाल, एक रेस हो रही है और उसमें अगर आप दूसरे नंबर वाले बच्चे को पीछे छोड़ दीजिए तो आप किस नंबर पर आएंगे?
4: सेकंड।
1: बिल्कुल सही बात है भाई, दूसरे नंबर वाले को आपने पीछे छोड़ा, पहले नंबर वाले को तो पीछे नहीं छोड़ा है। सवाल में ही देखिए जवाब छुपा होता है, अगर आप ध्यान से सवाल सुनिएगा तो आपको जवाब उसी में मिलेगा। तो चलिए अब हम अपनी बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और आपसे पूछते हैं जीके के कुछ सवाल। आप सब रेडी है? तो मेरा सबसे पहला सवाल है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? और इसका जवाब हमें देगा देवांश।
0: माउंट एवरेस्ट।
1: बिल्कुल सही जवाब, जोरदार तालियां हो जाए। अगला सवाल अक्षत के लिए, अक्षत को गेम खेलना पसंद है?
0: हाँ।
1: कौन सा गेम खेलते हो?
0: क्रिकेट।
1: पर मैं तुमसे चेस के सवाल पूछूंगी, ठीक है? बताओ चेस के बोर्ड में कितने खाने होते हैं?
0: 64।
1: बिल्कुल सही जवाब, जोरदार तालियां हो जाए। एक और सवाल, क्रिकेट और हॉकी तो सबको पसंद है, पर ये बताइए कि कबड्डी का नाम सुना है आप सबने?
4: हाँ दीदी।
1: इसमें एक टीम में कितने खिलाड़ी मैदान पर होते हैं?
0: 8। 7।
1: चलिए कोई बात नहीं। अगला सवाल है, ब्लैक बेल्ट किस खेल से जुड़ी चीज है?
2: दीदी मैं बताऊं?
1: हाँ बताओ।
2: कराटे।
1: बिल्कुल सही जवाब, जोरदार तालियां हो। अगला सवाल अन्या के लिए है कि हमारे देश का राष्ट्रीय गान क्या है और इसे किसने लिखा है?
2: दीदी हमारे देश का राष्ट्रीय गान जनगणमन है।
1: और इसे किसने लिखा है?
0: दीदी मुझे पता है।
1: हाँ बताओ।
0: रविंद्रनाथ टैगोर।
1: जोरदार तालियां हो अक्षत के लिए। अगला सवाल देवांश के लिए, स्वर्ण मंदिर यानी कि गोल्डन टेंपल कहाँ पर स्थित है?
0: दीदी शायद अमृतसर।
1: बिल्कुल सही, शायद नहीं कंफर्म, जोरदार तालियां। अगला सवाल है अन्या के लिए, आजकल एक शब्द चल गया है कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि AI, इसका पूरा नाम बताइए?
2: दीदी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
1: बिल्कुल सही, जोरदार तालियां। अगला सवाल अन्वी के लिए, ओलंपिक खेल कितने वर्ष में एक बार आयोजित होता है?
2: दीदी शायद 4 वर्ष।
1: बिल्कुल सही, जोरदार तालियां। भाई आप सब तो फटाफट जवाब दे रहे हैं जीके के सवाल का। अच्छा अभी हमने सागर पर बात की है, एक ऐसी मछली है जो विश्व की सबसे बड़ी मछली है, बताइए?
2: दीदी मैं बताऊं?
1: हाँ बताओ।
2: ब्लू वेल।
1: बिल्कुल सही। एक और सवाल, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह?
2: दीदी जुपिटर।
1: बिल्कुल सही जवाब, जोरदार तालियां हो जाए। अगला सवाल, पानी किस टेम्परेचर पर उबलता है?
2: दीदी 100 डिग्री सेल्सियस।
1: जोरदार तालियां। सूर्य की रोशनी से हमें कौन सा विटामिन मिलता है?
2: दीदी मैं बताऊं? विटामिन डी।
1: बिल्कुल सही, जोरदार तालियां। और अब अंतिम सवाल देवांश से, आप बताइए कि पौधों को हरा रंग किससे मिलता है?
0: क्लोरोफिल।
1: बिल्कुल सही जवाब, जोरदार तालियां हो जाए। तो बच्चों इसी के साथ खत्म होता है हमारा आज का जीके राउंड। आप सबने बहुत उत्साह के साथ इस कार्यक्रम में भाग लिया और बहुत ही शानदार जवाब दिया। उम्मीद करते हैं कि आज

आपने कुछ नया सीखा होगा। हंसी मस्ती और जानकारी से भरा आज का बाल मंच कार्यक्रम हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जाने से पहले तीन जरूरी बातें बच्चों। सबसे पहली, मेहनत जो आपको सफलता दिलाती है। दूसरी, अच्छे संस्कार और अच्छी आदतें जो आपकी पहचान बनती है। और तीसरी, आपको सीखना कभी बंद नहीं करना है, क्योंकि सीखते रहने वाला ही हमेशा आगे बढ़ता है। इन तीन बातों को अगर आप जीवन में अपनाएंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। इन्हीं बातों के साथ हम आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं। नए विषय, नई बातें, नई सीख के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए जोरदार तालियां हो जाए। ये था हमारा आज का बाल मंच कार्यक्रम और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे दीपांकर मिश्र।

अभी आप सुन रहे थे बाल मंच, जिसे लेकर आई थी मेनका श्रीवास्तव। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं।

0: ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गाने सुहाने।
1: पूर्वांचल का पहला इनोवेशन सेंटर KIPM गीडा।
2: बीटेक पॉलिटेक्निक MBA MCA BBA BCA D-Pharma B-Pharma और M-Pharma में एडमिशन्स शुरू हो गए हैं।
1: 300 कंपनीज में प्लेसमेंट्स, स्कॉलरशिप और इजी फी इंस्टॉलमेंट की सुविधा भी।
2: विजिट KIPM गीडा गोरखपुर।
3: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
4: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
3: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
4: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
3: डायल कीजिए 8700014242।
4: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
5: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
6: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
7: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
6: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट।
7: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
6: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
7: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
6: For details, log on to www.ddindia.com।
0: आइए कार्यक्रम का पहला गीत सुनते हैं फिल्म अभिमान से, जिसे गाया है किशोर कुमार ने। संगीत है SD वर्मन का और गीत के बोल लिखे हैं मजरू सुल्तानपुरी।

ये गीत जो आप सुनने जा रहे हैं वो है फिल्म चुपके चुपके से, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने, संगीत दिया SD बर्मन ने और गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने।

जब दिल ने किसी को याद किया हो, जब कोई धुन दिल में उतर गई हो और कभी किसी को सुनाना हो कोई गीत, तो बस आपका अपना कार्यक्रम हेलो फरमाइश लेकर आ रहा है आपके दिल की आवाज, जहां आपके प्यार भरे संदेश और आपके पसंदीदा गीत बनेंगे किसी की मुस्कान। तो उठाइए फोन, कीजिए हमें कॉल हर शनिवार सुबह 11 बजे से 12 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 0551-220-5386 और आप इस कार्यक्रम को सुन सकते हैं हर रविवार 10:05 पर। हमें रहेगा आपका इंतजार, जहां दिलों की दूरियां गीतों से मिटती हैं।

0: पूर्वांचल का पहला इनोवेशन सेंटर KIPM गीडा।
1: बीटेक पॉलिटेक्निक MBA MCA BBA BCA D-Pharma B-Pharma और M-Pharma में एडमिशन्स शुरू हो गए हैं।
0: 300 कंपनीज में प्लेसमेंट्स, स्कॉलरशिप और इजी फी इंस्टॉलमेंट की सुविधा भी।
1: विजिट KIPM गीडा गोरखपुर।
2: आइए सुनते हैं अगला गीत फिल्म मिली से, जिसे गाया है किशोर कुमार ने, संगीत है SD बर्मन का और गीत के बोल लिखे हैं योगेश ने।

ये गीत आप सुन रहे हैं फिल्म घर से, जिसे गाया है किशोर कुमार ने। आर डी बर्मन का संगीत है और गीत के बोल लिखे हैं गुलजार।

इसी के साथ गाने सुहाने कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। थोड़ी देर में ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है, कुछ ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत।

0: जी हाँ, भौरे गुनगुनाएंगे और खिलेंगी आपके मन की कलियाँ।
1: 1 जुलाई से सुनिए गाते गुनगुनाते कार्यक्रम एक नए अंदाज में।
0: करिए अपने मनपसंद फिल्मी गानों की फरमाइश आकाशवाणी गोरखपुर के फेसबुक पेज पर।
1: 1 जुलाई 2026 को प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के पोस्टर कमेंट बॉक्स में लिखिए
0: गाने के बोल,
1: गीतकार
0: और संगीतकार
1: और अपने चाहने वालों और दोस्तों के नाम,
0: और सुनिए अपने पसंद के गीत आकाशवाणी गोरखपुर से।
1: आपकी फरमाइश हमारे सुरों के साथ, यादें बन जाएंगी खास। गाते
0: गाते गुनगुनाते
1: सुनिए सुबह 10:05 पर।
0: सुनते रहिए आकाशवाणी गोरखपुर।
2: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड TMT सरिया। 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
4: सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे स्वप्निल की आवाज़।

0: जब दिल ने किसी को याद किया हो, जब कोई धुन दिल में उतर गई हो और कभी किसी को सुनाना हो कोई गीत, तो बस आपका अपना कार्यक्रम हेलो फरमाइश लेकर आ रहा है आपके दिल की आवाज, जहां आपके प्यार भरे संदेश और आपके पसंदीदा गीत बनेंगे किसी की मुस्कान। तो उठाइए फोन, कीजिए हमें कॉल हर शनिवार सुबह 11 बजे से 12 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 0551-220-5386 और आप इस कार्यक्रम को सुन सकते हैं हर रविवार 10:05 पर। हमें रहेगा आपका इंतजार, जहां दिलों की दूरियां गीतों से मिटती हैं।
1: सटीक जांच, बेहतर इलाज की पहली पहचान। अब श्री कृष्णा डायग्नोस्टिक सेंटर में 3D MRI, मल्टी स्लाइस CT स्कैन, 4D अल्ट्रासाउंड, डिजिटल एक्सरे, ECG, EEG, इकोकार्डियोग्राफी, TMT और पैथोलॉजी की अत्याधुनिक सुविधाएं। श्री कृष्णा डायग्नोस्टिक सेंटर, गीता वाटिका रोड नियर राप्ती कॉम्प्लेक्स, असुनन, गोरखपुर। पूर्वांचल का पहला इनोवेशन सेंटर KIPM गीडा।
2: BTech पॉलिटेक्निक, MBA, MCA, BBA, BCA, D-Pharma, B-Pharma और M-Pharma में एडमिशन्स शुरू हो गए हैं।
1: 300 कंपनीज में प्लेसमेंट्स, स्कॉलरशिप और इजी फी इंस्टॉलमेंट की सुविधा भी।
2: विजिट KIPM गीता गोरखपुर।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आपने सुना स्वप्निल की आवाज। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे इलाकाई खबरें।

0: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल राजस्थान में हिंदुस्तान की पहली ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स को कौम के नाम वक्फ किया। इस मौके पर एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के अज़्म और मुसलसल कोशिशों के जरिए उसने 21वीं सदी के सबसे बड़े तवानाई के बुहरान पर कामयाबी से काबू पा लिया है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान ने हर सतह पर बरवक्त फैसले किए, उभरते हुए बुहरान का दुरुस्त अंदाजा लगाया, एक मौसर हिकमत अमली बनाई और मुल्की वसायल के मुतवाजन इस्तेमाल को यकीनी बनाया। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि सिफारतकारी और तजवीराती इकदामात के जरिए मुल्क ने इस बुहरान से कामयाबी से निपटा।
1: पश्चिमी एशिया में युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में हाहाकार मचा है, हर देश त्रस्त है। इस युद्ध ने 21वीं सदी के सबसे बड़े ऊर्जा संकट को जन्म दिया। बड़े बड़े देश आज ईंधन की किल्लत से जूझ रहे हैं, लेकिन साथियों 21वीं सदी के सबसे बड़े ऊर्जा संकट पर 21वीं सदी के नए भारत की इच्छा शक्ति और भारत के प्रयास इस संकटों पर भारी पड़े हैं।
0: भारतीय जनता पार्टी के कौमी सदर और राज्यसभा मेंबर पार्लियामेंट नितिन नवीन कल पहली बार दो रोजा दौरे पर लखनऊ पहुंचे। कौमी सदर ने पार्टी हेडक्वार्टर में रियासती एग्जीक्यूटिव अहदेदारों और जिला सुदूर के साथ एक अहम मीटिंग की। वजीर आला योगी आदित्यनाथ, नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक और रियासती बीजेपी सदर और मरकजी वजीर मुमलिकत पंकज चौधरी भी मीटिंग में मौजूद थे। इसके अलावा उन्होंने वजीर आला, नायब वजीर आला, बीजेपी के अरकीन पार्लियामेंट और एमएलसी से भी मुलाकातें की। कल लखनऊ के अपने दौरे के दौरान जनाब नवीन ने हनुमान सेतु मंदिर का दौरा किया, जहां उन्होंने भगवान हनुमान के दरबार में अपना सर झुकाकर मुल्क और रियासत के लोगों की खुशी, अमन और खुशहाली के लिए दुआ की। लखनऊ के अपने दो रोजा दौरे के दौरान कौमी सदर जनाब नितिन नवीन ने रियासती सदर पंकज चौधरी के साथ लखनऊ में बीजेपी उत्तर प्रदेश के साबिक सुदूर की मीटिंग में भी शिरकत की और रियासती जनरल सेक्रेटरी तंजीम श्री धर्मपाल कौमी सदर आज मुख्तलिफ अवामी तकरीबात में शिरकत करेंगे। उत्तर प्रदेश रेवेन्यू काउंसिल ने अवामी अहमियत की अराजी से मुतल्लिक मुकदमात के जल्द और मियारी निपटाने को यकीनी बनाने के लिए एक अहम फैसला किया है। इस फैसले के तहत रिजर्व कैटेगरी की जमीन, सरकारी जमीन, ग्राम सभा की जमीन, नजूल अराजी, खाली होने वाली जायदाद और दुश्मन की जायदाद से मुतल्लिक तमाम मुकदमात की समाअत अब 3 रुकनी खसूसी बेंच करेगी। इस इंतजाम को फौरी तौर पर नाफिज कर दिया गया है। एक रिपोर्ट।
2: राजस्व परिषद के अध्यक्ष अर्चना अग्रवाल ने बताया कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 9 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नई व्यवस्था लागू की गई है। नई व्यवस्था के अनुसार इन मामलों पर विशेष रूप से गठित 3 सदस्यीय पीठ सामूहिक रूप से विचार करेगी। परिषद के अध्यक्ष ने बताया कि

0: राजस्व परिषद ने लखनऊ और प्रयागराज दोनों न्यायालयों के लिए अलग अलग 3 सदस्यीय विशेष पीठों का गठन किया है। इन विशेष पीठों द्वारा प्रत्येक बुधवार को नियमित रूप से इन मामलों की सुनवाई की जाएगी। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
1: उत्तर प्रदेश

0: قومی اہمیت کے مسائل پر بامانی بحث اور فیصلہ سازی پر توجہ دی جائے گی۔ سالانہ شری امرناتھ یاترا اس سال بھی بڑے جوش کے ساتھ شروع ہوئی۔ یاترا کے پہلے دو دنوں کے دوران 32,313 زائرین نے مقدس غار کی زیارت کی۔ دریاسنا سالانہ یاترا کے لیے یاتریوں کا چوتھا جتھا آج صبح جموں کے بھگوتی نگر یاتری نواس سے سخت حفاظتی انتظامات کے درمیان روانہ ہوا۔ ریاست کے کئی اضلاع میں مرطوب گرمی پڑ رہی ہے، جس سے معمولات زندگی درہم برہم ہو گئی ہے۔ ادھر لکھنؤ سمیت کچھ اضلاع میں بارش ہونے سے شدید گرمی سے راحت ملی ہے۔ کانپور اور ٹونڈلا میں کل کی موسلادھار بارش نے عام زندگی کو درہم برہم کر دیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے اگلے 3 دنوں تک ریاست کے بیشتر علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ ہلکی سے درمیانی بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ اسی کے ساتھ آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔ اگلا بلیٹن دوپہر 2 بجے FM پر نشر کیا جائے گا۔
1: میڈیم ویو 330.03 میٹر یعنی 909 KHz اور FM 100.1 MHz پر یہ آکاشوانی کا گورکھپور کیندر ہے۔ अब बहने सुनेंगी अपना कार्यक्रम नारी जगत।
2: सभी प्यारी बहनों को रंजना मिश्रा का प्यार भरा नमस्कार। बहनों, नारी जगत कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सखियों, सप्ताह में 5 दिन हम ये सतरंगी कार्यक्रम लेकर आते हैं। रविवार, सोमवार, मंगलवार, शुक्रवार और शनिवार। समय तो आपको पता ही होगा, दोपहर 1:15 से 1:45 तक। मैनो, हम अपने इस कार्यक्रम में तरह तरह की जानकारी, सामयिक चर्चा, कविता, योजना और गीत संगीत आपको सुनवाते हैं। तो नारी जगत के आज के इस कार्यक्रम में बनी रहिए इस सखी के साथ। पहनो, मानसून शुरू हो गया है और कब बारिश हो जाती है हमको पता ही नहीं चलता। अभी घर में काम कर रहे होते हैं, अचानक से बारिश शुरू हो जाती है और हम दौड़ के छत पे जाते हैं कि भाई क्या भीग रहा है, कपड़े भीग रहे हैं कि जो हमने अनाज सुखाने रखे हैं वो भीग रहा है। तो ये तो हो गई रोज़मर्रा की जो दिक्कतें होती हैं बारिश में वो, लेकिन भाई मानसून की दस्तक जब शुरू हो गई है, ऐसे में बहनों हमें खुद के लिए और परिवार के स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहने की बहुत ज़रूरत है। इस मौसम में परिवार की सुरक्षा के लिए कुछ आसान लेकिन ज़रूरी बातों का ध्यान देना होगा। भाई, घर और उसके आसपास पानी ना जमा होने दें ताकि मच्छर ना बढ़ें। पीने का पानी स्वच्छ और उबला हुआ या फिल्टर का ही पिएं। भोजन जो है हमें हमेशा ही ताज़ा और अच्छी तरह से पका हुआ करना चाहिए। बासी या खुले में रखे हुए भोजन प्रयोग में नहीं लेने चाहिए। और बहनों, अगर बारिश में हम जा रहे हैं कहीं, अचानक से बारिश हो जाती है और हम भीग जाएं, तो तुरंत घर आने पर बालों को सुखा लें और तुरंत से ही सूखे कपड़े पहनें। बिजली कड़कने या तेज़ बारिश के दौरान पेड़ों, बिजली के खंभों और खुले मैदानों से दूर रहें। घर के बिजली के तारों और प्लग की नियमित जांच करते रहें। गीले हाथों से बिजली के उपकरण को बिल्कुल भी ना छुएं। और साथ ही साथ बहनों, हाथों को साबुन से बार बार धोने की आदत अपनाएं ताकि संक्रमण से बचाव हो सके। बुखार, दस्त, खांसी या त्वचा में जब भी संक्रमण हो, इसके लक्षण दिखें तो डॉक्टर से ज़रूर राय लें। और विषम परिस्थितियों में इससे बचने के लिए टॉर्च, दवाइयाँ, पीने का पानी और मोबाइल को हमेशा ही चार्ज करके रखें। और बहनों, इस गर्मी के मौसम में जो है आँखों का भी बहुत ही ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि भाई आँखें हैं अनमोल, जिससे हम पूरे संसार को और उससे जुड़ी घटनाओं को देख पाते हैं। प्रकृति की सुंदरता हो या सतरंगी सपने, ये सभी हमारी आँखों में ही बसते हैं। इसलिए बहनों, हमें इनका ख्याल भी रखना पड़ता है। आँखें इतनी सेंसिटिव होती हैं कि हर मौसम में इसकी खास देखभाल करनी होती है। अक्सर आँखों में पानी आना, जलन, खुजली, लाल होना और ड्राइनेस की समस्या होती है। इसलिए बहनों, आँखों का ख्याल रखने के लिए पर्सनल हाइजीन बनाए रखें। बार बार हाथों से आँखों को ना छुएँ या ना ही बार बार मसलें। तौलिया, रुमाल, कॉस्मेटिक चीज़ें जो हैं वो किसी के साथ भी शेयर ना करें। धूप में

निकलते समय यूवी प्रोटेक्शन वाले चश्मे का प्रयोग करें। आंखों को नुकसान पहुंचाने वाली सनस्क्रीन लोशन लगाने से बचें। इसके लिए बहनों, किसी भी क्रीम या लोशन को खरीदने से पहले उसका स्किन टेस्ट ज़रूर कर लें। अगर ये त्वचा पर कोई असामान्य लक्षण दिखाता है तभी खरीदें। और बहनों, साथ ही साथ घर के अंदर भी ज़रूरी है आंखों की देखभाल। गर्मियों में एसी और पंखे का उपयोग बढ़ जाता है, जिसके कारण हवा में नमी बढ़ जाती है। ऐसे में अक्सर लोगों को अपनी सूजी हुई आंखों की समस्या अनुभव होती है। इससे बचने के लिए लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स डॉक्टर की सलाह पे ज़रूर लें। आंखों के लिए कुछ सामान्य एक्सरसाइज भी बताए जाते हैं, जैसे कि आंखों को चारों तरफ घुमाना, ऊपर नीचे करना, दोनों हाथों के पंजों को, हथेलियों को आपस में रगड़कर आंखों को सेकने के लिए भी बताया जाता है। तो बहनों, हर मौसम में आंखों को हेल्दी बनाए रखने के लिए हमें अपने खान पान में विटामिन सी और ए को भी से जुड़े जो सामान मिलते हैं उसको शामिल करना चाहिए। और बहनों, आंखें अगर हैं हमारे पास तो ये बहुत ही बड़ा उपहार होता है, इसका ख़ास ख्याल रखना पड़ता है। आपने देखा होगा ना कि हमारे मन में बहुत सी बातें, विचारों का मंथन हमेशा चलता रहता है, जो आंखें बयां करती हैं, चाहे चिंता से भरी बोझिल आंखें हों या हो खुशी से चमकती आंखें, हाले दिल बयां कर ही देती हैं।

0: भी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 10% ज्यादा भूकंप रोधक।
3: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास
2: और भरोसा। जानो फिर मानो।
4: पूर्वांचल का पहला इनोवेशन सेंटर KIPM गीडा।
5: बीटेक पॉलिटेक्निक, MBA, MCA, BBA, BCA, D-Pharma, B-Pharma और M-Pharma में एडमिशन शुरू हो गए हैं।
4: 300 कंपनीज में प्लेसमेंट्स, स्कॉलरशिप और इजी फी इंस्टॉलमेंट की सुविधा भी।
5: विजिट KIPM गीडा गोरखपुर।
6: गुनगुना रहे हैं भंवरे, खिल रही है चली कली।
7: जी हाँ, भौरे गुनगुनाएंगे और खिलेंगी आपके मन की कलियाँ।
8: 1 जुलाई से सुनिए गाते गुनगुनाते कार्यक्रम एक नए अंदाज में।
7: करिए अपने मनपसंद फिल्मी गानों की फरमाइश आकाशवाणी गोरखपुर के फेसबुक पेज पर।
8: 1 जुलाई 2026 को प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के पोस्टर कमेंट बॉक्स में लिखिए
7: गाने के बोल,
8: गीतकार
7: और संगीतकार,
8: और अपने चाहने वालों और दोस्तों के नाम,
7: और सुनिए अपने पसंद के गीत आकाशवाणी गोरखपुर से।
8: आपकी फरमाइश हमारे सुरों के साथ, यादें बन जाएंगी खास। गाते
7: गाते
8: गुनगुनाते सुनिए सुबह 10:05 पर।
7: सुनते रहिए आकाशवाणी गोरखपुर।
9: भाई बहनों, इस मौसम में संक्रमण बहुत ही तेज़ी से फैलता है, जैसे सर्दी, खांसी, वायरल फ्लू, डेंगू, मलेरिया जैसे रोग। इनसे बचने के लिए ज़रूरी है ना कि हम अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएं, और इसके लिए ज़रूरी है कि हम ताज़े फल, हरी सब्जियां और पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें। इसके अलावा मैंने इसके पहले भी बताया था कि हाथों को नियमित रूप से साबुन से धोना और संक्रमित लोगों से दूर ही बनाए रखना बेहद ही ज़रूरी है। और बहनों, मौसमी संक्रमण की बात की जाए तो इसके लिए ज़रूरी है कि स्वच्छता का बहुत ही हम ध्यान रखें। बाहर से आने के बाद और कुछ भी खाने से पहले हाथों को साबुन और पानी से कम 10-20 सेकंड के लिए धोएं। भाई ये बात हम तो अच्छी तरह से जानते हैं और हम ये सब करते भी हैं, लेकिन छोटे बच्चे हैं ना, वो थोड़ा आनाकानी करते हैं और इससे बचते हैं, चुपके से जाके कुछ खा लेते हैं, तो उन पर नज़र ज़रूर रखिएगा। दिन भर में पर्याप्त मात्रा में पानी पीना भी ज़रूरी हो जाता है। खांसते या छींकते समय सावधानी बरतें, नाक को रुमाल या टिश्यू से ढकें। और बहनों, अगर गले में खराश या सूजन हो तो हल्के गर्म पानी में नमक डालकर गरारे करें। और भाई इस मौसम में ज़रूरी हो जाता है कि हम जो है वो काढ़ा बनाकर पिएं। इसके लिए बहनों, जब भी हम काढ़ा बनाएं तो थोड़ी सी अदरक और ये तुलसी के पत्ते काली मिर्च के साथ उसे उबाल करके सुबह सुबह जब भी हमें टी टाइम होता है ना, उस टाइम पे हम इसे पिएं, हल्का सा गुड़ डाल दें। इससे जो होता है गले में जो खराश होती है ना, उससे राहत मिलती है। और साथ ही साथ संक्रमित जो कपड़े होते हैं उसको गर्म पानी और डिटर्जेंट से अलग से धोना चाहिए। अगर घर में कोई बीमार है तो उसके कपड़ों को अलग धोएं। मौसमी फल और सब्जियों का सेवन अधिक से अधिक करें। और बहनों, बात इम्यूनिटी की हो रही है तो इसी क्रम में हम आगे बात करेंगे कि बच्चों को इससे हम कैसे इसमें कैसे इनको में बढ़ाएं रोग प्रतिरोधक क्षमता। और भाई अभी हमने बात की मच्छर से बचने के लिए, तो चलिए उसके लिए हम कुछ घरेलू उपाय बताते हैं आपको। आपको याद होगा बहनों, जब हम छोटे थे ना तो दादी नानी लोग तुलसी के पत्ते को पीस कर हाथ और चेहरे पर लगाती थी, इससे मच्छर नहीं काटते थे। तो ये काम आप आज भी कर सकती हैं। कभी कभी नारियल के तेल में नीम का तेल मिलाकर भी लगाया जाता है। और भाई किचन गार्डन तो सबके पास होता है और एक दो पौधे तो हम अपने पास लगा के रखते ही हैं। तो कुछ झाड़ियाँ भी होती हैं जो मच्छर से दूर रखती हैं हमें। और ख़ास करके तुलसी, पुदीना और गेंदे के फूल के जो पौधे होते हैं, और नीम और नींबू, ये जो हैं वो मच्छर को दूर भगा

आते हैं, तो अगर हो सके तो अपने किचन गार्डन में इन्हें ज़रूर लगाइए। और साथ ही साथ बहनों, सूखी नीम की पत्तियों को घर के कोने में जलाकर 5 मिनट के लिए खिड़की दरवाजे बंद कर दें, इससे भी मच्छर कम हो जाते हैं। तो बहनों, इस तरह से छोटी छोटी उपाय करके ना हम मच्छरों से भी बच सकते हैं, साथ ही साथ इनसे होने वाली मलेरिया, चिकनगुनिया और जैसी बीमारियों से भी बच सकते हैं। और बहनों, तो इस तरह से हम छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर हर मौसम को खुद के लिए लवली बना सकते हैं।

और बहनों, इस गीत की तरह ही उम्मीद है कि आपका ये मानसून भी उतना ही लवली होगा। बहनों, बात इम्यूनिटी की हो रही है तो इसी क्रम में आइए अब बात करते हैं बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसे बढ़ाएं। तो भाई, बच्चे हैं, इनको खाना खिलाना भी उतना ही मुश्किल का काम होता है जो और भी काम जैसे बहनों के लिए मुश्किल होते हैं। तो भाई, जब भी उन्हें फल काट के दीजिए तो उसमें भी वो आनाकानी करते हैं। तो इसके लिए बहुत ही अच्छा उपाय है ना बहनों, कि जब हम उन्हें फल दें तो बहुत अच्छे से छील के, काट के, फोक लगा के या सेक लगा के दें तो बड़े चाव से खाते हैं। और उसमें स्वाद बढ़ाने के लिए हम थोड़ा सा उसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला छिड़क दें तो वो बहुत ही चाव से खाएंगे। और इसी तरह से बच्चे जो हैं वो हरी पत्तेदार सब्जियाँ खाने के समय नाक मुँह सिकोड़ते हैं। तो भाई, उनको खिलाना बहुत बड़ा टास्क है। तो इन सभी चीज़ों को ना हम उन्हें सूप की तरह से बना के दे सकते हैं, या अगर वो नूडल्स खाते हैं ना तो उस सूप में हम उन्हें नूडल्स बना के दें तो ये भी वो बहुत ही पसंद से खाएंगे। और इन सब्जियों को हम चाहें तो पराठे पूड़ी में भी मैश करके बना सकते हैं या स्टफ़ पराठे बना सकते हैं। और दाल और अंकुरित अनाज की बात की जाए बहनों, तो ये बहुत ही बड़े प्रोटीन के स्रोत होते हैं। तो इन्हें भी खिलाने के लिए उन्हें हम चाहें तो इसे भी, दाल को हम किसी जैसे फरे के रूप में बना के खिला सकते हैं, या हम लोग घर में भफौरी बनाते हैं ना उस तरह से हम स्टीम में बना करके छोटे छोटे बड़ी टाइप के बना के हम उन्हें टिफ़िन में दे सकते हैं। और भाई, सबसे बड़ा बहनों के लिए जो समस्या का कारण बनता है ना, सुबह का टिफ़िन बनाना। वो सोचती हैं कि आज ये बना के दिए हैं तो अगले दिन बच्चे कहते हैं कि भाई आज तो हम ये नहीं लेके जाने वाले, आज मुझे कुछ बदल के दीजिए। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, उन्हें तरह तरह का हम बना के दे सकते हैं। जैसे चीले के तौर पे हम दे सकते हैं उन्हें बना के, दाल को बस रात में भिगो के रख दीजिए, थोड़े से चावल के साथ सुबह पीस करके उन्हें चीले बना के दे दीजिए, तो ये उसे भी बहुत ही पसंद से खाएंगे। और दूध, पनीर, अंडे और दही में मौजूद कैल्शियम, प्रोटीन ये जो होते हैं बहुत ही ज़रूरी होते हैं बच्चों के लिए। और इसके अच्छे बैक्टीरिया जो होते हैं पाचन और इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। तो इन सब चीज़ों को भी बच्चों को दें। सूखे मेवे और बादाम, अखरोट जैसे हैं, किशमिश, काजू, और कद्दू और सूरजमुखी के जो बीज होते हैं ना, उन्हें भी वो दें। और बहनों, बच्चे जो हैं ना वो खेलते खेलते भूल जाते हैं कि हमें प्यास लगी है, भूख लगी है। तो ये सब ध्यान देना हम माँ लोगों की जिम्मेदारी बनती है। तो अगर बच्चे खेल के आते हैं ना तो उन्हें हम थोड़ा सा, बहुत ही ठंडा नहीं बट थोड़ा सा नॉर्मल पानी में उन्हें हम नींबू की शिकंजी दे सकते हैं, या पन्ना बना के दे सकते हैं, या इस तरह से कुछ भी बना के दीजिए। या दूध अगर वो नहीं पीते हैं तो उन्हें हम शेक बना के दे सकते हैं, लस्सी दे सकते हैं। तो ये सब चीज़ें बच्चे अगर पीते रहेंगे ना तो उनमें पानी की जो है बिल्कुल भी कमी नहीं होगी। जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक्स और बहुत ही ज़्यादा मीठी चीज़ों से बच्चों को दूर रखें। और भाई, मानसून है, बच्चे हैं तो वो तो भीगेंगे ही। आपने देखा होगा ना, जब भी बारिश होती है तो वो कूदते हुए छत पे जाते हैं और कपड़े निकाल के झमाझम बारिश में कूदने लगते हैं, एंजॉय करते हैं। तो भाई, इसका ध्यान रखिए। और अगर छोटे बच्चे हैं ना बहनों, तो उनका भी ध्यान रखिए कि अगर वो बार बार बीमार पड़ते हैं और उनका वजन नहीं बढ़ रहा है तो किसी बाल रोग विशेषज्ञ से मिल

0: बहनों, आपसे प्यारी प्यारी बातों और इस गीत के साथ ही समय हो चला है आपसे विदा लेने का। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे बहुत सारी बातों के साथ। तब तक के लिए आप सभी को रंजना का नमस्कार।
1: बहनें सुन रही थीं अपना कार्यक्रम नारी जगत, ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र।
2: जब दिल ने किसी को याद किया हो, जब कोई धुन दिल में उतर गई हो और कभी किसी को सुनाना हो कोई गीत, तो बस आपका अपना कार्यक्रम हेलो फरमाइश लेकर आ रहा है आपके दिल की आवाज, जहां आपके प्यार भरे संदेश और आपके पसंदीदा गीत बनेंगे किसी की मुस्कान। तो उठाइए फोन, कीजिए हमें कॉल हर शनिवार सुबह 11 बजे से 12 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 0551-220-5386 और आप इस कार्यक्रम को सुन सकते हैं हर रविवार 10:05 पर। हमें रहेगा आपका इंतजार, जहां दिलों की दूरियां गीतों से मिटती हैं।
3: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।
4: स्वच्छता से बदले अपना परिवेश, स्वच्छ जीवन की ओर एक कदम बढ़ाएं।
5: स्वच्छता अपनाएं, स्वास्थ्य का आनंद उठाएं।
4: गंदगी हटाओ, स्वच्छता लाओ, स्वस्थ जीवन जीने का सपना साकार करो।
5: स्वच्छता की आदत, स्वस्थ जीवन की शुरुआत।
6: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
7: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
6: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
7: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
6: डायल कीजिए 8700014242।
7: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
8: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
9: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो, तो इसमें मिलेंगे टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
8: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
9: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
8: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
9: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
8: For details log on to www.ddindia.com।

0: स्वच्छ भारत, सुंदर भारत, स्वच्छता शब्द भर नहीं, सक्रिय सचेत कर्म है।
1: मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। खेती किसानी कार्यक्रम में आज किसान भाई सुनेंगे बातचीत, विषय है कृषि वानिकी पौधे। जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर संतोष कुमार सिंह, बातचीत कर रहे हैं ओम प्रकाश त्रिपाठी।
2: डॉक्टर संतोष कुमार सिंह जी, आप बेलीपार कृषि विज्ञान केंद्र से आए हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपके अपने बैठकी में स्वागत हुआ। डॉक्टर साहब, कृषि वानिकी के बारे में बहुत सुनल जाला, पंच भाई लोग सोचे ले भी कि भाई का चीज है, कैसे के अपनावल जा सकाला और इससे कैसे बढ़िया लाभ मिल सकाला। तो सबसे पहले कृषि वानिकी के ऊपर आप प्रकाश डाली, जो से अपन पंच भाई लोग ये जान सकें कि कृषि वानिकी का प्रयोग कैसे कैल जा और बढ़िया लाभ कैसे लिहल जा।
3: किसान भाई, कृषि वानिकी खेती के साथ वन को उगाया जा और वन से जो है हमको अतिरिक्त आय मिलती है कि जैसे हमारी आय दूनी की जा सके, उसके साथ हम कृषि वानिकी में जैसे हमारा सू बबुल हुआ, इकोलिप्टस हुआ, पॉपुलर हुआ, सागवन हुआ, सीरस हुआ, सेमल हुआ, ये सब हम उगा करके वन हमारा समाप्त हो रहे हैं
2: जी जी।
3: और जो है संख्या बढ़ती जा रही है, देसी आम समाप्त हो रहे हैं, कटहल समाप्त हो रहे हैं, जामुन की संख्या कम हो रही है, तो इसके द्वारा जंगल का क्षेत्रफल कम हो रहा है। तो इसके साथ हम अपने खेती में के साथ अगर हम वन को उपजावें तो अधिक लाभ मिल सकता।
2: कहले का मतलब आपके ही बा कि खेती के साथे साथे पेड़ पालो भी लगावल जा, और पेड़ पालो के अलावा और का का कही सकेला पंच भाई लोग जौन की खेती के संगरी हो सकाला।
3: देखें किसान भाई के ये चाहिए कि वानिकी के साथ हम कृषि वानिकी पद्धत मतलब कृषि के साथ वन लगा सकते हैं। नंबर एक चीज, कृषि वानिकी जो है वानिकी पद्धत मतलब कृषि बागवानी में आम ओम जैसे है, इसके साथ हम सब्जी उत्पादन, फल उत्पादन, गेहूं, धान, जौ उत्पादन कर सकते हैं। तीसरा है पुष्प बागवानी, कृषि एवं बागवानी पद्धत जिसके अंदर गेंदा, गेडुलस, रजनीगंधा, लीली, गुलाब, इन सब का जो है हम जो है खेती कर सकते हैं। चौथा है मत्स्य पालन वानिकी पद्धत, मतलब मत्स्य का जो तालाब बनता है उसके ऊपर हम वानिकी पद्धत अपना सकते हैं। पांचवा है कृषि बागवानी पद्धत, कृषि बागवानी में हम जो है जैसे अमरूद, पपीता, इन सब की खेती हम इसके साथ कर सकते हैं। और इसके बाद गृहवाटिका पद्धत, मतलब गृहवाटिका में जैसे हम ये वन के पौधे लगाए, राजमा, सोया, मेथी, पालक, बैगन, प्याज, आलू, मिर्च, टमाटर, गोभी, ये वन के साथ हम इसको भी लगा सकते हैं। सब्जी बान की पद्धत में भी हम जैसे पॉपुलर का पौधा लगाए, सफेदा लगाए, सागवन लगाए और जो है शीशम लगाए, इसके साथ इन सब्जियों को भी हम उगा सकते हैं।
2: कहले और मतलब युवा कि अगर अपन जो खेती कहल जाता वह खेती में अपन पंच भाई लोग कुल मिला के गेहूं, धान ऐसे ही कुछ उगावल करे लें समय समय पर सीजनली, तो ये जो सीजन में उगावे लें एकरे साथे साथे कवन चीज कही सकल जाला। जैसे यह समय मान लिया जा कि गेहूं के फसल तैयार बा अपने खेते में, बड़ी हो गई या फूटा तबाल निकलता, तो यह समय का ऐसा कौन पेड़ पौधा बा कि जौने के रोपाई कैल जा सकाला, जौने के लगा के अपन लाभ लिहल जा सकाला।
3: देखे किसान भाई, इस समय 2 साल पुरानी टहनी पॉपुलर, जैसे मैंने कहा ना कि गेहूं के साथ पॉपुलर, तो उसकी हम नर्सरी तैयार कर सकते हैं। उसको जो है हम 6 इंच जो है लंबा जो है 6 से 9 इंच तक हम लंबाई में काट करके 2 साल पुरानी टहनी के जो पौधे में लगे रहते हैं उसकी कटिंग करके हम नर्सरी बेड बना करके और उसमें 4-10G डाल करके 1x10 मीटर का बेड बनाएंगे। उस पे जो है हम उस 4-10G या क्लोरोपारीफास 0.1% 1 लीटर पानी में घोल बना करके उसको नम कर दें कि दीमक न लगने पावे, तो उससे क्या है कि फिर हमारा जो है पौध तैयार हो जाएगा। अच्छा। उसी तरह से जैसे सागवन हम तैयार करते हैं तो सागवन के जड़ को, रूट स्टॉक

0: जिसको कहते हैं, उस जड़ को लेकर के उसमें 2-3 इंच की जड़ होती है, ऊपर 1-2 इंच के करीब ऊपर तना होता है। तो जितना जड़ है उसको हम मिट्टी में गोदे पॉलीथीन थैला में भर करके और इसके बाद उसमें कल्ले आने शुरू हो जाएंगे। फिर हम सीजन में जुलाई में उधर जो है इस पौधे का पौधरोपण कर सकते हैं। तीसरी चीज और एक चीज बताना चाह रहा हूं कि हमारे इस तराई क्षेत्र गोरखपुर में जैसे ईंधन के रूप में हम अपना खेती तो करेंगे ही, गेहूं, धान, जौ, चना, मटर, सब्जी की खेती, फल की खेती, इसके साथ साथ हम बबूल, इकोलिप्टस, डांक, सीरस, बिलायती बबूल, जामुन और सेमल ईंधन के रूप में हम अपने चारों तरफ पौध को लगा सकते हैं। चारा के रूप में हम कचनार लगा सकते हैं, काला सीरस लगा सकते हैं, नीम है, सुबबूल है, बेर है, बेल है, लसोड़ है, और इमारती के लिए शीशम, सागवन, नीम, महुआ, कुज्जू और सफेदा हम लगा सकते हैं। इसी में फलदार जैसे हम लगा रहे हैं तो बेल, महुआ, खिरनी, नींबू, बेर, आम, कटहल, जामुन आदि के पौध हम लगा करके अपने आय को बढ़ा सकते हैं।
1: अच्छा, अगर मान लिया जा आप जैसे बतौली है कि अगर खेते के अलावा अपने घरे कोनो वाटिका पंच भाई लोग बनैले बाटे, कुछ जगह पे फूल पत्ती लगावेल है, कुछ साग सब्जी भी उगावेल है, तो वह कैसे यह पद्धति का प्रयोग करें?
0: देखा ये पद्धत में ये प्रयोग करें कि जो हमारे बेकार जमीन पड़ी हुई है उसमें हम 3-3 मीटर 4-4 मीटर पे जैसे जो हो हम अपने पौधों को पूरब से पश्चिम दिशा में लगावें, पूरब से पश्चिम दिशा में, कि उसमें जो है छाया कम लगेगी। उसके बीच में हम जो है सब्जी की खेती कर सकते हैं, फूल गोभी कर सकते हैं, टमाटर लगा सकते हैं, पालक लगा सकते हैं, मूली लगा सकते हैं। इन सब सब्जियों को हम बिना मतलब जो है जैविक समझ लीजिए उस हिसाब से जो है हम सब्जी उत्पादन करके जो है लाभ अधिक से अधिक ले सकते हैं।
1: कहले का मतलब आपके ही बात कि अगर पंच भाई लोग अपने गेहूं, धान या जो सब्जी वाली फसल बाटिन वह कुल के साथे साथे अगर ये कृषि बान की अपना के और ये पेड़ पालो लगावे, ऐसे बहुत बढ़िया फायदा जोन बा हो सकाला। खेते का मेड़ देखा जाला कि बहुत ज्यादा खाली रह जाला। पंच भाई लोग अब तक तनी ये चल गेल बा कि भाई ट्रैक्टर से जुताई होता तो मेड़ कम हो गई हिन, लेकिन फिर भी बहुत चौड़ा चौड़ा मेड़ जो बड़बर खेतीहर बा उनके खेते में पड़ल रहा, ओकर उपयोग कैसे पंच भाई लोग करें?
0: देखें किसान भाई, मेड़ के चारों तरफ 3 मीटर पे इकोलिप्टस के पौध, सागवन के पौध, शीशम के पौध, नीम के पौध लगा करके अधिक से अधिक। आप ये क्यों बताया कि जैसे हमारे इकोलिप्टस का पौधा क्लोन की कई प्रजातियां आ चुकी हैं, 411 713 करीब जो है, इन प्रजाति हमारी जो है 4-5 साल में हमको 3,000 रुपए का प्रति पौध बिक जाता है। जैसे मकान में बल्ली उल्ली लगाने में काम होता है, इसका बहुत डिमांड है, तो ये इकोलिप्टस हम लगा करके 3 महीने जो है 4-5 साल में हम बेच सकते हैं इतने रुपए में। और इसके बाद जैसे सागवन है तो हमारा बाद में आएगा, अब प्रारंभिक अवस्था में हम उसमें खेती करेंगे। इसकी दूरी जो है कम से कम 3 मीटर जो है एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी जो है होनी चाहिए।
1: डॉक्टर साहब, अपने तराई क्षेत्र में देखल जा तो पशुपालन भी पंच भाई लोग खूब करेले और एकरे खातिर चारा के बहुत जरूरत पड़ेले। अगर बागवानी के साथे साथे जो चारा वाली फसल बा ओके उगावल जाता तो पंच भाई लोगन के कौन फसल उगावे के चाहिए और कैसे उगावे के चाहिए?
0: देखें कृषि वानिकी में चारा हेत कटहल, गूलर, सहजन, नीम, करेंज, महुआ और जो है पीपर, बरगद, सुबबूल, शहतूत, ये सब चारा के काम में आते हैं। लेकिन इसके साथ जैसे सुबबूल के साथ अगर हम नेपियर लगा दें 50 सेंटीमीटर लाइन से लाइन की दूरी और 30 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी हम जो है नेपियर का लगा देंगे तो हमें मतलब पौधा और घास दोनों जानवरों को मिलेगा। सीरस और गुनिया घास आती है जो 100 सेंटीमीटर लाइन से लाइन की दूरी, 50 सेंटीमीटर पौध से पौध की दूरी होती। बबूल के साथ पारा घास को हम लगा सकते हैं जो ये हमारा जो है पशुओं के जानवर के लिए 12 महीने हमको चारा उपलब्ध करा सकता है।
1: अच्छा, कुछ ऐसा भी पौध होला जौन की मान लीजिए जौन एक आयु कम दिन होला, कुछ त साले भर होला, कुछ अधिक दिन तक रहला।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। हॉर्मुज जलडमरू मध्य से तरल प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद सरकार ने एलएनजी पर लगी आपातकालीन पाबंदियां हटाई। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम के तहत राज्यों को 25,000 करोड़ रुपए की सहायता जारी की। केंद्र सरकार ने मेटा को इंस्टाग्राम से बच्चों के शोषण से जुड़े विज्ञापन हटाने का आदेश देते हुए 7 दिन के भीतर जवाब मांगा। छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजनबाई का निधन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला। और अब समाचार विस्तार से। सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली हैं। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन किया गया है।
1: इस संशोधन के अंतर्गत उन विशेष आपातकालीन प्रावधानों को हटा दिया गया है जिनके अंतर्गत सरकार को देश में उत्पादित प्राकृतिक गैस और आयातित एलएनजी के आवंटन में प्राथमिकता देने की अनुमति थी। हॉर्मुज जलडमरू मध्य से एलएनजी की खेप में रुकावट आने के बाद इस साल मार्च में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत ये आपातकालीन आदेश जारी किया गया था। इस बीच मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर उन खबरों को भ्रामक और गलत बताया है जिनमें ये दावा किया गया है कि भूटान ने भारत से E20 पेट्रोल आयात करने का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। मंत्रालय ने कहा कि भूटान को E20 पेट्रोल निर्यात करने का कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1 जुलाई से विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण जी रामजी अधिनियम 2025 सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। श्री सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की मुख्य सहायता राशि जारी की। श्री चौहान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वीबीजी रामजी योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा भी की। उन्होंने कहा कि आज जारी की गई पहली किस्त का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि राज्यों के पास पर्याप्त धनराशि हो ताकि मजदूरी का भुगतान 15 दिनों के भीतर किया जा सके। उन्होंने कहा कि मनरेगा को लागू होने में 3 साल से ज्यादा का समय लगा था जबकि विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ 1 दिन में लागू कर दिया गया।
2: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गांव का निर्माण हो जाएगा।
0: श्री चौहान ने कहा कि वीबीजी राम जी योजना के तहत मजदूरी दरों में औसतन लगभग 10% की वृद्धि की गई है। असम के गुवाहाटी में कल से 2 दिवसीय ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक शुरू होगी। गृह मंत्रालय ने कहा कि इस बैठक में ब्रिक्स के सदस्य देशों के मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुख और वरिष्ठ अधिकारी विचार विमर्श करेंगे। इससे मादक पदार्थ

0: नियंत्रण एजेंसियों के समूहों में संस्थागत निरंतरता को सशक्त बनाने और गहन परिचालन सहयोग को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। भारत की अध्यक्षता में कल से केरलम के कोच्चि में 2 दिवसीय ब्रिक्स महिला कार्य समूह की बैठक शुरू होगी। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि ब्रिक्स देशों के अधिकारी महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के क्षेत्रों सहित अन्य क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण से संबंधित मुख्य मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रोबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्रालय के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने कहा है कि प्रधानमंत्री के इंडोनेशिया दौरे में कूटनीतिक बैठकों के साथ साथ सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।
1: प्रधानमंत्री का मुख्य कार्यक्रम जकार्ता में होगा। इसके अलावा वे योग्यकार्ता का भी दौरा करेंगे, जहां वे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल प्रम्बानन मंदिर परिसर जाएंगे। भारत और इंडोनेशिया इस ऐतिहासिक मंदिर परिसर के संरक्षण और संवर्धन के लिए मिलकर काम करने की योजना बना रहे हैं।
0: आकाशवाणी से विशेष बातचीत में इंडोनेशिया में भारतीय राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच संबंधों में मजबूती और आर्थिक जुड़ाव में वृद्धि स्पष्ट रूप से दिखाई देगी।
2: The significance is immense.
1: भारत और इंडोनेशिया का संबंध दो प्राचीन सभ्यताओं की मजबूत साझेदारी का प्रतीक है। दोनों देशों के रिश्ते सदियों पुराने हैं और आज भी कई क्षेत्रों में लगातार मजबूत हो रहे हैं। मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग के नए अवसर खुलेंगे। इससे द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे, साथ ही व्यापार, निवेश और आर्थिक साझेदारी को भी नई गति मिलेगी।
2: Greater economic engagement between these two large countries.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भारत को एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बताया है। श्री अल्बनीज ने कहा कि हमारे संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर शुल्क वाले विज्ञापनों में बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री के प्रसार को लेकर मेटा को कड़ी चेतावनी जारी की है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सरकार ने इंस्टाग्राम को ऐसी विषय वस्तु को बढ़ावा देने और इसकी पहुंच को सुगम बनाने वाले सभी विज्ञापनों और सामग्री को बंद करने का आदेश दिया है। एक रिपोर्ट।
3: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा से 7 दिनों के भीतर विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा है। सरकार इस बात की समीक्षा कर रही है कि क्या प्लेटफॉर्म ने भारत की मध्यस्थ सुरक्षा दिशा निर्देशों का अनुपालन किया है। भारत में डिजिटल कानूनों के अंतर्गत अश्लील सामग्री और बाल यौन शोषण सामग्री का वितरण एक अपराध है। इससे पहले मंत्रालय ने उन रिपोर्टों का संज्ञान लिया था जिनमें कहा गया था कि इंस्टाग्राम पर कुछ आपत्तिजनक सामग्री प्रदर्शित की जा रही है जो बाल यौन शोषण को बढ़ावा देती है और अधिकारियों को मेटा से जवाब मांगने के निर्देश जारी किए थे। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह कल से जिनेवा में एआई गवर्नेंस पर संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक संवाद में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। 2 दिवसीय वैश्विक एआई संवाद में एआई पर स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी जो एआई की क्षमताओं, उभरते अवसरों और जोखिमों का पहला स्वतंत्र वैज्ञानिक मूल्यांकन प्रदान करती है। भारत स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। ये सत्र संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन द्वारा 6 से 8 जुलाई तक आयोजित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण

0: से सम्मानित तीजन बाई का निधन हो गया है। वे लंबे समय से बीमार थीं। रायपुर के एम्स में उनका इलाज चल रहा था। आज सुबह लगभग 3:15 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। डॉक्टर तीजन बाई का अंतिम संस्कार आज शाम उनके पैतृक गांव दुर्ग जिले के गनियारी में राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा।
1: तीजन बाई का जन्म 24 अप्रैल 1956 को छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के गनियारी गांव में एक साधारण परिवार में हुआ था। बचपन से ही उन्हें महाभारत की कथाएं सुनने और गाने का शौक था। सामाजिक विरोध और आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने अपने जुनून को नहीं छोड़ा। तीजन बाई ने अपनी सशक्त आवाज, प्रभावशाली अभिनय और अनोखी प्रस्तुति शैली से पंडवानी को देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक नई पहचान दिलाई। महाभारत की कथाओं को मंच पर जीवंत करने की उनकी कला ने उन्हें भारतीय लोक संस्कृति की सबसे प्रतिष्ठित कलाकारों में शामिल किया।
2: दोनों जने मिलकर सुनो कि मैं कुरुक्षेत्र मैदान में मैं भूल के शस्त्र नहीं चलाऊं।
3: अच्छा, जे जान पड़े तो ले गो, नहीं तो मोला छोड़ दे भैया, सेना ले ले चला। सावन में
1: विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: राष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन पर दुख व्यक्त किया है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रामेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने डॉक्टर तीजन बाई के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच कल बातचीत हुई। रूस के राष्ट्रपति के सहयोगी यूरी उशाकोव ने क्रेमलिन में बताया कि श्री पुतिन ने राष्ट्रपति ट्रंप को अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस की 250वीं वर्षगांठ पर बधाई दी। बातचीत के दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने श्री ट्रंप को यूक्रेन युद्ध की स्थिति के बारे में जानकारी दी। अमेरिका ने कल राष्ट्रव्यापी समारोह के साथ अपनी स्वाधीनता की 250वीं वर्षगांठ मनाई। मौसम संबंधी बाधा के बाद वॉशिंगटन में आयोजित मुख्य कार्यक्रम नेशनल मॉल में शुरू हुआ। राष्ट्रपति ट्रंप ने राष्ट्र के इतिहास में इस वर्षगांठ को एक ऐतिहासिक क्षण बताया। मौसम विभाग ने आज गुजरात, कच्छ, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर, गुजरात, हरियाणा और पंजाब के बाकी हिस्सों और राजस्थान के कुछ और इलाकों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और उत्तराखंड में तेज से बहुत तेज वर्षा का अनुमान जताया है। विभाग ने कहा है कि अगले 2-3 दिनों में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और चंडीगढ़ में छिटपुट बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरलम, माहे, मराठवाड़, देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों, उत्तरी आंतरिक कर्नाटका और तेलंगाना में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने दिल्ली में आज बादल छाए रहने और मध्यम वर्षा का अनुमान जताया है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: महाराष्ट्र में तेज बारिश के कारण कई जगहों पर जल भराव हो गया है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम लॉर्ड्स में इंग्लैंड का मुकाबला होगा ऑस्ट्रेलिया से। दोनों टीमें अपराजित रहते हुए फाइनल में पहुंची हैं। ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को हराया और इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। होर्मुज जलडमरू मध्य से तरल प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद सरकार ने एलएनजी पर लगी आपातकालीन पाबंदियां हटाई। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम के तहत राज्यों को 25,000 करोड़ रुपए की सहायता जारी की। केंद्र सरकार ने मेटा को इंस्टाग्राम से बच्चों के शोषण से जुड़े विज्ञापन हटाने का आदेश देते हुए 7 दिन के भीतर

0: आप मांगा। छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई का निधन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। और आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का होगा मुकाबला। और इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव
2: 330.03 मीटर यानी 909 किलो हर्ट्ज और FM 100.1 मेगा हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे नेपाली कार्यक्रम।

सुनोस् एक सूचना। आगामी 8 जुलाई 2026 को बुधबार साँझ 5:05 स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रत्यक्ष फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ जीवन प्रसारण गरिनेछ। यसपल्ट प्रसूति तथा स्त्री रोग एवं प्रजनन विशेषज्ञ डाक्टर ईशा शर्मा आकाशवाणी खरसाङको स्टुडियोमा

मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलो हर्ट्ज और एफएम 100.1 मेगा हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 4 बजे हैं। हमारी यह सभा यहीं समाप्त होती है। विविध भारती के कार्यक्रम जारी।

0: रहेंगे। हमारी शाम 5 बजे की सभा के कार्यक्रमों के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।
1: उजाले उनकी यादों के।

0: श्रोताओं नमस्कार, उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। फिल्मी पर्दे पर अनगिनत किरदार नजर आते हैं, जैसे हम याद रखते हैं हीरो को, वैसे ही विलेन को भी नहीं भूल पाते हैं। एक ऐसे ही कलाकार सदाशिव अमरापुरकर, जिन्होंने पर्दे पर विलेन का किरदार निभाकर हमारे दिल में पैदा किया एक खौफ, और दूसरी ओर अपनी कॉमिक अंदाज से ठहाका लगाने पर किया मजबूर। पर फिल्मी पर्दे से दूर कैसा था उनका व्यक्तित्व? पर्दे पर विलेन बनते सदाशिव अमरापुरकर असल जिंदगी में थे कैसे? उनका ये व्यक्तित्व हमारे सामने लाई हैं उनकी बेटी रीमा अमरापुरकर। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में इन दिनों जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की यादों के उजाले हमारे साथ बांट रही हैं उनकी सुपुत्री रीमा अमरापुरकर। आपसे बातचीत कर रहे हैं यूनुस खान। आइए सुनते हैं तीसरी कड़ी।
1: वापस वहां चलते हैं जहां अर्धसत्य जो है वो हिट हो चुकी है। रीमा जी, किस तरह की फिल्में उसके बाद की आती हैं सदाशिव जी की, और उसके बाद जो बड़ा माइलस्टोन है वहां तक आएंगे इस बातचीत में?
2: जैसा मैंने कहा कि अर्धसत्य के बाद एक हफ्ते में पापा ने 200 फिल्में साइन की थी,
1: जो 8-10 साल तक चलता रहा मामला।
2: 8-10 साल तक वो मामला चलता रहा। और बात ये थी कि उस समय द रीजन इतनी सारी फिल्में उन्होंने एक साथ साइन कर ली, क्योंकि मतलब वही बताते हैं ये मजाक में कि वो कहते थे मुझे उस समय बीआर चोपड़ा और यश चोपड़ा में क्या फर्क है ये भी नहीं पता था। तो कौन सा डायरेक्टर सबसे अच्छा है, क्योंकि उनका जैसा मैंने कहा कि उनकी जिंदगी पूरी थिएटर थी, तो फिल्म से रिलेटेड ऐसे उनका स्टडी नहीं था, तो इसलिए उन्होंने जो फिल्म आई वो करते गए, राइट। तो उस समय कमर्शियल उन्होंने विलन के रोल काफी किए, क्योंकि अपने इंडस्ट्री का वो एक
1: टैग लग जाता है
2: कि एक तरह का अगर काम कोई बंदा अच्छा कर रहा है तो उसे उसी तरह के सारे काम मिलते हैं, उसका पोटेंशियल एक्सप्लोर करना ये वाली जो बात है ये नहीं होती थी उस समय, तो बिल्कुल ही नहीं होती थी, क्योंकि उस समय एक फिल्म 2-2, 3-3 साल तक चलती थी, उसका शूटिंग भी चलता था और रिलीज के बाद भी वो उतना चलती थी। इसलिए जो चेंज होता था, ट्रेंड जो चेंज आजकल इतनी फटाफट हो जाता है, वैसा उस वक्त नहीं होता था। 8-10-12 साल तक लोग वही करते थे जो करते आ रहे हैं। फिर एक पॉइंट ऐसा आया जब पापा को लगा यार अभी बहुत हो गया ना, बहुत मैंने विलनी के काम किए, तो इसलिए उन्होंने थोड़ा थोड़ा कम कर दिया था। पर फिर आया मौका उन्हें सड़क करने का, जो विच इज अगेन अ लैंडमार्क फिल्म, उनमें जो उनका महारानी का किरदार है, उस तरह के किरदार काफी लोगों ने करने की बाद में कोशिश की, पर मुझे नहीं लगता, मतलब मे बी ये मेरा बायस होगा पता नहीं, पर मुझे नहीं लगता आज तक कोई उस लेवल तक वो निभा पाए हैं। ऑफ कोर्स इसमें भट्ट साहब का काफी बड़ा योगदान है कि उन्होंने सोचा कि ये कैरेक्टर ऐसा हो सकता है, और फिर उन्होंने सिर्फ सोचा नहीं, उन्होंने ही गेव द फ्रीडम, तुम्हें ये कैसा दिख रहा है वैसे तुम करो। तो उसमें एक साड़ी वाला सीन है जो पापा की आइडिया थी कि अगर ये तृतीय पंथी है तो साड़ी में तो एक सीन चाहिए ही चाहिए, विदाउट साड़ी तो नहीं हो सकता। तो इस तरह से उन्होंने वो किया था।
1: यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात आती है कि ये रोल जब उनके पास आया तो क्या कोई पसोपेश रहा या सेकंड थॉट रहा कि ये लीक से एकदम हटके है, इसको करना है नहीं करना है?
2: बिल्कुल नहीं, इट वॉज अ चैलेंज। जैसा मैंने कहा कि अगर कुछ नया है, कुछ चैलेंजिंग है, तो वो हमेशा ही वॉज ओपन फॉर इट। तो और भट्ट साहब के साथ उन्होंने उससे पहले काम नहीं किया था, और भट्ट साहब वॉज अ बिग नेम एट दैट टाइम, राइट। तो उनके साथ काम करना इटसेल्फ एक बड़ी बात थी, और वो हेजिटेंट बिल्कुल नहीं थे। वो इसलिए कि जब वो कॉलेज में प्ले किया करते थे तब उन्होंने एक प्ले किया था बटाला दिली ओसरी, ऐसा उसका नाम था, और उसमें उन्होंने इस तरह का एक कैरेक्टर प्ले किया हुआ था जो थोड़ा सा ऐसा फेमिनिन एंगल वाला कैरेक्टर रहा, और वो उन्होंने बखूबी निभाया था। उसका भी एक किस्सा है, वो मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन इसलिए वो हेजिटेंट बिल्कुल नहीं थे। उन्हें ये पता था कि मैं जैसा दिखता हूं

0: मैं सुंदर तो नहीं दिख सकता। तो अभी मैं अगर तृतीयपंथी होने वाला हूं या तृतीयपंथी की एक्टिंग करने वाला हूं तो उसमें मैं क्या अलग कर सकता हूं? बिकॉज हीरो हीरोइन फिल्म में होते ही है, प्यार होता है, मतलब गर्ल मीट्स बॉय, बॉय मीट्स गर्ल, दे फॉल इन लव, फिर एक विलन होता है, वो विलन कुछ अलग लाता है तभी जाके फिल्म अलग बनती है।
1: बिल्कुल, वो जो कॉन्फ्लिक्ट है।
0: एग्जैक्टली, वरना विलन ना हो तो हीरो का काम ही नहीं है ना फिल्म में, इसलिए ये बहुत जरूरी था। और जब भट्ट साहब ने कहा कि बिकॉज ये एक रेड लाइट एरिया की स्टोरी है इसलिए हम इसमें तृतीयपंथी रखते हैं,
1: थर्ड जेंडर
0: जो है, तो फिर वो उस कैरेक्टर पे काम करने लगे। हालांकि पापा कहते थे कि मैं सुंदर तो किसी भी एंगल से नहीं दिख सकता बिकॉज उनका रूप ही वैसा नहीं था, लेकिन उन्होंने जिस तरह से वो बाल बनाए, मेकअप किया, जिस तरह से एक्टिंग करी, अगर आप देखोगे तो ये आप भूल जाओ कि वो एक पुरुष है। अगर ये आप साइड में रखते हो तो आपको लगेगा ये एक्सप्रेशंस बिल्कुल औरतों वाले आए हैं। कभी अगर आप देखो तो वो किसकी उन्होंने एक्टिंग की है वो तो मैं जानती हूं, मैं यहां नहीं बताऊंगी लेकिन उनके लिए ये नया नहीं था, वो पहले ये कर चुके थे।
1: यहां गाना सुनते हैं।

0: अब आते हैं उस किस्से की तरफ जब उन्होंने भटाला दिली ओसरी ये जो प्ले था इसमें किंचित गंधर्व मराठी में ऐसे रोल्स को कहा जाता है वो जब किया था हालांकि मेरे दादाजी का बिल्कुल विरोध था पापा जो प्लेज वगैरह करते थे बिकॉज जैसे मैंने कहा वो एक बिजनेसमैन थे और अहमदनगर वैसे ही बहुत पुरुष सत्ताक जिसे हम कहते हैं पेट्रियार्कल शहर है आज भी है तो बेटा कुछ नहीं कमा रहा है बहू पैसे कमा रही है बेटा नाटक वगैरह करता है इससे थोड़ी ना घर चलेगा ये जो सब संकल्पनाएं हमारे समाज में थी उस वक्त वो बहुत स्ट्रांगली हमारे घर में भी थी और इसलिए वो कभी जाते नहीं थे इनका कुछ नाटक का प्रयोग हो या कुछ हो शो हो तो बिल्कुल नहीं जाते थे लेकिन सब लोग शहर में कहते थे अरे वाह वाह वाह तुम्हारा बेटा क्या अच्छा काम करता है ये करता है वो करता है तो उन्होंने सोचा चलो आज मैं चलता हूँ देखता हूँ दोस्तों को लेके जाता हूँ इनका प्ले देखने और वो गए वो प्ले देखने और उसमें पापा ने ये किंचित गंधर्व जो फेमिनिन कैरेक्टर था वैसा रोल किया हुआ था ये तो मतलब अपमान हो गया पापा का कि मेरा बेटा इस तरह से काम कर रहा है तो वो घर पे आए और फिर वो रुके रहे हमारी जो हवेली है उसके गेट में फर्स्ट फ्लोर की गैलरी आती है ऐसे तो वो रुके रहे वहां पर और जैसे ही पापा रात में आए घर पे उन्होंने ऊपर से एक चप्पल दे फेंकी
1: ओहो
0: और कहा कि मराठी में नाचा बोलते हैं उसको कि थोड़ा सा यू नो ऐसे हिंदी में क्या कहा जाता है मुझे पता नहीं है पर थोड़ा सा फेमिनिन इस तरह से तो नाचा ची काम कराए तुला इस तरह के काम करोगे तुम हाँ तो खबरदार ऐसा फिर से काम किया तो वगैरह वगैरह वगैरह तो इसलिए आई थिंक जब सड़क फिल्म मिली तब पापा ने बताया नहीं होगा पर तब तक काफी पानी बह चुका था लॉर्ड ऑफ वाटर अंडर द ब्रिज दादाजी को भी समझ में आ गया था कि चलो एक्टिंग है चलो पैसे तो कमा रहा है तो चल रहा है लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं तो जब सड़क आई तब पापा को लगा था कि शायद फिर से एक चप्पल खानी पड़ेगी
1: कि एक बार फिर से वो जनाना रोल
0: जनाना रोल आया है तो फिर से एक चप्पल खानी पड़ेगी लेकिन तब तक दादाजी भी काफी समझ चुके थे कि अभी ये तो जो भी कर रहा है वो बहुत बड़े पैमाने पे कर रहा है और घर में जो विरोध था उनकी एक्टिंग को लेकर वो काफी सेटल हो गया था और मुझे याद है दादाजी ऐसे छोटे छोटे जो आर्टिकल्स आते थे न्यूज़पेपर में छोटे से छोटा आर्टिकल भी वो ऐसे काट के भेजते थे बाय पोस्ट हमें बंबई में तो उनका ध्यान पूरा था
1: कहाँ क्या चल रहा
0: है कहाँ क्या चल रहा है मेरा बेटा क्या कर रहा है बहू क्या कर रही है पोतिया क्या कर रही है ये सब उनका ध्यान था बिकॉज ही वॉज द हेड ऑफ द फैमिली लेकिन उन्होंने वो ये दे रखी थी कि चलो ठीक है अभी करो तुम्हें यही करना है तो करो
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल और वो काफी सराहा गया महारानी वाला जो रोल है उसकी
0: बहुत,
1: आज
0: बहुत
1: तक उसकी रीलें चलती हैं और जो उनकी एक्टिंग है वो आज तक वो संवाद याद किए जाते हैं जो वहां उन्होंने किए थे लेकिन इससे पहले हुकूमत की बात करनी जरूरी है
0: ओ यस ऑफ कोर्स हुकूमत है तेरी मेहरबानियां है पुराना मंदिर है ये काफी सारी फिल्में हैं जो
1: 80s वाला दौर
0: हाँ 80s वाला पूरा 83 से आगे

0: था पूरा दौर। सो हुकूमत की बात करें तो हुकूमत वॉज अ लैंडमार्क फिल्म, मतलब ऐसे कह सकते हैं कि उस समय धर्म जी का वो कमबैक था हुकूमत के साथ।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और पापा विलन और धर्म जी हीरो,

0: पापा और मिथुन दा के या तो पापा राजस्थान में शूटिंग कर रहे हैं या तो ऊटी में शूटिंग कर रहे हैं। तो हुकूमत वॉज अ फिल्म लाइक दैट कि उस समय मुझे याद है कि तब मैं थोड़ा थोड़ा समझने लगी थी कि बुरा क्या होता है अच्छा क्या होता है। हाँ, और उसमें एक सीन है जहां पर वो धर्मेंद्र की माँ होती है शायद, अभी मैं भूल चुकी हूं वो रेफरेंस, लेकिन उनके हाथ काट के पापा उसे टोंटी टोंटी ऐसा बोलते हैं कि हाथ कटी हुई इस तरह से। और मैं लगभग 8-9 साल की रही होंगी तब, और उस समय टीवी पे फिल्में नहीं आती थी, केबल भी नहीं था, तो हम लोग थिएटर में जाकर देखते थे। तो थिएटर में जाकर देखते थे और उस बड़े पर्दे पर जब मैंने देखा कि पापा उस बुढ़िया को टोंटी टोंटी बोल रहे हैं, तो मुझे इतना गुस्सा आया था उस वक्त कि मैं घर पे जाकर बाद में 2 दिन तक मैंने पापा से बात नहीं की थी। तो पापा ने कहा क्या हुआ क्या ये वो। तो फिर अल्टीमेटली जब मैंने बात करी तब मैंने कहा बहुत अच्छा हुआ कि वो हीरो ने आपको ना मुंह में ऐसी बंदूक रख के गोली मारी। तो बोले क्यों, तो आप उस बुढ़िया को टोंडी टोंडी बोल रहे थे। तो वो उम्र भी ऐसी थी कि हम सब कुछ सच मानते थे, और उन्होंने भी कभी ये एफर्ट्स नहीं लिए कि मतलब उनको लगता था ये जो आपका इनोसेंस है ये इस तरह से बरकरार रहे तो बेहतर है। इस तरह से हुकूमत की याद तो मेरी ये है। और हुकूमत 50 हफ्ते चली थी, गोल्डन जुबली थी, तो पूरा साल भर थिएटरों में
1: और बहुत खूंखार रोल था वो
0: बहुत
1: उनका।
0: ही ज्यादा। काला नाग, काला नाग राइट,
1: हाँ
0: बीबीडीएन या काला नाग ऐसा ही कुछ रोल
1: हाँ,
0: था।
1: और वो डायलॉग भी बड़ा मशहूर है।
0: नाग हूं मैं नाग, काला नाग, सामने आ जाए तो अपने बाप को भी डस लो। आई विल नेवर फॉरगेट। ये बहुत ही मतलब वो कुछ लैंडमार्क डायलॉग्स हम जिसे कहते हैं ना,
1: हाँ बिल्कुल।
0: वो जैसे सड़क का भी एक डायलॉग था। और ये डायलॉग्स मुझे याद है क्योंकि हम लोग जब दोस्त लोग बैठते थे तो हम लोग हंसी मजाक में ये डायलॉग्स बोलते थे। हाँ,
1: अच्छा।
0: और दे यूज टू एक्सपेक्ट कि रीमा तुम बोलो ना पापा का एक
1: अरे
0: डायलॉग। तो
1: गजब।
0: बहुत मजा आता था। तो हुकूमत के कुछ डायलॉग्स थे, तो यही है वो चीटी जिसने अपने नाखूनों के दम पे हमारी हुकूमत को कुरदने की जरूरत की थी।
1: बाप
0: तो इस तरह से डायलॉग्स काफी सारे, और उस समय डायलॉग्स की ऑडियो टेप्स आती थी और लोग बाकायदा वो सुन के बाय हार्ट करते थे फिल्में। बिकॉज जब तक आप थिएटर नहीं जाते थे आप फिल्म देख नहीं पाते थे, तो अगर नहीं देख पाते हो तो सुनते थे लोग फिल्में। तो ऐसी तो काफी सारी फिल्मों के डायलॉग्स और आवाज कलाकारों की उस वजह से बहुत ज्यादा फेमस और जहन में है लोगों के।
1: बिल्कुल। उस दौर की दो फिल्मों का जिक्र करते हुए आगे बढ़ते हैं। एक तो पुराना मंदिर, क्योंकि वो उस स्टाइल की फिल्म थी भूतिया फिल्मों के दौर की, जिसमें वो एक एलिमेंट बनकर आते
0: हाँ
1: हैं जो
0: हाँ
1: कि एक विलेनिश रोल
0: रोल
1: होता है,
0: है।
1: खतरनाक
0: हाँ,
1: वाला, और उनकी आंखों में वो डरावना
0: ओ मैं वो
1: मामला।
0: फिल्म आज तक नहीं देख पाई। मैं बताऊँ क्यों? क्योंकि उसमें उनका चेहरा ऐसा आधा जला हुआ है,
1: बिल्कुल।
0: मैं आज तक इमेजिन ही नहीं कर सकती। मतलब जब वो फिल्म रिलीज हुई थी तब मैं बहुत छोटी थी, तो मैंने वो फिल्म प्रैक्टिकली आंखों पे हाथ रखते हुए देखी हुई है,
1: सिर्फ सुना है।
0: सिर्फ सुनी है वो फिल्म, और मैं आज तक हिम्मत नहीं जुटा पाई हूं वो फिल्म देखने की।
1: उस दौर की एक और फिल्म है विधु विनोद चोपड़ा की खामोश,
0: ओ
1: क्योंकि वो एक लैंडमार्क मूवी है,
0: करेक्ट
1: वहां से
0: करेक्ट।
1: वो पूरी यात्रा जो है वो आगे
0: हाँ
1: बढ़ती है।
0: हाँ
1: तो उसका हमने सोचा कि जिक्र करते हुए आगे बढ़े, लेकिन यहां अमिताभ बच्चन से उनका एक तूफानी सामना हुआ
0: करेक्ट।
1: आखिरी
0: आखिरी
1: रास्ता
0: रास्ता
1: फिल्म में।
0: में
1: वो भी बड़ा खतरनाक रोल था,
0: बहुत ही बहुत ही। और उस
1: बहुत ही
0: समय
1: डरावना, और उससे लोगों की जो तारीफ है वो नफरत की शक्ल में उनको कितनी मिली।
0: नफरत तो लोगों ने की, बहुत ज्यादा नफरत की, लेकिन उस नफरत में प्यार ही छुपा हुआ
1: ऑफ
0: था
1: कोर्स,
0: कलाकार
1: बिल्कुल।
0: के प्रति, जो प्यार था वो। अगेन अमित जी का वो कमबैक था। आखिरी रास्ता जब आई थी, उनका कूली का एक्सीडेंट होने के बाद उनकी वो पहली कुछ फिल्मों में से वो फिल्म थी और पहली सुपर डुपर हिट फिल्म हुई थी। तो उस समय अमित जी एक फेनोमेना थे राइट। सब लोगों को ऐसा रहा आप अमित जी के साथ काम कर रहे हो, अमित जी के साथ काम कर रहे हो ऐसे। और पापा बहुत कूल हुआ करते थे, मतलब हाँ ठीक है ओके ऐसे। मतलब ये जो एक बात है ये उनमें थी कि सामने बैठा हुआ कलाकार कितना फेमस है या नहीं है इससे उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। मुझे क्या करना है, उसमें वो रहते थे।
1: इसीलिए उस

0: में उनकी एक सशक्त मौजूदगी है, अमिताभ
1: एग्जैक्टली
0: बच्चन के सामने
1: सामने.
0: विलेन, और पहले जो लोग विलेन करते रहे थे जिन्हें कहा जा सकता है कि फिल्म इंडस्ट्री के उस समय के दिग्गज लोग, उनके अलावा सदा शिवजी आते हैं और वो अपनी पूरी छाप छोड़ते हैं।
1: पूरी
0: वो
1: तरह.
0: जिस तरह से वो नफरत हासिल करते हैं खतरनाक विलेन बन के, वो उसमें पूरा नजर आता है।
1: पूरा पूरा इस दैट इज अगेन बिकॉज जैसा मैंने कहा वो भोला साम जो मैं कहते आ रही हूं वो वैसे ही थे. वो आप मस्त रहते थे. उन्हें क्या करना है, मुझे क्या करना है, मुझे अभी कैसे करना है,
0: अपना फर्ज निभाओ।
1: अपना फर्ज निभाओ, उसमें वो रहते थे. तो इसलिए कोई भी हो सामने, धर्म जी हो, हालांकि धर्म जी या अमित जी, धर्म जी तो पापा बचपन से उनका काम देखते आ रहे थे, राइट? तो
0: बिल्कुल।
1: प्रेशर तो बनता है इज व्हाट आई थिंक. लेकिन फिर भी बिकॉज उनको लगता था मैं मेरा काम है, मैं मेरा काम करूंगा, मैं हट जाऊंगा, खत्म की बात. और जो आप नफरत की बात करते हो तो नफरत से ज्यादा डर, बिकॉज मैं छोटी थी उस वक्त और मेरे दोस्त भी सब मेरी उम्र के ऑफ कोर्स, तो नफरत इतनी नहीं लेकिन डर बहुत लगता था.
0: बिल्कुल।
1: तो मेरी स्कूल के बच्चे या हमारी बिल्डिंग में भी जो बच्चे रहते थे वो पापा अगर घर पे हो तो वो घर के अंदर ही नहीं आते थे, क्योंकि उनको लगता था अरे ये बहुत बड़ा विलन है, ये हम इसके सामने नहीं जा सकते.
0: अच्छा, स्कूल
1: तो
0: में ऐसा होता था कि सदाशिव अमरापुरकर की बेटी हैं तो थोड़ा डिफरेंट है।
1: लकीली नहीं हुआ वैसा, बिकॉज जैसा मैंने कहा कि हमारे घर पे जो माहौल था वो काफी मिडिल क्लास ब्राह्मण फैमिलीज में जैसा होता है वैसा ही था. तो स्कूल में जाओ, अटेंडेंस पूरा रखो, होमवर्क करो, ये सब वैसा ही था. और स्कूल में ऑफ कोर्स सब लोग मुझे जानते थे बिकॉज मैं सदाशिव अमरापुरकर की बेटी थी, और मैं बहुत कम लोगों को जानती थी बिकॉज मैं वैसे बहुत इंट्रोवर्ट थी उस वक्त. अब मैं जितनी
0: अच्छा।
1: बात करती हूँ उतनी उस वक्त नहीं करती थी. पर मैं बहुत लकी हूँ ये मैं कह सकती हूँ कि उस वक्त जो मेरे दोस्त बने वो आज तक मेरे दोस्त है. और वो जो सही में रीमा इंसान क्या है उसके साथ वो दोस्त है. टीचर्स को ऐसे लगता था जैसे अभी स्कूल में कुछ बन रहा है, बिल्डिंग बन रही है, उसके लिए डोनेशन चाहिए, तो रीमा तुम्हारे पापा तो देंगे ही ना डोनेशन, ऐसा ऐसा हुआ करता था. पर उसके अलावा वैसे अलग ट्रीटमेंट किसी ने दी नहीं. हमारी टीचर्स भी बहुत अच्छी थी, वो ये जानती थी कि हाँ ये पैम्पर्ड अपने घर पर होगी लेकिन यहाँ पर शी हैज टू परफॉर्म एज अ स्टूडेंट. तो उस तरह से स्कूल की ओर से ऐसा नहीं हुआ. लेकिन जब हम कहीं बाहर जाते थे, किसी शादी में जाते थे या कोई इवेंट में जाते थे, तो एक सेपरेट आइडेंटिटी ये हमेशा होती थी, पापा साथ में हो या ना हो. ये सदाशिव जी की बेटी, ये जो है ये आज तक नहीं छूटा, ये हमेशा रहता था. और ये बहुत ही मजे वाली बात थी क्योंकि कभी कभी ऐसे होता था जब आप छोटे होते हो तो आप कुछ चीजों की अपेक्षा करने लगते हो कि अभी मैं वहां जाऊंगी वो कहेंगे सदाशिव जी की बेटी और फिर उनका बर्ताव इस तरह से बदलेगा, ये आप एक्सपेक्ट करते हो.
0: ओहो, करेक्ट।
1: तो अगर आप कहीं जाते हो, जैसे हम अहमदनगर जाते थे कभी और उनके जो बचपन के दोस्त है उनके घर पे जाते थे, तो वहां पर तो ये रीमा तात्याची मुलगी इतना ही था ना. इट डिडंट मैटर वेदर ही वॉज सदाशिव अमरापुरकर और नॉट. तो उस समय मुझे ना थोड़ा सा ऐसा लॉस्ट लगता था कि अरे ऐसे कैसे इन्होंने बताया अभी मैं पापा की बेटी हूं फिर भी ये लोग तो मुझसे नॉर्मली बात कर रहे हैं. तो ये कभी कभी होता था. पर अभी जैसे उम्र बढ़ती गई वैसे समझ में आया कि वो क्रेडिबिलिटी जो है वो आपके पिताजी की है, आपकी खुद की क्रेडिबिलिटी आपको कमानी पड़ेगी तभी लोग आपको वो सम्मान देंगे.
0: बिल्कुल। सबसे व्यस्ततम दिनों में भी उनका क्या शेड्यूल हुआ करता था? जब शूट्स होते थे घर पर, क्या उनका जीने का तरीका था?
1: बहुत ही सिंपल था. मतलब मुझे याद है पापा जब घर पे होते थे तो एक तो वो हॉल में बैठते थे शांति से.
0: अच्छा।
1: हाँ, और उनका ऐसा बिल्कुल नहीं था मुझे मेरी प्राइवेसी चाहिए या मुझे मेरा मी टाइम जिसे हम कहते हैं आजकल, वैसा उनका बिल्कुल नहीं था. जैसा मैंने कहा कि उनके दोस्त हमेशा उनके आसपास रहते थे, तो किसी ना किसी के साथ वो रहते थे, कुछ ना कुछ बातचीत होती थी. और वो सवेरे उठते थे ब्रश करके, चाय ये उनकी क्या कहते हैं
0: जरूरत।
1: जरूरत से ज्यादा उनका प्यार था. दिन भर वो चाय पीते थे, एक एक घूंट ऐसे करके. तो चाय पीना, न्यूज़पेपर पढ़ना, रोज सवेरे 1-1.5 घंटा वो शांति से न्यूज़पेपर पढ़ते थे.
0: अच्छा।
1: फिर सवेरे जो ये उनके सारे दोस्त थे उनको पता था कि अगर इससे बात करनी है तो सवेरे के टाइम

फोन करो, वो जल्दी उठते थे, 6-6:30 बजे उठ जाते थे वो जब वो घर पे होते थे, और उठकर न्यूज़पेपर पढ़ना, चाय पीना, गपशप करना, फैमिली के साथ गपशप करना, फिर अलग अलग चीजों पर बातचीत करना, बिकॉज हमारे कुटुंब में हम लोग सब लोग बहुत अलग अलग एजुकेशनल बैकग्राउंड से आते हैं। मेरी सबसे बड़ी बहन जो है वो साइकोलॉजिस्ट है, तो मेंटल हेल्थ और साइकोलॉजी इनके बारे में उसकी पढ़ाई है और वो काम भी करती है उसमें। मेरी जो दूसरी बहन है उसने मास्टर्स इन सोशल वर्क किया हुआ है, और मैंने जो है वो मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स किया हुआ है। तो वो दौर मुझे याद है जब मेरी बहन मास्टर्स इन सोशल वर्क कर रही थी और मैं मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स कर रही थी। तो ऐसे हो गया था ना हमारे घर पे कि मेरी बहन पूरी सोशलिस्ट आर्ग्यूमेंट्स करती थी और मैं पूरी कैपिटलिस्ट आर्ग्यूमेंट्स करती थी, और हमारे घर पे घंटों तक ये वाद विवाद

0: को, तब वो जाके एक्सप्लेन करते थे कि देखो इसमें ये बात गलत थी इसलिए मैंने ये किया था, पर वो पूरी तरह से फ्रीडम देने के बिल्कुल पक्ष में थे कि आप पूरी तरह से सोचो, आप अपने अनुभव लो, आप उसमें से सीखो और आप समझो आपको क्या दिख रहा है आपके आसपास और उसका कैसे अर्थ निकालना है, आपके आजू बाजू जो घटनाएं घट रही है उसका अर्थ कैसे निकालना है या आप डिसाइड करो।
1: आप लोगों के एनुअल फंक्शंस में वो आते थे?
0: नहीं बिल्कुल नहीं।
1: क्यों?
0: क्योंकि फिर लोग एनुअल फंक्शन में परफॉर्मेंस देखेंगे ही नहीं, लोग इनको ही देखने बैठेंगे।
1: सख्त मनाही।
0: सख्त मनाही, बिल्कुल नहीं आते थे। लोगों ने बहुत प्यार किया, तो इतना बड़ा नाम जब आपके साथ जुड़ा हुआ होता है तो जैसे उसकी कुछ अच्छी चीजें होती है वैसे कुछ बुरी चीजें भी होती है। मुझे याद है पापा को, जैसा मैंने कहा, इतिहास का बहुत शौक रहा है और हम जब छोटे थे तो पापा, मतलब हमारी फैमिली, उनके जो दो तीन दोस्त करीबी दोस्त है उनकी फैमिलीज, ऐसे हम चार पांच फैमिलीज मिलकर हर साल कहीं पर घूमने जाते थे। तो पापा को अजंठा एलोरा औरंगाबाद के पास जो है वो देखना था, बहुत उनकी इच्छा थी, बहुत सालों में उन्होंने नहीं देखा था तो वो उन्हें देखना था, इसलिए हम लोग औरंगाबाद गए। औरंगाबाद में दौलताबाद फोर्ट भी है, वहाँ पर बीबी का मकबरा भी है, तो एक तो जहाँ पर शहरों के अंदर जो मॉन्यूमेंट्स थे वो देखने के लिए तो पापा आ ही नहीं पाए बिकॉज वहाँ पर वैसे ही इतनी रश होती है, लेकिन अजंठा एलोरा तो हम लोगों ने एक बड़ी मैटेडोर की थी बिकॉज हम लोग 15-16 जन थे, बच्चे बड़े सब सब पकड़ के। एक घंटे की दूरी पर है छत्रपति संभाजी नगर से अजंठा की बुद्ध गुफाएं हैं, तो वो देखनी थी बिकॉज बुद्धिस्ट लिटरेचर और वो फिलॉसफी उन्होंने बहुत उस पर रिसर्च किया हुआ था, बहुत पढ़ा हुआ था और उनकी इच्छा भी थी कि कभी गौतम बुद्ध का रोल वो अगर कर पाए तो, लेकिन वो हो नहीं पाया। खैर वहां पर हम लोग जब गए उस समय, अभी तो हाईवेज बन चुके हैं पर उस समय छोटे छोटे चेक पॉइंट्स होते थे और उस समय हमारी मैटेडोर का जो नंबर था वो हर एक चेक पॉइंट पे पहुंच चुका था। हाँ, तो हमको लगता था हम मैटेडोर में हैं, किसी को पता नहीं है अंदर पापा बैठे हैं, पर हर एक चेक पॉइंट पे जो रश था, जो लोगों की भीड़ थी वो बढ़ती जा रही थी। तो अल्टीमेटली ऐसा हुआ वो अजंठा में जा ही नहीं पाए।
1: अरे अरे अरे।
0: क्योंकि वो उतर ही नहीं पाए, वहां पर एक रिजॉर्ट था, वहां पर जाकर एक रूम में वो बैठ गए, क्योंकि अगर वो बाहर आते तो हम भी नहीं देख पाते।
1: ओहो,
0: तो उन्होंने कहा मैं यहाँ बैठता हूँ, तुम जाकर देख कर आओ। तो इस तरह से जब आपका नाम इतना बड़ा हो जाता है तो लोग जिस तरह से प्यार करते हैं वो अच्छा तो बहुत लगता है, हालांकि वो उस प्यार के लिए ही सब कलाकार काम करते हैं, लेकिन इस तरह से कभी कभी उसका एक नेगेटिव या बुरा असर पड़ता है कि भूल जाते हैं लोग कि ये कलाकार तो है, हम इस पे प्यार तो करते हैं पर ये एक फैमिली मैन भी है, इसकी भी एक निजी जिंदगी है, इसे भी कुछ उसके बीवी बच्चों के साथ दोस्तों के साथ वक्त बिताने का हक है।
1: बिल्कुल,
0: ये लोग भूल जाते हैं। ऑफ कोर्स अभी जैसे सोशल मीडिया का दौर चला है वैसे लोगों को भी ये समझ में आने लगा है कि ये कलाकारों की जिंदगी भी आम लोगों की तरह ही होती है, इसलिए अभी थोड़ी बहुत स्पेस काफी अच्छे से देते हैं लोग जो है वो, लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा एक श्राप है ऐसे हम कह सकते हैं।
1: बिल्कुल, यहाँ हम साथ साथ हैं फिल्म का गाना सुनते हैं।
0: Sure.

0: देखिए, हम 80 के दशक की बातें करते करते 90 के दशक तक पहुंच गए। हमने सड़क की बात कर ली और उनकी जो यात्रा है उसमें अचानक से एक बाढ़ आती है कॉमेडी रोल्स की, जो उसके बाद फिर पूरी एक धारा चल पड़ती है। मुझे लगता है कि आंखें से वो मामला शुरू होता है और फिर आंखें, इश्क और कुली नंबर वन पूरी लिस्ट है।
1: करेक्ट।
0: तो ये जो यात्रा है इसकी बात करते हैं। कभी उनसे ये बातें हुई कि विलेन के रोल करना उनको ज्यादा लुभाता है या ये जो कॉमेडी की धारा में वो किस तरह से मुड़ गए?
1: तो पापा की एक बात जो शायद ही मैंने आज तक कहीं पर कही हो वो ये थी कि उनका कॉमेडी का जो टाइमिंग था वो बहुत बहुत कमाल का था। मतलब अगर हम बैठ के बात भी कर रहे हैं ना
0: जी,
1: तो उसमें भी वो जिस तरह से रिएक्ट करेंगे कॉन्वर्सेशन में, नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में, वो भी बहुत मजा किया था।
0: अच्छा
1: हाँ, तो उनकी कॉमेडी

0: से चेहरे ऐसे ऐसे करना ऐसी नहीं थी,
1: वो उनकी पंच आते थे,
0: पंच आते थे और वो उसी तरह से बात करते थे। कभी अगर मम्मी पापा की भी बात चल रही हो घर पे, तो पापा कुछ ऐसी एक लाइन बोल देते थे कि जिसके ऊपर पूरा घर हंस रहा है और मम्मी ऐसे तिलमिला उठी है कि पर कुछ बोल नहीं पा रही है।
1: फिर वो जवाब बाद में,
0: हाँ वो बाद में वो उनको मिलता होगा जवाब, पता नहीं क्या है। तो वो उनका जो कॉमेडी का टाइमिंग था वो पहले से था, और कॉलेज के दिनों में उन्होंने काफी सारा कॉमेडी किया हुआ था। जैसा मैंने कहा कि एक बार वो विलन बन गए तो विलनी का एक छाप उन पे बैठ गई और उसी तरह से काम वो करते रहे करते रहे करते रहे। एक पॉइंट ऐसा आया कि जब उनको लगा कि अभी हमें एक्सप्लोर करना चाहिए, और उस समय हिंदी फिल्म इंडस्ट्री भी एक दौर से गुजर रही थी जहां पर मैंने प्यार किया जैसी फिल्म आई थी, जहां पर विलन तो था पर वो पूरी तरह से विलन नहीं था। उसके बाद हम साथ साथ है आई, जहां पर विलन ही नहीं था, राइट? तो धीरे धीरे धीरे धीरे इंडस्ट्री का दौर भी बदल रहा था।
1: बिल्कुल, वो जो हिंसा वाली फिल्में हैं उसकी बजाय एक दूसरी धारा चल रही थी,
0: फैमिली सिनेमा ज्यादा आ रहा था और कॉमेडी। और उस समय गोविंदा, शक्ति कपूर, कादर खान, इनकी जो ये एक वेव आई थी,
1: बिल्कुल
0: उसमें पापा एकदम फिट बैठे, बिकॉज उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बिल्कुल मैच करता था इन सब लोगों के साथ। इसलिए आई थिंक ही स्विच्ड टू कॉमेडी, बिकॉज उन्हें मजा भी आता था वो करने में। चंकी पांडे हो, गोविंदा हो, मिथुनदा हो, कादर खान हो, असरानी हो, जॉनी भाई हो, इन सब लोगों के साथ एक अलग इक्वेशन, और हर एक फिल्म में अलग किरदार के साथ अलग इक्वेशन।
1: उनको डायलॉग्स भी मजेदार मिलते थे,
0: बहुत मजेदार मिलते थे। और क्योंकि विलन जब आप होते हो तो आपका वो पक्का होता है, आप बुरे होते हो और आपका एक ही ग्राफ होता है, राइट? कि हीरो आएगा आपको मारेगा, खत्म, राइट? पर कॉमेडी में वैसा नहीं होता। कॉमेडी में जो कैरेक्टर होता है वो कभी कभी कॉमेडी करता है, कभी कभी इमोशनल सीन भी करता है, कभी कभी अच्छे काम भी करता है, कभी कभी बुरे काम भी करता है। तो ये वैरायटी जो थी, आई थिंक वो उन्हें बहुत दिलचस्प लगी होगी उस वक्त, और इसलिए उन्होंने किया, वो इश्क किया उन्होंने, आंखें की, फिर
1: आंटी नंबर वन,
0: आंटी नंबर वन, कूली नंबर वन, फिर ये हम है कमाल के, ऐसी काफी सारी फिल्में हैं। और फिर अरुणा जी के साथ, अरुणा ईरानी जी के साथ काम किया,
1: बिंदु जी के साथ, सो रहे हैं और वो जगाने आती है।
0: वो YouTube पर आज भी अगर आप देखोगे पापा का नाम डाल के सदाशिव अमरापुरकर कॉमेडी सीन्स, तो इतने सारे वीडियोस उसमें निकल के आते हैं, तो बहुत ही फनी है। तो जब मेरी बेटी छोटी थी तो विलन वाली फिल्म में दिखाऊं कैसे उसे, है ना, क्योंकि इतना वायलेंस तो नहीं दिखा सकते। जब हम लोगों ने सोचा कि अभी उसको कुछ पापा का दिखाना तो चाहिए, बिकॉज सब लोग आजू बाजू, अच्छा सदाशिव जी की पोती हो, सदाशिव जी की पोती हो, ये तो वो सुन ही रही थी। तो उसे हम लोगों ने सदाशिव अमरापुरकर कॉमेडी सीन्स ऐसे वहां से शुरुआत की थी। मेरी बेटी कभी मिल नहीं पाई पापा से, लेकिन उसे ये पता है ये बहुत मजा किया थे, तो बहुत मजा आता था। फिर हमने उसे हम साथ साथ है फिल्म दिखाई, फिर इश्क दिखाई थोड़ी बहुत, तो इस तरह से वो थोड़ी और बड़ी होगी, फिर उसे शायद मैं सड़क दिखाऊंगी,
1: हुकूमत सड़क
0: दिखाऊंगी, ये सारी फिल्में दिखाऊंगी।
1: इश्क का रोल तो बहुत ही अलग था,
0: बहुत ही अलग,
1: क्या लीग थी वो।
0: वो तो मतलब इंदु जी की फिल्म थी वो, इंदर कुमार। एक तो इंदु जी का खुद का सेंस ऑफ ह्यूमर और टाइमिंग कमाल का है, ऊपर से आमिर और जूही, इनके साथ जो इनकी कॉमेडी की टाइमिंग बैठी है, जो एक्टिंग की है, मतलब मुझे लगता है इतना ओवर द टॉप कॉमेडी हम जिसे कहते हैं वो पहली बार ही आया। मतलब आंखें में भी कॉमेडी थी
1: बिल्कुल,
0: पर
1: लेकिन
0: वो इतनी ओवर द टॉप
1: था,
0: नहीं थी, वो सिचुएशनल कॉमेडी थी।
1: यस,
0: और ये ओवर द टॉप कॉमेडी थी। तो जो चाहिए वो करो, मतलब मुझे याद है हमारे घर के बिल्कुल पास में इश्क का सेट लगा हुआ था।
1: अच्छा।
0: तो एक दो बार मैं गई थी वहां पर ऐसे ही कुछ मैसेज देने या कुछ करने, मुझे याद नहीं है अभी क्यों गई थी, लेकिन मैं गई थी। और उस वक्त इंदु जी ब्रीफ दे रहे थे, सदा जी आपको जैसा लगता है ना आप वैसा कीजिए। फिर वहां से आमिर का ये आता था, सदा जी ऐसा ट्राई करते हैं, फिर दिलीप ताहिल जी थे उनका होता था। तो ये सब लोगों ने मिलके वो जो कुछ भी किया था, स्क्रिप्ट तो फैंटास्टिक लिखी ही थी, इंदु जी का डायरेक्शन भी था, लेकिन ये जिस तरह से इन सब की जो केमिस्ट्री जम गई थी वो बहुत ही फैंटास्टिक थी। आई थिंक इट इज अ वर्ल्ड अपार्ट।

0: आर्ट फिल्म, ऐसी फिल्म मुझे नहीं लगता अभी फिर से कभी बन पाएगी,
1: बिल्कुल
0: बिकॉज जिस तरह से उसमें आमिर ने पापा की भी एक्टिंग की है,
1: हाँ
0: ऐसी काफी सारी सिचुएशंस है जिसमें वो हुआ है।
1: बहुत मजेदार बातें चल रही हैं इस फिल्म से जुड़ी हुई, तो मुझे लगता है कि इसका गाना सुन लिया जाए।
0: प्लीज।
2: ए

0: ये वो दौर था जब वो एक तरफ ये सारी कॉमेडी फिल्में कर रहे हैं, आउट एंड आउट कॉमेडी है, और एक अलग धारा चल रही है जहां उसी समय में वो दोगी भी कर रहे थे, कदाचित भी कर रहे थे, वास्तु पुरुष भी कर रहे थे,
1: देवी अहिल्या भी कर रहे थे।
0: यस,
1: तो ऐसा मैंने पहले भी कहा कि कलाकार थे और उन्हें अगर कुछ अच्छा लगता है और उन्हें अगर विश्वास है कि ये निर्देशक है और ये अच्छी फिल्म बनाने वाला है या बनाने वाली है, तो वो उसमें बिजी हो जाते थे। दोगी ये जो फिल्म थी एनएफडीसी की फिल्म थी,
0: बिल्कुल
1: हाँ, और सुमित्रा भावे सुनील सुकतनकर इनकी पहली कमर्शियल फिल्म थी, राइट। और उस समय पापा ने सुमित्रा मावशी के साथ इसलिए काम किया बिकॉज ये कुछ अलग विषय है जो ये औरत रखना चाहती है और इसे साथ देनी चाहिए, बिकॉज सुमित्रा भावे ये अगेन उनका जो सोशल सर्कल था, डॉक्टर अनिल अवसट, निलो फुले, डॉक्टर लागू, इन सब सोशल सर्कल में ही सुमित्रा मावशी भी थी। तो पूरा महाराष्ट्र उन्हें सुमित्रा मावशी कहता है, तो इसलिए मैं भी उन्हें सुमित्रा मावशी कहती हूँ। तो उस समय उन्होंने दोगी की थी, दोगी में फिर से उनके सिर्फ 3 या 4 सीन थे पर उन्होंने वो किए थे। वो सोनाली कुलकर्णी जो है दिल चाहता है मैं जो थी उनकी वो पहली फिल्म थी,
0: तब और तक बहुत महत्वपूर्ण फिल्म,
1: बहुत महत्वपूर्ण फिल्म थी। और उसके बाद ही वास्तु पुरुष, बिकॉज उनका और सुमित्रा मावशी क्योंकि वो फेमिनिस्ट थी तो उनकी फिल्मों में हमेशा औरत का मुख्य किरदार हुआ करता था। तो ये पापा और उनके बीच में हमेशा ये जोक चलता था कि जब तक आप अभी मुझे लेकर फिल्म नहीं बनाओगे, मेरा सेंट्रल कैरेक्टर लेकर, तब तक मैं आपके साथ काम नहीं करूंगा। लेकिन फिर भी हर बार सुमित्रा मावशी फोन करती थी और पापा उनके साथ काम करते ही थे। तो उसी तरह से वास्तु पुरुष फिल्म जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म रही है और उसे नेशनल अवार्ड भी मिला हुआ है।
0: हाँ।
1: पापा को नहीं मिला लेकिन उस फिल्म को
0: मिला
1: नेशनल अवार्ड। यस, तो पापा जो आप कह रहे थे कि एक दौर ये था कि वो आउट एंड आउट कॉमेडी कर रहे थे
0: और दूसरी तरफ ये इंटेंस काम कर रहे थे
1: बिकॉज वो उनकी पर्सनालिटी की ही दो साइड्स थी। जैसा मैंने कहा कि वो सामाजिक रूप से बहुत अवेयर हुआ करते थे कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, वैसे ही ये फिल्में आना बहुत जरूरी है। आउट एंड आउट कॉमेडी जब आती है, कमर्शियल फिल्में जब आती है, तो वो कहते थे ना ये मेरा दुकान है, मेरा घर चलता है इसलिए मैं ये करता हूं, लेकिन मेरा मन अगर मुझे चलना है, मन अच्छा रखना है, तो मुझे ये दूसरा करना भी जरूरी है। तो इस तरह से उनका वो बैलेंसिंग गेम चलता था। तो एज एन एक्टर उस समय, क्योंकि एक टाइम पे एक्टर्स 8-8, 10-10 फिल्में करते थे, उनमें वो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा थी कि इस सेट पे मैं अगर हूं और मेरा रोल अगर ये है तो मैं वैसा हूं। मतलब आप ऐसे सोचिए कि दोगी फिल्म जो है वो इतनी सीरियस फिल्म है और आप इश्क फिल्म कर रहे हो, उस सेट पर आप 2 दिन शूट करते हो और आप इमीडिएटली जाते हो एक छोटे गांव में जहां पर आप दोगी या वास्तु पुरुष जैसी फिल्म शूट कर रहे हो और आप उस सीरियस मोड में चले जाते हो। तो मेरे ख्याल से ये जो फ्लेक्सिबिलिटी उस समय के कलाकारों की थी ये बहुत अच्छी चीज थी जो आजकल के कलाकारों में थोड़ी बहुत कम हो गई है क्योंकि वो एक टाइम पे एक ही फिल्म करते हैं तो वो एक ही किरदार में जाते हैं, वो पूरा जीते हैं और बाहर निकलते हैं,
0: राइट।
1: आई थिंक इसका क्रेडिट काफी सारा इसमें भी जाता है क्योंकि उस समय जो फिल्मों के कलाकार थे वो काफी सारे थिएटर से भी आते थे
0: जी।
1: तो थिएटर में जब आप शो करते हो तो उस 3 घंटे के लिए आप वो किरदार बनते हो और फिर आप हो, फिर आप वो किरदार बनते हो। अगर आप 2 प्लेज कर रहे हो तो दूसरे प्ले में जो आपका किरदार है आप वो बन जाते हो।
0: एक अच्छी ट्रेनिंग है वो, एक अच्छी बुनियाद,
1: बहुत अच्छी बुनियाद है। और उस वजह से ये सारे ही कलाकार, ओम पुरी जी हो, अमरीश पुरी जी हो, अगर आप देखेंगे अमरीश पुरी जी का भी बाद में जो उन्होंने कॉमेडी की है, मालामाल वीकली हो या ये जो सारी फिल्में हैं, विरासत में उनका कितना प्यारा है। तो इन सारी फिल्मों में आप देख सकते हो कि उनके कैरेक्टर आर्टिस्ट भी उतने

0: ही ताकतवर है जितने उनके विलन रहे हैं। आई थिंक दिस इज एन ओड कि उस समय एक तो कलाकार रिस्ट्रिक्टेड नहीं थे कि मैं हीरो हूं तो मैं हीरो ही रहूंगा, ये भी नहीं था। मराठी में हम जिसे देवाण घेवाण कहते हैं, लेन देन, जो एक लेन देन थी वो बहुत क्लियर थी। कलाकारों तक पहुंचना इतना मुश्किल नहीं था, इसलिए आप कोई छोटी फिल्म भी बना रहे हो तो आप कलाकारों तक पहुंच सकते थे। अभी जो सिस्टम बन गई है, जो कॉरपोरेट सिस्टम है, उसमें ये नहीं होता है। तो कॉरपोरेट्स और जो एजेंसीज होती है वो डिसाइड करती है कि ये एक्टर को हमें कैसे मोल्ड करना है। एक्टर का से बहुत कम रह गया है, तो आई थिंक इस वजह से वो उस समय हो पाया एंड वी आर वेरी लकी कि ये हो पाया। इसलिए हमारी फिल्म इंडस्ट्री को जैसे हम है कमाल के मिली, कूली नंबर वन मिली, वैसे ही दोगी मिली, वास्तु
1: गुप्त
0: पुरुष
1: मिली,
0: गुप्त मिली, एग्जैक्टली। और आई थिंक इट इज अ रियली ग्रेट थिंग कि डायरेक्टर्स भी ऐसे थे, हालांकि ये बंदा कॉमेडी कर रहा है, ये सीरियस रोल कर पाएगा, ये इस किरदार को निभा पाएगा, ये ट्रस्ट उनका होता था। जैसे देवी अहिल्या उन्होंने की थी, अगेन जयू नचिकेत पटवर्धन की फिल्म थी, तो 22 जून 1897 के बाद पापा ने उनके साथ देवी अहिल्या में काम किया था।
1: बिल्कुल,
0: उसमें उन्होंने मल्हार राव होलकर की भूमिका निभाई थी। तो वो बहुत ही सुंदर फिल्म है, जो लोग देख पाए, एनएफडीसी की ही फिल्म है
1: जी।
0: जो लोग देख पाए उन्होंने जरूर देखना चाहिए। मैं उस सेट पर भी गई थी क्योंकि पूना में ही शूटिंग हो रहा था और उस वक्त मैं पूना में पढ़ रही थी, तो उस वक्त मैं गई थी उस सेट पर। तो बहुत प्यारी फिल्म है और जिस तरह से इन्वॉल्व होकर वो फिल्म बनाई गई है, वहां के जंगल, और उसमें शबाना जी भी है और काफी बड़ी कास्ट है उस फिल्म की, बहुत ही सुंदर तरीके से वो बनी है। तो जिनको इंटरेस्ट हो वो डेफिनेटली देखनी चाहिए उन्होंने वो फिल्म।
1: बिल्कुल, यहाँ गुप्त फिल्म का गाना सुनते हैं क्योंकि उसका जिक्र अभी अभी हुआ।

उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की सुपुत्री रीमा अमरापुरकर से यूनुस खान की बातचीत की।

नमस्कार। मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज़ पर तथा FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बजने को है आरंभ होती है आज की हमारी सायंकालीन प्रसारण सभा। सभा के आरंभ में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली हैं। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्धविराम के बाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर से शुरू होने के बाद किया गया। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन किया गया है। इस बीच पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने वैश्विक तेल बाजार की स्थितियों की समीक्षा के लिए आयोजित वर्चुअल बैठक के बाद इस वर्ष अगस्त से प्रतिदिन 188,000

0: बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। आज हुई बैठक के बाद जारी बयान में तेल उत्पादक समूह ने कहा कि इस निर्णय बाजार स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। उन्होंने कहा कि मनरेगा को लागू होने में 3 साल से अधिक का समय लगा था, जबकि विकसित भारत जी राम जी पूरे देश में सिर्फ 1 ही दिन में लागू कर दिया गया।
1: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे, लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई, तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गांव का निर्माण हो जाएगा।
0: सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर शुल्क वाले विज्ञापनों से बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री के प्रसार को लेकर मेटा को कड़ी चेतावनी जारी की है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सरकार ने इंस्टाग्राम को ऐसी विषय वस्तु को बढ़ावा देने और इसकी पहुंच को सुगम बनाने वाले सभी विज्ञापनों और सामग्री को बंद करने का आदेश दिया। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा से 7 दिनों के भीतर विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज कैलाश मानसरोवर यात्रा के पहले जत्थे को चंपावत जिले के तनकपुर से रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कैलाश मानसरोवर यात्रा केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि आध्यात्मिक जागरूकता, सांस्कृतिक एकता और राष्ट्रीय सद्भाव का प्रतीक है। श्री धामी ने तीर्थयात्रियों से स्थानीय हस्तशिल्प और उत्पादों की खरीद करके स्थानीय लोगों को प्रोत्साहित करने की अपील की। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की प्रमुख पहल राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान प्राथमिकता परियोजना ICMR माइंड्स ने राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में स्वर्ण पदक जीता है। ये पुरस्कार केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा दोनों देशों के बीच मौजूदा संबंधों को मजबूती प्रदान करेगी और सहयोग के नए क्षेत्रों के द्वार खोलेगी। असम के गुवाहाटी में कल से 2 दिवसीय ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक शुरू होगी। गृह मंत्रालय ने कहा कि बैठक में ब्रिक्स के सदस्य देशों के मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुख और वरिष्ठ अधिकारी विचार विमर्श करेंगे। इससे मादक पदार्थ नियंत्रण एजेंसियों के समूह में संस्थागत नियंत्रता और सशक्त बनाने तथा गहन परिचालन सहयोग को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन पर दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया पर कहा कि भारत की सांस्कृतिक विरासत के प्रसार के प्रति उनका योगदान अस्मरणीय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनका निधन कला और संस्कृति जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। प्रधानमंत्री ने वयोवृद्ध जनजातीय नेता और गुजरात के पूर्व वन मंत्री मोहन सिंह राठवा के निधन पर भी शोक व्यक्त किया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज रात 1:30 बजे ब्राजील का मुकाबला नॉर्वे से होगा। वहीं से पहले फ्रांस ने पैराग्वे को 1-0 और मोरक्को ने कनाडा को 3-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी अब से कुछ ही पलों में।

0: भी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, सीमेंट से 9.5% तक आम सरिये के मुकाबले बेहतरीन पकड़।
3: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
4: गुनगुना रहे हैं भंवरे, खिल रही है कली कली।
5: जी हाँ, भौरे गुनगुनाएंगे और खिलेंगी आपके मन।

0: की कलियां।
1: 1 जुलाई से सुनिए गाते गुनगुनाते कार्यक्रम एक नए अंदाज में।
0: करिए अपने मनपसंद फिल्मी गानों की फरमाइश आकाशवाणी गोरखपुर के फेसबुक पेज पर।
1: 1 जुलाई 2026 को प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के पोस्टर कमेंट बॉक्स में लिखिए
0: गाने के बोल,
1: गीतकार
0: और संगीतकार
1: और अपने चाहने वालों और दोस्तों के नाम,
0: और सुनिए अपने पसंद के गीत आकाशवाणी गोरखपुर से।
1: आपकी फरमाइश हमारे सुरों के साथ, यादें बन जाएंगी खास। गाते
0: गाते
1: गुनगुनाते सुनिए सुबह 10:05 पर।
0: सुनते रहिए आकाशवाणी गोरखपुर।
2: नमस्कार आदाब, स्वागत है आप सभी का युवाओं के कार्यक्रम युववाणी में, और आज हैं आप शिवलता के साथ। उम्मीद है सब बढ़िया होगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस सुविचार के साथ। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर परत निशान। दोस्तों, हमें अपने लक्ष्य की ओर पूरी मेहनत के साथ निरंतर लगे रहना चाहिए, क्योंकि अभ्यास और निरंतरता से ही हम किसी भी चीज़ में निपुण होते हैं। दोस्तों, आज कार्यक्रम में हम बात करेंगे कि कैसे युवा खेल पत्रकारिता में अपना करियर बना सकते हैं। स्पोर्ट्स जर्नलिज्म यानी खेल पत्रकारिता में करियर आज के समय में युवाओं के लिए एक बेहद रोमांचक, सम्मानजनक और तेज़ी से बढ़ता हुआ क्षेत्र है। अगर आपकी खेलों में गहरी रुचि है और साथ ही आप में लिखने और बोलने की अच्छी कला है, तो ये क्षेत्र आपके लिए बेहतर अवसर खोल सकता है। दोस्तों, खेल पत्रकारिता मीडिया का वो हिस्सा है जो अलग अलग खेलों, खिलाड़ियों, खेल आयोजनों और उनसे जुड़ी खबरों को जनता तक पहुंचाता है। इसके अंतर्गत समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, टेलीविजन चैनल, रेडियो और डिजिटल मीडिया के लिए काम किया जाता है। खेल पत्रकारिता के क्षेत्र में आप अपनी रुचि के अनुसार अलग अलग पद पर काम कर सकते हैं। स्पोर्ट्स राइटर और रिपोर्टर के तहत खेल के मैदान से लाइव रिपोर्टिंग करना, मैच का विश्लेषण लिखना और खिलाड़ियों के इंटरव्यू लेने का काम होता है। स्पोर्ट्स एंकर के तहत टीवी या रेडियो पर मैच की लाइव कमेंट्री कर सकते हैं। स्पोर्ट्स एडिटर के तहत खेल की खबरों को एडिट करना, उनकी सत्यता जांचना जैसे काम होते हैं। इसके अलावा आप बतौर डिजिटल कॉन्टेंट क्रिएटर और स्पोर्ट्स फोटोग्राफर भी काम कर सकते हैं। इस क्षेत्र में एक सफल करियर बनाने के लिए आपके पास कुछ खास खूबियों का होना बहुत ज़रूरी है। 12वीं के बाद मास कम्युनिकेशन या जर्नलिज्म में डिग्री या डिप्लोमा करने का फ़ायदा होता है। आपको अलग अलग खेलों के नियम, इतिहास, वर्तमान रिकॉर्ड्स और खिलाड़ियों के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। आपकी लिखने और बोलने की भाषा बहुत मजबूत, स्पष्ट और प्रभावशाली होनी चाहिए। लाइव मैचेस के दौरान परिस्थितियां काफ़ी तेज़ी से बदलती हैं, इसलिए आपको दबाव में तेज़ी से और सही से काम करना आना चाहिए। अगर खेल आपका जुनून है तो आपको काम कभी बोझ नहीं लगेगा। इसके साथ ही आपको अपने पसंदीदा दिग्गज खिलाड़ियों और कोच का इंटरव्यू लेने का मौका भी मिलता है। दोस्तों, खेल पत्रकारिता केवल एक नौकरी नहीं बल्कि एक रोमांचक जीवन शैली है। अगर आप में खेलों के प्रति अटूट प्रेम है और आप अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने की कला जानते हैं, तो मीडिया जगत का ये मैदान आपके स्वागत के लिए तैयार है। सही दिशा में की गई मेहनत और मीडिया की पढ़ाई आपको इस क्षेत्र में एक ऊंचे मुकाम पर पहुंचा सकती है। तो चलिए दोस्तों, कार्यक्रम में हम आगे बढ़ते हैं इस गीत की ओर।

2021-2026 उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी सहित विभिन्न 500 पदों पर भर्ती निकाली गई हैं। इसके लिए आप आवेदन 27 जुलाई तक कर सकते हैं। आईबीपीएस स्पेशलिस्ट ऑफिसर के 700 पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं। एसबीआई पीओ और बीओआई ऑफिसर स्टेट बैंक और बैंक ऑफ इंडिया में अधिकारियों की नई भर्ती प्रक्रिया जारी की गई है। सैनिक स्कूल नगरोटा टीजीटी इंग्लिश और अन्य स्टाफ की भर्ती जारी की गई है। उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के पद पर आवेदन जारी कर दिए गए हैं। इसके साथ ही दोस्तों, पीडीएफ नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए आप आधिकारिक रोजगार समाचार पोर्टल पर जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, कार्यक्रम में हम आगे बढ़ते हैं इस गीत की ओर।

0: दोस्तों, बदलते मौसम में इम्यूनिटी कमज़ोर होने से सर्दी, जुकाम, बुखार और एलर्जी का खतरा बढ़ जाता है। इससे बचने के लिए अपनी डाइट में विटामिन सी शामिल करें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और मौसम के अनुसार कपड़ों की लेयरिंग करें ताकि शरीर तापमान के अनुसार ढल सके। इसके अलावा ज़रूरी ये है कि आप ध्यान रखें अचानक से धूप में जाने और अचानक से एसी में आने से बचें, जिससे आपके शरीर का तापमान बैलेंस रह सके। बदलते मौसम में सेहत का ख्याल रखने के लिए कुछ आवश्यक टिप्स होते हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। मौसमी फल, नींबू पानी और ताज़े जूस का सेवन करें। ठंडा या बासी खाना खाने से बचें और पाचन तंत्र को दुरुस्त रखने के लिए हल्का और सुपाच्य भोजन लें। इस बात का ध्यान रखें कि बदलते मौसम में दही और हरी पत्तेदार सब्जियों को साफ करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, इसलिए इनका सेवन कम करें। इसके साथ ही दोस्तों, खुद को संक्रमण से बचाने के लिए अपनी डाइट में अदरक, तुलसी और पुदीने का उपयोग करें। इसके अलावा पर्याप्त नींद लेना और व्यायाम करना शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसके साथ ही दोस्तों, अपने शरीर को हाइड्रेटेड भी रखें और कोशिश करें कि समय समय पर आप जल या फिर नींबू पानी पीते रहें। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ ही आप अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए और साथ में दूसरों को भी जागरूक करते रहें।
1: जी हाँ, भौरे गुनगुनाएंगे और खिलेंगी आपके मन की कलियाँ।
2: 1 जुलाई से सुनिए गाते गुनगुनाते कार्यक्रम एक नए अंदाज में।
1: करिए अपने मनपसंद फिल्मी गानों की फरमाइश आकाशवाणी गोरखपुर के फेसबुक पेज पर।
2: 1 जुलाई 2026 को प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के पोस्टर कमेंट बॉक्स में लिखिए
1: गाने के बोल,
2: गीतकार
1: और संगीतकार
2: और अपने चाहने वालों और दोस्तों के नाम,
1: और सुनिए अपने पसंद के गीत आकाशवाणी गोरखपुर से।
2: आपकी फरमाइश हमारे सुरों के साथ, यादें बन जाएंगी खास। गाते
1: गाते गुनगुनाते
2: सुनिए सुबह 10:05 पर।
1: सुनते रहिए आकाशवाणी गोरखपुर।
3: सटीक जांच, बेहतर इलाज की पहली पहचान। अब श्री कृष्णा डायग्नोस्टिक सेंटर में 3D MRI, मल्टी स्लाइस सीटी स्कैन, 4D अल्ट्रासाउंड, डिजिटल एक्सरे, ECG, EEG, इकोकार्डियोग्राफी, TMT और पैथोलॉजी की अत्याधुनिक सुविधाएं। श्री कृष्णा डायग्नोस्टिक सेंटर, गीता वाटिका रोड नियर राप्ती कॉम्प्लेक्स, असुनन, गोरखपुर।
4: पूर्वांचल का पहला इनोवेशन सेंटर KIPM गीड़ा से करें अपने सपने साकार। BTech, पॉलिटेक्निक, MBA, MCA, BBA, BCA, B Pharma, M Pharma और D Pharma में एडमिशन ओपन। KIPM गीड़ा, गोरखपुर।
0: दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि किसी भी देश

का भविष्य उस देश की युवा शक्ति पर निर्भर करता है। युवा वर्ग समाज का सबसे ऊर्जावान और गतिशील हिस्सा होता है, लेकिन इस ऊर्जा को सही दिशा और शक्ति देने के लिए स्वस्थ शरीर और संतुलित पोषण का होना अनिवार्य है। आज की आधुनिक जीवन शैली में युवाओं के बीच खान पान की आदतें तेजी से बदल रही हैं, जिसमें युवाओं के लिए पोषण बहुत ज़रूरी हो गया है। युवावस्था मानव जीवन का वो चरण है जहाँ शारीरिक, जैविक और मानसिक विकास अपनी तीव्र गति पर होता है। इस आयु में मांसपेशियों और बोन डेंसिटी का निर्माण होता है, जिसके लिए प्रोटीन और कैल्शियम बहुत ज़रूरी होते हैं। सही पोषण मस्तिष्क की कार्यप्रणाली को बेहतर बनाता है। ये युवाओं में एकाग्रता, निर्णय लेने की क्षमता और मानसिक स्वास्थ्य को दुरुस्त रखता है। विटामिन्स और मिनरल्स से भरपूर संतुलित आहार शरीर के इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, जिससे युवा संक्रामक बीमारियों से बचे रहते हैं। इसलिए अपनी डाइट में प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट और फाइबर्स ज़रूर शामिल करें। इसके साथ ही सही मात्रा में पानी भी पीते रहें, खासकर गर्मी में खुद को हाइड्रेटेड ज़रूर रखें। स्वस्थ युवा समृद्ध राष्ट्र केवल एक नारा नहीं बल्कि एक हकीकत है। अगर देश के युवाओं का शरीर और दिमाग स्वस्थ रहेगा, तभी वो राष्ट्र को तरक्की की राह पर ले जा सकेंगे। तो चलिए दोस्तों, कार्यक्रम में हम आगे बढ़ते हैं इस गीत की ओर।

दोस्तों, इसके साथ ही वक्त हो चला है हमारी प्रश्नोत्तरी का। तो आज का सवाल पूछने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी हमारे कल के पूछे गए सवाल का सही जवाब। दोस्तों, हमारा कल का सवाल था, लोकटक लेक यानी लोकटक झील कहाँ पर स्थित है? इसका सही जवाब है, लोकटक लेक यानी लोकटक झील मणिपुर राज्य में स्थित है। और अब बारी है हमारे आज के सवाल की। हमारा आज का सवाल है, वर्ल्ड नो टोबैको डे यानी विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? सवाल एक बार फिर से सुन लीजिए, वर्ल्ड नो टोबैको डे यानी विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ ही मैं लेती हूँ आपसे विदा, इस वादे के साथ कि हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहें, स्वस्थ रहें।

युवा साथियों को संबोधित कार्यक्रम युवाणी अब समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। ग्रामीण भाइयों का कार्यक्रम ग्राम जगत अब से कुछ ही पलों में।

0: कली कली।
1: जी हाँ, भौरे गुनगुनाएंगे और खिलेंगी आपके मन की कलियाँ।
2: 1 जुलाई से सुनिए गाते गुनगुनाते कार्यक्रम एक नए अंदाज में।
1: करिए अपने मनपसंद फिल्मी गानों की फरमाइश आकाशवाणी गोरखपुर के फेसबुक पेज पर।
2: 1 जुलाई 2026 को प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के पोस्टर कमेंट बॉक्स में लिखिए
1: गाने के बोल,
2: गीतकार
1: और संगीतकार
2: और अपने चाहने वालों और दोस्तों के नाम,
1: और सुनिए अपने पसंद के गीत आकाशवाणी गोरखपुर से।
2: आपकी फरमाइश हमारे सुरों के साथ, यादें बन जाएंगी खास। गाते
1: गाते गुनगुनाते
2: सुनिए सुबह 10:05 पर।
1: सुनते रहिए आकाशवाणी गोरखपुर।

0: पंचो जय हिंद।
1: हाँ तो पंच भाई, यही नारा के साथ आज का अपनी बैठकी शुरू भइल।
0: भैया सही कहला तू, अपन ई नारा जो लगला इंतजार कर लें अपन पंच भाइयों के, नया नया का बात बतावल जाई।
1: आज हमन के बात कर जाई मदरसा शिक्षा के बारे में।
0: सही कहला
1: जैसे
0: भैया,
1: कि पूरा विश्व तकनीकी युग में आगे बढ़त बाटे और हर जगह परिवर्तन होत बाटे, यही तरह से मदरसा शिक्षा में भी परिवर्तन होत बा, वहाँ भी आधुनिकीकरण लागू हो
0: भैया
1: गेल बा।
0: जहाँ आधुनिकीकरण नाई हुई उ चीज अपन धीरे धीरे परेशानी हो जाई। ये नाते अपन पारंपरिक शिक्षा के साथे साथे टेक्नोलॉजी जरूरी आए
1: और
0: पाटन।
1: आधुनिकीकरण के जमाना में अगर आधुनिकीकरण का इस्तेमाल नहीं कल जाए तो वो व्यक्ति पिछड़ जाए। एनाते मदरसा शिक्षा का भी आधुनिकीकरण कल गए बा,
0: का का भेल
1: और एकर
0: मन।
1: मतलब ही है कि जौन पारंपरिक रूप से इस्लामी शिक्षा दिहल जात रहा है ओकरे साथ साथ गणित विज्ञान अंग्रेजी और कंप्यूटर जैसन आधुनिक विषयन के शामिल कल जात बा।
0: सही कहला भैया।
1: और जेकर मुख्य उद्देश्य यह है कि जौन छात्र लोग बाटे ओके दीनी शिक्षा के साथ साथ रोजगार परक शिक्षा और आधुनिक शिक्षा प्रदान कर जाए, जौने से उस समाज के मुख्य धारा से जुड़ सके।
0: जुड़ सकें, सही कहला
1: और
0: भैया।
1: साथ साथ कुछ और परिवर्तन कैल गेल बा, जैसे कहीं कहीं के पाठ्यक्रम में परिवर्तन कैल गेल बा कि केवल धार्मिक शिक्षा नहीं केवल ना देवल जाए, ओकरे साथ साथ NCERT के पर आधारित पाठ्यक्रम लागू कैल जात बाटे। जैसे उत्तर प्रदेश में भी हिंदी अंग्रेजी गणित विज्ञान के अनिवार्य बना देवल जात बाटे, और साथ ही साथ जौन केंद्र सरकार योजना चलौले बा SPEMM, ए योजना के अंतर्गत हर मदरसा में कंप्यूटर लैब और लाइब्रेरी के निर्माण कैल जात बा, और शिक्षक के मानदेय भी निर्धारित कैल गेल बा।
0: सही
1: इन्हें
0: कहला।
1: होकर
0: हाँ
1: कि शिक्षक के साथ ही
0: हाँ
1: भेदभाव कैल जा और केवल अपने लाइब्रेरी के निर्माण कैल जाए, शिक्षक लोग अपन रोजगार करत बाटे लेकिन पैसा नहीं पाए, एनाते उनके मानदेय का भी निर्धारण कैल जात बाटे।
0: भैया जब मानदेय मिली तब वो मन से लगा के अपन काम करी हैं
1: और
0: भैया।
1: साथ ही साथ जैसे तकनीकी कौशल के विकास करे बते उनके बहुत तरह तरह के शिक्षा दिल जात बाटे, वोकेशनल ट्रेनिंग दिल जात बाटे, और साथ साथ अंग्रेजी बोलने के भी उनके शैली सिखावल जात बाटे।
0: अच्छा
1: काहे
0: सही
1: कि वो
0: कहा।
1: अगर विश्व में जाके कौनों भी कोना में विश्व में जात बाटे तो उनके ही नहीं लगे कि केवल हम मदरसा से पढ़ के आयल बाटी तो केवल हम वो धार्मिक शिक्षा ग्रहण कर बाटी,
0: सही कहा भैया।
1: इसको
0: मैंने समाज से जुड़ल अपन जो आधुनिक युग बाटे मन वो आप आराम से अपन जीवन यापन कर
1: हाँ
0: सकें।
1: मतलब आधुनिकीकरण के पूरा तरह से इस्तेमाल करके वो ये न लगे कि मदरसा से शिक्षा ग्रहण करके केवल इस्लाम के शिक्षा ग्रहण कैला,
0: सही
1: एहि
0: कहा
1: नाते
0: भैया।
1: मदरसा शिक्षा के लगातार आधुनिकीकरण कैल जात बाटे, जौने से ओमे पढ़े वाले छात्र समाज के मुख्य धारा से जुड़ के अपने आप के तुरंत रोजगार पावे लायक बन सकें।
0: भैया देखो इतने तरह चर्चा हम चाहते लगला आते फिर झलकी सुनवा दी, झटपट मुशायरा नाव है अपन पंच भाई सुनाई झलकी।
2: देखिए आप लोग खामोशी अख्तियार कीजिए, आप लोग खामोशी अख्तियार कीजिए तभी इस प्रोग्राम का आगाज किया जा सकता है, बड़ा मेहरबानी खामोशी अख्तियार कीजिए प्लीज।
3: जी हाँ हम बिल्कुल खामोश हैं, अब आप भी अपनी जुबान बनकर अपना बयान जारी रखिए।
2: हाँ तो हजार आज का ये मुशायरा इतना अजीम शान प्रोग्राम है जो कि अपने नाम से ही लगता है कि झटपट शुरू और झटपट खत्म। इसकी वजह यह है कि कुछ शायर बल्कि कहिए बेहतर बोलते बहुत हैं, वो स्टेज पर खड़े होने के बाद माइक्रोफोन छोड़ना ही नहीं चाहते। आपसे गुजारिश है कि अपना कलाम जल्द से जल्द खत्म करें क्योंकि इस मुशायरे में शायरों की फहरिस्त जरा लंबी है। तो आज सबसे पहले मैं जनाब नशरी लखनवी को मधु करता हूँ कि वो आए और इस अजीम शान मुशायरे के इफ्तिताहिया के तौर पर हमें अपने कलाम से मुस्तफीज करें। आइए जनाब नशरी साहब।
4: अर्ज है कि तुम जो कहो तो चांद सितारों को तोड़ लाऊं।

0: की कोई बात नहीं, मैं नशे में हूँ।
1: क्यों साहब, आप पैदल ही जाने का इरादा है क्या?
0: जी नहीं, इत्मीनान रखिए, आपके ही टांगे पर चलूंगा। मुझे मालूम था कि यहाँ खानदानी साइश भी मौजूद है। हाँ तो मुलाजा हो कि इस इश्क ने लाखों को उजाड़ा है नशेड़ी, गम सब भुला के पी के कहो मैं नशे में हूँ।
2: हजरत, अभी आपने जनाब नशेड़ी लखनवी से हालात सुने, अब आपके सामने जो शायर जलवा अफरोज होने वाले हैं, ये वही है जो शानदार मुशायरे के हुए नवा जनाब बेहुनर मुरादाबादी, वो स्टेज पर आए और अपनी खूबसूरत आवाज, अपने खूबसूरत कलाम से सामने इनको महसूस करें।
3: अजी देखिए साहब, बराए मेहरबानी आप खामोश हो जाएंगे। अजी ये मुशायरा है, मैं मेहरबानी करके खाना मत
1: बनाइए। हो जाइए, सूरत तो दिखाई पड़े आपकी।
3: अच्छा अच्छा, मगर गुजारिश ये है जनाब, सूरत पर नहीं सीरत पर गौर कीजिए।
0: अरे हाँ भाई हाँ, मगर आप कुछ कहिए तो सही।
3: अजीब लायदा हो क्या शायर,

0: फिर शायरी करोगे तो क्या खाओगे मकान है अजी मैं तो चला बेहुनर करने को परचून की दुकान मैं तो चला बेहुनर करने को परचून की दुकान तुम भी करोगे होश में जब आओगे
1: जरूर खोलिए परचून की दुकान शायरी आपके बस का रोग भी नहीं
2: क्या मजाक है बेहुनर साहब एक तो आप खुद शायरी से बदगुमान है उस पर दूसरों को भी अपने साथ घसीटने की घटिया कोशिश कर रहे हैं अभी ये कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते
3: देखिए आप लोग ठंडे दिल से गौर कीजिए बेहुनर साहब ने तो महज अपना काल दाखिल किया है आप लोग खामखा राई का पहाड़ बना रहे हैं मुझे उम्मीद है कि आप लोग अब ऐसी कोई नाशाइस्ता हरकत नहीं करेंगे जिससे हमारे इस प्रोग्राम पर कोई बुरा असर पड़ेगा
4: ठीक है
3: अब मैं आप लोगों के मुंह का जायका थोड़ा सा ही सही बदलने के लिए इस प्रोग्राम की मरकज तवज्जो मुसलमान नाजरीन फरियादी साहिबा से अर्ज करूंगा कि वो स्टेज पर आए और अपने कलाम और अपनी प्यारी प्यारी मुस्कान से महसूस करें
1: तस्लीम मुअज्जिज़ हाज़रीन मुशायरा आज मैं आपके सामने अपने कुछ ताज़ा कलाम पेश करूंगी उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगा
5: अजी क्यों नहीं पसंद क्यों नहीं आएगा
2: अरे सच पूछिए तो हमें बगैर सुने आपकी सूरत देखकर ही अशार पसंद आ गए
1: तो अब मैं जाऊं
3: जी
1: इजाजत है
2: नहीं साथ शोखी के कुछ हिजाब भी है इस अदा का कहीं कोई जवाब
6: अजी ठहरिए अभी कहाँ जाइएगा अजी मोहतरमा जहाँ जाइएगा हमें पाइए
7: अजी हाँ हजूर कुछ दिल की सुनिए कुछ सुनाइए
1: तो अर्ज किया है अपनों से धोखे खाए हैं गैरों की बात क्या हुजूर जरा गौर फरमाएं अपनों से धोखे

0: की बात क्या और रो धो के हमने काट दी ऐशो निशान। रो धो के हमने काट दी ऐशो निशाद क्या।
1: मुझे तो रोना आ रहा।
0: कहते हैं वो कि तुम तो रहते हो सुकून से, कहते हैं वो कि तुम तो रहते हो सुकून से, जिस रात हम न रोए हो वो रात रात क्या, जिस रात हम न रोए हो वो रात रात क्या। और मुख्तार से आदत सी अब तो हो गई ए नाजनी हमें,
2: नाजनी हमें
0: आदत सी अब तो हो गई ए नाजनी हमें, गम की घटाए क्या ये दुखों की बरात, हमकी घटाए क्या ये दुखों की बरात क्या। आदाब
1: वल्लाह इस कदर गम, अरे न जाने वो कौन खूसट है जिसका इंतजार करते करते नाजनीन साहिबा फरियादी हो गई है।
3: मुझे जिंदगी पसंद नहीं है।
1: अच्छा तो हजूर आप ही है वो खूसा।
4: जैसा कि मुझे गुमान था, वाकई मोहतरमा नाजनीन फरियादी के इस कलाम में मुशायरे में नई जान फूंकती है। तो स्टेज पर अब तशरीफ ला रहे हैं जनाब ठोकर भोपाल।
1: आइए ठोकर साहब,
4: आइए।
1: शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। वैसे मैं शुक्रिया अदा करने का कायल नहीं, बहुत कम खुशनसीब ऐसे हैं जिन्हें मेरी जानिब से शुक्रिया हासिल करने की सआदत नसीब हुई, जिनमें से एक आप
2: जी। मैं इसके लिए मैं आपका बेहद मशकूर हूँ।
1: देखिए साहब, ये मुशायरा चूंकि झटपट मुशायरा है, इसलिए मैं आपको अपना कलाम झटपट ही सुनाकर झटपट यहाँ से रुख्सत भी हो जाऊँगा।
5: जनाब मेरी फीस का लिफाफा तैयार है ना।
6: फीस
5: जी?
6: अजी साहब बड़ी मुश्किल से तो चंदा करके शामियाना कनात का खर्चा निकाला गया है, और आप कहते हैं फीस।
5: ठीक है ठीक है ठीक है, तो फ्री भी चलेगा।
1: हाँ तो साहबान खामोश हो जाइए। हाँ अर्ज किया है
7: अजी पोरल से पेश कर चफाओ। ये
5: क्या क्या कहा, कौन है ये नमाकू?
6: अजी कुछ नहीं है सर, आपसे मुखातिब नहीं है, आपस में गुफ्तगू करते हैं।
5: अच्छा अच्छा, मुझे लगा कि कोई नाला है मुझसे मुखातिब है। खैर आप लोग कलाम समाप्त फरमाइए। अर्ज किया है
6: इरशाद,
5: मौसम ही खुश्क है, मौसम ही खुश्क है कि मेरा दिल उदास है, और कैसी हवाएं गम चली हर एक उदास है।
1: मौसम तो ठीक है जनाब, बस आपका भेजा जरा।
5: अरे क्या नाम है भाई तुझे? मैं तमाम हजरात को यहाँ पर यह बता देना चाहता हूँ कि मैं महज मुशायरे की इज्जत रखने को खामोश हूँ, वरना अभी इसे मैं मजा चखा देता।
7: अरे मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ये हजरत शायद नहीं घटिया रहे।
5: अबे तू अपने आप को समझता क्या?
1: तू अपने आप को समझ जाएगा।
5: तू अपने आप को समझ जाएगा। मजे में तो लगा था मुझे।
6: अरे भाई हाँ तो लीजिए, अब तशरीफ ला रहे हैं जनाब मुख्तसर कलकत्तवी साहब।
8: आइए आइए मुख्तसर साहब आइए।
9: अर्ज क्या है? मैं जब भी गया मैं खाने में,
6: क्या बात,
9: भूचाल उठा पैमाने में, साकी बोला माफ करो,
6: माफ कर दिया,
9: साकी बोला माफ करो हम हारे
6: तुझे पिलाने।
1: आइए आइए आइए जैसे, अरे हम न हारेंगे तुम्हें पिलाने में।
6: प्लीज प्लीज, अब मैं जनाब सितंगर इलाहाबादी से अर्ज करना चाहता हूँ कि वो स्टेज को अपनी मौजूदगी

ग्रामीण भाइयों का कार्यक्रम ग्राम जगत अब समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे क्रमशः भोजपुरी तथा हिंदी में क्षेत्रीय समाचार।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से भोजपुरी समाचार। नमस्कार, समाचारन के साथ हम प्रमोद कुमार सिंह। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान 1 जुलाई से विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण VBG रामजी अधिनियम 2025 सफलता से लागू भइले पर खुशी जतौले हवें। वहाँ के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एह मिशन में राज्यन बदे 25,000 करोड़ रुपया के मुख्य सहायता राशि जारी कैलें। वहाँ के कहनी कि विकसित भारत जी राम जी के पूरा प्रदेश में खाली 1 दिन में लागू कैल गईल हो।
1: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे, लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई, तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गांव का निर्माण हो जाएगा।
0: श्री चौहान कहले कि VBG रामजी योजना के मजूरी औसतन करीब 10% बढ़ावल गई हो। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बेहने अपने सदस्यन के खास बैठकी बुलौले हो, जैमे ट्रस्ट के मिलल दान

0: के जांच कई रहल एसआईटी के निष्कर्षण के साथे कई गो खास प्रशासनिक आ वित्तीय मामिलन पर विचार कई जाई। ई बैठकी दोपहरिया बाद 3 बजे मणिराम दास छावनी अयोध्या धाम में हुई, जकरे कार्यसूची में महासचिव चंपत राय आ न्यासी डॉक्टर अनिल मिश्र के इस्तीफा पर विचार शामिल हो। बैठकी में भविष्य में राम मंदिर प्रबंधन से जुड़ल व्यवस्थों पर विचार कई जाई। परिषदीय प्राइमरी और जूनियर स्कूलन के मास्टर, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, रसोईया आ औरियो कर्मचारी लोगिन के सामूहिक बीमा का फायदा दिहल जाई। सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा देवे बदे बेसिक शिक्षा विभाग 8 जुलाई के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मौजूदगी में बनारस में भारतीय स्टेट बैंक के साथ MOU करी। ए मौका पर मुख्यमंत्री शिक्षक आ औरियो कर्मचारी लोगिन के कैशलेस चिकित्सा सुविधा कार्डो बटी हैं। प्रदेश सरकार गन्ना किसानन आ उनकरे परिवारन के सामाजिक सुरक्षा के मजबूत कवच देवे बदे बढ़हन अभियान शुरू करे जा रहा हो। बहने से 11 जुलाई ले प्रदेश के सज्जो सहकारी गन्ना विकास समितियन में विशेष सामाजिक सुरक्षा जागरूकता और नामांकन महाभियान चलावल जाई। एकरे जरिए लाखन किसान परिवारन के प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना के सतही भारत सरकार के तमाम योजना से जोड़ल जाई। अभियान में हर सहकारी गन्ना विकास समिति में विशेष सहायता काउंटर और नामांकन काउंटर खोलल जाई, जैसे किसानन के एक जगह पर योजना के जानकारी, पात्रता के सत्यापन, दस्तावेजन के जाँच, बैंकिंग सहायता और जुड़ते नामांकन के सुविधा मिली। नया सदस्य पंजीकरण, बैंक खाता खोलले आ औरियो जरूरी सेवों के इंतजाम सुनिश्चित कैल जाई। सरकार तरल प्राकृतिक गैस LNG के आपूर्ति से पाबंदी हटा लेले हो। ये फैसला पश्चिम एशिया में लड़ाई रुकले के बाद होरमूज जल डबरू मध्य से प्राकृतिक गैस के आपूर्ति फिर से शुरू भइले के बाद कैल गई हो। सरकार सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर फीसी वाला विज्ञापन में बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री के लेके मेटा के करेट चेतावनी देले हो। एगो रिपोर्ट।
1: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा से 7 दिनों के भीतर विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा है। भारत में डिजिटल कानूनों के अंतर्गत अश्लील सामग्री और बाल यौन शोषण सामग्री का वितरण एक अपराध है। इससे पहले मंत्रालय ने उन रिपोर्टों का संज्ञान लिया था जिनमें कहा गया था कि इंस्टाग्राम पर कुछ आपत्तिजनक सामग्री प्रदर्शित की जा रही है जो बाल यौन शोषण को बढ़ावा देती है, और अधिकारियों को मेटा से जवाब मांगने के निर्देश जारी किए थे। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से
0: छत्तीसगढ़ का मशहूर पांडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई का आज उतड़के सड़कवास हो गई। एगो आम परिवार में जन्मल तीजन बाई पांडवानी के जरिए महाभारत का कथा के मंच पे दिखा के भारतीय लोक संस्कृति के विदेशों में मशहूर कैलिन। प्रयागराज, वाराणसी, जौनपुर और बलिया के सतही प्रदेश के कई गो पूर्वी जिलन में आज तेज बयारी के बिच्चे रुक रुक के बरखा हो रहा हो। मौसम विभाग प्रदेश के ज्यादातर इलाकन में अगला 4 दिन ले गरज चमक के साथे हलुक से मध्यमाहे बरखा के अनुमान जतौले हो। समाचार पूरा भइल। आकाशवाणी गोरखपुर से क्षेत्रीय समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1 जुलाई से विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण VBG रामजी अधिनियम 2025 सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपये की मुख्य सहायता राशि जारी की। श्री चौहान ने कहा कि विकसित भारत GRAMJI को पूरे देश में सिर्फ एक दिन में लागू कर दिया गया।
2: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे, लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत GRAMJI योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गांव का निर्माण हो जाएगा।
0: श्री चौहान ने कहा

0: की वीबीजी रामजी योजना के तहत मजदूरी दरों में औसतन लगभग 10% की वृद्धि की गई है। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने कल अपने सदस्यों की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है, जिसमें ट्रस्ट को प्राप्त दान की जांच कर रहे विशेष जांच दल एसआईटी के निष्कर्षों सहित कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक और वित्तीय मामलों पर विचार विमर्श किया जाएगा। ये बैठक दोपहर बाद 3 बजे मणिराम दास छावनी अयोध्या धाम में आयोजित की जाएगी। बैठक की कार्यसूची में महासचिव चंपत राय और न्यासी डॉक्टर अनिल मिश्रा द्वारा दिए गए त्यागपत्रों पर विचार किया जाना शामिल है। बैठक में भविष्य में राम मंदिर के प्रबंधन से संबंधित व्यवस्था पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों, रसोईया और अन्य कर्मियों को सामूहिक बीमा का लाभ दिया जाएगा। सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा देने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग 8 जुलाई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में वाराणसी में भारतीय स्टेट बैंक के साथ MOU करेगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा शिक्षकों और अन्य कर्मियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा कार्ड का वितरण भी किया जाएगा। प्रदेश सरकार गन्ना किसानों और उनके परिवारों को सामाजिक सुरक्षा का मजबूत कवच देने की दिशा में बड़ा अभियान शुरू करने जा रही है। कल से 11 जुलाई तक प्रदेश की सभी सहकारी गन्ना विकास समितियों में विशेष सामाजिक सुरक्षा जागरूकता एवं नामांकन महाअभियान चलाया जाएगा। इसके माध्यम से लाखों गन्ना किसान परिवारों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना सहित भारत सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। अभियान के दौरान प्रत्येक सहकारी गन्ना विकास समिति परिसर में विशेष सहायता एवं नामांकन काउंटर स्थापित किए जाएंगे। किसानों को एक ही स्थान पर योजनाओं की जानकारी, पात्रता का सत्यापन, दस्तावेजों की जांच, बैंकिंग सहायता और तत्काल नामांकन की सुविधा मिलेगी। नए सदस्य पंजीकरण, बैंक खाते खोलने तथा अन्य आवश्यक सेवाओं की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी। सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस LNG की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली हैं। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद हॉर्मुज जल डमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद किया गया है। सरकार ने सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर शुल्क वाले विज्ञापनों में बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री के प्रसारण को लेकर मेटा को कड़ी चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट।
1: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा से 7 दिनों के भीतर विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा है। भारत में डिजिटल कानूनों के अंतर्गत अश्लील सामग्री और बाल यौन शोषण सामग्री का वितरण एक अपराध है। इससे पहले मंत्रालय ने उन रिपोर्टों का संज्ञान लिया था जिनमें कहा गया था कि इंस्टाग्राम पर कुछ आपत्तिजनक सामग्री प्रदर्शित की जा रही है जो बाल यौन शोषण को बढ़ावा देती है, और अधिकारियों को मेटा से जवाब मांगने के निर्देश जारी किए थे। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पांडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई का निधन हो गया है। आज तड़के लगभग 3:15 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। एक साधारण परिवार में जन्मे तीजन बाई ने पांडवानी के जरिए महाभारत की कथाओं को मंच पर जीवंत कर भारतीय लोक संस्कृति को विदेशों में भी प्रतिष्ठित किया। प्रयागराज, वाराणसी, जौनपुर और बलिया सहित प्रदेश के कई पूर्वी जिलों में आज तेज हवाओं के बीच रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अगले 4 दिनों तक गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान जताया है। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, हर टन में ज्यादा लंबाई ज्यादा फायदा, कम खर्च में ज्यादा निर्माण। RHL Gold TMT सरिया।

0: 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
1: पंचो जय जवान जय किसान। हाँ तो पंच भाई हमन के ही नारा के साथ आज के बैठकी शुरू भई।
2: भैया देखा आपन जन बाटा कि एक जमाना रल है आपन जन पर अपन खेती अपन कैल जात रल है पारंपरिक ढंग से कैल जात रल है। नीचे भैया मान लो सब्जी की खेती होता तो मैंने ये देख ली बरसात के समय में जो बा भैया नीचे जो जमीन जब गीला हो जाला मन बड़ा सब्जी खराब हो
1: जाता। जो फल लगा ला वो सड़े लगा ला तो बहुत समस्या होला किसान भाई लोगन के आर्थिक क्षति के मतलब सामना करे पड़ा और साथ ही साथ सब्जी के उत्पादन भी कम हो जाला। ए नाते अब आज के समय में मचान विधि से सब्जी के खेती कैल और खासकर बरसात में कैल और अत्यधिक फायदेमंद है। काहे कि बरसात में अगर मचान विधि से खेती कैल जात बाटे तो हमें अगर बहुत ज़्यादा बारिश भी हो जात बा खेत में तो पानी लगने को हमें संभावना ना
2: भैया। पहले भी जैसे अपने यहाँ मान लो कोलाई बेढ़ा में अपन होत रहा भैया वो झमरा बना के खेती होत रहा है लेकिन तनी ऐसा खातिर होत रहा है मतलब लंबे समय तक ना होत रहा है। अब जब व्यावसायिक स्तर पे बड़े स्तर पे जब खेती कर जाए तो भैया अच्छे ढंग से उसका मचान अपन बनावल जाए तो
1: स्थाई मचान बना दे जला कि मतलब पूरा सीजन एक सीजन हाँ, तक वो मचान चले।
2: हाँ ई ना कि तनको हवा चले बिहार चला ढोई गए पता जो नुकसानो हो गया अपन।
1: खास कर लौकी और करेली को जन खेती होला वो मचान विधि से कैले पे इतना लाभ होला काहे कि जो बढ़वार होला वो करेली और लौकी का जो लंबाई बढ़ाला बहुत तेजी से बढ़ाला।
2: नेनुआ
1: ये सब उनके मचान विधि से
2: जितना सब बाज खेती से ये सब बाटे कैले से अपन बड़ा ज्यादा मने फलत भी ज्यादा हुई और फल पे अपन लंबाई भी बढ़े और
1: जब उत्पादन ज्यादा हुई तो किसान भाई की आमदनी भी ज्यादा हुई। ए नाते खास कर बरसात के मौसम में तो किसान भाई लोग पारंपरिक विधि से खेती करके छोड़ के मचान विधि से अपन खेती करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाएं।
2: भैया देखे इतना चर्चा हम चाहते लगला हते ठो बातचीत सुनवा दी। आम के विदेशी और रंगीन प्रजातियों के बागवानी से लाभ का होला डॉक्टर वीरेंद्र प्रताप सिंह से विनय कुमार भैया बतियावते हैं अपन किसान भाई सुने और लाभ उठावें।
3: किसान भाई बागवानी में सैगर आमदनी बा एकर उत्पाद भी बाजार में खरीदार बहुत हुआ और तो और अगर उच्च गुणवत्ता युक्त फल उत्पादन आप करत हनी तो एकर गहकी विदेश में भी बाना काफी मांग है। लेकिन सोचे के ई बा कि कौन कौन ऐसा फल हुआ जेकर विदेश में मांग बा वो फल का विशेषता का होके की चाहिए वो फल वाला पौधा का उपलब्धता कहाँ से प्राप्त हो सकेला। लेकिन आप लोगन के चिंता कैला का बात नहीं बा आज हम फोन लाइन से डॉक्टर वीरेंद्र सिंह डिप्टी डायरेक्टर औद्यानिक फल शोध एवं प्रशिक्षण केंद्र बस्ती से टेलीफोन द्वारा बातचीत करत है कि आम का जवन रंगीन और विदेशी प्रजाति है उनका विशेषता का है उनके लगावला से फायदा कितना मिल सकेला। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपका फोन लाइन से जुड़ला खातिर धन्यवाद बा। आप हमारे बागवान भाई के बताएं
4: आम की रंगीन प्रजातियों की आवश्यकता क्या है। तो इसमें हम बताना चाहेंगे किसान भाइयों को कि आम तौर पे जो हमारी पुरानी प्रजातियां हैं दशहरी लंगड़ा चौसा लखनऊ सफेदा और पूर्वांचल में खास करके गौरजीत प्रजाति इनको हम परंपरागत रूप से किसान भाई लगा रहे हैं। इनमें कुछ समस्याएं आती है कि गौरजीत जैसे अगेती फसल है शुरुआत में आ जाती है और जल्दी ही खत्म हो जाती है। अलग पैसा तो अच्छा मिलता है लेकिन इसकी बहुत दिन तक रखने की गुणवत्ता नहीं है। बहुत दिन तक हम कमरे के टेम्परेचर पे रख नहीं सकते हैं इसलिए बाहर भेज करके विदेश भेज करके पैसा कमाना इस प्रजाति से संभव नहीं है। यही हाल होता है दशहरी और लंगड़ा में जो एक निर्धारित समय के लिए आती हैं 10-15 दिन के लिए और आम का उस समय पीक होता है पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत आम बहुतायत में होता है एक साथ पकता है दशहरी का नवरोजा कहलाता है और अच्छे दाम नहीं मिलते हैं। दशहरी प्रजाति में भी यही हाल है लखनऊ सफेदा में यही हाल है इसको हम पकने के बहुत दिन बाद तक घर पे रख नहीं सकते। तो ऐसी स्थिति में अब किसान भाइयों की मजबूरी है कि ऐसी प्रजातियों का चयन करें नए बाग लगाने जा रहे हैं जिनकी गुणवत्ता अच्छी हो बाजार में एक्सपोर्ट क्वालिटी विदेशों में उनकी अच्छी मांग हो और स्वाद अच्छा हो इसके साथ ही साथ उसको ज्यादा दिन तक सुरक्षित रखा जा सकता हो। तो इसके लिए तमाम सारी नई प्रजातियां जो रंगीन किस्म की हैं आकर्षक हैं बड़े बड़े अच्छे माल में रख करके बेची जा सकती हैं अच्छा पैसा मिलेगा या विदेशों को भेजी जा सकती हैं जो उनको रखने की क्षमता अच्छी होती है। तो इसमें कुछ प्रजातियां जैसे पूसा श्रेष्ठा है।

0: आकार भी छोटा बनाए रखेंगे, जिससे कि सारे ऑपरेशन दवा डालना है या और कोई आम में फल में कवर चढ़ाना है बरसात से बचाने के लिए, फल मक्खी से बचाने के लिए, तो इसके लिए जरूरी है पौधा बहुत बड़ा 30-40 फीट ना हो करके 7 फीट 8 फीट 9 फीट हो, अधिकतम 10 फीट तक हो। तो ये सारे काम आराम से किए जा सकते हैं और गुणवत्ता नियंत्रित होगी।
1: डॉक्टर साहब, ये जितना आप प्रजात बताओ तनी, एकर
0: जी,
1: पौधा कैसे मिली?
0: सबसे बड़ी खुशी की बात है कि जो पूर्वांचल पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार में बस्ती जनपद में इजराइल सरकार के सहयोग से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फल उत्कृष्टता केंद्र बनाया गया है। आम उत्कृष्टता केंद्र है, केवल आम के ही पौधे, इन विदेशी किस्मों के और जो अच्छी वाली किस्में हैं, नई प्रजातियां हैं, उनके पौधे बनाए जा रहे हैं। और कीमत एकदम वाजिब रखी गई है, 50 रुपए प्रति पौधा कीमत है इसकी। जो और जो पुरानी प्रजातियां हैं, दशहरी, लंगड़ा, चौसा, लखनऊ सफेदा, रामकेला, गौरजीत, इनकी कीमत 50 रुपए है और बाकी रंगीन प्रजातियों की कीमत 55 रुपए प्रति पौधा की दर से है। जो किसान भाई मध्य उत्तर प्रदेश से हैं, बीच की जो उत्तर प्रदेश है वहां से हमारा सेंटर है आम पौध उत्पादन का मलिहाबाद में, वहां से अच्छी प्रजाति के इन्हीं प्रजातियों के पौधे ले सकते हैं। जो किसान भाई पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हैं, वो हमारा एक सेंटर है सहारनपुर में, वहां से इन अच्छी गुणवत्ता युक्त प्रजातियों के पौधे ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे हर जिले में जिला मुख्यालय पर करीब करीब अच्छी नर्सरियां हैं हमारे विभाग की, उद्यान विभाग की, वहां से जिला उद्यान अधिकारी से संपर्क करके और वहां की पौधशालाओं से गुणवत्ता युक्त अच्छे पौधे ले सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, पौधा खरीदत समय कौन बात है जौना के सावधानी से ध्यान पूर्वक देख के ही पौधा खरीदे ताकि पौधा मरे ना?
0: सबसे बड़ी चीज यही है कि हमको किसान भाइयों को पौधा हमेशा प्राथमिकता देनी चाहिए कि सरकारी पौधशाला से नहीं, उत्तर प्रदेश की सरकारी पौधशाला या भारत सरकार की सरकारी पौधशाला या कृषि विज्ञान केंद्र की कोई पौधशाला है उससे ही लेना चाहिए। अब उससे गारंटी ये रहेगी कि प्रजाति की गारंटी रहती है, मदर पौधे का सिलेक्शन वहां पर उसके फल, आकार, गुण, स्वाद सभी को देख करके किया जाता है, तभी उससे पौधे तैयार किए जाते हैं। एक तो ये गारंटी कर लें कि हम अच्छे स्रोत से लें, प्राइवेट हाथों में ना फंसे तो अच्छा रहेगा। जो पंजीकृत अच्छी नर्सरियां हैं, निजी पौधशालाएं, वहां से ले सकते हैं, लेकिन वैरायटी प्रजाति की संतुष्टि के बाद अच्छी तरह से प्रमाणिकता हो जाए तभी वहां से लें। और जो पौधे हम लोग बस्ती सेंटर में, मलिहाबाद सेंटर में, सहारनपुर सेंटर में, उद्यान विभाग में तैयार कर रहे हैं, उन पौधों की मिट्टी जो पॉलीथीन बैग में तैयार करते हैं और एक बैलेंस मात्रा में उसमें पोषक तत्व देते हैं, लगातार सिंचाई भी उतनी ही देते हैं जितनी चाहिए होती है, तो उसमें करीब 5 से 7 किलो तक मिट्टी रहती है। पहले वाली पिंडी नहीं रही, 1 किलो आधा किलो वाली नहीं, 5 से 7 किलो मिट्टी वाली पिंडी जो पौधा दिया जाता है हमारा तैयार करके बस्ती सेंटर से, वो पौधा 100% चलता है, उसमें कोई भी मरने की संभावना नहीं रहती है। फिर भी किसान भाइयों को चाहिए कि जब पौधा ले जाएं तो सावधानी पूर्वक ले जाएं, उसको पिंडी टूटने न पाए, ऐसे कायदे से लेकर के रखें, और चूंकि दूरी से आप ले जाते हैं तो छाया में रख दें और उसमें पानी डाल दें। पौधा जाते समय वाहन में उसमें टक्कर आता है तो मिट्टी में हिलने डुलने की चांस रहता है, जब मिट्टी हिलती है तो पिंडी के अंदर हवा जाने की गुंजाइश रहती है, और जैसे ही हवा उसमें जाएगी जड़ों के पास में, तो पौधा सूखने का डर रहता है, नंबर एक। नंबर दो, जब पौधा लगाते हैं उस समय भी ध्यान रखना चाहिए कि पिंडी टूटने न पाए, आराम से ब्लेड से काट करके उसको पन्नी को हटा दें और तब पौधे को लगाएं, तो पौधा मरेगा कतई नहीं।
1: पूर्वांचल में जितना भी आम का बागवानी है ओमे खास तौर से आम का गुम्मा रोग या यह तरह से कुछ बीमारी है जो उनकी पूरा बाग खराब कर देली, तो यह कुल प्रजातियन में का यह रोग से बचाव है या इसमें भी लगेला या कैसे एकर जानकारी करे के पड़ी?
0: कुछ प्रजातियां हैं जिनमें गुम्मा रोग शुरुआत में लगता है, जैसे आम्रपाली प्रजाति है जो पूर्वांचल में पहले लगाई गई है, तो शुरुआत में 5 से 7 साल तक इसमें दिक्कत रहती है, ऐसा दिखता है छोटा बहुत गुम्मा, तो उससे बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जहां भी दिखता है उसको काट करके तुरंत हटा दें और वहां पर फेंके नहीं खेत में, कहीं ले जा करके जमीन में गाड़ दें या जला दें, और आगे चल करके 7 साल बाद 6 साल बाद उसमें गुम्मा रोग नहीं आएगा। लेकिन ये जो प्रजातियां हमने बताई रंगीन किस्में हैं या विदेशी प्रजातियां हैं, इसमें गुम्मा रोग का प्रकोप नहीं होता है। फिर भी अगर कहीं दिखता है तो उसका इलाज किया जा सकता है, उसकी रोकथाम आराम से कर सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, ये बताएं कि चलत चलत आम का जो रंगीन विदेशी प्रजाति है ओकर एक बार और नाम बता दें।
0: जी, हमने बताई जो लखनऊ से 2 प्रजातियां निकली हैं।

0: वो एक प्रजाति है अंबिका और एक प्रजाति है अरुणिका। इसके अलावा दिल्ली से 5-6 वैरायटियां निकली हैं, पूसा सूर्या, पूसा श्रेष्ठा, पूसा अरुणिमा और पूसा प्रतिभा, पूसा पीताम्बर। ये मुख्य प्रजातियां हैं। विदेशी प्रजातियां हैं टामी अटकिन एक, और दूसरी सेंसेशन। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज, जब भी आम के पौधे किसान भाई लगाएं तो उसमें मिक्स करके कुछ प्रजातियां, जो बॉम्बे ग्रीन हमारी प्रजाति है, उसको जरूर 5 से 10% लगा लें। यानी कि 100 में 10 पौधे बॉम्बे ग्रीन के जरूर लगाएं बीच बीच में, क्योंकि इससे पॉलिनेशन अच्छा होता है, परागण बहुत अच्छा होता है, फलत अच्छी आती है। नंबर एक। नंबर दो, बाग को लगाने के लिए दक्षिणी पश्चिमी जो किनारा होता है उधर की तरफ घेर बार जरूर लगाएं, या ऐसे पौधे लगाएं जो लंबे होते हैं, जैसे लखनऊ सफेदा, उसके पेड़ बहुत लंबे होते हैं और उसका डंठल आम का बहुत मजबूत होता है, तो आंधी जो आती है उससे गिरते नहीं है। तो गर्म लू से बचाव के लिए दक्षिणी पश्चिमी किनारे पर इस तरह की सुविधा जरूर किसान भाइयों को कर लेनी चाहिए।
1: पापा
2: हम्म,
1: लाइए 3,000,
2: क्यों भाई?
1: मेरी पॉकेट मनी।
2: अरे अभी तो सिर्फ 2,000 ही कैश है।
1: ए पापा, बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो? डिजिटल पेमेंट चलाओ। है नहीं, हाँ सीधे यूपीआई से पेमेंट करो, इट्स इजी।
2: अरे वाह, मुझे भी सिखाओ, अपने 1,000 ले जाओ,
1: अपना मोबाइल लाओ।
2: ले ले।
3: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
4: हर लेन देन अब है आसान।
5: हाँ भैया, अपने किसान भाई सुनत रहना है बातचीत, आम के विदेशी और रंगीन प्रजातियों की बागवानी से लाभ, जान कहते थे डॉक्टर वीरेंद्र प्रताप सिंह जी और विनय कुमार भैया बतियात रहे हैं। डॉक्टर साहब के देल जान इतने इतने बड़ी जानकारी खातिर धन्यवाद।
6: और लगले हाथ कैल जा मन मनसाई सुनल जाई लोकगीत।

0: बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये बारा। डॉलकर ही नहीं, किनकर भी मिलता है, बच्चे भी खरीद सकते हैं। RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
3: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
4: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
3: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान। केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
4: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
3: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 6016 और STD कोड 022।
4: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा मेल आईडी है csumumbai@gmail.com।
5: भैया देखा, अपन इतना बढ़िया अपन लोग गीत अपन सुनत रहना किसान भाई लोन।
6: और भैया, फसल के चक्र के बारे में मिट्टी पर का प्रभाव पड़ा ला, ये विषय पर हमन के जानकारी सुनल जाए। और पर जानकारी देत बाटे हैं शिवम सिंह।
0: बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये बारा। डॉलकर ही नहीं, किनकर भी मिलता है, बच्चे भी खरीद सकते हैं। RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
3: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
4: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन

0: रहेगा आपका साथ।
1: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान। केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
0: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
1: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 6016 और STD कोड 022।
0: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है csumumbai@gmail.com।
2: नमस्कार किसान भाइयों, आज मैं आपको फसल चक्र का महत्व एवं लाभ के बारे में अवगत कराऊंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने पोषण के लिए विभिन्न प्रकार की फसलें उगाता आ रहा है। ये उगाई जाने वाली फसलें मौसम के अनुसार भिन्न भिन्न होती हैं। शुरू से ही किसी खेत में एक ही फसल ना उगाकर फसलें बदल बदल कर उगाने की परंपरा चली आ रही है, परंतु यह परंपरा विशेष वैज्ञानिक सिद्धांतों पर ना आधारित होकर सामान्य आवश्यकता के अनुसार चलती आ रही हैं। परंतु आज नए नए अनुभव एवं अनुसंधानों के आधार पर यह जान लिया गया है कि लगातार एक ही फसल को उगाने से उत्पादन में कमी आ जाती है। इस उत्पादकता को बनाए रखने के लिए फसल चक्र सिद्धांत बनाया गया। फसल चक्र, जिसको कि इंग्लिश में क्रॉप रोटेशन भी कहते हैं, आइए इसके बारे में कुछ जानते हैं। किसी निश्चित क्षेत्रफल पर निश्चित अवधि के लिए भूमि की उर्वरता को बनाए रखने के उद्देश्य से फसलों का अदल बदल कर उगाने की प्रक्रिया को फसल चक्र कहा जाता है। अर्थात किसी निश्चित क्षेत्र में एक नियत अवधि में फसलों का इस क्रम में उगाया जाना कि भूमि की उर्वरक शक्ति का कम से कम हास हो, उसे फसल चक्र कहते हैं। फसल चक्र का महत्व। वर्तमान समय में खेती में उत्पादन एवं उत्पादकता में ठहराव या कमी आने के कारणों को वैज्ञानिकता अध्ययन किए जाए तो निश्चित ही ज्ञात होता है कि इसमें फसल चक्र सिद्धांत को न अपनाया जाना भी एक महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि फसल चक्र सिद्धांत न अपनाने से उपजाऊ भूमि का क्षरण, जीवांश की मात्रा में कमी, भूमि से लाभदायक सूक्ष्म जीवों की कमी, मित्र जीवों की संख्या में कमी, हानिकारक कीट पतंगों का बढ़ाव, खरपतवार की समस्या में बढ़ोतरी, जल धारण क्षमता में कमी, भूमि के भौतिक रासायनिक गुणों में परिवर्तन, क्षारीयता में बढ़ोतरी, भूमिगत जल का प्रदूषण, कीटनाशियों का अधिक प्रयोग तथा नाश जीवों में उनके प्रति प्रतिरोधक क्षमता का विकास हमारे प्रदेश की सबसे लोकप्रिय फसल उत्पादक प्राण धान गेहूं मृदा उर्वरता के टिकाऊपन के खतरे बढ़ गए हैं। आज ना तो केवल उत्पाद वृद्धि रुक गई है, बल्कि एक निश्चित मात्रा में उत्पादन प्राप्त करने के लिए पहले की अपेक्षाएं ना बहुत अधिक मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करना पड़ रहा है, क्योंकि भूमि में उर्वरक क्षमता उपयोग का ह्रास बढ़ गया है। इन सब विनाशकारी अनुभवों से बचने के लिए हमें फसल चक्र, फसल सघनता के सिद्धांतों को दृष्टिगत रखते हुए फसल चक्र में दलहनी फसलों का समावेश जरूरी हो जाएगा, क्योंकि दलहनी फसलों से एक टिकाई फसल उत्पादन प्रक्रिया विकसित होती है। फसल चक्र के सिद्धांत। फसल चक्र के निर्धारण में कुछ मूलभूत सिद्धांतों को ध्यान में रखना जरूरी होता है, जैसे अधिक खाद चाहने वाली फसलों के बाद कम खाद चाहने वाली फसलों का उत्पादन। दूसरा, आपको मैं ये बताऊंगा कि अधिक पानी चाहने वाली फसल के बाद कम पानी चाहने वाली फसल उगाना। तीसरा, अधिक निराई गुड़ाई चाहने वाली फसल के बाद कम निराई गुड़ाई चाहने वाली फसल। चौथा, दलहनी फसलों के बाद अदलनीय फसलों का उत्पादन। पांचवा, अधिक मात्रा में पोषक तत्व शोषण करने वाली फसल के बाद खेत को परती रखना। छठा, एक ही नासी जीवों से प्रभावित होने वाली फसलों को लगातार नहीं उगाना। सातवां, फसलों का समावेश स्थानीय बाजार की मांग के अनुरूप रखना चाहिए। फसल का समावेश जलवायु तथा किसान की आर्थिक क्षमता के अनुरूप करना चाहिए। उथली जड़ वाली फसल के बाद गहरी जड़ वाली फसल को लगाना चाहिए। उत्तर प्रदेश में कुछ प्रचलित फसल चक्र इस प्रकार हैं।

0: जैसे कि परती पर आधारित फसल चक्र, जिसमें कि हमारा परती गेहूं, परती आलू, परती सरसों, धान परती आदि आते हैं। इसके बाद हरी खाद पर आधारित फसल चक्र, इसमें फसल उगाने के लिए हरी खाद का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि हरी खाद गेहूं, हरी खाद धान, हरी खाद केला, हरी खाद आलू, हरी खाद गन्ना आदि। इसके बाद हम लोग दलहनी फसलों पर आधारित फसल लगाते हैं, जिसमें धान, चना, कपास, मटर, गेहूं, जौर, बाजरा, चना, मूंगफली, अरहर, मूंग गेहूं, धान, चना, कपास, मटर, गेहूं, जौर, बाजरा, चना, धान मटर गन्ना, मूंगफली, अरहर, गन्ना, मसूर, मेंथा, मटर, मेंथा। अन्न की फसलों पर आधारित फसल चक्र, जिसमें कि मक्का गेहूं, धान गेहूं, ज्वार गेहूं, बाजरा गेहूं, धान गन्ना पेड़ी, मक्का जौ, धान बरसीम, चना गेहूं, मक्का उर्द गेहूं आदि आते हैं। सब्जी पर आधारित फसल चक्र, जिसमें कि भिंडी, मटर, पालक, टमाटर, फूल गोभी, मूली, बंद गोभी, मूली, बैगन, लौकी, टिंडा आलू, मूली करेला, भिंडी मूली, गोभी तरोई आदि आते हैं। अब हम आपको फसल चक्र के बारे में कुछ लाभ बताते हैं। किसी खेत में लगातार एक ही फसल उगाने के कारण कम उपज प्राप्त होती है तथा भूमि की उर्वरता खराब होती है, जिससे बचाव होता है। दूसरा, फसल चक्र से मृदा उर्वरता बढ़ती है, भूमि में कार्बन नाइट्रोजन के अनुपात में वृद्धि होती है। तीसरा, भूमि के पीएच तथा क्षारीयता में सुधार होता है। चौथा, भूमि की संरचना में सुधार होता है। पांचवा, मृदा क्षरण की रोकथाम होती है। सातवां, फसलों का बीमारियों से बचाव होता है। आठवां, कीटों का नियंत्रण होता है। नौवां, खरपतवार को रोकथाम होती है। दसवां, वर्ष भर आय प्राप्त होती रहती है। ग्यारहवां, भूमि में विषाक्त पदार्थ एकत्र नहीं हो पाते हैं। बारहवां, उर्वरक अवशेषों का पूर्ण उपयोग होता है। तेरहवां, सीमित सिंचाई सुविधाओं का समुचित उपयोग हो जाता है।
1: पंच भाई, इनके जानकारी सुन ली फसल चक्र का मिट्टी पर का प्रभाव बा, ए पर जितने जानकारी देते रहना शिवम सिंह, इनके जी हजार धन्यवाद। यही के साथ घड़ी के सुई इशारा कही रहा बा कार्यक्रम के समाप्त करे बदे, बेने फिर मिल जाए यही समय, तब तक खातिर पंचो, जय जवान, जय किसान।

0: ग्रामीण किसानों को संबोधित कार्यक्रम खेतीबाड़ी अब समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है।
1: आपकी पसंद आपका गाना और आवाज होगी आपकी। जी हाँ, आकाशवाणी का सबसे चहेता प्रोग्राम हेलो फरमाइश अब आप सुनेंगे हर रविवार प्रातः 10:05 पर। कर लीजिए तैयारी क्योंकि हर शनिवार दोपहर 11 से 12 बजे के बीच होगी हमारी रिकॉर्डिंग। तो देर किस बात की, अभी उठाइए अपना फोन और डायल कीजिए हमारा नंबर 0551-220-5386। 0551 हमारा STD नंबर है गोरखपुर का। नंबर एक बार फिर से 220-5386। अपनी फरमाइश हमें बताइए और जुड़िए आकाशवाणी गोरखपुर के साथ। कॉल करना भूलिएगा मत, हर शनिवार दोपहर 11 से 12 बजे के लिए।
2: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की DVDs और CDs हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharti

0: archives.co.in।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
0: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
3: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
4: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे TV चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
3: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट।
4: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
3: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
4: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
3: For details log on to www.ddindia.com।

0: स्वच्छ भारत, सुंदर भारत, स्वच्छता शब्द भर नहीं, सक्रिय सचेत कर्म है।
1: गंदगी को दूर भगाएं, साफ सफाई को अपनाएं।
2: अखबार, प्लास्टिक, कागज सबका सही ढंग से निपटान, स्वच्छता का संदेश फैलाएं, यही है हमारी पहचान।
1: स्वच्छता है जीवन की धारा, साफ सफाई संकल्प हमारा।
2: स्वच्छता अभियान सबकी जिम्मेदारी, स्वस्थ जीवन की है ये तैयारी।
3: ये आकर आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। प्रस्तुत है लोकगीतों का कार्यक्रम। लोकगीतों के कार्यक्रम में आज के कलाकार हैं परमात्मा राम त्रिपाठी व साथी

0: इस खेमटा के साथ ही लोकगीतों का कार्यक्रम यही समाप्त होता है। यह आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। प्रस्तुत है देश हमार। देश हमार कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं भोजपुरी काव्य पाठ। कवि हैं मुकेश कुमार।
1: देखी सभी आप लोग के सुझाव सुनी कि

मुकेश कुमार से अभी आप सुन रहे थे भोजपुरी काव्य पाठ। इसी के साथ देश हमार कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। विभिन्न प्रांतों के लोकगीतों के कार्यक्रम में आइए सुनते हैं मालवी निमाड़ी लोकगीत।

0: प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RKLI इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: पापा कॉलेज की फीस ज्यादा है।
3: बेटा
4: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे।
3: दो साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
5: तो अब बैंक जाके या वीडियो KYC से KYC अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री। चलो
2: कहाँ
3: एडमिशन कराने हैं,
5: खाता हुआ एक्टिव।
6: RBI कहता है
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: प्लेटो का कथन है, बुद्धिमान लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ होता है, और मूढ़ व्यक्ति इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी बोलना होता है। जीवन कठिन प्रतीत हो सकता है, लेकिन आपके करने योग्य हमेशा कुछ न कुछ होता है जिसे करके आप सफल हो सकते हैं। ये विचार है स्टीफन हॉकिन के।
9: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में आयोजित शक्ति केंद्र संयोजक सम्मेलन में हुए शामिल, कहा डबल इंजन की सरकार ने बिना भेदभाव हर वर्ग को दिया योजनाओं का लाभ। लखनऊ दौरे के दूसरे दिन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने NDA के सहयोगी दलों और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ की बैठक, आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर की चर्चा। केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम के तहत राज्यों को 25,000 करोड़ की सहायता राशि की जारी। अयोध्या के श्रीराम मंदिर चढ़ावा प्रकरण में जिला कारागार में 5 आरोपियों से फिर हुई पूछताछ, कल मंदिर ट्रस्ट की बैठक में महासचिव चंपत राय और सदस्य अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर होगा फैसला। और प्रदेश के कई जिलों में आज बारिश के बाद लोगों को गर्मी से मिली राहत, मौसम विभाग ने 8 से 10 जुलाई के बीच राज्य के अधिकांश हिस्सों में वर्षा का जताया अनुमान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ के राष्ट्र प्रेरणा स्थल में आयोजित शक्ति केंद्र संयोजक सम्मेलन में शामिल हुए। कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी मौजूद थे। जनसभा को संबोधित करते हुए श्री योगी ने कहा कि जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर वर्ग को बिना भेदभाव के पहुंचाया गया है, और डबल इंजन सरकार विकासोन्मुखी और जन कल्याणकारी कार्य निरंतर कर रही है।
10: आज जो विकास दिखाई दे रहा है, आज जो सुरक्षा का मॉडल है, आज जो सुशासन का मॉडल है, और जिस प्रकार से डबल इंजन की सरकार समाज के प्रत्येक तबके के लिए, क्या वो युवा हो, क्या वह आधी आबादी बहन और बेटियों के स्वावलंबन और सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, क्या वह अन्नदाता किसान हो, या गरीबों तक शासन की योजना का लाभ बिना भेदभाव के उपलब्ध करवाने का कार्य बिना रुके हुए, बिना डिगे हुए, बिना झुके हुए, बिना थके हुए निरंतर पहुंचाने का कार्य कर रही है।
9: इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की ये खूबी है कि यहाँ जो कार्यकर्ता बूथ पर काम करता है, जो शक्ति केंद्र में काम करता है, वो पार्टी के शीर्ष स्थान पर पहुंच सकता है। श्री नवीन ने कहा कि विगत समय में जिन विषयों को लेकर पूरी दुनिया में अस्थिरता रही, फिर भी हमारा नेतृत्व सजग रूप से जनता की चिंता करता रहा।

0: पिछले समय में जिन विषयों को लेकर पूरे विश्व में विक अस्थिरता रही, फिर भी हमारा नेतृत्व सजग रूप से हमारे लोगों की चिंता करता रहा। वैश्विक अस्थिरता के बावजूद भी हमारे नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जनता को कोई तकलीफ नहीं होने दिया। हमने ये चिंता की कि विश्व में कोई भी देश किसी भी प्रकार से काम करे, भारत की राजनीतिक और डिप्लोमेटिक राजनीति हमेशा सबको लेकर साथ चलने की रही।
1: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज लखनऊ में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, पूर्व अध्यक्षों और एनडीए के सहयोगी दलों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। इस दौरान 2027 विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की गई। उन्होंने दावा किया कि 2027 में प्रचंड बहुमत से लगातार तीसरी बार सरकार बनेगी। मीडिया से बात करते हुए भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने सेवा और विकास के एजेंडे पर जोर दिया। सहयोगी दलों की बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए अपना दल एसके उपाध्यक्ष और प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने बताया कि विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के साथ साथ गठबंधन सहयोगियों के बीच समन्वय को लेकर खास तौर पर बात की गई।
2: विशेष रूप से जो समन्वय का कार्य कैसे उस पर चर्चा हुई है, और मैं इतना जरूर कहूंगा आपको कि एनडीए के इस जीत में अपना दल ने हमेशा से महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है और आगे भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी।
1: केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1 जुलाई से विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण BBGRAMJI अधिनियम 2025 सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता जताई है। श्री सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की मुख्य सहायता राशि जारी की। श्री चौहान ने कहा कि जारी की गई 1 किस्त का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि राज्यों के पास पर्याप्त धनराशि हो, ताकि मजदूरी का भुगतान 15 दिनों के भीतर किया जा सके। उन्होंने कहा कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के सभी गांवों को समृद्ध और विकसित बनाना है।
3: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे, लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई, तो गाँव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गाँव का निर्माण हो जाएगा।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। अयोध्या स्थित श्री राम मंदिर चढ़ावा मामले में जांच तेज हो गई है। मामले के विवेचक ने आज जिला कारागार में 8 आरोपियों में से 5 से करीब 6 घंटे तक पूछताछ की। पेश है एक रिपोर्ट।
4: राम मंदिर दान घोटाला मामले में जांच लगातार आगे बढ़ रही है। मामले में सीओ अयोध्या और विवेचक आशुतोष तिवारी जिला कारागार पहुंचे, जहां उन्होंने 5 आरोपियों लोकेश मिश्रा, रामशंकर यादव टिन्नू, मनीष यादव, करुणेश पांडे और अनुकल्प मिश्रा से विभिन्न पहलुओं पर पूछताछ की। वहीं राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की कल होने वाली अहम बैठक पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। बैठक में दान घोटाला प्रकरण के साथ चंपत राय और अनिल मिश्रा के त्याग पत्र पर विचार किया जाएगा। ट्रस्ट के सदस्य राम मंदिर व्यवस्था सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर मंथन कर आगे की रणनीति तय करेंगे। तन्मय सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या।
1: गन्ना किसानों और उनके परिवारों को सामाजिक सुरक्षा देने के उद्देश्य से कल से 11 जुलाई तक प्रदेश की सहकारी गन्ना विकास समितियों द्वारा विशेष सुरक्षा जागरूकता और नामांकन महाअभियान संचालित किया जा रहा है। पेश है एक रिपोर्ट।
5: प्रदेश की सहकारी गन्ना विकास समितियां इस अभियान की मुख्य नायक के रूप में कार्य करेंगी। समितियां अब सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के प्रचार प्रसार, जागरूकता, नामांकन तथा लाभार्थियों तक योजनाओं की पहुंच में अग्रणी भूमिका निभाएंगी। समितियां केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने वाली प्रभावी संस्थागत व्यवस्था के रूप में स्थापित होंगी। अभियान के माध्यम से किसानों और उनके परिवारों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना सहित केंद्र सरकार की विभिन्न सामाजिक सुरक्षा सुरक्षा योजनाओं से जोड़ते हुए आर्थिक सुरक्षा, वित्तीय समावेशन और भविष्य की सामाजिक स्थिरता सुनिश्चित की जाएगी। अभियान के दौरान सभी समिति परिसरों में बैंकों, इफको, चीनी मिलों और अन्य सहयोगी संस्थाओं के संयुक्त सहयोग से विशेष सहायता और नामांकन काउंटर स्थापित किए जाएंगे। ये अभियान विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश के संकल्प को गति देने के साथ साथ किसानों के समग्र कल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। समाचार कक्ष से फजल इनाम।
1: उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2026 का आज इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में समापन हो गया। इस अवसर पर प्रदेश के उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने और यूपी के आमों को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि प्रदेश का आम वर्तमान में 30 से अधिक देशों में निर्यात किया जा रहा है और जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के शुरू होने से निर्यात को और बढ़ावा मिलेगा। श्री सिंह ने समापन समारोह में विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित किया और महोत्सव में 1501 प्रतिभागियों ने 3032 आम के नमूने प्रदर्शित किए। विभिन्न श्रेणियों में 147 पुरस्कार प्रदान किए गए। केंद्र सरकार ने कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर प्याज के खरीद मूल्य में 13% की वृद्धि की है। प्याज की कीमत अब 1875 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़कर 2125 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है। प्रदेश में मॉनसून आने के बाद से बारिश का सिलसिला जारी है। आज राजधानी लखनऊ समेत गाजियाबाद, हापुड़, जालौन, प्रयागराज, बलिया और जौनपुर सहित 10 शहरों में बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के अधिकांश हिस्सों में आगामी 8 से 10 जुलाई के बीच गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में आयोजित शक्ति केंद्र संयोजक सम्मेलन में हुए शामिल। कहा, डबल इंजन की सरकार ने बिना भेदभाव हर वर्ग को दिया योजनाओं का लाभ। लखनऊ दौरे के दूसरे दिन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने एनडीए के सहयोगी दलों और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ की बैठक। आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर की चर्चा। केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम के तहत राज्यों को 25,000 करोड़ की सहायता राशि की जारी। अयोध्या के श्रीराम मंदिर चढ़ावा प्रकरण में जिला कारागार में 5 आरोपियों से फिर हुई पूछताछ। कल मंदिर ट्रस्ट की बैठक में महासचिव चंपत राय और सदस्य अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर होगा फैसला। और प्रदेश के कई जिलों में आज बारिश के बाद लोगों को गर्मी से मिली राहत। मौसम विभाग ने 8 से 10 जुलाई के बीच राज्य के अधिकांश हिस्सों में वर्षा का जताया अनुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
6: हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक।
7: बिल भरने के पहले तो आएगी ना।
6: सुगंध, क्या हो रहा है?
7: बिल हो रहा है।
6: चल अपना कार्ड दे। पिन दे।
8: RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
9: यह आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। ICC महिला T20 वर्ल्ड कप 2026 टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मध्य लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड से अब से कुछ ही पलों में।
10: Studio.
11: Thank you.
10: Also, we have Vaishali Mathur, India's first class cricketer. Vaishali, you also have a lot to talk, right?
12: Yeah.
10: जी, बहुत सारी बातें आपसे स्टूडियो में करने वाले हैं। स्वागत है आपका। लास्ट एंड नॉट द लीस्ट बाय एनी मीन्स मोना पार्था सारथी, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, वेलकम अगेन। वी हैव अ लॉट मोर टू टॉक अबाउट गेम एंड व्हाट एग्जैक्टली आर द निटिग्रिटीज एंड यू आर द बेस्ट पर्सन टू टॉक अबाउट इट।
12: थैंक यू।
13: बहुत बहुत स्वागत है चेतन भाई। आप ही से शुरू करते हैं। वर्ल्ड कप का एक और फाइनल लॉर्ड्स की बात कर रहे हैं। 1983 वर्ल्ड कप भूलता नहीं, इसलिए जिक्र कर रहा हूं। लेकिन आज का मैच कैसे देखते हैं आप?
11: देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट मैच है और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की जब हम बात करते हैं तो आप रिवलरी की आप मतलब जितनी बड़ी बात कर लें उससे कम होगा। इंडिया पाकिस्तान की आप बात करते हैं, उधर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की बात करते हैं। लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए कि इंग्लैंड अपने घर में कोई वर्ल्ड कप का मैच अभी तक हारा नहीं है, और ये एक ऐसा ग्राउंड है कि जहां पर मैच अगर तीन मैचेस खेले गए हैं लॉर्ड्स में, दो टीमों ने चेस करते हुए मैच जीता और एक टीम ने डिफेंड किया है, और वो टीम कौन सी है? इंग्लैंड। तो बहुत चीजें हैं जो इंग्लैंड के पक्ष में जाती हैं, आप उसको राइट ऑफ नहीं कर सकते, लेकिन दोनों अनबीटन साइड्स हैं यहां हमारे सामने। जो अच्छी क्रिकेट आज खेलेगा ये ट्रॉफी उठाकर लेकर जाएगा।
10: वैशाली, बहुत सारे फैक्टर्स हैं ना जो जब भी हम क्रिकेट की बात करते हैं तो उनके बारे में बात करना वाकई ज़रूरी हो जाता है। सबसे पहली बात है, जैसे चेतन ने कहा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम है, एक भी मैच अभी तक नहीं हारी है। हमेशा हम बात करते हैं कि कौन सी टीम भारी रहने वाली है दूसरी टीम के ऊपर, ऑब्वियसली मुनीश उसके बारे में और भी बातें करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको लगता है हमारी दोनों टीम्स जो हैं उनके कैप्टन पहुँच चुके हैं ग्राउंड में, देखते हैं टॉस में क्या हो रहा है।
12: Defoes, I have match referee G.S. Lakshmi alongside our captains in Nat Sivabrunt and Sophie Molyneux from England and Australia respectively. Nat, you have the coin.
14: Heads.
15: Heads is the coin. It's heads.
14: We'll have a bowl.
12: Heads it is. Australia has won the coin toss. So what are Australia going to do?
14: We're going to have a bowl. Beautiful day out here, and yeah, we want to get out here, have a run around and hopefully put some pressure on them early.
12: It's a very Australian way sometimes to set and put runs on the board. Did you have a big conversation about what to do first?
14: Yeah, there's been a lot of discussion around it, but at the end of the day, you sort of have to go with your gut. I don't think the pitch will change too much.
12: At the start of the tournament, it was a Phoebe Litchfield watch. It turned into an Elise Perry watch with the quad awareness. Is Perry playing any other changes to the side?
14: We've got no changes. So, yeah, Pez pulled up really well from her training yesterday. And, very excited to come out here.
12: I read the other day that your childhood dream was to come to this ground with your dad and watch a test match. You're now here. I know he's in the stand as well. And you're captaining Australia. That's good to beat that, doesn't it?
14: Oh, it sounds pretty wild, to be fair. But, special day.
12: And five-day gap. Did you sort of just allow the players a little bit of time off just to freshen up the mind a bit?
14: Yeah, the girls got a couple of days off. Went across town from south of London to north and, started training over the last couple of days. So we're in a really good place.
12: We'll enjoy everything that is a final.
14: Thanks, Josie.
12: Matt, thanks. If it had fallen your way, would have things been different?
14: I was going to bowl as well, actually. It's a fresh wicket. Runs on the board in a final is no bad thing. So, happy to be sitting here batting first.
12: You've kept a pretty consistent team right throughout this tournament. Any changes from the semi-final win against South Africa?
14: No, we're unchanged.
12: Stick with that as well. Talk to me about your squad. And I'm not talking so much players, but just experience. Charlotte Edwards, captain a team on this ground in 2009. Heather Knight did it in 2017. If you sort of lent on them for experience, are you sort of thinking to yourself, I'm doing it my way?
14: It would be silly of me not to lean on that experience and then try and add my own little spin on it. I think the whole group throughout this tournament has obviously experienced different grounds, different conditions, different pressures, and we've produced some really good cricket along the way. So, hopefully we can do the same again today.
12: What wins it for England today?
14: One more run than the opposition, I suppose.
12: It's as simple as that. All the best. Go well, Matt. Australia have won the coin toss today, and they're going to bowl first in the final.
13: आकाशवाणी में अब एक बार फिर से आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता है, पहले बोलिंग करने का फैसला किया है। गर्मी बढ़ रही है लंदन में, विंबलडन हो चाहे लॉर्ड्स हो, पंखे निकल कर आ गए, उसी गर्मी को हम यहाँ पे कायम रखते हैं। वैशाली, आपसे जानना चाहेंगे, टॉस जीता, आपने सुना दोनों कप्तानों ने कहा कि हम टॉस जीते तो चेज ही करते, आपके विचार?
16: इस पिच पे अगर देखें ना तो ये 75% ऑफ बैटिंग पिच है एंड 25% बॉलिंग पिच है। अगर बॉल के बारे में बात करें तो स्टार्टिंग में मीडियम पेसर को काफ़ी स्विंग में फ़ायदा देगी, लेकिन जैसे जैसे बॉल पुरानी होती जाएगी वो स्पिनर्स पे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो मुझे ये लगता है कि इस पिच पे 180 प्लस का स्कोर जरूर देखेगी इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के सामने। एंड उसके साथ ऑस्ट्रेलिया ने, मुझे ये लगता है कि ऑस्ट्रेलिया ने ये जो बॉलिंग लेने का निर्णय लिया है वो बहुत कॉन्फिडेंट है अपनी बॉलिंग के ऊपर। एंड दे नो कि जिस तरह से बॉल, हम कहते हैं कि बॉल रिएक्ट करती है धीरे धीरे, वो कम उसकी स्विंग एंड वो सब कम होता जाता है तो वो स्पिनर पे ज़्यादा फोकस करती है. तो आई थिंक इस यही एक बेनिफिट की वजह से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया ने बॉलिंग लेने का निर्णय लिया है.
13: ढेर सारी बातें करेंगे लेकिन अपने कॉलर्स को बता दें कि अगर आप इस शो में जुड़ना चाहते हैं वर्ल्ड कप में हैट्रिक लेने वाले हमारे दिग्गज खिलाड़ी चेतन शर्मा मौजूद हैं, मोना पार्थसारथी मौजूद हैं, वैशाली माथुर हमारे साथ मौजूद हैं और मेरे साथ गीतांजलि सोनी मौजूद हैं जो टेलीफोन रिसीव करेंगी. तो टेलीफोन नंबर्स मैं जल्दी से बता देता हूँ. हमारे नंबर्स हैं 2342-1084, 2342-1085. दिल्ली का कोड है 011, उसे लगाना बिल्कुल ना भूलें. 2342-1084, 2342-1085. गीतांजलि
10: जी मनीष, बहुत सारी बातें इनफैक्ट हमारे कॉलर्स हमसे करना चाहते हैं. जैसा नंबर आपको बताया उन नंबर्स पे आप जरूर कॉल करें. मोना, बहुत सारे फैक्टर्स इनिशियली मैं कह रही थी चर्चा जरूर करेंगे उस बारे में, लेकिन सबसे पहले पिच की बात करें. लाइक वैशाली कह रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होने वाली है उन लोगों को जो स्टार्ट पहले कर रहे हैं.

0: बैट करने से, राइट? लेकिन मुझे ये लगता है कि बहुत सारे लोग जब हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट व्हाट पिच इज़ गोइंग टू डू, इट वाज ऑलवेज लाइक बिकॉज इंग्लैंड का होम ग्राउंड है और इंग्लैंड ने अभी तक यहाँ पर एक भी मैच नहीं हारा है, उनको ये एज मिलेगा? मिलेगा
1: इंग्लैंड को न सिर्फ मैदान का एज मिलेगा, बल्कि आप कहीं भी देखिए जो इंग्लैंड के लॉर्ड्स का मैदान इतना बड़ा है और उसमें पूरा होम सपोर्ट इंग्लैंड को मिलेगा, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। और उसके अलावा पिच की जो आप बात कर रहे थे, तो 158 एवरेज स्कोर रहा है इस पिच पर, और हमेशा चेस करने वाली टीम जैसे चेतन सर बोल रहे थे यहाँ जीतती है और उनको फ़ायदा मिला, इसीलिए दोनों कैप्टन्स ने भी ये कहा कि अगर वो टॉस जीतते तो वो भी शायद चेस करना पसंद करते। और काफ़ी ही रोचक मुकाबला रहने वाला है क्योंकि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों की अगर हम अभी तक का जो उनका सफ़र रहा है उसकी बात करें तो एकदम बराबर नज़र आती हैं। इंग्लैंड पिछले 2 साल में 18 महीने में बिल्कुल ट्रांसफॉर्म टीम नज़र आ रही है, तो काफ़ी एक मुझे लगता है रोचक मुकाबला रहने वाला।
0: जी, और अभी रोचक बात यह है कॉलर हमारे साथ जुड़ना शुरू हो गए हैं और उम्मीद करते हैं पहले कॉलर एकदम डायरेक्ट सवाल पूछेंगे हमारे एक्सपर्ट से। नमस्कार
2: जी। नमस्कार
0: जी, नाम बताइए अपना।
2: जी, मैं गुजरात सराज से अशोक नाई बात कर रहा हूँ।
0: जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं?
2: देखिए मैम, मेरे ख्याल से सोफिया डंकली को मौका नहीं देना चाहिए मेरे समझ से परे, और क्या कितना टोटल होना चाहिए अगर जीतना है तो इस मैदान पर?
0: जी, टोटल की चर्चा जरूर करेंगे, सोफिया के सिलेक्शन से खुश नहीं है। सो चेतन, वी विल हैव लॉट मेनी क्वेश्चंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर इज नो चेंज मेड बाय एनी टीम, सो व्हाट एग्जैक्टली यू फील अबाउट द टीम?
3: देखिए, दोनों अनबीटन साइड्स हैं और जब आप जीतते आते हैं तो हर समय ये कहा जाता है कि ज़्यादा बदलाव ना करेंगे तो अच्छी बात है आपकी टीम के लिए। और टॉस के समय अगर आप दोनों कैप्टन्स का रिएक्शन देखें, ऑस्ट्रेलिया तो टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करना चाहती थी, उनके सोच में ये है कि आप फील्डिंग करें। बट मैं हर समय ये कहता हूँ कि इतने बड़े मंच पर आकर जब आप रहते हैं ना, रन्स ऑन बोर्ड हर समय आपकी मदद करता है इस प्लेटफॉर्म पर आकर। और इंग्लैंड की कैप्टन की भी यही सोच थी कि ठीक है हम टॉस हार गए लेकिन रन्स ऑन बोर्ड हो सकता है कि ये प्रेशर में डाल दे, क्योंकि ये प्रेशर गेम रहेगा आपके सपोर्ट, जो कहते हैं ना सपोर्ट इंग्लैंड को रहेगी, क्राउड आपके अगेंस्ट रहेगा, आप चेस कर रहे हैं, मैं ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा हूँ इस समय, तो चीज़ें अच्छी नहीं होगी ऑस्ट्रेलिया के लिए इफ इंग्लैंड गेट अराउंड 170-180। देखिए 150 पे कुछ नहीं होगा, 150 ये ग्राउंड ऐसा है कि इट्स ए ब्यूटीफुल विकेट, इसके ऊपर हम देख चुके हैं ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मैच भी इसी ग्राउंड पर हुआ था, 170 रन एक ओवर पहले चेज कर दिया था ऑस्ट्रेलिया ने, और लास्ट 10 ओवर में उस समय गीतांजलि 107 रन थे, स्टिल 1 ओवर टू स्पेयर दे फिनिश द गेम, तो वहां से अनुमान लगाया जा सकता है ये विकेट कितनी अच्छी है, तो इसलिए 180 ऑन अ फाइनल गेम विल बी अ प्रेशर ऑन ऑस्ट्रेलिया डेफिनेटली।
0: चेतन, अभी तक 186 हाईएस्ट स्कोर रहा है इस ग्राउंड पर,
3: 180 बना दीजिए।
4: राइट देन वैशाली, तो आपने जो अनुमान लगाया 180-185, उसके पास मेरे ख्याल से इंग्लैंड की भी टीम जो है वही यही सोच रही होगी। बट मैं आपसे जानना चाहता हूं कि यहां पे एक प्लेयर हैं एशली गार्डनर, उनके बारे में जिक्र करना चाहता हूं, शी इज बीन एन ऑलराउंड प्लेयर ऑफ द मैच पिछले गेम में। हाउ गुड इज ऑस्ट्रेलिया? ठीक है एशली गार्डनर के बारे में हम शक नहीं कर रहे, लेकिन वॉट डेप्थ है उनके बैटिंग में भी बोलिंग में भी, अगर हम देखें क्या खास आपको दिखता है ऑस्ट्रेलिया में, ऐसा कैसे कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं?
5: देखिए उनके पास ऑलराउंडर बहुत अच्छे हैं, एलिसी पेरी वो एक ऐसी ऑलराउंडर है जो आपके मीडियम पेसर में ही सिर्फ बॉलिंग में ही फ़ायदा नहीं देती, आपको बैटिंग भी करके देती है। और उनका ये खासियत, तो उन्होंने 170 स्कोर जब हुआ था इंडिया के अगेंस्ट और वहीं वहाँ पे खड़े होकर उन्होंने बैटिंग भी की थी उस टाइम पे, तो ये एक बेनिफिट होता है एक्सपीरियंस प्लेयर का। और एलिसी पेरी वो प्लेयर है जो WPL में भी बहुत अच्छा करके गई है, एंड उसकी वजह से वो काफ़ी बेटर इम्प्रूवमेंट इम्पैक्ट पड़ता है एक टीम पे, तो ये एक फ़ायदा है। और दूसरा मैं ये कहूँगी कि इंग्लैंड के पास एक बेनिफिट ये है कि वो अपने होम ग्राउंड पे खेल रहे हैं, एंड उसके साथ उन्होंने इसी ग्राउंड पे इंडिया के साथ मैचेस खेले हैं, सीरीज खेली हैं, और वो उन्होंने एक एक्सपीरियंस गेन किया उनके बैटर और बॉलर्स ने।
4: मोना, आपसे एक बहुत छोटी सी बात जानना चाहूंगा, ये अलीसे पेरी के बारे में बात हो रही है, आपने कभी देखा कि सेमीफाइनल में रिटायर्ड हर्ट होके विमेंस क्रिकेट में एक प्लेयर को बाहर बुला लिया क्योंकि फाइनल गेम तैयारी कर रहे हैं?
1: जिस तरीके से सेमीफाइनल में वो रिटायर्ड हर्ट होके बाहर गई थी तो लग रहा था कि पता नहीं फाइनल खेल पाएंगी या नहीं, लेकिन पिछले 2 प्रैक्टिस सेशन में वो नजर आई और उससे लग गया था कि इतना बड़ा मैच है वो इस मैच से अलग नहीं हो सकती। और कैप्टन्स प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने कहा था कि वो पूरी तैयारी कर रही हैं, सारा कुछ जतन उन्होंने कर लिया है कि किसी तरह से उनको ये फाइनल खेलना है, 7th अभी तक वो 6 बार जितना ऑस्ट्रेलिया जीती है उन्होंने काफ़ी अच्छा सफ़र देखा है। और 2023 से जैसा कि आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया कोई आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीत पाई है, तो ये एक बहुत बड़ी खिलाड़ी है और उनको बाहर रखने का मुझे नहीं लगता जोखिम ऑस्ट्रेलिया ले।
0: और एक जोखिम हम कभी नहीं ले सकते, हमारे कॉलर्स को बाहर रखने का, एक कॉलर जुड़ गए हमारे साथ। नमस्कार।
6: हेलो
0: जी, नाम बताइए।
6: चेतन शर्मा जी नमस्कार।
3: नमस्कार जी।
6: नमस्कार, आप आ गए तो मेरे बहुत खुशी हो जाता साहब। मैं 1970 से कमेंट्री सुन रहा साहब।
3: नहीं आप, मैं आपका इंतजार कर रहा था, आप कब आएंगे, आपका टेलीफोन कब बजेगा।
6: साहब आप शारजा में एक बार मैच हो रहा था जब क्या हुआ, आप हैट्रिक नहीं है, मेरे को याद है अभी तक।
0: जी सभी को याद है हैट्रिक।
6: और एक मैच में जावेद ने आपका बॉलिंग में लास्ट में छक्का मार के मैच विन हो गया था साहब।
3: जी जी जी जी,
0: बहुत इंटरेस्टिंग मेमोरीज।
6: अभी तक याद रहता है, आप आते में वही याद आता साहब, खेल में हैदराबाद उस्मान गंज।
3: आज वुमेन्स क्रिकेट की बात करते हैं और छोड़ देते हैं सभी को
4: जी। वो मेरे ख्याल से वो कुछ और बोलना चाह रहे थे, लेकिन
0: जस्ट
4: आउट ऑफ दिस एक्साइटमेंट मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, शारजा की बात की, गर्मी याद आ गई। अब आपने 86 में टूर किया था, घातक स्पेल डाला था इंग्लैंड में, तब का मौसम इतना चेंज हो गया पाजी, प्लेयर्स कैसे अडैप्ट कर लेते हैं इन गर्मियों में और इन टेम्परेचर चेंजेस।
3: देखिए कभी आप सोच नहीं सकते कि अगस्त सितंबर में इंग्लैंड में डे नाइट क्रिकेट होगी। आज के समय में देखिए डे नाइट क्रिकेट आप खेलते हैं, वहां से अनुमान लगाया जा सकता है कि कैसा टेम्परेचर में बदलाव हुआ। पूरे वर्ल्ड में अगर आप देखें टेम्परेचर में बदलाव है। इस विकेट के ऊपर मैं बात करूंगा, इन दोनों टीम्स की बात करूंगा, 9.2 पूरे टूर्नामेंट में 9.2 पर ओवर के हिसाब से इंग्लैंड ने रन बनाए हैं, 9.4 के हिसाब से ऑस्ट्रेलिया ने रन बनाए हैं। यहाँ पर एडवांटेज अगर हम, मैं मनीष और गीतांजलि बात करूँ, एडवांटेज किस पक्ष में जाता है, वो जाता है थोड़ा ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में, क्योंकि उनके गेंदबाजों ने 6.2 पर ओवर इकोनॉमी से गेंदबाजी की है। देखिए आपको मैचेस कौन जिताएगा, मैचेस आपको T20 क्रिकेट हो या टेस्ट मैचेस हो, आपको गेंदबाज, आप 200 रन बना देंगे, आपके गेंदबाजों में दम नहीं है तो 200 रन ऑपोजिशन चेस कर लेगी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की अगर आप इकोनॉमी देखें गेंदबाजों की 6.2, तो ये थोड़ा एडवांटेज जाता है। लेकिन वो एडवांटेज तब आता आपके पास ज्यादा, अगर मैं कैप्टन होता, कि जब मैं पहले बल्लेबाजी करके 180-190 ऑन बोर्ड लगाता और दूसरे को चेस करने देता, क्योंकि मेरे गेंदबाजों की जो इकोनॉमी रेट है वो 6.2 है। या तो आप ऑस्ट्रेलिया जाए और 6.2 से रोकने की कोशिश करें, इसका मतलब 140 के आसपास आप इंग्लैंड को रोकने की सोच रहे हैं, अगर मैं आपके आंकड़े देख रहा हूँ। तो लेट्स सी व्हाट ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स डू नाउ।
0: और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है मोना, अगर आप दोनों टीम को एनालाइज करें तो जो इंग्लैंड ऑफ कोर्स एक होम ग्राउंड का तो उनके पास एडवांटेज है, लेकिन वो बहुत रिलाय करते हैं अपने इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे, मतलब अभी जो हम देख रहे हैं उनका प्लेइंग स्टाइल। जहाँ ऑस्ट्रेलिया को देखो तो बहुत ही अच्छी कलेक्टिव, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम नज़र आ रही है, तो ये एक एडवांटेज तो ऑस्ट्रेलिया के पास बाय डिफॉल्ट है। प्लस ऑब्वियसली वॉल ने भी 101 रन बनाकर नंबर वन क्रिकेटर बन गई हैं, सो वो भी बहुत बड़ा एडेड एडवांटेज है ये।
1: देखिए अभी बहुत बातें हो रही थी कि जब इंग्लैंड की टीम बहुत ज़्यादा डैनी वेयर्ट पर डिपेंड करती है, लेकिन आपने सेमीफाइनल में देखा 3 विकेट गिर गए थे उनके 23 रन पर, और उसके बाद जिस तरीके से नेट सीवर ब्रंट ने या हीटर नाइट ने जिस तरह की पार्टनरशिप की और जो टीम को जीत तक ले गए। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो 2017 की टीम थी जिसने वनडे वर्ल्ड कप जीता था, उसमें से कैप्टन और हीटर नाइट और डैनी तीनों प्लेयर के पास काफ़ी एक्सपीरियंस है वर्ल्ड कप का, वो कहते हैं ना बीन देयर डन दैट, तो वो वर्ल्ड कप जीतने का अनुभव उनके पास है। और यहाँ एक और बात रोचक है कि जो इनकी कोच है चार्लोट एडवर्ड्स, 2009 में जब पहली बार इनॉग्रल जीता था वर्ल्ड कप इंग्लैंड ने, एकमात्र जो जीता है अभी तक, उस समय वो उस टीम की प्लेयर थी, तो उनको अनुभव है कि कैसे जीते जाते हैं वर्ल्ड कप। और वही जिस टीम को उन्होंने हराया था ऑस्ट्रेलिया की, उसकी जो प्लेयर थी शैली निशके, वो भी ऑस्ट्रेलिया की कोच है, तो कोचों का भी एक अलग ही मुकाबला यहाँ चल रहा है कि कौन किस पर भारी पड़ता है।
4: वी आर हैविंग अ लवली डिस्कशन हियर बिकॉज़ यू नो बहुत अच्छा पैनल हमारे पास है, एंड वी आर जस्ट गोइंग इनटू द डेप्थ ऑफ द फाइनल। आकाशवाणी में आप ये प्रोग्राम सुन रहे हैं फर्स्ट बॉल 20, हमारे साथ चेतन शर्मा मौजूद है, मोना पार्थ सारथी मौजूद है, वैशाली माथुर हमारे साथ मौजूद है, गीतांजलि भी रन अप ले रही है, वो थोड़ा सा रन अप ले रही है। तो मैं एक सवाल पूछ लेता हूँ वैशाली, हमने स्टैट्स की बात कर ली, ऑन ग्राउंड आज की डेट में अगर मैं आपसे कहूँ कि इंग्लैंड को ठीक है रन तो बनाने, लेकिन ऐसी क्या स्ट्रेंथ आपको इन दोनों टीमों में किसकी ज्यादा दिख रही है, पहला सवाल ये। और दूसरा ये कि इंग्लैंड की तरफ से ऐसा क्या उनको पावर प्ले में या स्लो गोज में अलग करना पड़ेगा जिससे वो आगे हो जाएं।
5: इंग्लैंड में नेट सीवर अभी इस टूर्नामेंट की हाईएस्ट रनर है,
4: जो
5: उनके ज़्यादा रन्स है, तो उनके पास ये एक बेनिफिट है इंग्लैंड टीम के पास. एंड उनके पास एक डैनी वॉट है जो ओपनर आती हैं, एंड जो पावर प्ले में वो एग्रेसिव प्ले करती हैं वो शानदार है, काबिले तारीफ़.

0: है। और अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूँ तो ऑस्ट्रेलिया में भी बैटर बहुत ज़बरदस्त है, बेथ मूनी है उनके पास, जो उनकी कंसिस्टेंसी काफ़ी बेटर है।
1: जी
0: इंडिया के अगेंस्ट भी उन्होंने काफ़ी अच्छा खेला है और बाकी मैचेस में भी उन्होंने काफ़ी बेटर करते हुए दिखाई दी हैं।
1: जी
0: तो दोनों टीमों में आज जो बॉलिंग एंड बैटिंग दोनों टीमें अच्छी करती हैं, लेकिन जो फील्डिंग, जो मेन पार्ट है वो है फील्डिंग। आप फील्डिंग कितना अच्छा करते हैं वो ज़्यादा मैटर करती है।
1: ऑल राइट, इससे पहले कि गीतांजलि अपनी रनअप के साथ आए और एक अगला सवाल पूछे, भारतीय रिप्रेजेंटेशन भी है इन दोनों टीम्स में। पाजी, आईपीएल में लगभग लगभग सारी प्लेयर्स जो हैं इंग्लैंड की और ऑस्ट्रेलिया की, आईपीएल में कहीं ना कहीं किसी टीम से वो लोग खेल चुकी हैं, सो वो एक तरह का इंडियन रिप्रेजेंटेशन हो रहा है।
2: जी, और रिप्रेजेंटेशन की आप बात कर रहे हैं तो दोनों कैप्टन्स की ना, चेतन मैं चाहती हूँ आप थोड़ा सा एनालाइज करें दैट बोथ द कैप्टन्स, इंग्लैंड की जो हेथनाइट हैं और ऑस्ट्रेलियन की नए कैप्टन है सोफी, इनमें से किसकी कैप्टनसी आपको बहुत इफेक्टिव लग रही है?
3: देखिए दोनों टीमें अनबीटन आई हैं अभी तक, और अनबीटन जब आती हैं तो ऑब्वियसली बोथ कैप्टन्स हैव डन वेल। अभी मनीष ने जो क्वेश्चन पूछा था ना किसके ऊपर इंग्लैंड रिलाई करता, मैं कहूंगा ओपनर्स के ऊपर, बिकॉज दे आर वेरी एक्सप्लोसिव। और अगर एक चांस इंग्लैंड के पास बनता है वो बनता है कि आप पहले 6 ओवर्स को कैसे भुनाते हैं, फर्स्ट 6 ओवर्स, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल, एक्चुअली मेरे साथ डिबेट हुआ है कि लॉट ऑफ पीपल थिंक कि 7 से 15 बहुत इंपॉर्टेंट ओवर्स होते हैं। मैं हर समय एज ए बॉलर मानता हूँ कि पहले 6 ओवर्स हर समय इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, बिकॉज दैट विल टेक अवे द गेम फ्रॉम यू। देखिए कैप्टन्स का रोल कैसा होता है गीतांजलि, जो आपने बोला कैप्टन तो सभी बनते हैं, लीडर कौन बनता है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, अपनी टीम को कौन लीड करता है, जो परफॉर्म करेगा। और अभी तक मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया हैज डन ए ग्रेट जॉब, बिकॉज अगर आप ऑस्ट्रेलिया के सेमीफाइनल्स और नॉकआउट गेम्स देखें ना, वेस्ट इंडीज को कैसे धाराशाही किया, वो कॉन्टेस्ट नहीं रहना देते हर समय, दे जस्ट फिनिश द ऑपोजिशन। जैसे नॉकआउट स्टेज पे ऑस्ट्रेलिया आती है दे नेवर वांट कि कॉन्टेस्ट रहेगा, तो दैट इज द बेस्ट पार्ट। तो ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलियंस आर टफर व्हाट इंग्लैंड आर, बट इंग्लैंड के जो रिकॉर्ड्स, अभी मैम भी बोल रहे थे कि दे आर अनबीटन वर्ल्ड कप में, आज तक इंग्लैंड में हारे नहीं, होम सपोर्ट होगा, अपनी विकेट्स को जानते हैं, थोड़ा सा होम एडवांटेज रहता ही है आपको, तो इट्स गोइंग टू बी अ कंटेस्ट। बट मैं सिर्फ चाहता हूं बैटिंग करते हुए इंग्लैंड 180 रन बना दे, एंड आई वांट टू सी ऑस्ट्रेलिया चेजिंग दैट।
1: और चेतन भाई आप कह रहे हैं कि 180 विनिंग स्कोर होने वाला है,
3: देखिए हो सकता है, देखिए आप यू कैन नॉट अंडर एस्टिमेट ऑस्ट्रेलियंस, नंबर 10 तक बैटिंग करते हैं वो, और जैसे उन्होंने इंडिया के खिलाफ ताबड़तोड़ की, मुझे तो, मैं भी था यही स्टूडियो में था उस दिन, में मुझे लग रहा था एक तरफा इंडिया मैच जीतेगी, और मैच ऐसे गया हाथ से कि मतलब आप पूछ नहीं सकते। तो ऑस्ट्रेलिया गॉट अ डेप्थ एंड ऑस्ट्रेलियंस आर वेरी टफ, स्पेशली इन नॉकआउट गेम्स।
1: हमारे हाथ से कॉलर ना चले जाए।
2: हां बिल्कुल, वो टफ कॉलर हमारे साथ हैं अभी तक, उनसे बात करते हैं। हेलो
4: हेलो, नमस्कार मैम।
2: नमस्कार जी, नाम बताइए और सवाल पूछिए अपना।
4: मैम मेरा नाम उमाशंकर सिंह है, मैं यूएस सपोर्ट किसी को बोल रहा हूं।
2: हां जी
4: मैम, जितने के अभी तक सब लोग ने मैच मैं जैसे चाहे वो
2: जी, अगर आपने अभी तक हमारा शो सुना है लगातार और आप फोन करने में बिजी नहीं थे तो इसकी चर्चा हो चुकी है। बिल्कुल, दोनों टीम्स हमारे एक्सपर्ट्स बता रहे हैं लगातार कि हर एक के पास कुछ प्लस पॉइंट्स हैं और कुछ उस पे चीज़ें वर्कआउट होंगी, बाकी तो आप जानते हैं जो क्रिकेट है अनिश्चितताओं का खेल है, हमेशा हम यही कहते हैं। एक बार फिर आपको बता दें, आप सुन रहे हैं फर्स्ट बॉल 2020 और हमारे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं चेतन शर्मा हमारे साथ, मोना पार्था सारथी हैं और हमारे साथ हैं वैशाली माथुर, मैं हूं गीतांजलि सोनी और मेरे साथ हैं मुनीश जौली।
1: मोना, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि जर्नलिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप दो दिग्गज टीमों को देखते हैं कितना आसान या कितना मुश्किल होता है एनालिसिस करना, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि टॉप प्लेयर्स खेल रहे हैं यहाँ पे, सो हाउ इजी और डिफिकल्ट इट इज फॉर स्क्रिप्टिंग यू नो अ मैच लाइक दिस बिफोर द फर्स्ट बॉल इज बोल्ड।
5: मुनीश जी, कई बार तो ऐसा होता है कि लास्ट बॉल में पूरा इंट्रो बदलना पड़ता है, पूरी कॉपी चेंज हो जाती है, ऐसे भी कई बार हुआ है, और तब अगर इंडिया का मैच नहीं है तो कभी चाहे कोई कितना भी बोले कि आप जर्नलिस्ट हैं, आप अच्छे गेम को एनकरेज करें, लेकिन जहां इंडिया एंगल आता है थोड़े से हमारे भी इमोशंस आ जाते हैं उसमें, लेकिन अब यहां तो आपको तटस्थ होके देखना है कि कौन टीम कैसा खेल रही है। और मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा क्रिकेट अब होने लगा है ना कि सब एक दूसरे के खिलाफ काफ़ी क्रिकेट खेलते हैं, तो अब वो ज़माना नहीं रहा कि आपको वर्ल्ड कप में ही दो दिग्गजों की टक्कर देखने को मिल रही है। और अभी जैसे चेतन सर कह रहे थे कि ज़्यादातर सारे प्लेयर्स जो हैं वो हम WPL में इनको देखते हैं। तो अभी ऐसा कुछ नहीं रह गया है कि आप कुछ एक दिमाग में प्रिजिडिस लेके बैठेंगे कि हाँ ये ऑस्ट्रेलिया है, नो डाउट

0: ऑस्ट्रेलिया नॉकआउट में आने के बाद सामने कोई कंटेस्ट रहने नहीं देती दूसरी टीम पर, एक साइकोलॉजिकल गेम भी उनका चलता रहता है लगातार। लेकिन फिर मैं वही बात कहूंगी कि आपस में इतना आजकल इंटरनेशनल क्रिकेट खेला जा रहा है कि सब एक दूसरे के वीकनेसेस और स्ट्रेंथ जानते हैं, और जर्नलिस्ट भी जानते हैं कि क्या एक्सपेक्ट करना है, और कभी कभी स्क्रिप्ट चेंज हो जाती है।
1: जी वैशाली, एज अ क्रिकेटर बहुत सारे मोमेंट्स आपने भी एक्सपीरियंस किए होंगे। अभी जो कंडीशन चल रही है आप देख रहे हैं, थोड़ी देर में हम भारतीय टीम की भी बात करेंगे, बहुत सारे हमारे श्रोता जानना चाहेंगे इस बारे में। लेकिन अभी जो टीम है, आप इंग्लैंड की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, एक अलग जज्बा आपको ऑस्ट्रेलियन टीम में नज़र आता है, क्या कारण है? आप देखा जाए तो हमारी भी भारतीय टीम वो बहुत ही ज़्यादा सशक्त टीम है, बहुत ही स्ट्रांग टीम है। कौन से ऐसे पॉइंटर्स हैं जो आपको लगता है कि मिस कर गए और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलियन टीम के पास वो बहुत ही स्ट्रांग तरीके से मौजूद हैं?
2: इंडिया के बाद मेरी तो सबसे फेवरेट है, उसके बाद इंडिया के बाद ऑस्ट्रेलिया टीम। एंड ऑस्ट्रेलिया टीम में हम कह सकते हैं कि उनका जो फिटनेस लेवल है वो आउटस्टैंडिंग है, वो कहीं और हम अगर किसी कंपेयर करें किसी भी टीम से तो वो उतना हाई लेवल पे नहीं है। एंड उसके बाद अगर बॉलिंग की बात करें तो उनके पास टॉलर बॉलर्स हैं। आप देखिए कि हमारे पास एक झूलन गोस्वामी थी, और टॉल का जो निप मिलता है ना बॉल को, वो डिफरेंट होता है, वो बॉलर को थोड़ा सा कहीं ना कहीं बेनिफिट नहीं मिलता है, तो वो आउट होने के कहीं ना कहीं चांसेस बनते हैं उनके। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए कि ऑस्ट्रेलिया टीम एंड उनके पास एक कंसिस्टेंसी है, वो जितने मैचेस वो खेलते हैं उतना मुझे लगता है कि एज़ कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया उतने मैचेस वो नहीं खेल पाते हैं, क्योंकि 25% कहीं ना कहीं वो रह जाते हैं मैचेस के लिए। तो एक ऑस्ट्रेलिया टीम के पास एक बेनिफिट है। एंड उनकी जो हम ट्रेनिंग की बात करें तो वो ट्रेनिंग अगर हम देखें तो एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज वो बेटर है, चाहे वो आप इंग्लैंड ले लीजिए।
3: आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है, प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम कैंपस की बातें।
4: KIPM गीडा गोरखपुर स्थित पूर्वांचल का पहला इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन सेंटर, जहां छात्रों द्वारा बनाए गए इनोवेशंस की सराहना करते हुए उन्हें राज्यपाल महोदया द्वारा पुरस्कृत भी किया गया। TCS द्वारा आयोजित AI हैकथॉन में KIPM के छात्र आकाश यादव को प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा उन्हें पुरस्कृत और सम्मानित भी किया गया। एडमिशन ओपन, कॉन्टैक्ट KIPM गीडा गोरखपुर।
5: नमस्कार श्रोताओं, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है ऑल इंडिया रेडियो के खास कार्यक्रम कैंपस की बातें में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय एडमिशन का दौर शुरू हो चुका है, तमाम इंटरमीडिएट पास विद्यार्थी अपने भविष्य को लेकर के नई नई योजनाएं बना रहे हैं। आज हम इन्हीं इंटरमीडिएट पास विद्यार्थियों के लिए बात करेंगे फार्मेसी कोर्सेज के बारे में, और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हम सबके बीच मौजूद हैं कैलाश इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी एंड मैनेजमेंट के डायरेक्टर डॉक्टर जय नारायण मिश्रा जी। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है।
6: धन्यवाद
5: सर। ये फार्मेसी कोर्सेस होते क्या हैं?
6: देखिए, फार्मेसी कोर्स मेडिसिन से रिलेटेड कोर्स है। दवाओं को कैसे किसी पेशेंट को दिया जाए, इसकी शिक्षा फार्मेसी में दी जाती है, और अलग अलग स्तर पे कोर्सेस हैं। डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स है, ये 2 साल का कोर्स है। इसमें सिर्फ डिस्पेंसिंग की सुविधा है, दवाओं के बारे में, दवाओं को मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, दवाओं के केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स के बारे में फार्मेसी के बच्चे ज्यादा अच्छी तरीके से जानते हैं। इसी तरह बैचलर ऑफ फार्मेसी जो 4 साल में पढ़ाया जाता है, इसके साथ ही मास्टर ऑफ फार्मेसी का भी कोर्स चलता है। ये कोर्स इसलिए है क्योंकि जो बच्चे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं, उसके लिए हमारे पास मॉडिफाइड इक्विपमेंट्स की एक लैब है जिसको रिसर्च लैब बोला जाता है। वो 24 घंटा हमारे यहाँ खुली रहती है। अभ्यर्थी को दिन रात प्रैक्टिकल करना रहता है क्योंकि उसके बाद को रिसर्च फील्ड में जाना है।
5: सर, इन कोर्सेज को करने के बाद आपके यहाँ प्लेसमेंट से रोजगार की क्या व्यवस्था है?
6: इसके लिए सारे लोग डिफरेंट की बातें करते हैं कि प्लेसमेंट की सुविधा इंस्टीट्यूट में है कि नहीं। प्लेसमेंट कराना, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तमाम तरह की कंपनियां कॉलेज को विजिट करती हैं, और विजिट करने के बाद वो कंपनियां बच्चों को अपने तरीके से उनका इंटरव्यू कंडक्ट कराने के बाद उनको प्लेस्ड कर ले जाती है। साथ ही साथ बच्चे जो डिप्लोमा इन फार्मेसी के बच्चे हैं और 50% बैचलर ऑफ फार्मेसी के जो बच्चे हैं वो हॉस्पिटल प्रेफर करते हैं, तो उनके लिए हॉस्पिटल में भी प्लेसमेंट की सुविधा उपलब्ध है, जहाँ पे वो फार्मासिस्ट का रोल अदा करते हैं। तो उनको कंपोजिशन, मैन्युफैक्चरिंग और दवाओं के बारे में इतना अच्छा जानकारी यहाँ से दिया जाता है कि वो आज तक हमारा किसी भी बच्चे का किसी भी फार्मासिस्ट के रूप में कोई शिकायत नहीं आया।
5: आइए अब सुनते हैं कि आईपीएम कॉलेज से फार्मेसी की शिक्षा प्राप्त कर प्लेस्ड हुए विद्यार्थियों का क्या कहना है।
7: हेलो, मैं आरजू बक्स। मैंने 2016 में केआईपीएम से बीफार्म कंप्लीट किया और आज मैं सन फार्मा कंपनी में असिस्टेंट सेल्स मैनेजर के पद पर लखनऊ में कार्यरत हूँ, थैंक्स टू केआईपीएम। तो आप भी अपने भविष्य को सुनहरा बनाने के लिए केआईपीएम में एडमिशन ले सकते हैं।
8: हेलो एवरीवन, माय नेम इज श्वेता मिश्रा। आई हैव कंप्लीटेड माय बीफार्म फ्रॉम केआईपीएम। करंटली आई एम पर्सुइंग पीएचडी फ्रॉम एनएमएमएस यूनिवर्सिटी मुंबई। दोज हु वांट टू पर्स्यू देयर फ्यूचर इन फार्मास्यूटिकल सेक्टर, फॉर देम केआईपीएम इज बेस्ट ऑप्शन इन गोरखपुर एरिया बिकॉज इट हैज ऑल इंस्ट्रूमेंट फैसिलिटीज व्हिच आर नेसेसरी फॉर अ फार्मेसी कॉलेज।
5: जी धन्यवाद।
9: पूर्वांचल का पहला एमबीए मान्यता प्राप्त संस्थान केआईपीएम गीडा गोरखपुर।
5: फार्मेसी कोर्सेज को करने के लिए शहरों में तमाम बड़े बड़े कॉलेज है, फिर लोग केआईपीएम कॉलेज ही क्यों चुने?
6: हमारा कॉलेज जो है पूरे पूर्वांचल में भी एक नंबर पे है, यूपी में तीसरे या चौथे नंबर पे हम लोगों का कॉलेज है। तो इस कॉलेज को ज्वाइन करें, इसके लिए हमारे जो पास आउट बच्चे हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है। उनसे जो हमने कमिटमेंट किया कि आपको यहाँ पे अच्छी लैब की सुविधा दी जाएगी, अच्छा एजुकेशन दिया जाएगा। हमारे यहाँ जो क्वालिफाइड टीचर्स हैं वो टीचर्स इतने योग्य हैं कि कोई एक बार क्लास में अगर टीचर चला जाता है तो बच्चे उनको छोड़ने को भी तैयार नहीं हो।
5: सर, फार्मेसी कॉलेज चुनते समय किन बातों पर ध्यान देना चाहिए?
6: पहले तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि जिस कॉलेज का चुनाव कर रहे हैं वो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड है कि नहीं, वहाँ पे लैब की सुविधा है कि नहीं, केमिकल की व्यवस्था है कि नहीं।
5: सर, आपके कॉलेज में फार्मेसी कोर्सेज के अलावा और कौन कौन से कोर्सेज संचालित किए जाते हैं?
10: हमारे कॉलेज में फार्मेसी कोर्स के अलावा मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में बीबीए, पीसीए, एमबीए, एमसीए कोर्स संचालित किए जाते हैं। इसके अलावा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में बीटेक, एमटेक और पॉलिटेक्निक कोर्स संचालित किए जाते हैं। हमारे कॉलेज को एनबीए द्वारा मान्यता प्राप्त हुई है, जिससे केआईपीएम पूर्वांचल का पहला कॉलेज बना है।
5: धन्यवाद सर हमें इतने विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो श्रोताओं, अगर आप फार्मेसी से संबंधित पढ़ाई करना चाहते हैं जैसे बी फार्मा, डी फार्मा और एम फार्मा, तो गीडा स्थित केआईपीएम टेक्निकल कैंपस आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकता है।
11: फ्यूचर को दीजिए सही डायरेक्शन।
9: पूर्वांचल का पहला इनोवेशन सेंटर केआईपीएम गीडा।
11: बीटेक, पॉलिटेक्निक, एमबीए, एमसीए, बीबीए, बीसीए, डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा और डिप्लोमा इन होम्योपैथी फार्मेसी में एडमिशन्स शुरू हो गए हैं।
9: 300 कंपनीज में प्लेसमेंट्स, स्कॉलरशिप और इजी फी इंस्टॉलमेंट की सुविधा भी।
11: विजिट केआईपीएम गीडा गोरखपुर।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम कैंपस की बातें, ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। और अब आइए सुनते हैं महिला T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मध्य खेले जा रहे फाइनल मुकाबले का सीधा प्रसारण।
12: वो पारी की शुरुआत करने के लिए इंग्लैंड की ओर से आ चुके हैं एमी जोन्स, विकेट कीपर हैं, बैटर हैं, पारी की शुरुआत करेंगे। साथ में 7 पारियों में 89 रन, 125 का स्ट्राइक रेट। तो डैनी व्हाइट रॉज दोनों ही दाएं हाथ के बैटर्स हैं और दिलचस्प होगा कि एक तो शुरुआत किस ओर से होती है, पेविलियन एंड से या नर्सरी एंड से, दूसरा ये कि क्या होता है। लूसी हैमिल्टन और किम गार्थ की जोड़ी रही है एक मैच को छोड़कर, हर बार इन्होंने ही नई गेंद का इस्तेमाल किया है। 7 मैचों में 5 विकेट लेने वाली लूसी हैमिल्टन देखिए, और किसको, मैगन शुल्ट्स को बाहर बैठा रखा है इन्होंने। बाएं हाथ से बॉलिंग करती हैं, एक बाएं हाथ के बॉलिंग का विकल्प उनको मिलता है, लेकिन किम गार्थ की शुरुआत होने वाली है उनके ओवर की। 1 से 6 के बीच का ये पावर प्ले जिसमें केवल 2 खिलाड़ी बाहर रखे जा सकते हैं। ये रही मैच की फाइनल की पहली गेंद, एक स्लिप तैयार है और जैसी कि आमतौर पर गार्ड करती हैं, उनकी पहली गेंद आउट स्विंगर थी, एक लेंथ पे टप्पा खाकर दाएं हाथ के बैटर को छोड़ती हुई स्टंप्स के पास से नहीं होकर बल्कि थोड़ी सी जगह थी। लेकिन आजकल बॉलर्स जो हैं पहली ही गेंद पे विकेट खूब ले रहे हैं, पहले इक्का दुक्का कोई होते थे, आजकल ये बड़ी चर्चा का विषय हो गया। सावधानी रखी, कुछ नहीं छोड़ दिया उसको विकेट कीपर के लिए। जैकलिन विलियम्स, जैसा कि मैंने आपको कहा, उनका 96वां वर्ल्ड T20 इंटरनेशनल मैच है। गेंद बल्ले पे ठीक से नहीं आई, घूमकर पुल करना चाहती थी, अंदरूनी सिरा लगा, फील्डर ने कोशिश बहुत की, सफलता नहीं मिलेगी और यही शुरुआत हुई खाते की 4 रन।
9: ये लगा आभा का चौका।
12: जोन्स के बल्ले से निकलता हुआ ये चौका था, लगभग टू ऑफ द बैट के पास से, स्टंप्स और बैटर के बीच में से भाग्य ने साथ दिया और उस पर 4 रन अवश्य मिले। वेरहम ने भरपूर प्रयास किया उस गेंद को रोकने का। फील्डिंग का देखिएगा बड़ा मजा आएगा, फील्डिंग के स्तर एक आसमान छू रहे हैं प्रकाश, और जिस तरह से बाउंड्री लाइन पे किया, वाह क्या दृश्य था। संतुष्ट नहीं है, दोनों बातचीत कर रहे हैं, अब तक थोड़ा सा स्विंग मूवमेंट जरूर नजर आया है, और ये जो स्विंग मूवमेंट है नर्सरी एंड और पेविलियन एंड दो हैं, और दोनों ही एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हैं। तीसरा अंपायर सुनिश्चित करना चाहते हैं कि वो चार रन वहाँ पे जो छोटे छोटे विज्ञापन है रोक के ऊपर, उससे छू गई या नहीं छू गई, और अब वो चार रन का इशारा आ रहा है जिससे खाता खुला है और जोन्स के खाते में जोड़ा है, और इंग्लैंड फाइनल्स में चार रन बगैर नुकसान के तीसरी गेंद के लिए तैयार किम गार्थ। और इस बार ज़्यादा ललचाती हुई गेंद थी, खेला उसको पॉइंट पे, फील्डर है बाउंड्री लाइन के नज़दीक, फील्ड कर लिया गया। पिच को अगर आप देखें तो काफ़ी घास है, लेकिन नीचे से काफ़ी सूखी नज़र आ रही है, और जैसा प्रकाश ने बताया बिल्कुल फ्रेश है, अब तक इस पर कोई मैच हुआ नहीं है। आमतौर पर स्क्वायर बाउंड्री 58 और 65 की रही है लॉर्ड्स में, आज लगभग 64-64 की रहेगी, दोनों ओर एक सार नज़र आ रहा है स्क्वायर बाउंड्री का जो इलाका है। पांच रन बगैर नुकसान के, पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया टॉस जीतने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने। व्हाइट हॉट जो जबरदस्त फॉर्म में है, किम गार्थ सामने हैं, और क्योंकि बॉलिंग इस समय पेविलियन एंड से हो रही है, उनको अपने फुटवर्क पे ध्यान देना होगा। ओ खतरनाक गेंद, इस ओर से जब बॉलिंग होती है तो एक नेचुरल वेरिएशन से गेंद सीधी रह जाती है, और इसी से आपको अपने आप को काबू रखना पड़ेगा, अपने फुटवर्क पे भी काबू रखना पड़ेगा। एज लगी बैट की और स्टंप्स के पास से निकल गई। क्या आज का दिन इंग्लैंड का दिन साबित होने वाला है, क्या भाग्य उनका साथ दे रहा है।
13: Certainly looked like that on that occasion, dropped between the batter and the stumps and then bounced over the stumps, unbelievable luck।
12: किम गार्थ पांच विकेट लिए अब तक टूर्नामेंट में, बिल्कुल स्टंप्स के पास आके शॉर्ट एंड वाइड कट किया उसको, पॉइंट पे फील्डर मौजूद है, बैकवर्ड फील्ड किया गया, एक रन और। तो दिलचस्प है, आमतौर पर जो सीम का इस्तेमाल करता है वो पेविलियन एंड से बॉलिंग करता है, यहां जहां तक संभव हो पेविलियन एंड से सीम बॉलर्स जो पिच का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, और नर्सरी एंड से स्विंग बॉलर्स, और लाजमी है कि हैमिल्टन उस ओर से बॉलिंग करेंगी जो खासा स्विंग कराती हैं। अगली गेंद ओवर पिच गेंद, हाफ वॉली स्विंग होती हुई, और क्या फील्डिंग, कवर क्षेत्र में शानदार क्षेत्र रक्षण, रन नहीं लेने दिया, यही है T20 क्रिकेट का मजा।
14: रिपोर्ट्स लाई हो ना?
15: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
14: तुम हो ही भुलक्कड़।
15: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर
16: ली। जानिए आभा के बारे में,
17: आभा
16: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा सेहत के सफर में आपका हम सफर, आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
13: A tentative start really by England, a streaky boundary for Amy Jones got things underway, and there have been a couple of questions asked already. We've seen the athleticism of the Australian girls in the field, and that will be a factor, as Vineet mentioned quite clearly. Both sides, but particularly Australia, just exceptional in the form of a well-oiled machine that has not had any silverware for a few years now, and they'll be thirsting to get the trophy in their cabinet. Right then, Lucy Hamilton, left arm over the wicket, balls wide outside the off stump, may well be called that. Wait to see whether Jackie Williams thinks so. No, it's all right. Must have pitched just inside the tram line, but certainly moved away, exaggerated movement away from the right-hander. Danny Wyatt-Hodge, leading run scorer in the tournament so far. Healthy strike rate, just under 300 runs as well. And Amy Jones, who hasn't really blossomed with the bat. Next one's pitched up and it's gone. I think it's carried. Yes, it has. And that's a big wicket. Amy Jones edging one to the lone fielder in that slip cordon. and that means England have lost an early wicket. Australia rocking the home team in the very second over. In fact, that is the last thing that England wanted, having been put into bat, shaping away, looking for a big drive, outside edge, carries to gully, and taken very comfortably. Australians don't drop catches, Vineet, and that's the dream start for the girls in their green and yellow.
12: Amy Jones ek bar fir offside mein out ho rahi hain, predominantly onside ki cricketer hai. Pata nahi kyun jo wicket keepers hote hain wo onside mein zyada mazboot kyun hote hain. Pichle match mein semi final mein bhi point ke aas pass wo out hui thi isi tarike ki off stump ke bahar ki slightly wide gain par, aur lagbhag usi ilake mein jaisa ki Prakash ne aapko bataya gali pe wo catch out ho gayi. Mahatvapurna safalta mili hai Australia ko, aur England ko ab bharpai karni padegi on the back foot shuruaat mein hi. और पावर प्ले में अगर जल्दी जल्दी विकेट गिर जाएं तो फिर एक बड़ा स्कोर बना पाना थोड़ा दुष्कर हो जाता है.
13: Well, we saw that in the semi-final, didn't we, Vineet? England lost three early wickets, and then it was the two captains, the current and the former, Nat Siva Brunt, who will come into bat at number three, and her immediate predecessor, Heather Knight, who stitched together that partnership. Here's the first ball that's been faced, and it's been creamed away just elegantly and timed to perfection through the extra cover boundary for four. What a terrific shot. That's the class there, just waiting on it, Siva Brunt, and then easing it away, not trying to hit the ball too hard, just pure timing, and it races across the hallowed turf at the Lord's Cricket Ground, and England move into double figures, 11 for 1. Here's Hamilton in again, and this time unable to quite time it, getting the inside part of the bat. The ball trickles away towards the offside. There will be no run. Just watching the replay of that dismissal again now in real time, Vineet, you can see that the anticipation was there. There was a plan there, and Amy Jones unable to get her foot to the pitch of it, and as a result drove away, and Wall, Georgia Wall, making no mistake. Here's the fifth ball of the second over. It's Lucy Hamilton, left arm over, past umpire Williams, bowls, and Siva Brunt is defending on the offside, out to cover. There will be no run. The home crowd will be a big factor in this game, one feels. England playing at Lord's, the last time any England team, men or women, played a World Cup final at Lord's. We all know the drama that happened there, and many would argue that it was a victory that was snatched by defeat or by fate more than anything else, but it was a great game of cricket. Let's hope this one lives up to it. Last ball of the over. Here's Hamilton bowled, and this one's a swing and a miss from Siva Brunt as the ball shapes away. End of the over, 11 for 1.
17: आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है. टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें. कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है. यहां आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है. आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है.
12: ऑस्ट्रेलिया की ओर से जोरदार शुरुआत, ऐसी शुरुआत जिसकी दरकार उनको थी. और ताज्जुब ये होता है कि ज़्यादा इस मैदान को समझते इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, लेकिन फील्ड प्लेसमेंट जबकि गेंद नर्सरी एंड से की जा रही थी, इतनी लाजवाब थी कि स्क्वायर ऑफ द विकेट डाउन द स्लोप जो फील्ड प्लेसमेंट विकेट के पीछे अतिरिक्त खिलाड़ी लेकर, दो खिलाड़ी विकेट कीपर के अलावा लेकर उन्होंने बॉलिंग की. गार्थ के नए ओवर की पहली गेंद को बैकफुट पर संतुलित होकर खेल दिया डीप विकेट पॉइंट. एक समय था एक थर्ड मैन लगता था और एक फाइन लेग लगता था, काम पूरा हुआ शुरुआती ओवर्स का. अब आमतौर पर अगर आप देखेंगे तो आपको एक बैकवर्ड पॉइंट और स्क्वायर लेग क्षेत्र के आसपास, नहीं तो लॉन्ग लेग की दिशा में खिलाड़ी नजर आएगा. क्रिकेट बहुत बदला है, उसकी तस्वीर बहुत बदली है, और दोनों ही टीम वही हैं जो सेमीफाइनल में खेली थी, कोई परिवर्तन नहीं है. और गार्थ पेवेलियन एंड से बॉलिंग कर रही हैं, और ये डाउन द हिल है. डाउन द हिल वो जो पेवेलियन एंड है वो थोड़ा सा इस समय मदद करता है कि आप गेंद को बाहर की ओर निकालें. गार्थ देखें इस ओवर में क्या करती हैं. क्रीज के बीचों बीच से ये गेंद थी और वहीं दबाकर सिंगल दौड़ना चाहती थी, टाइम नहीं कर पाई अपनी स्ट्रोक को, गेंद वहीं लुढ़क कर रह गई और वापस दी जा रही है किम गार्थ को. ताहिला मैग्रा उप कप्तान है, टीम में नहीं है. चार बेंच पे जो बैठी हुई खिलाड़ी हैं सब ICC ट्रॉफी में जीत के समय शामिल रही हैं.
13: They're all World Cup winners, you're right. That shows the depth of Australia.
12: Danny Whitehodge enables Sutherland. Sutherland को एक विकेट चाहिए 50 T20 इंटरनेशनल विकेट पूरे करने के लिए. मेगन शूट जो अब तक सब टूर्नामेंट्स में खेली हैं T20 के, ऑस्ट्रेलिया की ओर से टीम में नहीं है, केवल एक मैच में, दूसरे मैच में शामिल किया गया था अगली के, और उसको पूरा सम्मान देते हुए उसके ऊपर आते हुए कलाइयों को जोर से धीरे से पुश भर किया और 2.3 ओवर के बाद टॉस हार कर इंग्लैंड 12 रन और विकेट कीपर एमी जोन्स का वो खो चुके हैं. शिवर ब्रंट और व्हाइट हॉज की जोड़ी इस समय मैदान पर है. शिवर 3 मैच खेली, उसके बाद उनको क्वाड की ट्रबल हुई, उनको जांगों में तकलीफ हुई, उसके बाद नहीं खेली. पिछले मैच में क्या जोरदार वापसी की, 75 रन बनाए 47 गेंदों पर. अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर से कलाइयों का प्रयोग किया, डाइव किए हुए फील्डर से गेंद छिटकी, दूसरे रन के लिए जा रही है, इससे पहले कि आके उसको उठाया जाए दूसरा रन भी पूरा हो गया. यह होता है जब पहला रन आप तेज लें, फील्डर्स के ऊपर दबाव बनाए. अपनी दाई तरफ जाकर डाइव लगाई, पूरी लंबाई का फायदा उठाते हुए डाइव लगाई, लेकिन हाथ से लगने के बाद छिटके और एक रन और पूरा हुआ. 3 रन अब तक इस ओवर में, 2 गेंदे शेष हैं. ऑफ साइड में एक कवर पॉइंट है बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर और लॉन्ग लेग है सीमा रेखा पर, बाकी सब दायरे के अंदर है. बहुत फुर्ती दिखा रहे हैं ओवर्स करने में ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी, जरूरी है नहीं तो लास्ट पावर प्ले में एक फील्डर कम मिलेगा बाउंड्री लाइन के पास. अगली गेंद को रक्षात्मक रूप से खेला और गेंद वापस बॉलर को दी जा रही है. शिवर ब्रंट 10 इनिंग्स अब तक उनकी हैं, जो पिछली 10 इनिंग्स हैं उनमें उनका लेखा जोखा बढ़िया है. क्या कर सकता है इंग्लैंड, कितना संतुलन रखना होगा, कितने स्ट्रोक्स खेलने हैं, विकेट गिरने से बचाने हैं. ये 6 ओवर का पावर प्ले जिसमें केवल 2 खिलाड़ी बाहर रखे जा सकते हैं, उसका फ़ायदा भी तो उठाना है और ऐसे में आप विकेट भी दे सकते हैं. लॉर्ड्स के स्लोप में जिस जगह खड़े होकर बैटिंग कर रही हैं शिवर ब्रंट, आपका संतुलन बिगड़ जाता है, आप शफल करके आपका फुटवर्क आपको ऑफ स्टंप के बाहर ले जाता रहता है, उसका ध्यान रखना पड़ता है. लेकिन इंग्लैंड के खिलाड़ी इसके आदि हैं, दर्शक भरे हुए हैं लगभग 30,000 के आसपास दर्शक, और क्यों ना हो, बहुत बड़ा अवसर है क्रिकेट के मुख्यालय में. और मैच किसका, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का परंपरागत प्रतिद्वंदी, कांटे के मुकाबले के लिए सब ललायित हैं. क्या होगा अंतिम गेंद पर, अच्छी गेंद स्टंप्स को, यू हैव टू अटैक स्टंप्स, बीच बीच में स्टंप्स की सीध में अगर आपको शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद और ऑन साइड में फील्ड प्लेसमेंट है तो आपको फायदा मिल सकता है, नहीं तो फिर आप महंगे भी साबित हो सकते हैं.
14: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
15: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो.
14: तुम हो ही भुलक्कड़.
15: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर
18: ली. जानिए आभा के बारे में.
19: आभा
18: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं. आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर. आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7.
13: 14 for 1-3 overs gone. England haven't really been able to capitalize on the power play so far, except for one authoritative cover drive by Nat Siver Brunt. There's just been that one bottom edged boundary for Amy Jones. Australia starting off just the way you'd expect. And a change in bowling now. The Australian captain, Sophie Molyneux, will start her left arm spin. And she's replacing Lucy Hamilton, who's got the best economy rate, I dare say, probably in the tournament itself, but certainly in the Australian team. She hasn't been among the wickets as much, but she's kept a very tight leash. And Wyatt Hodge has been susceptible to spin in an early part of the innings. And here's Sophie Molyneux now. An economy just at 6.5 runs and over. First ball of spin. And down the wicket comes Wyatt Hodge. Gets a thick outside edge. He's going to run down towards the square third boundary. Won't be cut off. 4 runs.
19: Ye laga Abha ka choka.
13: Again, not quite where Wyatt Hodge wanted to play that. She was looking to play inside out through extra cover. Thickish outside edge, keeper standing up, but covering the turn well and getting a fortuitous boundary. So 2 out of the 3 boundaries for England with a slice of luck. Here's Molyneux again, wide of the crease, short and off the back foot, crunched not timed at all. Diving stop. I think it's Ellis Perry there who dives to her right. What a cricketer she is. Talismanic. And someone who's played football for Australia as well. Supreme athlete. Had a little bit of an injury scare in the semi-final, but she's come back raring to go. And Wyatt Hodge now completes 300 runs in the tournament. 19 for 1. Siva Brunt. Molyneux. Captain to captain. Straight to the fielder at point. And there will be no chance of a run.

0: कि विद द टाइड खेल दिया उसको और डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री के पास उधर जहां टेवन स्टैंड है उस ओर गेंद चली गई चार रन के लिए। 24 रन एक विकेट पर, इस बार उठा कर खेला है, उस ओर फील्डर है लेकिन काफ़ी दूर है, फील्ड किया, दूसरे रन के बारे में नहीं सोच रही हैं। लॉर्ड्स के मैदान पर जब आप देखेंगे मैदान, तो आमतौर पर तजुर्बेकार खिलाड़ी होते हैं वो बाउंड्री लाइन पर कम से कम 5-7 फिट अंदर की तरफ खड़े रहते हैं। लॉर्ड्स में आप बिल्कुल बाउंड्री पर खड़े नहीं रह सकते, ये एक विशेषता है इस मैदान की। इन सारी चीज़ों को दिमाग में रखना होता है, उसके बाद भी लोग उत्सुक होते हैं कि लॉर्ड्स में आकर खेलना है। 25 रन एक विकेट पर, 5वां ओवर चल रहा है, टॉस ऑस्ट्रेलिया ने जीता, फील्डिंग कर रही है, अच्छी लंबाई की गेंद कर रही है, स्विंग हो रही है गेंद और रन लिया जरूर है, लेकिन इसमें वेल विद इन देमसेल्व्स दोनों बैटर्स कोई बहुत ज़्यादा आक्रामक तेवर प्रकाश नहीं दिखा रही हैं।
1: Trying to consolidate and create a base here. I don't think they're too worried about the power play. Different teams approach power plays differently, as we know, Vineet. England looking like they want to just make sure they don't lose too many wickets.
0: Sutherland. प्रतीक्षा कर रही है, फील्ड को ही बड़ी जतन के साथ जमाई जा रही है और अंपायर की भी निगाह है, बैटर की भी निगाह होगी। नो बॉल का इशारा कुछ विलंब के साथ आया। तीसरे अंपायर जो कि किम कॉटन, बहुत ही तजुर्बेकार अंपायर हैं और वहीं से तीसरे अंपायर से ही इस टूर्नामेंट में इशारे आते रहे हैं और यही नियम बनाया गया है।
2: वेरी क्लोज, जस्ट ऑन द लाइन,
1: ऑलमोस्ट हार्श,
0: कड़ा निर्णय अंपायर ने, काफी समय भी लिया ये फैसला करने में और अंततः बैटर के पक्ष में ये निर्णय गया। फ्री हिट मिलेगा, उसकी तैयारी की जा रही है। मुझे याद आता है ऑस्ट्रेलिया में हम कॉमेंट्री कर रहे थे सिडनी के क्रिकेट ग्राउंड में, प्रकाश ने मुझसे पूछा था कि जब इस तरीके से होता है फील्ड में परिवर्तन होता है या नहीं होता है, फिर वही जवाब ढूंढ के लाए थे कि अगर बैटर बदल गया है तो होता है, ऑफ स्टंप के बाहर से ये गेंद और उसको घुमा दिया है पुल के अंदाज में और गेंद जा रही है स्लॉग कॉर्नर में, मिड विकेट के बाई तरफ से सीमा रेखा के बाहर, चार रन।
3: ये लगा आभा का चौका,
0: पूरी बैकलिफ्ट 360 डिग्री में घूमता हुआ बैट, जैसे कि पुराने समय में कैलेप्सो कहलाने वाले वेस्टइंडीज क्रिकेटर खेलते थे, लेकिन ये T20 का ज़माना है साहब, और महिलाओं का क्रिकेट हो या मेंस का पारंपरिक क्रिकेट हो, अब तो बल्ला घूमता है और बखूबी घूमता है। दो चौके लग चुके हैं इस ओवर में, खराब गेंद, थोड़ी दिशाहीन, लेग स्टंप के बाहर आई, पूरा फायदा नहीं उठा पाई, दूसरे रन के लिए सोच रही हैं, दो फील्डर झपटे, विकेट कीपर स्वयं पहुंची वहां उस गेंद को रोकने के लिए, लेकिन कोई विशेष लाभ बैटर उठा नहीं पाए क्योंकि गुंजाइश केवल उस लेग बाइस पर एक रन की ही थी। पर जैसा कि हम दोनों ही आपको बताते रहे, अब तक टाइम नहीं कर पा रहे हैं, गति का परिवर्तन है निश्चित है, कर रहे हैं चतुराई के साथ बॉलर्स, लेकिन उसके बावजूद भी ये विकेट कुछ धीमा लग रहा है और बैट पे नहीं आ रही है गेंद, फिर लेग स्टंप के बाहर, कलाबाजी खाते हुए विकेट के पीछे, कैच के लिए अपील कर रही है और अंपायर इशारा कर रहे हैं वाइड का, गार था ये बात करने के लिए और उस सलाह मशवरा हो रहा है कि रेफरल लिया जाए या नहीं लिया जाए। 7-6-5 समय रुकता थोड़ी है और ले लिया। सोफी मोलिनू कप्तान जो है उन्होंने इशारा कर दिया हमें रेफरल चाहिए, तीसरे अंपायर को निर्णय कर लेने दीजिए क्या ये आउट था अथवा नहीं।
1: माइट बी क्लोज, रिमाइंड्स मी व्हाट हैपेंड लास्ट नाइट व्हेन हैरी ब्रुक वाज गिवन आउट, एग्जैक्टली द सेम सिचुएशन डाउन द लेग साइड, द अंपायर डिक्लेयर्ड इट अ वाइड एंड देन द रिप्ले शोड द बॉल हैड टेकन द ग्लव, दिस विल टेल यू विनीत।
0: बिल्कुल ग्लव्स के बेहद करीब से जा रही है, निश्चित रूप से अल्ट्रा एज देखना चाहेंगी किम कॉटन, बहुत ही तजुर्बेकार अंपायर हैं, बहुत अनुभव है उनके पास और वो जो दृश्य है आपके दिमाग में भी आया होगा, ईशान किशन बहुत ज़्यादा विश्वसनीय नज़र आ रहे थे, संकल्प से भरे हुए थे, कह रहे थे बिल्कुल बिल्कुल आउट है आउट है, और यहाँ विकेट कीपर एमी, जबकि ग्लव्स के पास से एज नज़र आ रही और ये निश्चित रूप से विकेट मिल जाएगा वहाँ, अच्छा रेफरल किम कॉटन के निर्णय की हालांकि प्रतीक्षा है, लेकिन वो स्निको वो जो अल्ट्रा एज है जो कार्डियोग्राम की तरह उस ऊपर नीचे उठने वाली रेखाएं आती हैं, ग्लव्स के पास से जब गेंद गुजर रही थी और विकेट कीपर बहुत जल्दी बर्ट मुनी उसको समझ गई थी और उन्होंने बड़ी मुस्तैदी के साथ कैच की तरफ वो लपकी थी और छलांग लगाते हुए डाइव लगाते हुए उन्होंने किया था, वो कैच किया था और रेफरल मिला, उनके रेफरल दो अभी भी बरकरार रहेंगे, दोनों टीमों को दो दो इस इनिंग्स में,

0: जानिए आभा के बारे में।
1: आभा
0: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड्स सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
2: 87 for 1, a close call for a run out, looking for the second run there, but going Australia's way. Lauren Bell back into the attack, replacing Eccleston, pulled away on the onside. That itself, with that single, the total moves to 88 now, and just watching that replay. It's very close thing, short again from 88 for 1. Is where the total has moved now, requiring runs at 5.8 and over. And Australia really in complete control. Slower ball driven between the legs and past the fielder at mid-off. 4 runs.
3: Ye laga Abha ka choka.
2: Phoebe Litchfield really peppering that long off straight boundary. Probably her third or fourth boundary there, using her feet, keep her standing up. But that doesn't deter young Phoebe Litchfield. And Lauren Bell's been taken to the cleaners, even though she tried to bowl a slower ball there. 92 now for 1, needing just 59 more runs. Slower ball, full toss, hammered away. And that will be a 1-bounce-4 at 5-on-1.
3: Ye laga Abha ka choka.
2: Back-to-back boundaries, Litchfield on fire as well. Australia not just dominating, they are destroying England's bowling at the moment. It is unbelievable that in a World Cup final, having done the bowling bit, the Australian batters now just pulverizing the opposition with their super aggressive stroke play, and they have made the England bowling look very, very ordinary indeed. Here's Bell again, bowls, and this time on the stumps, not able to beat the fielder at mid-on. And the total stays 96 for 1. 55 runs required for Australia to lay their hands on a 7th title and complete the, or rather stop the drought of silverware, ICC silverware that is, that they have had for the last couple of years. Here's Bell again in bowls to Litchfield, who's wristily driving it to wide-ish mid-on and will steal a single in front of the fielder coming in from there. 97 now for 1. Litchfield 39. And Beth Mooney on 41. So these two really taking the attack to England. Great footwork. Intent very obvious. Not afraid. Brave cricket. And as they always say, never judge a pitch till two teams have batted. Australia making this pitch look like a very good batting wicket, while England certainly struggled, and that's credit to Australia's bowlers. Here's Bell. Slower ball, cracked away into the deep cover region for a single by Mooney. She'll go to 42, and that is 10 overs bowled, 98 for 1.
4: स्पोर्ट्स लाई हो ना?
5: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
4: तुम हो ही भुलक्कड़।
5: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ले।
0: जानिए आभा के बारे में।
1: आभा
0: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड्स सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
6: जीत की ओर कूच कर रही है ऑस्ट्रेलिया। अब सवाल ये नहीं लग रहा सबके जहनों में कि वो जीतेंगे या नहीं, सवाल यह है कि कितनी जल्दी जीतेंगे। तो अब सवाल ये भी है कि अब चैंपियन टीम वही होती है जो कंडीशंस के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर ले, और ऐसा नहीं है कि पिच कोई बहुत ज़्यादा बदली है, कई बार अपने को ढालना पड़ा है, इम्प्रोवाइज करना पड़ा है, अंतिम समय में स्ट्रोक को बदलना पड़ा है ऑस्ट्रेलियाई बैटर्स को। डाइव लगाते हुए बॉलर से छिटकी गेंद अपने फॉलो थ्रू में अपनी बाई तरफ जाती हुई स्मिथ ने उसको रोकने का प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं हुई। एक रन मिल गया ऑस्ट्रेलिया को 99 पर। ये 11वें ओवर की पहली गेंद है। 100 रन पूरे होने जा रहे हैं, जीतने के लिए चाहिए 151, यानी कि अब 59 गेंदों पर मात्र 52 रनों की आवश्यकता है। 7वीं बार टी20 विश्व कप जीतने के लिए ऑस्ट्रेलियाई महिलाओं को। स्मिथ की गेंद ओवर द विकेट बिल्कुल स्टंप्स के पास से की थी। अब तो इधर उधर दाएं बाएं चारों तरफ रन बन रहे हैं और 100 रन पूरे हो गए ऑस्ट्रेलिया के। दूसरे गेंद पर ये दूसरा सिंगल 10.2 ओवर में ऑस्ट्रेलिया के 100 रन। लिचफील्ड 26 गेंदों पर और मूनी 43 रन पर खेल रही हैं और लगातार अपने दूसरे अर्धशतक की ओर बढ़ रही हैं। पिछले मैच में 61 बनाए थे उन्होंने। ऑस्ट्रेलिया सभी सोच रहे थे कि जीतेगी, लेकिन इस तरह से इस अंदाज में जीत जाएंगे इसकी कल्पना नहीं की थी, ये देखते हुए कि इंग्लैंड नहीं छोड़ेगा अपने मैदान पर और हालिया दिनों में उनका प्रदर्शन भी अच्छा रहा है। ऑस्ट्रेलिया की टीम को आप रोक तो नहीं सकते। एक और सिंगल मिला है, इत्मीनान से अब ये हो रहा है और फाइनल मुकाबला है, लॉर्ड्स का मुकाबला है। आप विश्व कप जीतना चाह रहे हैं, जो खेमे में नॉट आउट बैट्समैन बैठे हुए हैं, बैटर्स बैठे हुए हैं, वो सोच रहे होंगे क्या हमें अवसर मिल जाएगा, हम कुछ बैटिंग करके दिखाएं। यहाँ पर स्वीप किया, गेंद कुछ देर के लिए हवा में, लेकिन 4 रन अवश्य मिलेंगे। सीमा रेखा के बाहर गेंद जा रही है, अंपायर भी पहले सुनिश्चित करना चाह रहे हैं 4 है अथवा 6 है, प्रतीक्षा करेगा, हर व्यक्ति प्रतीक्षा करेगा और ये 6 रन।
3: ये लगा आभा का छक्का।
6: रिवर्स यानी कि उल्टा घूमकर खेला उसको और स्क्वायर ऑफ द विकेट पॉपिंग क्रीज की सीध में उन्होंने लगा दिया ये 6 रन। और स्मिथ अच्छे अच्छे बैटर्स को छकाया है इस टूर्नामेंट में। आज भारी पड़ रहे हैं ऑस्ट्रेलियाई बैटर्स उनके ऊपर, 6, 7, 8, 9 रन अब तक इस ओवर में बन चुके हैं, 82.5, 11 ओवर समाप्त हो गए, 107 एक विकेट पर।
4: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
5: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
4: तुम हो ही भुलक्कड़।
5: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर
0: ली। जानिए आभा के बारे में।
3: आभा
0: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
2: 90-run partnership between young Phoebe Litchfield and the experienced Beth Mooney has powered Australia into a position where one feels it's a question of only the formalities now. In how many overs will Australia win this title and how many more wickets can England get, if any? These two are on a mission and start of a fresh over from Eccleston, lofted over the infield, beautiful shot inside out from Beth Mooney, takes her to 48, 4 more runs.
3: ये लगा आभा का चौका।
2: They're in a real hurry, the Aussie women, batting superbly, and England bowlers have absolutely no answers to how they are going to respond as Australia continue the juggernaut. Nelson on the board, 111 for 1. So most fours in this World Cup. Wyatt Hodge 42. Smriti Mandana 30 and Beth Mooney now just one shy on 29. Eccleston in again, bowls and a lovely ball. The arm ball just straightening and beating Beth Mooney. The first time really in this innings that we've seen an England bowler defeat an Australian batter. Beautiful ball, just went past the outside edge. Siva Brunt for a moment thought there might be an opportunity, there wasn't. Mooney waits on 48. Eccleston bowls, worked away to short mid wicket. This is good. Just two or three balls here, but certainly trying to put a little bit of a break on the Australian rate of scoring. They need much more than that, do England. They need wickets in a hurry here. Eccleston bowls, Mooney pushes on the offside. They go off for a single. Two England fielders collide. I think that's the story of England's performance today. Two fielders going for the ball and both of them running into each other. 112 for 1 now. That was Danny Wyatt Hodge. 112 for 1. On the offside, it was pushed away. And I think that was Freya Kemp and Wyatt Hodge who ran into each other. 1-1, 2-for-1, the fifth ball of the 12th over. Eccleston bowled and looking for a reverse sweep again was Phoebe Litchfield. Good take by the keeper, Amy Jones, and no runs. 95 of 61 is this partnership, dominating partnership, and Litchfield's done the bulk of the scoring. Eccleston bowls down the leg side, will be called wide, we'll wait for the umpire. Yes, it is. Another wide, another run. 113 for one now, and the last ball of the 12th over has to be re-bowled by Sophie Eccleston, who's gone for 14 runs so far with one ball to come. Reverse sweep attempted, and once again she misses it. She holds her head, does Eccleston, wondering how she hasn't got through. 12 overs complete, 113 for one.
1: आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी, कभी भी, 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहां आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है।
6: तो धीरे-धीरे मंजिल-ए-मकसूद की तरफ कूच कर रही है ऑस्ट्रेलिया की टीम। अब स्पष्ट विजेता नजर आ रही है क्योंकि केवल 4.75 के औसत से शेष रन उनको बनाने हैं। 113 एक विकेट पर, कुल 151 चाहिए जीतने के लिए। पहली बार एकलस्टन की फास्टर बॉल देखने को मिली, पहली बार उन्होंने गति परिवर्तन लिया और उस पर बीट भी किया ऑफ स्टंप के बाहर लेफ्ट हैंडर को। बहुत ज़्यादा टर्न नहीं था, अच्छा बाउंस उसको मिला। 92 क्लिक्स की वो गेंद थी, नहीं तो 80 के आसपास की वो करती रही हैं। अब यहाँ से ये आप देखें कि कौन प्लेयर ऑफ द मैच हो सकता है। मामला थोड़ा विकट है क्योंकि चार बॉलर्स ने एक एक विकेट लिया ऑस्ट्रेलिया के लिए, चार ही विकेट गिरे इंग्लैंड के। दो फील्डर्स के बीच में तेजी के साथ दौड़कर, अच्छा तालमेल, सूझबूझ के साथ सिंगल दौड़ती हुई ऑस्ट्रेलिया की टीम। और इसके साथ ही मूर्दी का अर्धशतक पूरा हुआ, केवल 38 गेंदों पर 50 रन, नौवां अर्धशतक है उनका विमेंस टी20 वर्ल्ड कप में, इंग्लैंड के खिलाफ पहला है और 31st विमेन टी20 इंटरनेशनल जो आप कह सकते हैं उनका अपना ये है जिसमें उन्होंने ये करके दिखाया है। और इस टूर्नामेंट में मूनी का तीसरा अर्धशतक है। मूनी ने 74 रन बनाए नीदरलैंड्स के खिलाफ, पिछले सेमीफाइनल में 61 रन बनाए ओम जी। तो कुल मिलाकर मूनी ही मुझे लग रही हैं मैन ऑफ द मैच होंगी क्योंकि इन्होंने ही शुरू में बढ़िया बैटिंग करके इस मैच को एक तरफा किया। क्यों, बॉलिंग में कोई एक खिलाड़ी आप चुन नहीं सकते। बैट मूनी 38 गेंदों पर 50 रन बनाकर अपने तमाम अनुभव का लाभ अपनी टीम को देते हुए 7, 10, 74, 0, 22 और 61 ये स्कोर्स रहे हैं। वाइड का इशारा वेस्ट इंडीज के अंपायर द्वारा

0: अब 46 गेंदों पर मात्र 36 रन की दरकार है। लिचफील्ड पलटकर लेग साइड की फील्ड का मुआयना कर रही है, देख रही है कहां फील्डर है। धीमी गेंद को खेलने की कोशिश, जाके टकराई उनसे गेंद। क्या ये कोई ऐसी बात है, क्योंकि गेंद तो काफी सीधी थी, लेकिन किसी तरीके का कोई रिएक्शन नजर नहीं आ रहा है दोनों ही तरफ की टीमों से। शायद कुछ हाइट कम हो या, लेकिन गई सीधी थी, स्टंप टू स्टंप बॉलिंग थी। अगली गेंद को कलाइयों के सारे सामने की ओर ड्राइव किया सीधे फील्डर के पास। अब आतुर हैं इस मैच को खत्म करने के लिए, हालांकि शैली शुरू से ही रही है। मुड़कर जब उसको ऑन साइड में खेलना चाहती थी, निश्चित रूप से लेफ्ट हैंडर के ऑफ स्टंप को छोड़कर जा रही थी ये गेंद। सर्कल के अंदर गेंद रुकी नहीं, बाउंड्री पे चली गई। बाएं हाथ से गेंद को उठाया जाए, तब तक दूसरे रन के लिए पलट कर आ रही है। ये 13वां ओवर चल रहा है। लिचफील्ड अब अपने अर्धशतक पे 48 रन बनाकर वो खेल रही थी। अब उनके लिए ये अवसर है कि वो अपने अर्धशतक को पहुंच सकें। पार्टनरशिप 100 रन की पूरी हुई है 69 गेंदों पे। कमाल की साझेदारी। बोल्ड कर दिया चार्ली डीन ने, विकेट ले ही तो लिया। और थोड़ा सा विलंब होगा ऑस्ट्रेलिया की जीत में, लेकिन वो जो विकेट गिरा है वो बोल्ड साफ कर दिया। लिचफील्ड अपनी अर्धशतक से 2 रन से चूकी, वहां पर 35 गेंदों पर खेल रही थी और ये गेंद को अच्छा फ्लाइट किया था अबव द आई लाइन, उसको डिफ्लेक्ट भर करना चाहती थी और उनके मिडिल स्टंप को ले उड़ी और वो गेंद, और इस तरह से ये दूसरा खिलाड़ी आउट हुआ ऑस्ट्रेलिया का और 13वां ओवर समाप्त हो गया।
1: Forty-eight is what Phoebe Lichfield got. That partnership just going past 100 runs, 117 now for 2, and I suspect we'll see Ellis Perry coming into bat, unless of course the Australians decide that they want to change in the batting order. 117, Eccleston 2 overs done for 14, and Charlie Dean striking after that early wicket for Lauren Bell, where Georgia Vall dragged a ball back onto her stumps from outside the off stump. Last couple of overs, the England spinners just beginning to find a little bit of bite and make a little bit of an impact, but it's too little too late, one feels. Australia now need just under 5 runs an over, and they've got 8 wickets in hand. So the question is, how soon Ellis Perry, the champion Australian, is at the non-striker's end. First ball of a fresh over, worked away on the onside. They wanted a single. Perry wasn't interested. Mooney's on 50. And it's a question really of how does Beth Mooney play from here. Young Phoebe Lichfield, maybe that ball just keeping a little bit low as well, but aiming at the stumps and getting the reward was Charlie Dean. Kemp Bowles worked away nicely on the onside. Will it go all the way? Yes, it looks like it has. I think it's Capsey who dives over the ball. And 4 more runs to Beth Mooney and to Australia.
2: ये लगा आभा का चौका।
1: 121 for 2 now. 54 to Beth Mooney. Just worked the ball away. And a pedestrian effort really in the deep. And 121 for 2 is the Australian total now. 16 fours and 2 sixes. Inside edge. Fortuitous runs this time off the bat of Beth Mooney. Fortune favours the brave, they say. That's exactly what happened here. Another boundary. 4 more.
2: ये लगा आभा का चौका।
1: Mooney moves to 58, Australia to 125. Now really only the formalities remain. 26 more runs needed, and Australia will be keeping whatever it is, whatever beverage it is that they choose to have after this game, on ice and getting it ready. 26 runs required. 125 for two. Making room again. This one was played a little bit in the air. Not carrying to the bowler. Freya Kemp. And so there's no damage done. Ellis Perry's helmet has been the topic of significant discussion. We've seen the national county cap of many a player being worn out over the years, and they're very touchy about it, and they look after it well, but they also keep it with them. Now looking at the rebound of the bowler's fingers is the third umpire, Ellis Perry. Doesn't look like she was outside the crease. We're just trying to figure out whether the ball actually hit the bowler's fingers on its way or not. My eyesight certainly not as good as Vineet's. Maybe he can tell us whether he thinks the ball's hit the finger of Freya Kemp or not.
0: बहुत नज़दीक तो थी उंगलियों के पास वो गेंद, लेकिन आजकल तो आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक भी नहीं बता पाती है. कितनी ही बार उसके रिप्लेस देखने पड़ते हैं, लेकिन मामला नज़दीक अवश्य है. अच्छा प्रयास था.
1: Yeah, maybe they need to start putting a chip in the cricket ball like the football now.
0: Yeah.
1: To decide whether or not the fielder's touched it. Who knows what technology will do next, Vineet. But at the moment, the umpire now ruled there's no damage done. 125 for two. 14th over in progress. Perry yet to face a ball. Beth Mooney on 58. And Freya Kemp waits. And now the umpire has gone up and signaled for a television replay. What was all of that earlier? I'm not sure. Maybe they just realized that we've got so much time in this game that we might as well get a TV replay and see what happens. We saw about 20 images of that, whether or not the umpire had, the bowler had touched the ball or not. Ellis Perry having a word there with the umpire. Right. Now they're going to use ultra edge on the finger.
0: Oh, God.
1: Which is not something I have seen before, but it's a fair call. I mean, you have the technology, you might as well use it. And ultra edge certainly looks clean. And what many of us felt earlier, now being confirmed, not out. It almost is like, take no risks. Doesn't matter if the game gets held up. 125 for two. Kemp back into the attack. Bowls to Mooney, who lofts this over the head of mid-off. And four more runs.
2: Ye laga, abha ka choka.
1: Not a very nice thing to say, Vineet, but I'm going to say that I think England also are in a hurry to finish this game. The way they're bowling, there's no fight. The stuffing, as they say, has been taken out of England's bowlers. Really, really ordinary bowling effort. I think it's just a question of formality. Now, here's Kemp in again to Mooney, who's moved to 62. Pulls this one round, doesn't get hold of it. Off the pad, over complete. 14 gone, 129 for two.
3: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
4: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो.
3: तुम हो ही भुलक्कड़.
4: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ले.
5: लड़िए मत, जानिए आभा के बारे में.
4: आभा
5: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड्स सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं. आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर. आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7.
0: शुरू से ही 10 का औसत रखा बैटिंग में ऑस्ट्रेलिया ने, और उसका नतीजा यह है 3.67 की अब आस्किंग रेट रह गई है. आप ऑस्ट्रेलिया में अगर आप देखें तो कितनी 16 वर्षीय बालिकाएं हैं जिनको कि डेब्यू दिया गया है और वो आज बड़े क्रिकेटर बन के तैयार हैं. न मालूम 15 वर्ष की उम्र का इतना वो क्यों उठाया जा रहा है, इस बात को इतना तूल क्यों दिया जा रहा है. सूर्यवंशी हालांकि डेब्यू कर चुके हैं, उनको एक अच्छे गाइड की आवश्यकता है. हर गेंद को सिक्सर नहीं लगाया जा सकता. बड़े खिलाड़ी हैं निश्चित रूप से, सारे गुण उनमें मौजूद हैं, थोड़ी सी गाइडेंस की आवश्यकता है. 129 दो विकेट पर. ओवर कितने हुए हैं बाटी? 14वां ओवर है, हो चुका है. इसका मतलब ड्रिंक्स मैदान पर हैं, हालांकि हमको नहीं नज़र आ रही है. तो खेल तमाम संभावनाओं के साथ शुरू हुआ लॉर्ड्स के इस मैदान पर, क्योंकि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने थे. और बड़ी हसरत के साथ, ऑस्ट्रेलिया पिछली दो बार जीत नहीं सका था. ऑस्ट्रेलिया अपने यहाँ, इंग्लैंड अपने यहाँ कभी हारा नहीं और ऑस्ट्रेलिया को कभी फाइनल में हराया नहीं, लेकिन दोनों ही टीमें विजय रथ पे सवार और परचम लहराती हुई पहुँची. कोई मैच हारी नहीं टूर्नामेंट में, और इसीलिए

0: लगा कि टक्कर का मुकाबला होगा, कांटे का मुकाबला होगा, रोमांचक खेल देखने को मिलेगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया अगर हो और वो भी नॉकआउट स्टेज में तो मुकाबले एक तरफे हो जाते हैं। पिच कुछ धीमी कुछ नीची है और अभी भी है, ऐसा नहीं है सेकेंड हाफ में या दूसरी पारी में कुछ बदलाव आया है, लेकिन जब आपके इरादे मजबूत होते हैं तो फिर आप सब कुछ कर सकते हैं, अपने को एडजस्ट कर सकते हैं, ढाल सकते हैं। पिच अभी भी कहीं कहीं बीच बीच में नीची हो जाती है, गेंद ग्रिप करती है, रुक कर आती है। पहले 6 ओवर में 62 रन बना डाले, ऑस्ट्रेलिया ने केवल एक खिलाड़ी को खोया और एक खिलाड़ी और खोया 7 से 14 के बीच में, और 67 रन और जोड़े उन्होंने। शुरू से मुनी हावी रहे, गेंद बॉलर्स के ऊपर उन्होंने जमदार प्रहार किए और बहुत ही शानदार बैटिंग करके दिखाई एक मुश्किल पिच पर। अगर ऑस्ट्रेलिया ये 151 रन बना लेती है आज तो ये बेस्ट एवर रन चेज होगी T20 के फाइनल में, T20 के फाइनल में होगी। भारत जब ऑस्ट्रेलिया से खेला तो 171 जो बनाने थे ऑस्ट्रेलिया को, वो भी रिकॉर्ड था, वो भी रिकॉर्ड चेज थी, लेकिन डीम चार्ली डीम ऑफ स्पिनर नए ओवर की शुरुआत करते हुए ऑफ स्टंप के बाहर बीट किया, फ्रंट फुट पे स्ट्रोक खेलने की कोशिश की थी, 54 मील प्रति घंटे की रफ्तार की ये गेंद थी और क्रॉस सीम से अच्छी फिरकी दी थी, कोई ड्रिफ्ट नज़र नहीं आया। उत्तर उत्तर पश्चिम की ओर से हवा है लॉर्ड्स के मैदान पर और इस गेंद को खेला बाहरी मोटे सिरी से लगकर गेंद कवर्स में गई, एक रन बहुत आसानी के साथ ले लिया ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने। 130 दो विकेट पर यह 15वां ओवर हुआ है जिसकी दो गेंदें अब तक हुई हैं। बड़ी उम्मीदों के साथ बड़ी हसरत के साथ दर्शक मैदान पर आए और इनमें जो ऑस्ट्रेलियाई समर्थक हैं उनको निश्चित रूप से हर्ष हो रहा होगा कि ऑस्ट्रेलिया
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। देश में दक्षिण पश्चिम मानसून और तेज हो गया है, कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी दी गई है, मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग में कल छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, माहे और मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली के कुछ हिस्सों, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ओडिशा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तराखंड और उत्तरी पूर्वी राज्यों में भी हल्की से तेज बारिश की संभावना है। गुजरात में अगले 7 दिनों में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। डांग, नवसारी, वलसाड, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली, भावनगर, अमरेली और गीर सोमनाथ में कल बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मछुआरों को अगले 5 दिन तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। महाराष्ट्र में तेज वर्षा से जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कोंकण जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। मुंबई में आज मूसलाधार बारिश के कारण छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लगभग 1 घंटे के लिए रनवे संचालन अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा, जिससे उड़ान सेवाएं प्रभावित हुईं। बृहन्मुंबई नगर महानगर पालिका के अनुसार दिन भर में पेड़ गिरने की 64 घटनाएं तथा दीवार या मकान के कुछ हिस्से गिरने की 8 घटनाएं दर्ज की गईं। भारी बारिश के कारण ठाणे और पालघर जिलों में भी व्यापक नुकसान हुआ। लगातार हो रही भारी बारिश के कारण महाराष्ट्र की कई नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज मध्य प्रदेश के शिवपुरी में रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। यह संयंत्र अडानी समूह द्वारा लगभग 2500 करोड़ रुपए के निवेश से बनाया जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि आज शिवपुरी के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। उन्होंने इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया है। श्री सिंधिया ने कहा कि ये परियोजना जिले को औद्योगिक विकास, रक्षा उत्पादन और आत्मनिर्भर भारत के सपने से जोड़ेगी। उन्होंने कहा कि शिवपुरी के मेहनती युवाओं के बनाए हथियार और मिसाइल भारतीय सेना को मजबूत करेंगी। ये कारखाना राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर स्थित पाली गाँव में बनेगा। इसमें गोला बारूद, उचित तकनीक वाले हथियार और मिसाइल का उत्पादन किया जाएगा। अडानी समूह के निदेशक जीत अडानी ने कहा कि समूह वर्ष 2030 तक मध्य प्रदेश में 1,20,000 रोजगार सृजित करेगा। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। सहकारिता मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। मंत्रालय ने बताया कि यह समारोह सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किया जाएगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान सहित पश्चिम एशिया की अपनी आधिकारिक यात्रा शुरू की। यात्रा के पहले चरण में डॉक्टर जयशंकर दोहा पहुंचे, जहां उन्होंने कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं, विशेष रूप से ऊर्जा, व्यापार, निवेश, संपर्क, सुरक्षा और जनसंबंधों की समीक्षा की। जम्मू कश्मीर में वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा में भारी जन भागीदारी दर्ज की गई है। तीर्थयात्रा के पहले 3 दिनों में 56,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने पवित्र गुफा मंदिर में दर्शन किया। आज रिकॉर्ड 24,648 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में आज नॉर्वे का सामना ब्राजील से होगा। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 1:30 बजे से न्यूजर्सी में खेला जाएगा। वहीं कल सुबह 5:30 बजे इंग्लैंड का मुकाबला मैक्सिको से होगा। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में लंदन के लॉर्ड्स में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 151 रन का लक्ष्य दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने ताज़ा समाचार मिलने तक 15वें ओवर में 2 विकेट पर 138 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani. The news read by Abhineet Shukla. Southwest monsoon has intensified in large parts of the country, bringing widespread rain, thunderstorms, lightning and gusty winds. The India Meteorological Department has said conditions are favorable for its further advance into some parts of Gujarat, remaining parts of Haryana, Punjab and some parts of Rajasthan during the next 4 days. Heavy to very heavy rainfall is predicted over Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Rajasthan, Karnataka, Uttarakhand during the day, while scattered rainfall is expected in Delhi, Uttar Pradesh, Punjab and Chandigarh during the next 2 to 3 days. In Maharashtra, heavy monsoon rains continued to affect several parts of the state today, triggering rescue operations and rain-related incidents. The weather office has forecast heavy to very heavy rainfall at many places, with extremely heavy rainfall likely at isolated locations over the next 24 hours. Authorities have advised people to remain alert and avoid venturing into vulnerable areas as the heavy rain is expected to continue. In Gujarat, IMD has forecast heavy rainfall over the next 7 days. A red alert for extremely heavy rainfall tomorrow has been issued for Dang, Navsari, Valsad, Bhavnagar, Amreli, Gir Somnath and Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli tomorrow. Fishermen have been advised not to venture into the sea for the next 5 days. Meanwhile, Delhi NCR witnessed a sudden change in weather this afternoon, with moderate rainfall lashing several parts of the region, bringing much needed relief from the humid weather. Union Minister Jyotiraditya Sindhya and Madhya Pradesh Chief Minister Dr. Mohan Yadav today laid the foundation stone of a defence manufacturing plant in Shivpuri. The plant will be built by the Adani Group with an investment of around 2,500 crore rupees. Speaking on the occasion, Union Minister Sindhya said, a new chapter is being written in Shivpuri's history today. Not only missile propellant, but also explosives, missile assembly, and some of the world's most advanced weapons will be manufactured in Shivpuri. This is the largest investment by a private sector company in South Asia. Mr. Sindhya said, the project will connect the district to industrial development, defense production, and the vision of a self-reliant India. Prime Minister Narendra Modi will embark on a state visit to Indonesia from tomorrow till the 8th of this month. This will be Prime Minister Modi's 4th visit to Indonesia. The Prime Minister will hold bilateral discussions with President Prabowo Subianto, reviewing progress across key areas of cooperation under the strategic partnership. In Jakarta, the Prime Minister is also scheduled to address a large gathering of the Indian diaspora. Coinciding with Prime Minister Modi's visit, Indonesia will launch 15-month-long commemorative programs marking the centenary of Gurudev Rabindranath Tagore's historic visit to the country. Talking to Akashvani News, India's ambassador to Indonesia, Sandeep Chakraborty, said, celebrations will include exhibitions and year-long cultural programs highlighting the deep cultural ties between India and Indonesia. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar began his official visit to West Asia today, covering Qatar, Bahrain, Kuwait and Oman. On the first leg of his visit, Dr. Jaishankar reached Doha, where he met Qatari Prime Minister and Foreign Minister Mohammed bin Abdul Rahman bin Jassim Al Thani. Both the leaders reviewed various facets of bilateral cooperation, especially energy, trade, investments, connectivity, security and people-to-people ties. In a social media post, Dr. Jaishankar said, they explored new opportunities for deepening the strategic partnership. Dr. Jaishankar thanked Mohammed bin Abdul Rahman for ensuring the safety and well-being of the Indian community and appreciated his sharing of assessments on the West Asia conflict and its impact. In the ICC Women's T20 World Cup final, chasing a target of 151 runs set by England, Australia were 137 for the loss of 2 wickets in 15 overs at Lord's Cricket Ground in London when reports last came in. Earlier, Australia won the toss and opted to bowl first. Put to bat, England scored 150 for 4 in stipulated 20 overs. Skipper Natasha Brunt was top scored with an unbeaten 58 runs, while Freya Kemp made 44 runs. In the FIFA World Cup, Brazil will take on Norway in the round of 16 match in New Jersey at 1:30 a.m. Indian Standard Time tonight. England will face Mexico in Mexico City in the other pre-quarterfinal at 5:30 a.m. tomorrow. And that is the end of this news bulletin.
0: फुल लेंथ की थी, अगली गेंद उसको ड्राइव कर दिया तो फील्डर्स के बीच में से गेंद लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर, 4 रन।
4: ये लगा आभा का चौका।
0: अब केवल 7 रन चाहिए, एक छक्का चाहिए बराबरी के लिए। और इनिंग्स के तुरंत बाद आप प्लेयर ऑफ द मैच कार्यक्रम स्टूडियो से सुन सकेंगे, उसमें बची हुई जानकारी आपको मिलेगी। अगली गेंद को फिर उठाकर खेला, फील्डर के पास जाते ही जाते बुझते हुए जीए की लो जैसे बढ़ रही है, विकेट मिल गया इंग्लैंड को और आउट हुआ चौथा खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया का। पेरी ड्राइव कर रहे थे, अपिच ड्राइव मिड ऑफ पर दायरे के अंदर वो कैच हुई।
5: गुड कैच बाय एक्लस्टन देयर, was traveling, it was low, it was sharp, but Sophie Eccleston holding on to it. And a late flourish for England in terms of picking up both the said batters. But I think, as they say, little bit too late. Oh, she's still waiting. Maybe the umpire has asked her to wait to check whether the ball was taken cleanly. I suspect they have to fill the time, Vineet. So they have to have reviews.
0: आजकल इतना कुछ लगा रहता है प्रसारण पर, सैटेलाइट्स इत्यादि बुक रहती हैं और विज्ञापनों का और कमर्शियल ज़माना है, लेकिन दृश्य उभर रहे हैं सामने मॉनिटर पे कि क्यों उंगलियां नीचे थी या गेंद नीचे थी। लो कैच एक्लस्टन द्वारा, सेमीफाइनल में हम देख चुके हैं कि वो 5 फुट 11 इंच की अपने कद का पूरा इस्तेमाल करके ऊंचा कैच तो पकड़ ही लेती हैं, क्या लो कैच भी उन्होंने सफलतापूर्वक पकड़ा है ये अंपायर इस समय देखना चाहते हैं। उंगलियां नीचे हैं या बीच में से बॉल कहीं स्पर्श कर गई है टर्फ पर, वो इस समय यक्ष प्रश्न है और उसके लिए प्रतीक्षा की जा रही है। पिछले 5-10 मिनट में खेल कम हुआ है, रेफरेंस में ज्यादा जाया हुआ है और ऐसा कोई कांटे का मुकाबला भी नहीं है, लेकिन हाँ एक प्रक्रिया है जिसको कि आपको निभाना है। नई परिपाटी शुरू हुई है जो आगे भी जारी रहेगी, अब वो ये है कि नॉन स्ट्राइकिंग छोड़ पर रन आउट बॉलर के हाथ से लग के अगर स्टंप्स पे गेंद जाए तो हाथ से लगी या नहीं लगी वो भी मॉनिटर पे स्निको पे अल्ट्रा एच पे देखा गया, जो हमारे अनुभव में हम लोगों ने तो पहले कभी देखा नहीं है, लेकिन प्रावधान तो है, प्रावधान नहीं है ऐसा नहीं है यूं कहना चाहिए। लेकिन अभी भी दिखाया जा रहा है एकलस्टोन का वो कैच मिड ऑफ में दायरे के अंदर, जिसमें वो नीचे एक लो कैच पकड़ने का प्रयास कर रही हैं। डिसीजन पेंडिंग है और नॉट आउट।
5: अनबिलीवेबल, दिस इज रियली रियली अमेजिंग विनीत। आई कांट एक्सप्लेन।
0: सर ही तो पकड़ लिया एकलस्टोन ने अपने, उनको विश्वास नहीं हो रहा है, अभी भी आपत्ति जता रही है। क्या करिएगा, अब आप टीवी मॉनिटर से तो नहीं लड़ सकते हैं। लेकिन इसीलिए तीसरा अंपायर बहुत तजुर्बेकार होना चाहिए, और वो है। किम कॉटन कोई मामूली अंपायर नहीं है।
5: पॉइंट इज, एंड दिस इज समथिंग दैट पीपल डोंट अंडरस्टैंड, व्हाट वी सी ऑन द मॉनिटर इज अ टू डायमेंशनल इमेज। यू नेवर कैन गेट अ थ्री डायमेंशनल इमेज, एंड द मोर यू शो इट द मोर द डाउट गोज ऑन, एंड दैट इज वेयर टेक्नोलॉजी हैज टू बी सबॉर्डिनेट टू द गेम। It cannot lead the game, in my opinion, but who cares?
0: ऐसा हो जाता है कि कई बार तीसरा अंपायर का जो व्यक्तिगत नजरिया होता है, उसका उस लम्हे में जो फैसला होता है वही काम में आता है, और ये अलग अलग हो सकता है, सब्जेक्टिव है, हर व्यक्ति अलग तरीके से निर्णय ले सकता है। दो फील्डर्स के बीच में जो जगह है वहाँ से ड्राइव करके इस बार रन मिला है, नाम मात्र को पिछले 15 मिनट में खेल हुआ है।
5: Sorry, Vineet, you know, in the earlier days, before that rule was abolished, there used to be a soft signal from the umpire. I think that was a better way, because then you needed conclusive evidence to overturn the umpire's soft signal. But that is no longer the rule.
0: And when the soft signal was given, it was in surkhiyon mein rahi ye khabar ki soft signal ki kya zarurat hai, upar bhej hi rahe hain aap. तो ये चलती रहती है, कश्मकश होती रहती है, आईसीसी नियमों में बदलाव करती चली जाती है। बहुत सी चीज़ें हैं जिसका अब ये आप अनुमान लगा लीजिए कि इतनी दफ़ा और इतने समय तक देखने के बाद भी वो निर्णय से सब संतुष्ट नहीं है, और ये है प्रक्रिया इसीलिए कि आप सही फेयर निर्णय न्यायपूर्वक उसका फैसला कर सकें। और कुल मिलाकर ये कहा जाएगा कि ये तो तीसरे अंपायर का अपना नज़रिया था कि उसने आउट दिया, और ऐसा होता रहा है। 17 ओवर पूरे हुए, 146 3 विकेट पर।
5: So it looks like we might be into the last over of the game, Vineet. 146 for 3, 5 runs required. Elise Perry is on 13, Ash Gardner is on 1, and of course that innings from Beth Mooney of 64, and that partnership with Phoebe Litchfield of 100 runs really setting the tone. 48 to Litchfield, Mooney on 64, both got out just after Australia had stamped their authority. And now it looks like a pure formality. But the fact that the game has gone to 17 overs itself is a bit of a surprise, the way Australia were batting. And who's going to bowl the next over? Looks like it might be Sophie Eccleston, who is going to bowl out. 3 overs, 1 for 17. The best of the England bowlers, really, because if you look at Charlie Dean, 4 overs for 28. Lauren Bell, 3 overs for 28. Lindsay Smith, 4 overs for 30. One 146 for 3, 17 overs, lofted over, pulled back in, dragged back in probably is a better way of putting it, limits the scoring to 2, Gardner goes to 3, and the total now 148 for 3, 2 to tie, 3 to win, 7th T20 Women's World Cup trophy awaits Australia, and the celebration. Eccleston ball swept, this one's running down to the boundary, this could be it. 4 runs and Australia have won. So,
4: ये लगा आभा का चौका.
5: So as many had predicted, Vineet, it clearly was Australia's day. They were dominating. They dominated from the beginning, and that marks the end of the Women's T20 World Cup with a win for Australia. Their drought is over. Their 7th title is theirs.
0: बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया डिजर्व करती है जीतना, जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग की, और सबको लग रहा था कि इस पिच में बैटिंग करना इतना आसान नहीं है, लेकिन उन्होंने आसानी से बैटिंग करके दिखाया। दिक्कत उनको भी हुई, कुछ भाग्य ने भी साथ दिया। शुरू में इंग्लैंड ने जिस तरह से बैटिंग शुरू की, स्टम्प्स पर अटैक किया, धीमी गेंदें की गति में परिवर्तन किए, वो सब चीज़ें मायने रखती हैं। कुल मिला के यही होता है कि नॉकआउट्स में अगर ऑस्ट्रेलिया है, और फाइनल और सेमीफाइनल में अगर ऑस्ट्रेलिया है, तो मुकाबला एक तरफा हो जाता है। तो आपको ये बताते हुए कि ऑस्ट्रेलिया ने 2026 का विमेंस का T20 वर्ल्ड कप जीत लिया है, लेकिन चर्चा क्रिकेट की जारी रहेगी। आकाशवाणी आपके लिए लाता है क्रिकेट और ढेर सारा क्रिकेट। तो इस प्रसारण के तुरंत बाद आप स्टूडियो से सुनेंगे प्लेयर ऑफ द मैच।
6: प्लेयर ऑफ द मैच

मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज पर तथा FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11:18 तथा 23 सेकेंड हुए हैं। आज की सभा यहीं संपन्न होती है। कल प्रातः 5:53 पर हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। शुभरात्रि, जय हिंद।